ओम शांति। ये कहा गया है, ए योगी कैन चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस, ए योगी कैन चार्ज द एटमॉस्फेयर, कैन क्रिएट द एटमॉस्फेयर। हम सभी योगी हैं, हमें अपने चारों ओर के वातावरण को अपने अनुकूल चार्ज कर देना है। हम चाहें तो शांति चारों ओर फैला दें, हम चाहें तो पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाकर सभी के मन में पवित्र बनने की भावनाएं जागृत कर दें, और यदि हम प्रयास करें तो अपने चारों ओर शक्तिशाली वाइब्रेशंस बनाकर अनेक आत्माओं को दुखों से मुक्त कर दें, तनाव से मुक्त कर दें, उन्हें जीवन जीने के लिए शक्तियां प्रदान कर दें, उन्हें निर्भय बना दें। तो ये बाबा ने बहुत बड़ी सेवा हम सबके कंधों पर रखी है कि तुम चारों ओर के वायुमंडल को श्रेष्ठ करो, पवित्र करो। जब वायुमंडल पवित्र होता है तो देवकुल की अनेक आत्माएं अपने मूल स्वरूप, पवित्र स्वरूप को पहचान कर उसकी ओर आकर्षित होंगी, और अन्य धर्मों की आत्माओं को भी, क्योंकि अंत में पवित्र तो बनना ही है घर जाने से पहले, तो उनमें भी पवित्र बनने की इच्छा जागृत हो जाएगी। हम सभी को अपनी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन के द्वारा, आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा इस संसार में पवित्रता की लहर फैला देनी है, और वो समय आएगा जब संसार का हर मनुष्य पवित्र बनने की सच्चे दिल से चाह करेगा, जब उसे पता लग जाएगा कि सचमुच इन विकारों में कष्ट ही कष्ट है, इन विकारों ने ही हमें वतन की राह पर ढकेला है, इन विकारों ने ही हमारे अंदर दुखों के पहाड़ गिरा दिए हैं, ये विकार हमारे शत्रु हैं। इसके लिए आवश्यक है चारों ओर के वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना। आप यदि किसी ऑफिस में कार्यरत हैं, किसी बिजनेस सेंटर में हैं, किसी संगठन में हैं, आप ये बिल्कुल शिकायत न करें कि चारों ओर लोग ऐसे हैं, वातावरण बड़ा गंदा है, चारों ओर निगेटिविटी है। ये सब तो है, कलयुग में ये सब नहीं होगा तो क्या सत्वप्रधानता होगी, यही सब होगा। लेकिन हम लाइट हाउस हैं, लाइट हाउस ये नहीं कह सकता कि मेरे चारों ओर अंधेरा है, बिजली के बड़े बड़े बल्ब ये नहीं शिकायत कर सकते कि हमारे चारों ओर तो गहन अंधकार है, उन्हें तो बस स्विच ऑन होने की इंतजार होती है। हम भी अपने अंदर स्मृति का स्विच ऑन करें, मैं पवित्रता का सूर्य हूं। आप ऑफिस में हैं, 5 बार ऑफिस आवर्स में इसका अभ्यास कर लिया करें, मुझसे चारों ओर पूरे ऑफिस में पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं, जिस तरफ मेरी नजर जाती है प्योर वाइब्रेशन से वायुमंडल चार्ज होता जा रहा है। बहुत अच्छा अनुभव होगा, कुछ ही दिन करने के बाद आपको इसका प्रत्यक्ष रिजल्ट मिलने लगेगा। आप देखते हैं कि दुख ही दुख है आपके चारों ओर, तो मैं पीस हाउस हूं, शांति के सागर से शांति की किरणें लेकर चारों ओर फैलाने लगे। यदि आपके घर में अशांति का माहौल है, प्रेम नहीं है, खुशी नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तो शांति के वाइब्रेशंस 21 दिन फैला कर देखें, और अनुभव होगा कि इससे हमारे घर में शांति और प्रेम का माहौल हो गया। हमारी वृत्ति वायुमंडल का निर्माण करती है, और विशेष वृत्ति है आत्मिक वृत्ति। सब आत्माएं हैं, सब देवकुल की आत्माएं हैं, सब मूल रूप से पवित्र आत्माएं हैं। ये दृष्टि, ये वृत्ति हम पैदा करें तो चारों ओर का वायुमंडल बदलता जाएगा। तो आज विशेष रूप से हमें अपने चारों ओर पवित्रता का वायुमंडल बना देना है। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या पवित्रता का सूर्य हूँ। परमधाम में हैं बाबा पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। कुछ देर इसको गुड फीलिंग में लाएंगे, परमात्म पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं,
और फिर मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। आप करके देखें, आज हर घंटे में एक बार भी बहुत अच्छी तरह कर लें तो आपके चारों ओर का वायुमंडल पवित्र वाइब्रेशन से आपको चार्ज होता हुआ नजर आएगा। सब आपको पवित्र आत्माएं फील होंगी और इसका प्रभाव आप सभी के ऊपर बहुत सहज देख सकेंगे। ओम।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। कोई भी गुस्सा हो सकता है, गुस्सा होना सबसे आसान चीज है, परंतु नाराज होने के लिए सही व्यक्ति, सही मात्रा, सही उद्देश्य और सही तरीका निर्धारित करना आसान नहीं है, ऐसा अरस्तु का कहना था। जीवन की परेशानियां और तनावों को मद्देनजर रखते हुए हम थोड़ी सी उत्तेजना से भी क्रोधित होकर गुस्से के आवेग में आ सकते हैं। हम जब थकान से भरे हुए दिन के बाद घर जाने की जल्दी में होते हैं तो कई बार अपने सामने धीमे गाड़ी चलाने वाले पर चिल्लाते हैं, क्योंकि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। जब हम किराने की दुकान पर कुछ मसाले ढूंढ रहे होते हैं और विक्रेता हमें दुकान के किसी और भाग में भेज देता है तो हम उस पर क्रोधित हो उठते हैं। जब हम रात का खाना खा रहे होते हैं और फोन पर कोई बिक्री प्रचारक शांति को भंग करके अपनी नवीनतम वस्तुओं की जानकारी देने की कोशिश करता है तो भी हम अपना आपा खो देते हैं। असली समस्या यह है कि हर बात पर गुस्सा होना हमारी आदत बन जाती है और बाकी आदतों की तरह यह हमारा दूसरा अस्तित्व बन जाती है। निजी संबंध उलझने लगते हैं, व्यापार की साझेदारी टूटने लगती है, प्रभावशाली लोग संतुलित और विश्वसनीय होते हैं। संघर्ष के समय शांत इंसान की आवश्यकता होती है और ऐसे लोग हमेशा निश्चल और तटस्थ रहते हैं, चाहे कितनी भी चिंता क्यों न हो। अपने आप को परेशानी के समय में शांत रखना हमें आगे लाने वाले दर्द और दुख से बचाता है। क्रुद्ध अवस्था में अपनी जबान पर लगाम दिए बिना उच्चारण किए जाने वाले दुखदायक शब्द अनेकों टूटे हुए रिश्तों का कारण बने हैं। शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार मुंह से निकल गए तो उनको वापस लेना असंभव है। अतः अपने शब्दों का बहुत सावधानी से चुनाव करिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस इंसान ने आपको क्रोधित किया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने से पहले 100 तक की गिनती गिनी। दूसरी पद्धति 3 दरवाजों की विधि है, जो प्राचीन काल में साधु महात्मा अपने शब्द तक नहीं बोलते थे जब तक वे उन्हें 3 दरवाजों से बाहर नहीं निकाल लेते थे। पहले प्रवेश द्वार की अवस्था में वे अपने आप से पूछते थे कि क्या वे शब्द सच्चाई पर आधारित हैं? अगर हाँ तो वे दूसरे द्वार पर जाते थे और पूछते थे कि क्या वे शब्द सही में आवश्यक हैं? अगर हाँ तो तीसरे द्वार पर वे अपने आप से पूछते थे कि वे शब्द नम्रतापूर्ण हैं? अगर हाँ तब ही वे अपने होठों से उन शब्दों को निकाल कर दुनिया तक पहुंचने देते थे। लोगों के साथ यह समझकर व्यवहार कीजिए कि वे वैसे ही हैं जैसा उन्हें होना चाहिए था। उनकी सिर्फ मदद कीजिए कि वे अपनी काबिलियत के अनुसार अपनी सही जगह हासिल कर सकें। ये वे विवेकपूर्ण शब्द है जो हमेशा जिंदा

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

अपने जीवन से सर्वोत्तम पाने के लिए आपको प्रत्येक दिन के हर घंटे और हर मिनट में मानसिक रूप से पूरी तरह से उपस्थित रहना पड़ेगा। जैसा कि अल्बर्ट कैमस ने लिखा है, भविष्य की दिशा में सबसे बड़ी उदारता यह होगी कि हम अपना सब कुछ अपने वर्तमान को दे सकें। फिर भी ज्यादातर दिन ऐसा होता है कि हमारा दिमाग एक ही समय पर अनेक जगहों पर विचरण कर रहा होता है। अपने काम पर जाते वक्त उस रास्ते का मजा लेने के बजाय हम यह सोच रहे होते हैं कि हमारा अधिकारी हमसे दफ्तर में पहुंचने के बाद क्या बोलने वाला है, या हम दोपहर में क्या खाना खाने वाले हैं, या हमारे बच्चे स्कूल में क्या करने वाले हैं। जैसा पूर्व दिशा में बोला जाता है कि हमारा मन इधर उधर भागते हुए छोटे पिल्ले की तरह है, या उन छूटे हुए बंदरों की तरह है जो एक जगह से दूसरे जगह बिना जरा भी आराम किए दौड़ते रहते हैं। वर्तमान के क्षण की जागरूकता का विकास और मानसिक एकाग्रता की प्रचुरता आपके जीवन में शांति लाएगी, बल्कि आपको अपने मन की योग्यताओं को संपूर्ण रूप से उजागर करने में भी मदद करेगी। जब बहुत सारी बातें हमारे ध्यान में विघ्न डालती हैं, तो हमारे मन की शक्ति विभाजित हो जाती है, जिसको वास्तव में एक लेजर की केंद्रित ऊर्जा की तरह होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि आप अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना सीख सकते हैं और इस कला का विकास काफी जल्द किया जा सकता है। अपने चंचल मन का इलाज करने के लिए एक पद्धति है जिसे केंद्रित पढ़ना कहा जा सकता है। हर बार जब आपका ध्यान अपने पढ़ने वाले पन्ने से भटकता है, तो आप दाहिनी तरफ के हाशिए में एक निशान लगाइए। यह साधारण प्रक्रिया आपको अपनी एकाग्रता में असमर्थता देगी, और जैसा कि यह जागरूकता परिवर्तन की ओर पहला कदम है, यह आपको स्पष्ट और शांत दिमाग की निपुणता बढ़ाने में मदद करती है।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको

गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदायी हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है।

वह व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है सिर्फ 5 मिनट के लिए अज्ञानी हो सकता है, परंतु जो नहीं पूछता वह पूरी जिंदगी मूर्ख रहता है। यह एक पुरानी चीनी कहावत है, आप जितना ज्यादा मांगते हैं उतना ही ज्यादा पाते हैं, परंतु इसका अच्छा अभ्यास करना पड़ता है। सफलता एक आंकड़ों का खेल है। जैसा कि बौद्ध साधुओं का कहना था, हर वह तीर जो निशाने पर लगता है कम से कम 100 चूके हुए निशानों का परिणाम होता है। आगे के हफ्तों में अपनी प्रश्नकर्ता मांसपेशियों को लचीला बनाइए। आपको आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में परिपूर्णता और प्रचुरता का बहाव होने लगेगा। अगर आप सिर्फ वह पूछना शुरू करेंगे जो आप सच्चाई के साथ चाहते हैं, याद रखिए कि अगर एक व्यक्ति मांगता है जो उसको चाहिए, जो कम से कम उसे यह आशा होती है कि शायद उसकी मांग हुई चीज उसे मिल जाए, परंतु जो व्यक्ति नहीं मांगता उसके लिए तो आशा की कोई भी किरण नहीं होती है। जीवन भी काफी अद्भुत है। अगर आप सर्वोत्तम से नीचे कुछ भी नहीं स्वीकार करते हैं तो अक्सर वह आपको मिलता भी है। पुराने जमाने में हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ ऐसी नौकरी करके खुश थे जिससे मिले पैसों से वे अपने खर्चे उठा सकें, परंतु अब हम अपनी नौकरी से बहुत कुछ चाहते हैं। हम संतोष, सृजनात्मक चुनौतियां, विकास, खुशी और एक ऐसी भावना कि हम अपने अलावा भी कुछ करने के लिए जी रहे हैं, उसकी अपेक्षा रखते हैं। एक शब्द में बोला जाए तो हम अपने काम में अर्थ ढूंढते हैं। एक सबसे अच्छा तरीका जिससे हम अपने काम का उच्च मतलब ढूंढ सकें वह है सृजनात्मक प्रश्न पूछने का, जिससे हमें यह पता चल सकता है कि हमारे काम का आसपास दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अपने आप से पूछिए कि आखिर में वे कौन लोग हैं जो मेरी कंपनी में बनी हुई वस्तुओं के उपभोग से लाभ उठाते हैं, या मेरे रोजमर्रा के प्रयत्नों से दुनिया पर क्या असर होता है। एक बार आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पेशे और आपकी

अगर आप बीमा के पेशे में हैं, तो यह याद रखें कि आपका काम लोगों को जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी जरूरत के वक्त में उनके काम आना है। अगर आप एक विक्रेता हैं, तो यह सोचिए कि किस प्रकार आप अपने कार्य से लोगों की सेवा करते हैं और जो माल आप बेचते हैं वह किस प्रकार उनके जीवन में खुशियां ला रहा है। अपने कार्य की महत्वपूर्णता और आपके सहयोग की दूसरों के लिए उपयोगिता पर अधिक ध्यान देकर आप अपने असंतोष और प्रेरणा की मात्रा में आवश्यक प्रचुरता देखेंगे। कुछ चीजें मानव की आत्मा को लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की महत्वाकांक्षा से ज्यादा प्रेरित करती हैं। महात्मा गांधी यह जानते थे, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा को भी यह पता था। विचारों में एक साधारण सा बदलाव आपके जीवन में खुशी की एक नई

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सर सरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
0: आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
2: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नॉर्मन काजिम्स ने कहा है, जीवन की त्रासदी मौत में नहीं है, परंतु जीते जी अपने अंतर मन को मारने में है। कुछ इसी तरह की बात एस्ले मोंटेगू ने कही है। सबसे बड़ी मानवीय हार उस भेद पर निर्भर करती है कि आप क्या बनने के लायक थे, परंतु वास्तविकता में क्या बन गए हैं। सिर्फ जिंदा रहने में और असलियत में जीवन जीने में बहुत फर्क है। साधारण जीवन में और समृद्ध जीवन में भी भिन्नता है। सबसे दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग अपने उन मानवीय गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं जो एक उपहार की तरह हमारे अंदर निवास करते हैं, और हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को टेलीविजन देखने और उस जैसी अनेक चीजों पर नष्ट कर देते हैं। हम सब में प्रतिभा और काबिलियत की प्रचुरता है, जो जागृत होने के लिए सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि वह सुबह की रोशनी देख सके। हजारों वर्षों के पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि हर कोई जो पृथ्वी पर आता है वह भगवान होता था, परंतु इंसान ने उस असीमित शक्ति का दुरुपयोग किया, जिससे परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वे ईश्वरत्व वाला सिर छिपा देंगे, जो कि इन सब गुणों का स्रोत है। फिर प्रश्न उठा कि वह चीज कहाँ छुपाई जा सकती है। पहले परामर्शकर्ता ने सलाह दी कि इसे नीचे जमीन में छुपा दिया जाए, जिसके बदले में भगवान ने कहा, नहीं, कोई गहराई तक खोदकर इसे निकाल लेगा। दूसरे सलाहकार ने परामर्श दी, कैसा रहेगा अगर हम ईश्वरत्व के सिर को समुद्र की गहराइयों में रख दें? जिसके जवाब में सर्वेश्वर ने कहा, नहीं, वहां भी कोई गोताखोरी करके इसे बाहर ले आएगा। तब तीसरा सलाहकार बोला, क्यों ना हम इसे पहाड़ की ऊंचाइयों पर रख दें? परंतु ईश्वर का जवाब था, नहीं, मैं जानता हूं कि कोई पहाड़ की चोटी पर भी चढ़कर इसे ढूंढ लेगा। थोड़ी देर बाद सोचकर परमेश्वर ने इसका हल ढूंढ लिया और कहा, मैं इस मानवीय शक्ति, सामर्थ्य और उद्देश्य के स्रोत को इस गृह के हर पुरुष और स्त्री और बच्चे के हृदय में रख दूंगा, क्योंकि वे उसको वहां ढूंढने का प्रयत्न कभी नहीं करेंगे। अधिकतर लोग अपना ध्यान सिर्फ अपनी कमजोरियों पर केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी शक्तियों का विकास करें। अपनी कमियों पर ध्यान देने की कोशिश में वे अपने गुणों की भी उपेक्षा करते हैं। सबसे महान लोग जो हमारे पहले जा चुके हैं, ये वे लोग थे जो स्वयं को अच्छी तरह जानते थे, और इसी सच्चाई ने उनकी सफलता को निश्चित किया था। वे लोग अपनी असली प्रतिभा के बारे में मनन करते थे। वे विशिष्ट गुण जिनके कारण वे दूसरों से भिन्न और अनुपम थे, और बाकी की जिंदगी को उन्होंने अपनी लियाकत को बढ़ाने और परिष्कृत करने में लगा दिया था। हम सब में सर्वोत्तम बनने का सामर्थ्य है। शायद आपने जरा भी समय देने की कोशिश नहीं की है कि अपने निजी गुणों को देख सकें और उन्हें तराश कर अपनी श्रेष्ठता के धरातल पर ला सकें। क्या आप अपने अंदर के सर्वोत्तम गुणों का पूर्ण सामर्थ्य के साथ उपयोग कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आप न सिर्फ अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो आपकी विशिष्ट प्रतिभा से लाभान्वित हो सकते हैं। रस्किन ने कुछ इस तरह से कहा है, हम में से सबसे कमजोर व्यक्ति में भी कोई न कोई गुण होता है, चाहे वह देखने में कितना भी तुच्छ लगे, परंतु वह विलक्षण होता है और उसका सही प्रयोग मानव जाति के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो अगर आप भी अपने आप को कहीं न कहीं असमर्थ या अक्षम समझते हो, तो आज ही अपने आप में उस विशेष गुण की खोज करना प्रारंभ कर दे जो सिर्फ आप ही में है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर।
सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

करते हैं तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

0: का पहिया। प्रजापिता ब्रह्मा को याद करते हुए उनकी विशेषताओं में मानो खो सा जाता हूं। उनकी विशिष्टता न केवल उच्चतम गुणों को रखने में थी, बल्कि संपर्क में आने वाली आत्माओं में वे उन्हीं गुणों को भरने की क्षमता भी रखते थे। ब्रह्मा बाबा एक ऐसे महान एवं दिव्य पुरुष थे जिन्होंने साबित कर दिया कि पूर्ण बनना संभव है। मन एवं भावनाओं पर काबू पाना संभव है। एक आदर्श भाग्य का निर्माण करना संभव है।
1: अब आप सुनेंगे नवसृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूप।

0: आज की दुनिया में कौन किसी से निस्वार्थ प्यार करता है? सच्चे एवं शुद्ध प्यार की आस रखना भी दूर की कौड़ी है, परंतु बाबा सबको स्वाभाविक, सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण एवं सच्चा प्यार देते थे। उनका सभी को मीठे मीठे सिकी लदे, नूरे रत्न, सर्विसेबल, रूहानी, लाडले बच्चे कहकर संबोधित करना दिलों को अंदर तक स्पर्श कर जाता था।
1: मनुष्य आत्माओं को महसूस होता कि यह किसी सांसारिक व्यक्ति का प्यार नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम प्यार के सागर परमपिता परमात्मा ही मानव जाति के पिता ब्रह्मा के द्वारा दे सकते हैं। यह अलौकिक प्रेम उनसे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार सच्चे प्रेम से सिक्त होकर वह आत्मा अभूतपूर्व शीतलता एवं उच्च सौभाग्य का अनुभव करती।

0: जब मनुष्य को प्यार मिल जाए तो वो क्या नहीं करने को तैयार हो जाए। प्यार पाकर तो वो अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। बाबा भी आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह पैदा करके उनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की बलि ले लेते थे। बाबा कहते थे,
1: क्या इसे बाप के लिए इन दुखदायी चीजों को नहीं छोड़ सकते? जन्म जन्मांतर तो आप विकारों का धंधा करते आए हो, अब इस अंतिम जन्म में बाप आपको सुख शांति की विरासत देने आया है, फिर इस थोड़े से समय में क्या इन विकारों को नहीं छोड़ सकते?
2: ये सच ही तो है कि जन्म जन्मांतर मनुष्य भक्ति करते हुए पतित पावन पिता को पुकारते रहते थे कि वो उन्हें विषय विकारों से छुड़ाएं।
3: लेकिन जब वही पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में आकर कह रहा है कि पतित से पावन बनो, इस सृष्टि को पावन बनाने में मदद करो, तो क्या इस कार्य में बच्चे अपने पिता को सहयोग नहीं देंगे?

0: एक बार की घटना है। एक युगल बाबा से मिलने आए। उन्होंने पहले दो चार बार ईश्वरीय ज्ञान सुना था। बाबा ने उनसे पूछा,
1: बच्चे कैसे चल रहे हो? ये बच्ची तेज पुरुषार्थ कर रही है या ये बच्चा?
2: बाबा, हमको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र रहना बहुत मुश्किल है।
1: बच्चे, जब आप मुझे बाबा कहते हो, तब क्या ये छोटी सी बात भी मेरी नहीं मान सकते हो? लौकिक नाते से भी बच्चे जिसे अपना पिता मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब क्या इस पावन बनाने वाले परमपिता परमात्मा का फरमान नहीं मानेंगे? आज्ञा का पालन करेंगे तो बाबा भी आपको आफरीन देंगे। शिव बाबा तो स्वर्ग का राज्य भाग्य देंगे ही, क्योंकि जो काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करता है, वही जगत जीत बनता है। मन में पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे, जो सिर्फ देवी देवताएं ही हो सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण थे।
0: बाबा तरह तरह की युक्तियों से लोगों को पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। उनका कहना था कि किसी को मालूम नहीं होता कि कब वो जीवन की अंतिम घड़ी तक पहुंच जाएंगे।
3: उससे पहले यदि पवित्रता का व्रत धारण कर लेंगे तो पवित्र सृष्टि में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। विकारों को जीतने में समय लगता है।
0: वैसे बाबा विकारों के लिए इतने कड़े शब्दों का प्रयोग करते कि सुनने वालों का मन स्वाभाविक रूप से विकारों से हट जाता। बाबा कहते थे,
1: बच्चों, क्रोध एक भूत है। जैसे भूत किसी के सिर पर सवार होता है तो उससे उल्टा काम करा देता है, उसे परेशान करता है, वस्तुओं की तोड़फोड़ कराता है, वैसे ही क्रोध का भूत कई तरह के उपद्रव कराता है। जिसमें क्रोध रूपी भूत प्रवेश करता है, उसका चेहरा, नेत्र, बातचीत सब बदल जाती है। इसलिए अब ज्ञान की धूप दीप जलाकर इस भूत को भगाओ।

0: ये सच हम सभी जानते हैं कि आज के संसार में विकारों का कितना बोलबाला है। लोग अपनों के मोह में क्या कुछ नहीं कर जाते।
1: कोई संबंधों के मोह में फंसा होता है, किसी को वस्तु एवं वैभव का आकर्षण होता है, कुछ को तो स्थान तक का मोह होता है, वे दूसरी जगह जाने से डरते हैं।
2: मैं सेवा के लिए बाबा के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन घर में बच्चों को भी देखना है, वह कैसे होगा?
3: आपके तो बच्चे बड़े हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, थोड़े दिन के लिए घर की और अपनी जिम्मेदारी तो उठा ही सकते हैं। एक बार उन्हें जिम्मेदारी देकर तो देखिए।
2: बहन, डर लगता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए।
3: ये सिर्फ आपके मन का वहम है, उल्टा और नकारात्मक क्यों सोचती है? अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। बाबा तो कहते हैं कि जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा।
1: ब्रह्मा बाबा ऐसे मोह में फंसी आत्माओं की तुलना बंदर से किया करते थे। वे कहते थे कि जैसे बंदरिया अपने बच्चों को छाती से लगाकर कूदती भागती रहती है, वैसे ही जिनमें मोह होता है
0: वे भी व्यक्तियों एवं वस्तुओं से चिपके रहते हैं। उनसे छूटने की बात सुनकर उनकी अवस्था हलचल में आ जाती है। इसलिए बाबा कहते थे,
4: बच्चों, अब बंदर से मंदिर योग्य बनना है, नष्टो मोह हो जाओ, यही भगवान की आज्ञा है। सब मोह छोड़ दो, क्योंकि ये मोह ही दुख एवं गम का कारण है। अब एक प्रभु से ही मन का मोह अर्थात प्यार जुटा दो। मोह के साथ साथ अहंकार भी छोड़ो, निरहंकारी बनो, बुराई को छोड़ अच्छाई को अपनाने का पुरुषार्थ करो।

0: उच्च देवी मर्यादा में रहने एवं आसुरी मर्यादाओं को छोड़ने की सीख भी देते। वे कहते थे कि ज्ञान युक्त कायदे में ही फायदा है।
1: कायदे को छोड़ने से काम बिगड़ जाते हैं। कायदे पर ही सृष्टि भी कायम है, इसलिए कभी ईश्वरीय नियमों को नहीं छोड़ना है और न तोड़ना है। वे कहते थे
0: कि अगर किसी से आपका स्वभाव न मिले, संस्कारों की टकराहट हो या किसी को लेकर कोई शिकायत हो, तो उसके विरुद्ध स्वयं कोई कार्यवाही न करो, कानून अपने हाथ में न लो। वे कहते थे
2: आप सब तो स्वयं किसी न किसी विकार के वशीभूत हो, अवगुणों से भरपूर हो, अतः अपनी शिकायत पर आप खुद ही जज बनकर या जेलर बनकर कुछ भी करने के अधिकारी नहीं है। यदि किसी का कोई अवगुण व दोष दुख देता है तो इधर उधर किसी को न बताकर, वातावरण को दूषित न करके एक बाबा ही द्वारा शिव बाबा को बताओ, तब शिव बाबा ही उसे स्वयं सावधानी दे देंगे।
0: बाबा ज्ञान के अनेकानेक सूक्ष्म कायदे बताते थे जिससे कि यज्ञ वत्सों की अवस्था ऊंची हो सके और वे कर्म बंधन से मुक्त हो सके। उनका कहना था कि ईश्वरीय कुल की संतान कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, ईश्वर दाता है और बाकी सभी दाता के बच्चे जो सिर्फ देते हैं, लेते नहीं। इसके पीछे का अनोखा राज भी वे कुछ इस तरह बताते।
2: बच्चों, यदि आप किसी से निजी प्रयोग के लिए कोई चीज लेंगे तो प्रयोग करते समय उस देहधारी की याद आएगी, कल्याणकारी शिव बाबा की याद भूल जाएगी। इससे देहधारियों के साथ संबंध जुड़ेगा और ईश्वरीय स्मृति की कमाई में घाटा पड़ जाएगा। विशेष बात यह कि देने वाले का भाग्य ऊंचा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने भी आप मानव तनधारी के प्रयोगार्थ वो वस्तु दी। यदि वो शिव परमात्मा को सामने रखकर ईश्वरीय सेवा में वो वस्तु देता तो उसका संबंध ईश्वर से जुड़ता और वो वस्तु पवित्र हो जाती। ईश्वर से भविष्य में उसे कई गुना धन धान्य प्राप्त होता।
0: आमतौर पर दुनिया में मनुष्य एक दूसरे की कमी कमजोरियां ही ढूंढते रहते हैं, कमियों का वर्णन करते रहते हैं।
1: इससे कटुता एवं वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है। बाबा कहते थे कमियों का वर्णन करना महानता नहीं है, बल्कि उन्हें भरने में महानता है। यदि किसी की कोई कमी अथवा असमर्थता खटकती है तो बड़ों को सूचित करें, लेकिन किसी कार्य में खुद रुकावट न बने। ईश्वरीय कार्य में जिस सेवा पर जो नियुक्त है उस समय उसे सम्मान और स्नेह देना सबका धर्म होना चाहिए। इस प्रकार बाबा दैवी कायदे बताते हुए सभी की अवस्था को ऊंचा उठाते थे। इससे सभी कार्य सुगमता से हो जाते थे।
0: बाबा ये भी कहते थे कि जब शिव बाबा पिता, शिक्षक एवं सद्गुरु के रूप में शिक्षा एवं सावधानी दे रहे हैं तो कदम कदम पर उनकी राय लेनी चाहिए।
1: यदि कोई भूल, कोई अकर्तव्य अथवा विकर्म हो जाए तो उसे बता देने से उसका दंड आधा हो जाता है, परंतु यदि छिपाया तो शिक्षा एवं सावधानी भी।

है काल चक्र, कायदे कानून एवं कर्म विधान से हर कदम आगे बढ़ाने की शिक्षा देने वाले ब्रह्मा बाबा के साहस एवं धैर्य को सलाम करता हूं। उन्होंने प्रैक्टिकल रीति से सभी को ईश्वरीय ज्ञान की गहराइयों से जोड़ा, लोगों के कल्याण के निमित्त बने, सभी को सच्चा प्यार एवं सम्मान दिया। उनकी प्यार भरी एवं मधुर मुस्कान हर किसी को जोश और उत्साह से भर देती थी। ईश्वर के प्रति उनका प्रेम संक्रामक था, जो दूसरों को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार एवं मोह का त्याग करने की शक्ति देता था। बाबा हमेशा खुश एवं हल्के रहते थे। ऐसे में यदि कोई अशांत मन से उनके पास आता तो उनकी मधुर मुस्कान देखकर वह भी शांत हो जाता। इस तरह वे निरंतर आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर चले जाते।

0: ओए रुको रुक, ओए रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी अभी तक तो हम बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, लाइफ को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, अपने प्रोफेशन को मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब खुद के ऊपर नजर गई तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा और अपनी सही पहचान करते हुए क्या वो सिचुएशंस हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, इस पर कई सारी बातें हम कर चुके हैं। आज भी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर पिछली कड़ी को हम देखें सिस्टर शिवानी, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए थे कि जब सिचुएशन आ जाती है तो एक छोटा सा रिकैप लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई एक्चुअली वी नीड टू मैनेज द सेल्फ।
1: वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम के परिस्थितियाँ बहुत सारी हैं हमारे सामने जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ही चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज़ माई रिस्पॉन्स। सो वी शिफ्टेड द फोकस के सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय क्यों ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, तो सिचुएशन अपने आप संयम में आ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ एक बातों के बारे में हमने विचार किया। एक था साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम उलझन कहते हैं ना, बहुत उलझन है क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हम एक मिनट निकाल के भी स्टेप आउट करें कि जो ड्रामा चल रहा है उसको यहाँ से ना देखने की बजाय एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें हर एक एक्टर का रोल बहुत क्लियर दिखाई देगा और सिचुएशन जैसी है वैसे दिखाई देगी। और फिर जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वही प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो साक्षी दृष्टा वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन मुझे नहीं कंट्रोल कर रही है, मेरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन जब हम उसमें उलझे हुए थे कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सो जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत केओस हो रहा है, लेट्स से ऑफिस में होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट पे हो, आज शाम को सबमिट करना है, यू नो डेडलाइन इज देयर एंड यू हैव टू सी द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑफिस, इट इज लाइक केओस, एवरीवन इज शाउटिंग एट ईच अदर एंड जल्दी करो, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे
0: ब्लेमिंग,
1: ऐसे वातावरण में वो प्रोजेक्ट खत्म होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है, क्योंकि द होल एनर्जी फ्लो इज वेरी नेगेटिव। लेकिन अगर हो तो जाएगा पूरा, लेकिन एक्सपीरियंस क्या रहा सारा दिन का या वो एक महीने का जब आप वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, स्पेशली इवेंट्स ऑर्गेनाइज हम करते हैं, अब रोल ही है इवेंट ऑर्गेनाइज करना। इवेंट कुड बी एज स्मॉल एज कि आपके घर पे आज एक डिनर है, आपके घर पे आज एक बर्थडे पार्टी।

0: पिक्चर, और एक है आप एक मिनट स्टॉप करो कि यू नो व्हाट एम आई डूइंग. घर साफ होता जा रहा है और अंदर
1: गंदगी बढ़ती जा रही है. गंदगी,
0: वी क्लीनिंग द बर्तन, वी क्लीनिंग द हाउस, एंड अंदर क्यों नहीं आई, ऐसे नहीं है पैसे. इट्स अ सिचुएशन नॉट इन माई कंट्रोल, माई रिस्पॉन्स. तो अगर उस समय हम 10 सेकेंड भी अपने आप को स्टॉप करके कहें what am I doing? Hmm. And you will immediately just slow down. Just have to come out of it 1 minute like that. The one was detached observation, the other was filtering information. कि हम बहुत ज़्यादा information आज जो अपने अंदर भर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भी हमारी energy को deplete करती है. तो let's be careful. जहाँ तक information media से भी है, जहाँ तक information चारों तरफ की, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भरते जा रहे हैं. और उससे क्या होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है ना यहाँ पे, तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है. मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंज्यूम करने लगती हूँ बाहर से, तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर जो ऑलरेडी इतना भर गया है, इतना भर गया,
1: कोई भी कॉर्नर नहीं है जिस पर लिखे हैं.
0: या तो उसमें फिर मेरा रिस्पांस फिर ऑटोमेटेड होने लगता है, क्योंकि मेरा रिस्पांस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है. और फिर इंफॉर्मेशन भी कौन सी क्वालिटी की हम भर रहे हैं, तो जहाँ इंफॉर्मेशन ही ज़्यादा दर्द वाली भरेंगे तो रिस्पॉन्स फिर ज़्यादा दर्द वाला हो जाएगा. तो इसलिए हमने देखा कि इंफॉर्मेशन भरें तो भले हम सुन पढ़ तो रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य ले. तो एटलीस्ट फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन पॉजिटिव. और तीसरा हमने देखा कि जब भी हम ये जर्नी पर हैं कि यस दर्द मेरी क्रिएशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ, फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. लेकिन जब कभी ऐसी थोड़ी सी भी हार खा लें, रिएक्ट कर जाएं, एटलीस्ट देन स्टॉप एंड लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ. नहीं तो अगर एक बार, दो बार, चार बार ऐसे हार खाते गए तो लगेंगे नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम ही राइट था कि ये सब कुछ तो बाहर से ही आता. लेकिन अगर सपोज मैंने एक बार रिएक्ट किया, गुस्सा किया, ना लेट मी सिट बैक एंड यू नो रिकवर. जैसे कि एक इलनेस तो आ गई, लेकिन इलनेस का इलाज कर लें, उससे रिकवर हो जाए. क्योंकि हम उससे रिकवर नहीं होते तो एक के बाद एक बीमारी
1: फिर हमें पकड़ के साथ जुड़ती जाती है.
0: तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार अगर बीमारी आपको कोई हो जाती है तो आपका अपना इलाज आपको पूरी तरह से करना चाहिए. ना शारीरिक बीमारी भी होती है, कहते हैं रेस्ट कर लो, अच्छी तरह से रेस्ट कर लो ताकि आप उस बीमारी से रिकवर हो जाओ. अगर आप बिना रिकवर हुए ही एक्टिविटी में आ गए तो वो बीमारी हो सकता है आपको फिर से दोबारा आ जाए. तो इसी तरह एक बार गुस्सा किया, उसमें से रिकवर नहीं किया तो 10 मिनट बाद फिर कुछ और हो जाएगा. और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे एंगर इज नेचुरल.
1: और इनफैक्ट नहीं, एक बार जब एंगर कर जब हो जाता है ना, जब अपने आप को रिस्ट्रेन किया उसके बावजूद भी हो गया और उसके ऊपर हमने काम नहीं किया उसी वक्त, तो उसके रिपरकशंस, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी होती है. और उसके बाद ये देखा जैसे शिवानी कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं,
0: बिकॉज वी सॉ कि फीलिंग क्या होती है, फिर मेरी गलती तो थी नहीं, फिर जस्टिफाई मतलब आपकी गलती थी. देन अगेन दैट यू नो, क्योंकि वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम इतना डीप रूटेड है कि अगर एक वो थॉट आ गई कि मेरी गलती नहीं थी, दूसरी थॉट आएगी आपकी गलती थी, तीसरी थॉट आएगी फिर चेंज किसको होना चाहिए, आपको. यू सी ना, अगेन वी फॉल बैक इनटू दैट ओल्ड थिंकिंग पैटर्न. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिएक्ट कर भी दिया, किसी भी फॉर्म का रिएक्शन बाहर या अंदर, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स एंड सिट बैक विद योरसेल्फ. अगर आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपके कोई फ्रेंड्स, अगर उनका मूड खराब हो गया, यू नो दे आर अपसेट एंड यू सी देम लाइक दैट कि दे आर अपसेट, दे आर इन पेन, तो आप क्या करते हो?
1: हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम उनके साथ बातें करने लगते हैं.
0: नाउ सी, इज़न्ट दैट नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट भी हम टाइम निकाल कर उनसे बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे. क्या बात करेंगे? हाउ आर यू? इट्स ओके, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, भूल जाओ, कोई बात नहीं. तो जबकि हम औरों के लिए ये टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि वो दर्द में है एंड उनका दर्द मुझे मैटर करता है, तो मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ बैठूंगी, तो मैं अपना काम छोड़ के अपने साथ क्यों नहीं बैठ सकती? अगर मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में ही काम करती जाती हूँ, अपने साथ क्यों नहीं 2 मिनट निकाल कर बैठ सकते?
1: That's very true actually.
0: So the minute we go into pain, let's stop. अपने आप से बात करें, फिर उस सिचुएशन को पर्सपेक्टिव में देखें और रिकवर करें विद द पॉजिटिव थॉट, व्हाटएवर हैपेंड फाइन, आई एम अ पावरफुल सोल. अगेन यू नो, वो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ है थॉट्स का, कोई बात नहीं, उसको स्टॉप

0: करके, कट करके, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करना है. अगर मैंने अपने आप को नहीं स्टेबल किया तो फिर मैं हर सिचुएशन में फेल होती जाऊंगी सारा दिन. आप देखो, अगर एक बार आपका मूड खराब हो गया आज सुबह सुबह, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, फिर हर सिचुएशन में, यही अगर आपने 2 मिनट निकाल लिए आपने, ना दिस इज ऑल मेडिटेशन, दिस इज ऑल मेडिटेशन. नो मेडिटेशन, क्योंकि फर्स्ट चीज है अपने आप से रिश्ता, फिर परमात्मा से रिश्ता, अपनी हीलिंग, दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन, यू नो, एवरी टाइम वी थिंक इट्स सपोज टू बी वेरी टेक्निकल. नो, मेडिटेशन इज जस्ट ब्यूटिफुल, टेकिंग आउट टाइम, अपने आप से बात की, परमात्मा से बात की, अपना ध्यान रखा, उससे शक्ति ली. और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वो 1 घंटे के बाद 1 मिनट, ताकि वो ऑटोमेटिक अगर हमारी रूटीन में फिक्स हो जाए कि हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उस 1 घंटे के अंदर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ था, तो उस 1 मिनट के अंदर.
1: बिल्कुल, जैसे आप ये कह रहे हो, हम हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद घर फोन करते हैं, बच्चे ठीक है कि नहीं. सो अगेन, यू नो, इट्स वेरी, अपने हस्बैंड को फोन करते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, कि कितने सारे लोग ऐसे करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बोलें, अपने आप के साथ करें कि मैं ठीक हूँ कि नहीं.
0: यस, इट्स ओनली दैट, वो 1 मिनट सिर्फ उसी के लिए है. और बजाय कि, अब कई बार क्या होता है कि अगर हम वो 1 मिनट निकालते हैं तो कई बार हम एक सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स में फिर चले जाते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, उसने ऐसा किया. नो, देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. हमें वो 1 मिनट इसलिए नहीं निकाला है कि हम वो परिस्थिति का चिंतन करने वाले हैं उसमें बैठकर, उनको ऐसा, उनको. सो इसलिए हम परिस्थिति का चिंतन ना करके तुरंत वो 1 मिनट स्टार्ट ही करते हैं पॉजिटिव थॉट से, कि आई एम अ पावरफुल बींग, या आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ लवफुल बींग, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ जो शांति का सागर है, तो मैं आत्मा कैसी होंगी. तो क्या है, पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव अपने आप खत्म होता
1: जाएगा. It just fills you the moment you give that thought.
0: इसलिए 1 मिनट में हम ये नहीं कहेंगे कि आप 1 मिनट निकाल कर हर टाइम उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो उस 1 घंटे में गए थे.
1: वो तो
0: हम वैसे भी सोच रहे थे. एग्जैक्टली. तो वो 1 मिनट इसलिए निकलता है ताकि उस 1 घंटे के अंदर जो ऑर्डिनरी वेस्ट, कभी थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स जो आ गई होंगी, तो ये 1 मिनट में हम कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते. तो जितना भी थोड़ा सा वो 1 घंटे के अंदर ऊपर नीचे हुआ होता है, वो खत्म हो जाता है. भले हम अपने सभी भाई बहनों को ये बार बार कह रहे हैं, बट आई स्टिल फील नॉट मेनी आर ट्राइंग. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बात बहुत सिंपल लगती है कि 1 घंटे में 1 मिनट, ये कौन सी बड़ी बात है, बट ये 1 घंटे में 1 मिनट बहुत पावरफुल टूल है. अगर समवन जस्ट टेक्स इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट और इसको 1 हफ्ते के लिए सिर्फ करे, 1 हफ्ते के लिए आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दो जो हर 1 घंटे के बाद बजेगा ही बजेगा, और वो तो बजेगा लेकिन आप स्टॉप करेंगे. आप
1: वो स्टॉप तो बजता करेंगे जाता नहीं तो.
0: और आप पॉज करके वो क्रिएट करेंगे, लाइफ विल चेंज, दैट इज डेफिनेट.
1: वेरी ट्रू. और वो उस 1 घंटे के बाद जो 1 मिनट है उसमें ये नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं सोचना कि क्या हुआ था.
0: वो कई बार, क्योंकि दर्द इतनी डीप रूटेड है ना, और वो वैसे ही चल ही रहा था उस 1 घंटे में, तो कई बार वो 1 मिनट भी उस सिचुएशन के बारे में या उस व्यक्ति के चिंतन के बारे में ही एक, बिकॉज 1 मिनट इज वेरी शॉर्ट. और आप 1 घंटे के बाद हर टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते. आप ऑफिस में हैं, आप बार बार ये नहीं कर सकते आप 5 मिनट निकाल लो, 10 मिनट. सो इसलिए इट्स 1 मिनट. लेकिन अगर वो 1 मिनट एक्यूरेटली आप करो, अब होता क्या है, सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा. लेकिन अगर मैंने वो 1 मिनट 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा. फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11, तो somehow
1: 5 बजे तक तो आई विल बी इन स्टेट जो कुछ नहीं हो पाएगा.
0: फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है. हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना, डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है, 10 to 11 ये करना है. तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो, 9 to 10 क्या फील करना है. What to do is one column, 9 to 10 what to do and what to feel. 10 to 11 कैसा फील करना है,
1: पावरफुल, लवफुल,
0: एंड इट्स बेसिकली एवरीवन वांट्स टू फील हैप्पी. अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो वन यूनानिमस वर्ड इज खुशी चाहिए. तो हम और आप, इट्स अमेजिंग, आप यू आस्क एनीवन टुडे कितने दिन खुश रहना चाहेंगे, कहते 365 days. अच्छा, पूरे दिन में कितनी बार, कहेंगे हर मिनट. तो प्योर डिजायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं, और कर रहे हैं ऑपोजिट. क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ. तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया, 10 to 11 ये काम हो गया, तो सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया. और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई कहीं. लेट्स से आपका कल बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की स्टडी आपके लिए कंसर्न बनी हुई है एंड इट्स देयर ऑन योर माइंड, या आपके घर में, फैमिली में कोई, किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इट्स ऑन योर माइंड. अब आप काम तो कर रहे हैं, आप टिक करते जाएंगे, ये काम हुआ, ये काम हुआ. मन की स्थिति क्या थी पूरा दिन? हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं. सिर्फ काम किया, काम किया, काम किया, लेकिन सारा दिन दर्द में बीता, हाउ फेयर इज इट? क्योंकि डे बाय डे फिर जीवन ऐसे तो बीत ही रहे हैं. फिर पूछो कैसे चल रहा, कहेंगे चल रहा है, चल रहा है. एंड देन समवेयर जो एक बहुत डीप रूटेड सभी के अंदर आज सेट होता जा रहा है कि दिस लाइफ इज नॉट वेरी इंजॉयबल, इट इज मोर लाइक चल रहा है, इट्स मोर लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सिर्फ पूरा करते जा रहे हैं. और उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे. इट्स नॉट दैट खुशी इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी मच पॉसिबल. और इसीलिए हर एक के अंदर ये डिजायर है कि मैं खुश रहूं, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप नहीं कल्टिवेट हो जाएगी. आपने पूरी जो अपॉइंटमेंट डायरी बनाई, आप उस पर काम करते हैं तब तो वो आप एक एक टास्क अचीव कर पाते हैं. सिर्फ डायरी बना दी और किया नहीं तो हो जाएगा क्या? सिर्फ सोचने से कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो वो अपने आप हो जाएगा
1: तो पड़ेगा,
0: करना तो पड़ेगा ना. तो नाउ एवरीवन, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, करेंगे क्या उसके लिए? एक मिनट निकालेंगे उसके लिए? हाँ करेंगे, फिर करते नहीं. तो अनलेस वी डू इट, वो अपने आप तो नहीं आने वाला. तो इसलिए मॉर्निंग में जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, 10 मिनट्स भी अगर अपने से निकालते, तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं आपसे मेडिटेशन आगे हो रहा, परमात्मा से भी अभी तक कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, अपना दिन तो प्लान कर सकते हैं ना, दिन की प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ आज मुझे कैसा फील करना है पूरा दिन. तो वो थॉट हम सुबह सुबह क्रिएट करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, चाहे आज कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ गई, आई विल क्रॉस इट विद स्टेबिलिटी, आई एम पावरफुल. यू नो दिस इज अ थॉट आई हैव टू कीप गिविंग माई सेल्फ. फिर सुबह सिर्फ दिया, लेकिन फिर सारा दिन फिर सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, इसलिए वो एक घंटे के बाद एक मिनट, वो बहुत बहुत वैल्यूबल है. सो वो एक मिनट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके नेक्स्ट आवर पर भी यू नो प्रभाव पड़ता है. अगर हम ये एक एक मिनट निकालें हर घंटे के बाद, तो हम सारा दिन, हमारी स्थिति कैसे रहेगी? और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाम को घर पहुंचेंगे तो कैसी स्थिति होगी?
1: हम वो उस हालत में नहीं होंगे जिसमें हम थके हुए होते. इनफैक्ट फिजिकली हम जितना भी थके हुए हों, हम इमोशनली और मेंटली इतने ड्रेन्ड आउट होते हैं जब.
0: एक्चुअली फिजिकली हम बहुत ज्यादा नहीं थकते. आज क्या हमारा वायुमंडल है, अच्छे अच्छे हमारे ऑफिस हैं, एसी गाड़ी में हम ऑफिस जाते हैं, एसी ऑफिस में हम बैठे हैं, कंफर्टेबली बैठे हैं, कोई फिजिकल तो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं. ये जो थकावट की फीलिंग है, इट्स मोर हियर, क्योंकि इमोशनली और मेंटली हम थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की वेस्टेज बहुत हो रही है, क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ वो एनर्जी डिप्लीट होते जा रही
1: है. सिस्टर शिवानी, वी शुड ट्राई टू टेल एवरीवन, हम सब आज संकल्प करें. मैं तो आज अभी इस एपिसोड के बाद एक घंटे के बाद का अलार्म लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ट्राई करके देखे कि एक हफ्ता कम से कम हर एक घंटे बाद हम ये एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एक मिनट में हमने परिस्थिति का चिंतन नहीं करना है, हमने उसे एक घंटे को भी नहीं देखना है,
0: अपने दर्द का भी चिंतन नहीं करना.
1: वो वही तो कर रहे होते हैं. तो ना परिस्थिति का चिंतन, ना अपने दर्द का चिंतन, और ना ही एक घंटे को भी देखें. सिर्फ अपने आप को ये कहें वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं कि मैं कौन हूँ, और अपनी वो स्ट्रेंथ जो है वो अगले अगले घंटे के लिए भी अपने आप को.
0: इट्स बेसिकली लाइक अ चार्जिंग. जैसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो पहले मोबाइल सुबह चार्ज कर लेते हैं लेकिन वो सारा दिन में तो डिस्चार्ज हो जाता है।
1: कितनी बार हमें चार्ज
0: करना है। तो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, चार्जर अपने साथ रखना शुरू किया ना। अब आप कहीं भी जाओ हर जगह चार्जर लगे हुए हैं, विच इज वेरी गुड। ऑफिस में भी आप जाओ चार्जर भी लगा है, फोन उसी के साथ लगा हुआ है। तो शाम को जब आप घर पहुंच रहे हैं, आप घर ड्राइव करके जा रहे हैं, आपका फोन फुल्ली चार्ज है। पहले क्या होता था, घर पहुंचने के टाइम वापसी पे वो फोन कई बार डिस्चार्ज हो जाता था। तो जब आपको चाहिए था वो, आप कहीं रास्ते में अटक गए, यू डिडंट हैव इट। सिमिलरली हियर, अगर आप सारा दिन में बहुत डिस्चार्ज हो गए, शाम को जब आपको वो एनर्जी चाहिए, आप घर पहुंचे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सिर्फ वही टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, उसमें हम हमेशा हर रोज कैसे होते हैं,
1: डिस्चार्ज।
0: दैट इज द ओनली रीजन जो हमारे आज घर पे रिलेशनशिप्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी जब घर पहुंचते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वो शाम तक डिस्चार्ज की स्थिति में होता है।
1: और इनफैक्ट जो घर पे हैं
0: वो भी
1: डिस्चार्ज हो चुके होते हैं। एंड देन दे से कि मैं सारा दिन का थका हारा आया हूँ, वो कहते हैं कि मैं सारा दिन वेट करती रही, मैं सारा दिन घर पे बैठी रही, तो वो वहाँ टकराव जो है वो ओहो वेरी
0: ट्रू। तो पूरी इवनिंग जो है ना आपकी 7 to 10 या जितना भी टाइम आप घर पे हैं वो डिस्चार्ज स्थिति में है। फिर आप रात को सोए, चार्ज हुए, सुबह आप फ्रेश हैं, आप ऑफिस चले गए, फिर घर पे आए, फिर डिस्चार्ज है। तो बेसिकली मेजोरिटी लोगों के लिए आज जितना टाइम परिवार वालों के साथ है उस समय हमारी स्थिति कैसी है,
1: बहुत थकी हुई होती है। वेरी ट्रू।
0: तो द एनर्जी विच वी हैव टू एक्सचेंज विद फैमिली वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है। और फिर अगर मेरी आज इवनिंग अच्छी नहीं बीती या कुछ ना कुछ, यू नो, हर टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका इफेक्ट मेरे ऑफिस पे पड़ेगा कि नहीं कल सुबह?
1: बिल्कुल, मैं ऑलरेडी थकी हुई होंगी, यू नो, ऑलरेडी मेरा लड़ाई हो चुकी होगी क्योंकि मैं थकी हुई थी और थकी हुई होती गई, अगले दिन मॉर्निंग फिर मेरा यही।
0: आप किसी से भी आज पूछो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है, तो ऑर्डर पता है क्या देंगे, वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। पहले मेरा काम, फिर परिवार, फिर मैं खुद। अब काम इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, आज कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम में चले गए, फैमिली को ही हम 2-3 घंटा दे पाते हैं, तो वो थर्ड स्टेप तक हम पहुंचते नहीं,
1: अब तक हम सो जाते हैं।
0: इसलिए कहेंगे सेल्फ के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी ले रहे हैं। वॉट इज द ऑर्डर, वर्क, फैमिली, सेल्फ, क्या ये राइट ऑर्डर है हमारा? तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो द ऑर्डर शुड बी सेल्फ, फैमिली, वर्क। सेल्फ हेल्दी होगा तो फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। फैमिली हेल्दी को छोड़कर आप ऑफिस जाएंगे तब जाकर आपका वहाँ कुछ मन लगेगा, आप ठीक से काम करेंगे। सेल्फ दर्द में है तो रिलेशनशिप्स घर पे थोड़े से ऊपर नीचे हुए, अब इस दर्द में इस परिवार को छोड़ के ऑफिस पहुंचते हैं, तो ऑफिस पहुंच के मन कहाँ होता है? ये हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट है, पता नहीं क्या। तो आर यू डूइंग जस्टिस टू वर्क ऑल्सो? तो अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, आप परिवार के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते और काम के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे घंटे स्पेंड कर सकते हैं वहाँ,
1: लेकिन आपका बिल्कुल निकलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा।
0: एक्चुअली पहले वर्क को कर दिया, सेल्फ के ऊपर टाइम नहीं दिया, तो उस वर्क में ज्यादा घंटे स्पेंड करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दर्द में आप काम करो और हेल्दी स्थिति में काम करो, फर्क।
1: ऑफ कोर्स आप इतने बोझिल, इतने हैवी, इतने थकान से भरे हुए होते हो। इनफैक्ट यहाँ से शिवानी एक और बात कि बार बार हम ये कहते हैं कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ,
0: काम परिवार के लिए कर रहा हूँ
1: ना। प्ली ये होता है, जब भी आपने ये कहा तो मेरे को बिल्कुल सामने ये याद आ गई कि वर्क को हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है, लेकिन हमारी प्ली ये होती है
0: कि फैमिली के लिए,
1: तुम्हारे लिए तो काम।
0: एब्सोल्युटली, लेकिन फैमिली को क्या चाहिए आपसे? फैमिली को सिर्फ धन नहीं चाहिए आपसे, चाहिए क्या आपसे? खुशी चाहिए, घर में प्यार चाहिए। आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है, जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वॉज नॉट राइट। एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना, नहीं, इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूँ मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती, और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता। तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा, मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया, नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क, एंड जितना काम मुझे करना है 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। हम काम कर रहे हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहाँ पर है?
1: वहाँ क्या चल रहा होगा?
0: अगर घर पे नहीं भी है, ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन, और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो काम भी कर रहे हैं, मन ऐसा क्यों, ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं? सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क? इवन काम के क्षेत्र में फुल कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा, लेकिन हम कह रहे नहीं, हमारा सारा टाइम काम पे है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो राइट सेट करनी है। पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक, परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूँ, देन एवरीथिंग विल बी मोर यू नो फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथ एंड आई विल इंजॉय एवरीथिंग आई एम डूइंग। नहीं तो मैं तीनों को इंजॉय नहीं कर रहा, तीनों जगह ही कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे।
1: और मजे की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए।
0: एक मिनट एक घंटे के बाद एक मिनट, इट जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल, लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा। वो सुनते में इतना इजी लगता है कि
1: हमने कर लिया,
0: हाँ, एंड मेजोरिटी बोलते हैं हाँ हम तो जरूर कर लेंगे, लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना पड़ता है। कई कॉर्पोरेट हाउसेस में जब उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऑफिस में जैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड लिटिल लाइट म्यूजिक, नो मेडिटेशन म्यूजिक हर घंटे के बाद बजता है एक मिनट के लिए, रिमार्केबल रिजल्ट, पूरा एनवायरनमेंट ऑफिस का ठीक हो जाता है। एंड क्योंकि लोगों को एक रेस्ट मिलता है, यू नो इवन ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको वो एक मिनट में क्या क्रिएट करना है, पॉज, उनको वो भी नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ वो म्यूजिक बजता है एंड दे जस्ट स्टॉप एंड रेस्ट। वो रेस्ट भी बहुत काम कर जाता है।
1: आई नो जिस भी चीज में है आप, इनफैक्ट अगर हम देखें
0: क्योंकि वो 1 मिनट वो डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है
1: कि सब चीजों से 1 मिनट का,
0: जैसे स्कूल में बच्चे हैं आपका एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर होता है, टेक दैट 1 मिनट, नहीं तो वो 1 मिनट जो एक टीचर क्लास से बाहर जाएगी और दूसरी टीचर आएगी, अगर वो 1 मिनट आप स्टेबल हो जाएंगे, आप पिछले सेशन को भी ठीक से अब्सॉर्ब कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी होंगे। नहीं तो एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो एक एक टीचर आकर समवेयर हियर इट हैज़ नॉट गॉट अब्सॉर्ब्ड प्रॉपरली, और फिर घर जाके बहुत स्टडी करना पड़ता है फिर से। सो दैट 1 मिनट जो बीच में मिलता है, इट्स वेरी वैल्यूएबल, इसको करके देख सकते हैं।
1: तो सिस्टर शिवानी, आज जो हमारे सामने बात आई कि 1 मिनट का रेलेवेंस को हमने सोचा, और अभी तक हम ये कहते थे कि 1 मिनट क्या है, आपको हम दूसरों के साथ कितना वक्त गुजार रहे होते हैं, तो वो 1 मिनट जो मुझे एम्पावर करेगा, और उसमें भी बहुत जो सही बात ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्या सोचना है, इट्स ओनली कि हमें वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके अपने आप को एम्पावर करना है, और वो ट्राई करके देखें। बार बार हमारी कोशिश रहती है, हम कहें कि अनुभव से बड़ा जो है वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, मतलब जब तक हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे उससे गुजरते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो चलिए एक बार फिर बॉल हमारे कोर्ट में है, हमें तय करना है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर जाना चाहते हैं, एंड लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने तो अब तय कर लिया है कि मैं इस एपिसोड को ख़त्म करते ही ज़रूर अलार्म लगाऊंगी 1 घंटे बाद, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट। आप किसी भी जगह पे हों, आप अपने घर पे हों, हाउस वाइफ हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, और इनफैक्ट जहाँ हमें परिवर्तन आने लगेगा, आसपास का माहौल अपने आप परिवर्तित होगा, और उसमें भी हमें ये याद रखना है कि हमने थॉट क्या क्रिएट करना है। लेट्स ट्राई इट आउट, और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज आपसे हम यहीं विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि आप हमसे फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट पर बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं, और आज हमने 1 मिनट के रेलेवेंस को समझा है। प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, सेल्फ सबसे पहले, फैमिली उसके बाद, और उसके बाद वर्क, तो डेफिनेटली काम तो हमारा होगा ही। तो आज आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

किसान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नई किरण कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। तो आइए बात करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। आज 25 तारीख है और 25 जून 2026 आज का तारीख है। राष्ट्रीय शके 1948, 4 गते 11 शुद्ध ज्येष्ठ गुरुवार आज है। विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार स्वाति आज है। इस्लामी हिजरी 1448 मुहर्रम जुमेरात सफरा आज है। इसके साथ ही आज निर्जला एकादशी है, जिसमें खास करके बहुत सारे लोग निर्जला उपवास भी करते हैं, जिसमें पानी तक नहीं पीते, पूरा दिन जो है ध्यान रखते हैं। तो निर्जला एकादशी भी आज है, तो शाम तक आप बिना पानी के रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी अच्छा लगेगा। और आप इन चीज़ों को अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। तो बेहद खूबसूरत सा ये दिन है आज, और मैं चाहूँगा कि आप इस दिन को यादगार बना सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: कौन गुरु और कौन चेला, ये गाना भी होगा, हो जाता रहेगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ज्यादा कुछ नहीं कहूँ, उतना ही कहने में क्या शांति रहेगी। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। संसार तो दुनिया में है, है। संसार के अंदर अपन को चलना, संसार जैसा चलता है अपन को भी चलना है। सर धन्यवाद सर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: कौन सा गीत बोला आपने?
1: एक डाल पर दो पंछी बैठे, कौन गुरु और कौन चेला।
0: हाँ, आप कौन से डाल पे बैठे हैं? नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए, गुड़ीलाल जी की हंसी आपको भी हंसी दे जाती है, और कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारी चेहरे पे मुस्कुराहट बना के हमें जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, है ना। जितना आप खुशियों को फ्री में अपने जीवन में बुलाते रहिए, आर्टिफिशियल भी क्यों ना हो, खुश रहिए, है ना। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को करने लगेंगे तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, और अगर आपकी फितरत और आपकी आदत में मुस्कुराहट आ जाए, हंसी आ जाए, तो और क्या चाहिए, है ना। ज़िंदगी अपने आप ही आपको रंगीला बना देगी। लेकिन आपको आर्टिफिशियली भी खुश रहना आना चाहिए। तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों को एक बार आपको करके देखना होगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होगा, करने से आदत बनेगी, और आदत बनने से आपकी परमानेंट जो है लाइफ एनर्जेटिक होगी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए सीधे, मैं आज गुरुवार का दिन है तो ये भजन आपको सुनाई देता हूँ गुड़ीलाल जी का। एक पंछी पर दो, एक डाल पर दो पंछी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामना करते हैं और आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं। और 25 जून गुरुवार का दिन है, बहुत ही बढ़िया दिन है आप सबके लिए। और आइए बात करते हैं आज विशेष निर्जला एकादशी के बारे में। वैसे आप सोच रहे होंगे कि निर्जला एकादशी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन हर एक दिन का अपना महत्व होता है और भारत में उपवास का बहुत बड़ा जो है एक अलग अलग विधि विधान बताया गया है। अच्छा, इसमें ये सब चीज़ें करने से हमें दो चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। एक तो आसानी से आपका शारीरिक जो क्षमता है वो बढ़ती है और पेट की गंदगी या शरीर में जो भी विकार है वो ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। दूसरा फायदा ये मिलता है कि हम उपवास करते समय थोड़ा सा किसी न किसी इष्ट की या ईश्वर की याद में रहने का प्रयास करते हैं। तो ये दो फायदे हमको होता है जब आप ईश्वर को याद करते हैं या अपने से ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को याद करते हैं, तो उनकी शक्ति आपको प्रसन्नता देती है और साथ ही साथ आपको हिम्मत बढ़ाता है और आपको संबल बनाता है। तो इस तरह से उपवास आप कर रहे हो तो आपको दो फायदे हो रहे हैं। आपका मन निर्मल होना शुरू हो जाता है, आपका शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो इसी में कभी कभी आप रात का खाना छोड़ दीजिए या पूरे दिन में एक बार खाइए, इस तरह का जो है प्रयोग आप करते रहें जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: ओम शांति जी, ओम शांति।
1: कैसे हो सर?
0: बढ़िया है, बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: बस अच्छे हैं, आप आ गए, खुशी हो गई। हमारे बुरीलाल जी हरदम कहते हैं बस खुशियाँ ही खुशियाँ मनाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: नहीं तो हम खुशी मना पाएंगे, वरना तो दुखी रहने से तो कोई फायदा तो है। और आज निर्जला एकादशी है तो आप बता रहे हैं सही बात है सर की आज के दिन पानी ही नहीं पीना। पानी खाने की बात है, भोजन की तो नहीं है, लेकिन पानी भी

0: वो सारी चीजें हो
1: और
0: रही
1: बीच
0: हैं।
1: में कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं, जो हमारे मुंह को आराम भी नहीं देते कि थोड़ी देर हमारे मुंह हमारे दांत को थोड़ा सा आराम मिले नहीं। लेकिन मेरी बात बताओ तो मैं सुबह थोड़ा सा नाश्ता करके दोपहर के 1 बजे खाता हूँ, 1 बजे के बाद रात को 9 बजे ही खाता हूँ, मेरे बीच में कुछ नहीं खाता मैं कभी भी। तो बस ऐसा ही रखना है, निर्जला का भी की सभी कर सकता मैं, सदगुरुवार भी है, बाबा का वार भी है, तो सभी को आज को गुरु के दिन की गुरु की कृपा सब पर बनी रहे। कल हमारे जो मम्मा का दिन था, स्मृति दिन था, तो कल भी हमारे पाठशाला में कई सारी बातें हुई, अच्छा मम्मा का साथ में बैठे 2 घंटे, अच्छा वहाँ हमारे कार्यक्रम हुआ था। बस आज गुरुवार है तो बाबा का एक गाना हो जाए, बहुत टाइम हो गया मेरा बाबा आया है गाना सुना नहीं है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सुना देना सर। हमारे कमलगंज जी नहीं आए अभी तक,
0: आज गुरुवार है ना, भोग है उनका तो उसमें बिजी है, आएंगे फिर, हाँ आते ही बात करा देते हैं,
1: हाँ बात जरूर करेंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी सर,
0: नमस्ते जी, ओम शांति। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को फिर से एक बार याद करते हुए निर्जला एकादशी के बारे में बातें चल रही थी और हिंदू धर्म में विशेष रूप से एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। आज के दिन जल कलश गो का दान बहुत पुण्य देने वाला माना गया। ये व्रत को संयम सिखाता है और शरीर के नई शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है और ये व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों भी कर सकते हैं। अधिक मास की 2 एकादशियां सहित 26 एकादशी व्रत का विधान है और जिसमें ये साल भर में अन्य 25 एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, लेकिन ये 26वां एकादशी जो है एक ही ऐसा है जिसमें जल भी नहीं पीना है। तो इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। तो इस तरह की मान्यता है जो है एक ही आता है पूरे साल में और इसको करने से बहुत सारी जो व्रत है वो दूर हो जाते हैं, दुख समाप्त होते हैं, शारीरिक व्याधियां ख़त्म होती हैं। संयम दान दर्शन के बाद फलाहार व दूध का सेवन कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही सुंदर गीत की तरफ, मेरा बाबा आया है आपके नाम।

ओके जी, बिल्कुल। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बैक टू बैक तीन चार गाने आपने सुना, आशा करूंगा आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे गुड़ीलाल जी ने भी याद किया बड़े प्यार से, और बुरा राम जी ने भी याद भेजा है, और बड़े प्यार से उन्होंने एक पावना गीत सुनाया, और ये बिल्कुल अच्छा भजन है जो गुरुवार के दिन सुनाते हैं हम लोग, सुनते भी हैं। और इसके साथ में सुरेश जी ने बुरा राम जी का एक गीत, बुरा राम जी से बात करना चाहते थे, तो बुरा राम जी का नंबर सुरेश जी आपको सेंड किया है मोबाइल पे, आप व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा और बुरा राम जी से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए आप आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ चंद्रशेखर पांडे के बारे में बातें करते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाओं को लिखा था, जिसमें अधिक आधुनिक हिंदी कविता और रसखान तथा उनका काव्य आदि उल्लेखनीय है। बनारस के बड़ी पियारी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं प्रयागराज से शिक्षा ग्रहण की थी, और विषय चंद्रशेखर पांडे कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में संस्कृत विभाग से रहे। चंद्रशेखर पांडे ने संस्कृत साहित्य के इतिहास की रूपरेखा नाम ग्रंथ की रचना की, और इनका आधुनिक हिंदी कविता तथा रसखान और उनका काव्य उल्लेखनीय है। कानपुर नवजीवन पुस्तकालय और श्री हिंदी साहित्य मंडवा से चंद्रशेखर पांडे जी का घनिष्ठ संबंध रहा था। तो ये कुछ खास बातें थी चंद्रशेखर पांडे जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, नई किरण इस को सुन रहे हैं। और चलिए, सदगुरुवार का दिन है तो सदगुरुवार का एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। तो सदगुरु आया है ये गीत अभी आपके लिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को ये गीत पसंद आया होगा सतगुरु का। और जैसे कि हम लोग गीतों के बारे में बातें कर रहे थे और इस बीच वक्त हो गया है समाचारों का, लेकिन समाचार अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, तो मैं आपको सीधे क्या कहते हैं समाचारों की तरफ चलेंगे और डायरेक्ट फाइल में से आपको सुना देते हैं। 9 तो चलिए प्रति घंटा वाला आपको सुनाते हैं। एक बात ही प्यारा चलिए समाचारों की तरफ सीधे चलते हैं। अभी आपके लिए समाचार दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 101.07.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, छोड़ शहर का शोर, हम गांव में जाकर खेती करके अपने जीवन को बचाए, है ना। तो फिर से अपने धरोहर की तरफ लौटना है हमें, तो आइए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ। और ये गीत सुनकर आपको अच्छा लगेगा, लता जी का जेलर फिल्म का ये गीत है 1957 का। सुनते रहिए और फिर उसके बाद बातें करेंगे इस गीत के बारे में।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रिमोट 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। तो मैं बात कर रहा था अब इस गाने के बारे में, हम प्यार में जलने वालों के चैन कहा आराम कहा। जेलर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में और मदन मोहन का संगीत से सजा। तो आज मदन मोहन जी का जन्मदिन है जिनके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। और हिंदी फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार थे। अपनी गज़लों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी युवावस्था में एक सैनिक थे, बाद में संगीत के प्रति इनका झुकाव बढ़ा और इस कारण वो ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े। तलत महमूद तथा लता मंगेशकर से कई यादगार गज़लें गवाईं जिनमें आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे जैसे गीत शामिल है। और मदन मोहन 1950, 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड फिल्म संगीत के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार निर्देशक थे। तो आइए इनके बारे में अगर बात करें तो ये इनका जन्म आज के दिन 1924 को बगदाद इराक में हुआ, जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इनकी पुलिस के साथ एक अकाउंटेंट जनरल के रूप में काम करते रहे। मध्य पूर्व में जन्मे मदन मोहन ने अपने जीवन के पहले 5 साल यहां बिताए। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्म व्यवसाय से भी जुड़े थे और बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्थान से बड़े फिल्म स्टूडियो में साझेदारी भी उनकी थी। और फिर घर में फिल्मी माहौल होने के कारण मदन मोहन जी को फिल्मों का बड़ा शौक़ रहा। फिल्मों में काम का बड़ा करने का बड़ा मन चाहते थे, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का फैसला ले लिया और देहरादून में नौकरी करना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उनका तबादला दिल्ली में हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद उनका मन सेना की नौकरी में नहीं लगा और वो नौकरी छोड़कर सीधे लखनऊ आए और फिर वहाँ से वो सीधे पहुँचे आकाशवाणी के लिए काम करने लखनऊ में। आकाशवाणी में अपनी मुलाकात संगीत जगत से जुड़े उस्ताद फैज खां से हुआ और उस्ताद अली अकबर खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे जानी मानी हस्तियों से इनकी मुलाकात हुई और फिर इनकी मुलाकात मदन मोहन जी को काफ़ी प्रभावित किया और इनका रुझान संगीत की ओर बढ़ा और फिर तब से वो संगीत निर्देशक के रूप में, संगीतकार के रूप में काम करने का इनका जो ट्रेंड है वो वहाँ से शुरू हुए और सीधे फिर लखनऊ में कुछ चीज़ों के साथ फिर आए मुंबई, और जहां उन्होंने पहला संगीत निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया एस डी बर्मन के साथ। जी कमलेश जी,
1: जी नमस्कार। नमस्कार को बहुत ही प्यार भरी
0: जी।
1: और आज जैसे कि हम मधुबन में हैं तो गुरुवार है, गुरुवार के दिन बाबा को भोग लगता है,
0: बिल्कुल
1: तो उसकी वजह से उसके में शामिल होना बहुत जरूरी होता है ना? कहते उसकी याद में रहो तो बाकी काम खुद ब खुद चलते रहेंगे, बिल्कुल सही चलते रहेंगे। आज भी बाबा ने बोला मुरली में कि मुझे याद करो। तो आप मदन मोहन साहब की बात कर रहे थे। मदन मोहन साहब जो बहुत ही हमारे उम्दा संगीतकार रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया ही है कि उन्होंने पहले सेना में भर्ती हुए पिताजी की मर्जी के मुताबिक ना?
0: बिल्कुल,
1: तो उस समय वो दौर ऐसा था कि आप माँ बाप को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे।
0: सही बात,
1: माँ बाप भी नहीं देखते थे कि इसको क्या पसंद है या नहीं पसंद है,
0: बस उन्होंने बोल दिया मना करना है।
1: जी जी, और यही रुझान रहा इनका।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो मदन मोहन साहब जो हैं उनका लता जी से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत गवाए और तलत महमूद के बहुत प्यारे।
0: हेलो जी नमस्कार।
2: हाँ बुरा नाम बोल रहा सर, एक आपको बात बोलने का भूल गया था मैं।
0: अरे बोल दीजिए।
2: आज हमारे इधर विठल भगवान का बहुत बड़ा गांव का मेला है।
0: अच्छा,
2: और विठल भगवान के इधर बोले तो सब देवताओं का 18 मंदिर है।
0: कहाँ पर रही है?
2: और ये सब ये आबू रोड से 5 किलोमीटर नजदीक के ओर गांव करके।
0: कौन सा गांव है वो?
2: ओर, ओर।
0: ओर, अच्छा ओर गांव में। हाँ
2: ओ, ओ आर ई ओर।
0: ओ आर ई, अच्छा ओर गांव में, ठीक है।
2: ओर गांव में तो इधर विठल भगवान का मंदिर है।
0: हाँ,
2: और सब देवताओं के इधर 18 मंदिर है बाजू बाजू में सब पूरे।
0: अच्छा, दिखाओ, कभी हमको दिखाया ही नहीं बाजू बाजू में रहे कभी। अच्छा, बोझ भी
2: गांव के आजू बाजू उगा ले, खाना खा के दर्शन करके मेला पड़ता है।
0: अच्छा,
2: और रात को सत्संग हो गई थी बड़ी। कलाकार भी आए थे।
0: अरे वाह।
2: और आज बोले तो खाली खाना और दर्शन करना और मेला लगेगा,
0: तो फिर हम लोग आ ही जाते हैं मेला लग गया तो।
1: जी जी जी।
2: तो आओ तो बहुत फूल, मैं इधर आपकी रास्ता देखूं बोलो।
0: ठीक है ठीक है, फोन करते हैं।
2: देखने का ये महाराष्ट्र में थे विठल भगवान का।
0: हाँ।
2: और उसके बाद में हमारे गांव में थे विठल भगवान का।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी शुक्रिया,
2: तो बहुत अच्छा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ओके जी ओके
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेला उन्होंने हमें यही दिखा दिया काफी, क्या क्या वहाँ चल रहा है।
0: चलिए मदन मोहन जी के बारे में और भी बातें बताना चाहूँगा मैं आपको, और उनके कुछ खूबसूरत गाने जो हैं आप सुनते ही रहते हैं। हेलो जी नमस्कार। मुंबई आने के बाद मदन मोहन जी की मुलाकात एसडी बर्मन से हुई, श्याम सुंदर और सी रामचंद्रन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों से उनकी मुलाकात हुई, और पहले तो उन्होंने उनको असिस्ट किया, उनका सहयोगी बने, फिर बतौर संगीतकार 1950 में इन्होंने अपनी फिल्म आँखों के जरिए मदन मोहन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। फिल्म आँखें ये जो फिल्म आई थी उसके बाद लता मंगेशकर मदन मोहन की जो गायिका बन गई, अच्छी चहेता गायिका बन गई, और वो अपनी हर फिल्म के लिए लता मंगेशकर से ही गाने की गुजारिश किया करते थे। लता मंगेशकर भी मदन मोहन जी के संगीत निर्देशन से काफ़ी प्रभावित थी और उन्हें गज़लों का शहजादा कहकर संबोधित किया करते थे, तो इस वजह से उनकी ट्यूनिंग हो गई अच्छी तरह से और फिर वो आगे बढ़ते गए। मदन मोहन जी के पसंदीदा गीतकार के तौर पर राजा मेहंदी अली खान, राजेंद्र कृष्ण और कैफी आजमी का नाम सबसे पहले आता है। स्वर सामग्री लता मंगेशकर ने गीतकार राजेंद्र किशन के लिए मदन मोहन की धुनों पर कई गीत गाए, जिनमें यूं हसरतों के दाग, फिर अदालत 1958 में, हम प्यार में, जनने वालों को चैन कहा, आराम कहा, जेलर 1998, सपने में सजन से दो बातें, एक याद रही एक भूल गई, गेटवे ऑफ इंडिया का ये गीत, मैं तो तुम संग नैन मिला के, मनमौजी फिल्म का ये गीत, न तुम बेवफा हो, एक कली मुस्काई, तो इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी खूबसूरत गानों की जो सुपर डुपर हिट गाने बने हैं। जी
1: बिल्कुल, अगर आप कहें तो अदालत फिल्म की गजल मुझे बहुत ही पसंद है रमेश भाई।
0: जी जी जी
1: तो
0: सुनाइए,
1: मुझे लगता है आप जरूर मुझे मौका देंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो वो गीत कोशिश करती हूँ अच्छे से सुनाऊं, लता जी के मुकाबला तो हम नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: फिर भी
0: यूं हसरतों के दाग,
1: जी जी यही गजल, और इस गजल में संगीत मदन मोहन जी का रहा, और ये गजल लिखी थी राजेंद्र कृष्ण ने।
0: जी जी जी।
1: तो गजल यूं है,

0: जी जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए, मदन मोहन सर की बातें हो रही थी, उनका ही फिल्म का ये गीत, उनका ही संगीत निर्देशन में ये गीत बना था जिसको कमलेश जी ने गाया। आइए आगे बढ़ते हैं, और 50 के दशक में मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के चरित्र रोमानी गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए। उनके रचित कुछ रोमानी गीतों में कौन आया मेरे मन के द्वार, पायल के जनकार लिया, देख कबीरा रोया मेरा करार ले जा, मुझे बेकरार कर जा, ए दिल मुझे बता दे भाई भाई, जैसे गीत शामिल है। और मदन मोहन जी के संगीत में राजा मेहंदी अली खान रचित गीतों में भी बड़ा खूबसूरत गाने उन्होंने, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, लग जा गले नैनों में बदरा छाए, मेरा सावन साथ
1: मेरा
0: होगा,
1: मेरा सायस,
0: जैसे गीत जो है लोकप्रिय हो गए। और फिर मदन मोहन ने अपने संगीत निर्देशन से कैफी आजमी रचित कुछ गीतों को अमर बना दिया। उनमें कुछ थे कर चले हम फिदा जाने वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले हकीकत फिल्म का, मेरी आवाज़ सुनो प्यार का राज सुनो, फिर ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, हीरांजा का सिमटी सी शर्माई सी तुम, जिस किस दुनिया से आई हो परवाना इस फिल्म का, तुम जो मिल गए हो ऐसा लगता है कि जहां मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं, तो उसमें से एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाता हूं मैं अभी, वो भूली दास्ता आपके लिए, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 1960 का संजोग इस एल्बम का ये गीत आपने सुना, अनिता गुहा पर पिक्चराइज किया गया था। लता मंगेशकर ने इसे गाया था। राजेंद्र किशन जी और मदन मोहन जी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपने सुना भी। आशा करूंगा इस गीत को जब आप सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आप गुनगुना भी रहे होंगे क्योंकि ये गाना ऐसा है कि इसके कुछ ना कुछ शब्द आपको याद रह जाते हैं, म्यूज़िक के साथ आपके अंदर से वो बोल निकलने लगते हैं। तो यही एक खूबसूरती है कि एक संगीतकार जो है किस तरह से शब्दों को संगीत देता है, और एक गीतकार जैसे लिखने वाले होते हैं वो सादा सिंपल शब्दों का प्रयोग करके गीतों को अमर
1: की पहचान
0: बना और अमर बना देते हैं गीतों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और मदन मोहन जी के बारे में बातें चल रही थी। 70 के दशक में आते आते मदन मोहन ने अपने संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के कुछ गाने रिकॉर्ड किए, कर चले हम फिदा जिसके बारे में हमने बातें की। उसके बाद ओपी नैयर जिनके निर्देशन में लता मंगेशकर ने कई सुपरहिट गाने अक्सर कहा करते थे, मैं नहीं समझता कि लता मंगेशकर मदन मोहन के लिए बनी हुई है या मदन मोहन लता जी के लिए, लेकिन अब तक ना तो मदन मोहन जैसे संगीतकार हुआ और ना लता जैसे पार्श्व गायिका। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में आशा भोसले ने फिल्म मेरा साया के लिए झुमका गिरारे बरेली के बाजार में गाना गाया, जिसे सुनकर श्रोता आज भी झूम उठते हैं। मदन मोहन से आशा भोसले को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि आप अपनी हर फिल्म के लिए दीदी को ही बुलाते हैं क्यों लिया करते हैं। इस पर मदन मोहन कहा करते थे, जब तक लता जिंदा है मेरी फिल्मों के गाने वही गाएगी और 1965 में एक फिल्म आई थी हकीकत, उसमें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मदन मोहन जी के संगीत से सजा ये गीत चले कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आज भी श्रोताओं को देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है, आँखों को नम कर देने वाला ऐसा संगीत मदन मोहन जी ने दे दिया था। और 70 में ऐसा हुआ कि सत्तर के दशक में मदन मोहन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मदन मोहन ने अपने 2.5 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया था। अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रेताओं को बहुत दिल से खास उनकी जगह बना लेने वाले मदन मोहन जी का 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया से जुदा हो गए। उनकी मौत के बाद 1975 में ही मदन मोहन की मौसम और लैला मजनू जैसे फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनके संगीत का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है।
1: बिल्कुल, दोनों फिल्में बहुत चली।
0: जी जी,
1: और संगीत कह लीजिए, गीतों की वजह से कह लीजिए, स्टोरी भी अच्छी थी,
0: दोनों अच्छी बनी थी। जी
1: जी, जी जी, तो कर चले हम फिदा जानो तन साथी, अब तुम्हारे हवाले।

0: क्या बात, बहुत बढ़िया
1: सारा बोल गीत है,
0: बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक फरमाइश आई है, तो ये फरमाइश भी पूरा कर देते, ना तुम बेवफा ना हम बेवफा,
1: जी जी जी, एक कली मुस्कान।
0: बिल्कुल

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत ही प्यारा सा गीत मदन मोहन जी का आप सुन रहे थे अभी। आशा करूंगा आप सभी को ऐसे गीत अच्छे लग रहे हैं। और ये गीतकार राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, लता मंगेशकर का गाया, मदन मोहन जी का संगीत, एक कली मुस्काई इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मनोज कुमार पांडे के बारे में बात करते हैं, जो एक विशेष परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय व्यक्ति है। इन्हें यह सम्मान 1999 में मरने के बाद मिला। पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध बहुत से कारणों से विशेष कहा जाता है। एक तो ये युद्ध बेहद कठिन और ऊंची चोटियों पर लड़ा, जो बर्फ़ से ढकी हुई दुर्गम पहाड़ियां है उसमें ये चीज़ें हुई। साथ ही ये युद्ध पाकिस्तान की लंबी तैयारी का नतीजा था, जिसकी योजना उनके मन में बरसों से पल रही थी। इसी युद्ध के मुश्किल मोर्चे में एक मोर्चा खुलबार का था, जिसको फतेह करने के लिए कमर कसकर कैप्टन मनोज कुमार पांडे खड़े थे। अपनी 1/11 गोरखा राइफल की अगुवाई करते हुए दुश्मन से जूझ गई
1: जीत कर ही माने।
0: और भले ही इस कोशिश में उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी जीत दर्ज करा के ही प्राणों की आहुति दी। और उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो ऐसे विशेष सैनिक को करते हैं रेडियो मधुबन का टीम नमन, सलाम, वंदन। जी कमलेश जी, क्या बताना चाहेंगे आज आप?
1: आज देखिए खास दिन, हर रोज ही नया दिन होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जैसा कि अभी हम बात करें, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे फ्री है ना, तो उनके लिए पेरेंट्स को उनको बिजी करना बहुत जरूरी होता है ना। घूमने आप कितने दिन जाओगे, 1 हफ्ता जाओगे, 10 दिन जाओगे, उसके बाद फिर वापस घर ही आना होता है। तो इसमें मदर्स की ड्यूटी ये होती है, हालांकि बच्चों के साथ गुस्सा या नाराज होने की बजाय उनको ऐसी जगह बिजी कर दीजिए, उनके शौक देखिए उनको क्या क्या है। अगर बेटियां हैं, इवन बेटे भी आजकल खाना बनाने का शौक रखते हैं, तो उनको आगे चल के यही कोर्स, यही डिग्रियां भी करवा रहे हैं पेरेंट्स लोग, है ना। तो उनको खाना बनाने का शौक है, तो कोई एक चीज उनको बताइए कि 1 हफ्ते में आप किसी तैयारी करनी है, चाहे वो यूट्यूब से देखें, चाहे वो आपसे सीखें, तो वो बनाए। बेटी हो या बेटा, दोनों के काम आएगा वो आगे जाके, है ना। जब वो बड़े होंगे तो आपको चिंता नहीं होगी मेरा बच्चा भूखा है, क्योंकि उसको खाना बनाना आता है, तो कहीं भी रहेगा तो अपने लिए बना लेगा। और दूसरा, बच्चों को कहीं ड्राइंग का शौक होता है, कईयों को म्यूजिक का शौक होता है, तो ये चीजें पेरेंट्स ने ही देखनी होती हैं। और इवन जैसे बच्चे आजकल स्कूलों में भी उनका सिटिंग जॉब ज्यादा होती है, सिटिंग उनका ज्यादा होता है, तो घरों में है तो उनको सुबह योगा से जोड़िए और योग से जोड़िए। योगा और योग दोनों शब्द आज में कल मिक्स हो गए हैं, तो उसमें योग और योगा दोनों ही जरूरी है, मानसिक और शारीरिक जो कसरत है ना, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए उनको समय दीजिए, और उसके बाद उनका पूरा दिन की दिनचर्या बनाइए, एक चार्ट बना दीजिए। किसी बच्चे को बोल दीजिए घर में कि आज का चार्ट बनाओ कि आपने क्या क्या करना है, उसमें खेलने का, सोने का समय होना चाहिए, और स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, और बाहर घूमने का समय कितना होना चाहिए, और उनको क्या अपने जीवन में करना है, उसके लिए उनको बोलिए कि कुछ लिखें वो इसके बारे में, है ना, कि वो क्या चाहते हैं। उससे क्या होगा कि आपको उनके अंदर की जो नॉलेज है या उनके अंदर जो चल रहा है बच्चों के, तो वो आपको पता चलेगा, फिर आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हो, है ना। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी ड्यूटी रमेश जी हमारी पेरेंट्स की यही होती है कि हम लोगों का जीवन तो जैसे 50+ जब हो जाते हैं, कहते हैं हमारा तो जीवन हो गया, लेकिन अभी हुआ नहीं है, अभी तो आपकी जिम्मेवारियां और बढ़ रही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप पहले पेरेंट्स से, फिर ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे तो और मजे से और खुशी से आप ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखा सकेंगे, अगर आपने ये आदतें अपने आप को डाली होंगी कि बच्चों पर ध्यान देना है। और पेरेंट्स को भी ये विनती है, गुजारिश है कि वो खुद स्क्रीन टाइम से थोड़ा हट के बच्चों के साथ जुड़े, ये नहीं कि खुद आप मोबाइल में बिजी हो तो कहाँ बच्चों को टाइम दोगे, है ना। तो इसलिए ये चीजें, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि रोज एक नया अपने अंदर एक नई एनर्जी पैदा करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। रोज का रोज है ना। और कई बार पता क्या होता है रमेश जी, मैं देखती हूँ कि हम लोग सारा दिन बातें करते हैं या कुछ सुनते रहते हैं, और कोई कोई समय ऐसा जैसे हम लोग शाम को या मधुबन योग में बैठते हैं ना, तो लगता है कि हमें चैन से मानसिक और शारीरिक चैन भी चाहिए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: वो एकांत में आप खुश रहिए, एकांत में परमात्मा को याद कीजिए, अपने आप को देखिए कि मेरे में क्या कमी है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कई बार ना आपके अंदर शारीरिक कुछ कमजोरियां होती हैं जिनकी वजह से आपको कई बार गुस्सा भी आ जाता है, आप चिड़चिड़े भी हो जाते हो, तो उसमें उस चीज को आपने खुद देखना है।
0: बिल्कुल,
1: अपनी डाइट पर ध्यान देके देखना है कि क्या आप कम खा के खुश रहते हो या ओवर ईटिंग करके खुश रहते हो।
0: बिल्कुल,
1: तो ये चीजें सोचने वाली हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बच्चों को संबोधित किया कि इस समय क्या करना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को अपने माता पिता के साथ कैसे क्या शेयरिंग करना है, और माता पिता को भी बच्चों के साथ मिलकर किस तरह से अपने करियर के बारे में बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस समय को देखते हुए 25 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। आपातकाल की बारसी 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1977 में यह हुआ था और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 9 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे थे 1998 में आज ही के दिन। और विशेष युगोस्लाविया राष्ट्रपति सोलबोदन की गिरफ्तारी की सूचना देने पर $50 लाख के इनाम की घोषणा हुई थी 1999 में। और नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण अफगानिस्तान में हुआ था आज के दिन 2002 में। सिंगापुर के शीर्ष वकील और भारतीय समुदाय के मुख्य सदस्य पाल कृष्णन का मेलबोर्न में निधन हुआ था 2003 में आज के दिन। रूस द्वारा भारत के साथ राजनीतिक साझेदारी निर्माण बढ़ने की निर्माण हुई थी 2004 में। और फिर अहमदीनेजाद ईरान के राष्ट्रपति बने थे 2005 में। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान व प्लाट की रजिस्ट्री सस्ती कर उस पर लगने वाला स्टैम्प शुल्क 8% से घटाकर 5% कर दिया था 2008 में। श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता था 2017 में आज के दिन। एक कॉलर हमारे साथ है, हेलो जी नमस्कार।
2: नमस्कार मोहन जी, मदन जी का वो है आज जन्मदिन तो इनका जाना घर
0: जी।
2: मैं थोड़ा दिन में उत्तर हो गया, नजरे उठा के देख लो, पर्दा हटा के देख लो क्या क्या किया।
0: अच्छा
2: हाँ, ये गाना हो जाएगा।
0: कौन सा पिक्चर का ये?
2: हाँ जी,
0: कौन सा फिल्म का है?
2: फिल्म का तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन नजरे उठा के देख लो उनका।
0: अच्छा अच्छा,
2: पर्दा हटा के देख लो मैंने क्या क्या किया।
0: ठीक है ठीक है,
1: पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हो अब ये गीत।
0: चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ ढूंढ के लाए बोले। चलिए बहुत ही अच्छा, जो है वो अलग अलग गीत ढूंढ के लेकर आते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आज है, तो उनके बारे में जिक्र करते हैं। और 25 जून को जन्मे उन लोगों के बारे में बात करें तो सबसे आगे अगर हम देखें, भारत के बहुत ही पॉपुलर हास्य अभिनेता सतीश शाह, 1961 में इनका जन्म हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला एथलेटिक में से एक सुधा सिंह, इनका जन्मदिन आज है 1986 में इनका जन्म हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मनोज कुमार पांडे, जिनका जिक्र हमने किया 1975 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। आंध्र प्रदेश से भारत की संसद में सांसद है MVV सत्यनारायण, विशाखापट्टनम से 1966 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। सारकेला चाऊ नृत्य के अग्रीन नृतक है गोपाल प्रसाद दुबे, 1957 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और सेवानिवृत्त भारतीय पहलवान और कुश्ती कोच है उदय चंद, इनका जन्मदिन 1935 में आज के दिन हुआ था। और बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक जिनका जिक्र हमने किया, बहुत सारे गाने भी सुनाए, मदन मोहन जी, आज के दिन 1924 में इनका जन्म हुआ था। भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1931 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। महिला भारतीय आज़ादी के सेनानी और राजनीतिक सुचेता कृपलानी का जन्म भी आज के दिन 1908 में हुआ। और प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक चंद्रशेखर पांडे, 1903 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन है 1900 में इनका जन्म हुआ था, तो जिनका भी जन्मदिन है उन सब के लिए कमलेश जी बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर सुनते हैं शाम को 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक खूबसूरत गीत मदन मोहन जी का आपको छोड़े जा रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ग्यारस आई रे नराली आपी सब मल कर स्यारे। ग्यारस आई रे वाजी ग्यारस।

प्यारे ग्यारस आई रे। तो निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। वो कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर गले में दर्द है तो बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाली हूँ। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते भाई, आज निर्जला एकादशी है, मतलब निर्जल, बहुत जने तो जल को भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते, ऐसे एकादशी करते हैं कड़क। लेकिन जो फराल लेते हैं उनके लिए मैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आज सिखाने वाली हूँ। और आज की पहेली बहुत सुंदर रहेगी, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग, आशियाना में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है, कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। माँ बेटे बड़े गरीब थे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक दिगंबर मुनि पधारे हैं। वे बड़े सिद्ध पुरुष है और महाज्ञानी भी है। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन और कब तक चलेंगे, इसका अंत कब होगा। बेटा घर से चला। पुराने समय की बात है, यातायात की सुविधा नहीं थी, वह पदयात्रा पर था। चलते चलते सांझ हो गई। गांव में किसी के घर रात्रि विश्राम करने रुक गया। संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वह आगे की यात्रा पर चलने लगा तो घर की सेठानी ने पूछा, बेटा कहाँ जाते हो। उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया तो सेठानी ने कहा, बेटा एक बात मुनिराज से मेरी भी पूछाना कि मेरी ये इकलौती बेटी है, वे बोलती नहीं है, गूंगी है, वह कब तक बोलेगी तथा इसका विवाह किससे होगा। उसने कहा ठीक है और वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उसने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला था। विश्राम के पश्चात जब चलने लगा तो संत ने भी पूछा, कहाँ जा रहे हो। उसने संत श्री को भी अपनी यात्रा का कारण बताया। संत ने कहा, बेटा मेरी भी एक समस्या है, उसे भी पूछ लेना। मेरी समस्या यह है कि मुझे साधना करते हुए 50 साल हो गए, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं आया। मुझे कब तक संतत्व का स्वाद आएगा, मेरा कल्याण कब होगा, बस इतना सा पूछ लेना। युवक ने कहा ठीक है और संत को प्रणाम करके आगे बढ़ चला। युवक ने एक पड़ाव और डाला। अब कई बार का पड़ाव एक किसान के खेत पर था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच एक विशाल वृक्ष है, मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं, पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी भी इस समस्या का समाधान कर लेना। युवक ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वह मुनिराज के चरणों में पहुँच गया। मुनिराज के दर्शन किए, दर्शन कर उसने अपने जीवन को धन्य माना। मुनिराज से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी कुछ समस्या है जिनका मैं समाधान चाहता हूँ, आप आज्ञा दे तो श्री चरणों में निवेदन करूँ। मुनिराज ने कहा ठीक है, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना कि 3 प्रश्न से ज़्यादा मत पूछना, मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही समाधान दूंगा, इससे ज़्यादा का नहीं। युवक तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया। अब क्या करूँ, प्रश्न तो 4 है, तीन कैसे पूछूं। 3 प्रश्न दूसरों के हैं और 1 प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं, क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न छोड़ दूं? यह भी ठीक नहीं। नहीं नहीं, तो क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है, बेचारा खून पसीना ये करता है, तब भी तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। अंत में काफ़ी उहापोह के बाद उसने तय किया कि वह खुद का प्रश्न नहीं पूछेगा। उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष 3 प्रश्नों का समाधान लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान से युवक ने कहा, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं, इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने वहाँ खोदा तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा यह धन संपदा तेरे कारण से निकली है, इसलिए इसका मालिक भी तू है। और किसान ने वह सारा धन उस युवक को दे दिया। युवक आगे बढ़ा। अब संत के आश्रम आया। संत ने पूछा, मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया? युवक ने कहा, स्वामी जी माफ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा तो ठीक ही कहता है, सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर वक्त इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय बना रहता है, इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में नहीं लगता। ले अब इसे तू ही ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीज़ों को लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा बोल क्या कहा है मुनिराज ने? युवक ने कहा कि माँ जी, मुनि जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर ही बोल पड़ेगी, वही उसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चली रही थी कि वह लड़की अंदर से आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी जी ने कहा, बेटा आज से तू इसका पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई और उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब युवक धन मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा तू आ गया, क्या कहा है मुनिश्री ने? कब हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी? बेटा ने कहा, माँ मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति तो मिल गई। मुनिराज के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख पीड़ाएं और दर्द खो जाते हैं। माँ ने पूछा, तो क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। माँ ने पूछा, वो कैसे? बेटे ने कहा, माँ मैंने सबकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उनके समक्ष रखी तो स्वयं की समस्या का समाधान स्वतः हो गया। जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लगती है ना मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या ही नहीं रहती। जो दूसरों के लिए सोचता है, ईश्वर स्वयं उसके लिए करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए सुनते फिर से गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: अरे थारी कंचन सीका यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

0: नमस्ते, मैं हूँ हंसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। अगर गले में दर्द है तो क्या करेंगे? देखिए, कभी कभी गले में भी दर्द रहता है ना, बढ़िया तकलीफ देता है। कहते हैं ना, शरीर स्वस्थ रहे तो अच्छा लगता है। शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, चाहे कोई सा भी अंग पकड़ लेता है या दर्द करता है, तो सहन नहीं होता है और बार बार वहीं बुद्धि जाती है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसे ही गले का भी दर्द ऐसा ही होता है कि सहन नहीं होता है। तो गर्म प्रकृति की चीज़ें, औषधि सेवन, सर्दी, फ्लू, गले में सूजन होना, गले में दर्द होता रहता है, ये सारे कारणों से गले में दर्द होता रहता है। गले में दर्द होने पर सबसे पहले तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आप शीतल पेय बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो नहीं लेना है। फिर अगला उपाय है कि हर 3-3 घंटे से 2 चम्मच सूखा साबुत धनिया चबा चबा कर रस चूसते रहिए। यह हर प्रकार के गले के दर्द के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो हर 3-3 घंटे में 2 चम्मच सूखा साबुत धनिया चबा चबा कर इसका रस चूसिए। किसी भी प्रकार का दर्द होगा गले का, ठीक है, तो उसमें रामबाण का काम करेगा साबुत धनिया। 3 घंटा निकल जाए, फिर आप 2 चम्मच मुँह में रख करके उसको चबा करके चूसिए, उसका रस चूसिए, ठीक है। तो ऐसे फिर 3 घंटा निकल जाए, फिर थोड़ा सा आप धनिया खाइए। ऐसा करने से गले का दर्द आपका समाप्त हो जाएगा, किसी भी प्रकार का गले का दर्द हो तो। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है, गर्म पानी में नमक डाल करके थोड़ा गरारा कर लीजिए, इसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। फिर देखिए, इमली के पानी से कुल्ला करिए, इससे भी गले का दर्द दूर हो जाता है। इमली भिगो दीजिए, उस पानी से कुल्ला करिएगा, इससे भी गले का दर्द ठीक हो जाएगा। 1 नींबू 1 गिलास पानी में निचोड़ कर कुल्ले और घरारे करिए। गर्म पानी में भी आप निचोड़ करके, फिर आप पहले तो कुल्ले और घरारे करना है नॉर्मल पानी में नींबू निचोड़ कर, फिर आपको गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पीना है, ठीक है, इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। 1 छोटा चम्मच नींबू के रस में 1 बड़ा चम्मच शहद मिला करके दिन में 2-3 बार आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइएगा, तो भी गले का दर्द ठीक हो जाएगा। 1 छोटा चम्मच नींबू के रस में 1 बड़ा चम्मच शहद मिला करके दिन में 2-3 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए, इससे भी गले का दर्द ठीक होगा। फिर देखिए बहुत ही सुंदर उपाय, 250 ग्राम पालक के पत्ते 2 गिलास पानी में उबाल करके, जब आधा रह जाए तो छान करके इस गरम गरम पानी से घरारा करिए, इससे भी गले में काफ़ी राहत मिलेगी गले के दर्द में। तो 250 ग्राम पालक के पत्ते 2 गिलास पानी में उबाल करके, जब आधा रह जाए तो उसको छान लीजिए और इस गरम गरम पानी से घरारा करिएगा, इससे गले के दर्द में आराम मिलेगा। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, शहतूत का शरबत पीजिएगा, इससे गले की खुश्की और दर्द ठीक हो जाएगा। तो शहतूत के शरबत, मतलब शहतूत का शरबत बना करके पीना है, ठीक है, इससे गले की खुश्की और दर्द दोनों में ही आराम मिलेगा। तो ये हुए घरेलू उपाय। अगर गले में दर्द है तो इन नुस्खे को आजमा सकते हैं, कोई भी 1-2 कुल्ला घरारा तो करिएगा, साथ ही कुछ आप इतनी सारी चीज़ें दी उसमें से 1 नुस्खे को फॉलो करिएगा। और आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली है, सुबह सुबह सूरज को नमन करता, 12 चरणों में शरीर चलवाता, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता, बताओ मैं कौन? बहुत ही सुंदर, योगा के अंतर्गत ही है, ठीक है। सुबह सुबह सूरज को नमन करता, 12 चरणों में शरीर चलाता, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता, बताओ मैं कौन? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और अब यही पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: एकादशी का पावन दिन है आया, भक्ति का सुंदर संदेश है लाया। एकादशी का पावन दिन है आया, भक्ति का सुंदर संदेश है लाया। मन में श्रद्धा, हृदय में विश्वास रखे। मन में श्रद्धा, हृदय में विश्वास रखे। हर पल प्रभु का मधुर एहसास रखे। हर पल प्रभु का मधुर एहसास रखे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम एकादशी की बात करेंगे, व्रत उपास की बात करेंगे, त्योहारों की बात करेंगे, बड़े बड़े दिनों की बात करेंगे, और साथ ही साथ आज पहेली को भी दोहराएंगे। आज की पहेली इस प्रकार है, जवाब आप दे सकते हैं। सुबह सुबह सूरज को नमन करता, 12 चरणों में शरीर चलवाता, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता, बताओ मैं कौन। तो बहुत ही सुंदर आज की पहेली है, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट नहीं करूंगी, अपने आप में स्पष्ट है। बस आप जुड़िएगा और अपनी बात को जरूर रखिएगा, क्या कर रहे हैं आज त्योहार, भाई निर्जला एकादशी है, कैसे कर रहे हैं आप। बहुत सारे श्रोता बंधु करने वाले हैं, विशेष करके बहने तो बहुत करती है, और आज के पहेली भी बड़ी सुंदर है। तो जरूर दोनों में जुड़ने के लिए नंबर फिर से दोहरा रही हूँ, 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, और आज की पहेली में भी मतलब एक पहेली का जवाब भी दे सकते हैं, तो आज के विषय में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सुरेश भाई?
1: बस बिल्कुल अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, और आज निर्जला एकादशी की जो आपने बात की, तो कहते हैं कि दीदी जो एक गाना है कि धन एकादशी एकादशी कह रही है तो व्रज सुख पानी है, तो बिल्कुल सही है कि जो हम एकादशी करेंगे तो प्रभु के चरणों का हमको एक चरणों में वास मिलेगा, ऐसा ही एक भजन है। तो एकादशी करना जरूरी, लेकिन मैं बता दीजिए, मैं उपवास नहीं करता हूँ कि क्या है, मुझे थोड़ा डायबिटीज का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं डॉक्टर ने मना किया कि आपको उपवास करना नहीं है, तो मैं उपवास तो नहीं करता हूँ दीदी, लेकिन हमारे हमारे पत्नी तो जरूर करती है, सभी अग्रस करती है
0: जी। अच्छा,
1: मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे खर्चे तो करते हैं।
0: देखिए आजकल क्या है, अधिकांश घरों में बीमारियां चल रही है, किसी के हाई बीपी, किसी के डायबिटीज, किसी के लो बीपी, तो किसी के क्या, तो क्या ये सब करना जरूरी है? मन साफ नहीं रखा जाता है, क्या कहेंगे आप?
1: रखा जाता है दीदी, इसीलिए तो कहते हैं कि हम भले कोई उपवास ना करें, लेकिन हमारा जो मन है, मन को हमको शुद्ध रखना है, कि कोई ऐसी नहीं रखना, अच्छी भावना रखनी है, अच्छी शरीर की सोच अच्छी रखनी है, तो भी हम ये जो उपवास किया जाता है, कई कई बार क्या होता है उपवास तो दीदी कर देता है, लेकिन उपवास करने के बाद वही जो हालत होती है, तो उपवास करने का फायदा नहीं है
0: जी।
1: कभी कभी देखो कई लोग ऐसे तो उपवास तो करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द का करते हैं, ऐसे बोल बोलते हैं, परेशान करते हैं, तो इसको करने से फायदा क्या है? हम देखते हैं दीदी कई लोगों का ऐसा स्वभाव ही होता है कि चाहे कितने उपवास करें, लेकिन वो स्वभाव वही ना वही रहता है
0: जी।
1: तो ऐसा नहीं सोचना है, चलो उपवास करेंगे, लेकिन ऐसा उपवास करेंगे कि किसी को कोई सामने वालों को कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, कोई हमारा से नाराज ना हो, हमारा मन शुद्ध हो, हम एक दूसरे के अच्छी तरह से जो वर्तन कर पाए, ऐसा रखना है। बाकी तो हम देखते हैं समाज में, परिवार में, मोहल्ला में कई लोगों को देखा है
0: जी।
1: बस हम तो ऐसा कहेंगे दीदी कि मन हमारा मन साफ करना है, बस उपवास तो आप करो ना करो, लेकिन मन को साफ रखना जरूरी है। मन में कचरा भरा है, मन में सब कपट भरा है, तो क्या करें, तो उपवास करके तो करना है, ऐसा नहीं जरूरी, उपवास करना भी जरूरी है, लेकिन हम इस उपवास के साथ साथ हमारा माइंड भी अच्छा रखना, मन भी अच्छा रखना, एक दूसरे की अच्छी भावना रखना भगवान के प्रति। देखो कई लोग जो मुझे बताऊँ की कई लोग जो पूजा तक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मन पूजा पाठ में नहीं होता है, बाहर ही होता है, ये कर ले ये कर ले कर ले, घर में कई लोग ऐसे होते हैं
0: जी। ठीक है, हाँ जी, नमस्ते, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, विषय यही है एकादशी,

0: बोल है आपके उधर?
1: बहुत ही अच्छा माहौल है। और आज के दिन भी जो ये एकादशी का व्रत करता है ना, उसको 12 महीने की जो एकादशी आती है ना, उसका फल मिलता है। मतलब साल में जितनी भी एकादशी, 24 एकादशी आती है, तो आज के दिन जो एकादशी करता है ना, उसको 24 ही एकादशी का व्रत फल मिलता है।
0: अच्छा, और कोई
1: हाँ,
0: बीमार है, किसी को कोई तकलीफ है, उनको क्या करना चाहिए?
1: एक्चुअल में देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि आप तकलीफ में भी उपवास कीजिए, व्रत कीजिए। तो ये तो श्रद्धा है। मतलब आप बीमार है तो ऐसी कंडीशन में मत कीजिए। शरीर को कष्ट देके आप उपवास करोगे तो पिता एक परेशान होगा ना, क्योंकि पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे कष्ट में रहे। सही
0: लेकिन उनको
1: है ना?
0: तो ऐसा ना कि भाई मेरा कहीं पुण्य कम हो जाएगा, साल भर का पुण्य मैं एक साथ कमा लूं।
1: नहीं, देखिए, आप पुण्य ऐसे नहीं कमा सकते कि शरीर को कष्ट देके आप पुण्य नहीं कमा सकते। आप खुशी खुशी उपवास नहीं, आज के दिन कोई छोटे छोटे दान, मतलब चीटी होती है तो उनको खाना देके, या गऊ को घास देके, कुछ भी छोटे छोटे कार्य से भी, दान पुण्य करने से भी आपको फल मिलेगा।
0: अच्छा,
1: कुछ कुछ लोग मंदिरों में जाके पीपल के वृक्ष के नीचे मटका भर के रखते हैं, उस पे नींबू शक्कर रस रखते हैं। तो
0: जी
1: मतलब आप कुछ भी ऐसा ही नहीं है। अगर आप उपवास कीजिए, उपवास आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी आत्मा मान रही है, तो कीजिए। आप शरीर को तकलीफ देके आप उपवास करोगे तो पिता भी खुश नहीं रहेगा ना, उसका फल आपको नहीं मिलेगा फिर। सही
0: जी
1: है ना?
0: जी
1: क्योंकि शरीर शरीर को कष्ट देके आप ऐसे काम करोगे तो वो तो पाप हुआ ना।
0: जी
1: तो ये आपकी अगर शक्ति है तो भक्ति कीजिए, नहीं तो परमात्मा का नाम लीजिए और कुछ भी छोटे छोटे या बड़ा कुछ भी दान कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। हमारे यहाँ भी हर्ष और उल्लास का माहौल है। मंदिरों में लोग मटके और वगैरह रख रहे हैं, मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, और श्रद्धा और उल्लास के साथ में कोई एकदम बिना पानी की एकादशी कर रहे हैं, कोई पानी ले रहे हैं, मतलब ये ऐसा कर रहे हैं, ये तो शक्ति के हिसाब से कर रहे हैं।
0: जी
1: ऐसा नहीं है कि संपूर्ण मतलब कि निर्जला ही कर रहे हैं बिना जल के, तो वो नहीं है। जैसी जिसकी शक्ति है, कोई एकदम बिना जल की कर रहा है, कोई प्रार करके भी कर रहा है, तो ऐसा चल रहा है, कोई पानी के ऊपर ही खाली कर रहा है, तो ऐसा कुछ चल रहा है सब कुछ।
0: जी
1: और
0: चले।
1: बाकी तो सब ठीक है दीदी। आज की पहली क्या है?
0: हाँ जी, आज की पहेली है, सुबह सुबह सूरज को नमन करता, 12 चरणों में शरीर चलाता, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता, बताओ मैं कौन?
1: सुबह सुबह सूर्य को प्रणाम करता है,
0: जी,
1: फिर उसके बाद क्या?
0: 12 चरणों में शरीर चलाता,
1: 12 चरणों में शरीर चलाता है।
0: लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता।
1: ठीक है, मैं सोच के देता हूँ। ठीक है,
0: ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और विषय बहुत ही सुंदर चल रहा है, व्रत उपवास आते हैं, बहुत सारे भाई बहन हमारे, बहुत सारे श्रोता बंधु व्रत उपवास रखते हैं, अच्छी बात है, व्रत उपवास करिए, लेकिन मन हमेशा हल्का होना चाहिए, मन हमारा खुशनुमा रहना चाहिए। और व्रत उपवास कहते हैं ना कि करिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं। हेलो,
2: हाँ, ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते सगुना बहन, कैसे हो?
2: बहुत अच्छे,

0: और आपका पहेली का जवाब
1: अभी नहीं, अभी नहीं, आप मुझे मैसेज के द्वारा भेज दीजिएगा, ठीक है? बहुत ही सरल है आज की पहेली, थोड़ा सा सभी को माइंड के एक्सरसाइज करने दीजिए।
0: हाँ, विषय भी एकादशी के ऊपर है।
1: हाँ जी, आप करते हैं?
0: मैं कभी करती नहीं हूँ, लेकिन आज की है मैंने।
1: अच्छा,
0: आज की है, बड़ी एकादशी है, तो ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए 8 दिन में एक उपवास होना जरूरी है, इसलिए मैंने की है। दोनों काम हो जाएगा, देखो एकादशी भी हो जाएगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया। जी, आप स्वास्थ्य के लिए करते हैं, है ना? हर 8 दिन में एक, हर 8 दिन में तो खैर आते ही नहीं है, पर आप हर 8 दिन में उपवास रखते हैं या 15 दिन में?
0: नहीं, मैं ये पहली बार रखा है, मैं करती नहीं कभी उपवास, लेकिन अब मैंने रेडियो में हमारे आता है ना सुबह में स्वास्थ्य के लिए,
1: जी
0: राहुल मोदी जी आते हैं ना, तो वो सब बताते हैं स्वास्थ्य के लिए एक उपवास जरूरी है।
1: जी,
0: तो मैंने सोचा चलो आज से ही शुरुआत कर लेते हैं।
1: क्या बात है, नेकी और पूछ का है तो कर ही लेते हैं, अच्छी शुरुआत की आपने। जी चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन जोटाना से, और अब यहीं पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: उपवास नहीं ये मन का श्रृंगार है, उपवास नहीं ये मन का श्रृंगार है, एकादशी आत्मा का सच्चा त्योहार है, जो प्रभु स्मृति में जीवन बिताता है, जो प्रभु स्मृति में जीवन बिताता है वह हर कठिनाई से पार हो जाता है, वह हर कठिनाई से पार हो जाता है। पुनः आप सभी को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं ढेर सारी। और विषय भी देखिए बहुत ही सुंदर है भाई, उपवास नहीं ये मन का श्रृंगार है, एकादशी आत्मा का सच्चा त्योहार है, क्या कहेंगे आप। तो बहुत ही सुंदर आज का विषय है, क्योंकि आज का प्रैक्टिकल विषय है। बहुत सारे श्रोता बंधु करते हैं एकादशी का व्रत, कभी पूर्णिमा का व्रत, तो इस तरह व्रत उपवास तो करते ही, फिर वार त्यौहार के आते वो तो अलग ही है। ये जो है रेगुलर आने वाले, महीने में एक पूर्णिमा आती है, महीने में दो एकादशी आती है, हमारे श्रोता बंधु बहुत ही प्यार से करते हैं इस व्रत को। और आज तो भाई निर्जला एकादशी है, बहुत जने तो पानी भी नहीं पीते हैं। पर चलिए आज के पहेली की तरफ भी बढ़ते हैं, उसके बाद इसे मैं बात करेंगे। सुबह सुबह सूरज को नमन करता, बारह चरणों में शरीर चलाता, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता, बताओ मैं कौन। कौन कौन से योगा की तरफ यह इशारा कर रही है पहेली? तो पहेली का जवाब देने के लिए, विषय को स्पष्ट करने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर फोन लगाकर आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? अंताक्षरी में आप बहुत सारे जुड़ते हैं, फिर बहुत सारे नहीं जुड़ पाते हैं कि नंबर लगता ही नहीं, फोन लगता ही नहीं। लेकिन अभी तो देखिए आपके पास बहुत सारा समय है, आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो देखिए व्रत उपवास कोई भी करे, प्रसन्न मन से करिए, स्वस्थ शरीर है तो करिएगा। कितनी बार ऐसी ऐसी बीमारियां होती है कि कुछ खाए बिना दवा लेने की डॉक्टर साफ मना करता है, तो उस समय डॉक्टर की सुनिए, ठीक है। मन साफ रखिए, ईश्वर भजन करिए, ईश्वर मतलब मन साफ रहेगा तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल अच्छा होगा, मन साफ रहेगा तो वैसे ईश्वर की अनुकंपा बनी रहेगी। बाकी कितने ही जने क्या करते हैं, व्रत उपवास करते हैं और समय पर फराल नहीं मिलता है, फिर क्रोध की ज्वाला जगती है, फिर बच्चों को डांटना फटकारना, अगर पति करता है तो बीवी पर गरजना, बीवी करती है तो बच्चे और पति पर गरजना, ये सब चलता रहता है। बहुत सारे संयम भी रख सकते हैं, पूरे दिन उनको कुछ ना दो तो भी आराम से वो चला लेते हैं, और वो भी एनर्जी के साथ घर का सारा काम करते हुए। और बहुत सारे ऐसे देखा देखी करते हैं ना, जो दिल से करते हैं, उनके लिए कह रहे हो, देखा देखी से करते हैं वो, थोड़ी देर में अगर उनका समय पर फराल नहीं मिला तो उनकी हालत खराब हो जाती है। हेलो
1: हेलो उषा बहन जी, कंचन भाई बोल।
0: हाँ जी नमस्ते कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस बहन जी नमस्कार, सुप्रभात।
0: हाँ जी नमस्कार, सुप्रभात।
1: आज हमारा जो प्रवेश उत्सव था,
0: अच्छा
1: उनमें
0: अच्छा,
1: तो मेरे बेटे सुबोध की बेटी वैदिक
0: जी
1: जो बाल वाटिका में जाती है तो वहाँ लेके गए थे
0: जी,
1: गणवाटी
0: जी जी जी।
1: तो अभी अभी आए, कार्यक्रम पूरा हुआ
0: तो जी
1: मैंने देखा कि भाई अभी तो ब्रह्मचर्य रहा होगा तो जुड़ा हूँ
0: जी।
1: एकादशी की बात कोई चल रही थी।
0: हाँ जी हाँ जी, एकादशी बहुत जने करते हैं, ठीक है, स्वस्थ शरीर है तो करिएगा, डॉक्टर ने कहा है, बीमारी है, दवा लेना जरूरी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, किसी को लो, किसी को डायबिटीज है, किसी को क्या है, दवाई रोज लेनी होती है और खाए बिना नहीं ले सकते, तो क्या उस समय भी हम जिद पर अड़े रहेंगे कि नहीं भाई हमें तो दवा चाहे भले नहीं लेंगे लेकिन उपवास जरूर करेंगे, क्या कहेंगे आप?
1: यही तो एक बात है बहन जी, देखो हमारे घर के है ना उपवास से बहुत, हर सोमवार तो करना ठीक है, और अधिक मास अभी आया ना
0: जी,
1: अधिक मास गया, पूरा अधिक मास किया
0: जी,
1: और चैत्र जो नवरात्र आया ना तो चैत्र नौ दिन तो ठीक है लेकिन आखे महीना महीना किया
0: जी,
1: अभी श्रावण मास आएगा तो वो करेंगे दवाई चालू है, लेकिन हम तो बोलते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। आज भी शिव जी के मंदिर गए है, अभी बड़ा और कोई फ्रूट लेके ये लेके गए है, तो आज भी उपवास किया है।
0: जी
1: कभी आज तो नकोड़ा उपवास,
0: आज निर्जला एकादशी है ना।
1: हाँ आज तो वो भी आए हमारे घर से, वो बहुत उपवास में बहुत मानते हैं
0: जी,
1: करना ही पड़ेगा। वो तो हम बोलते हैं इसको थायराइड की दवाई चलती है, सुबह में गोली लेनी पड़ती है, बीपी की गोली लेनी पड़ती है, फिर भी ये नहीं मानते। कभी
0: जी
1: बोल रहे हैं घर से, हमारे बेटे भी बोलते हैं, बहुएं भी बोलते हैं, लेकिन नहीं ये करते, कर किए जा रहे हैं, करते हैं।
0: जी
1: तो शरीर जो स्वास्थ्य है ना, तो करे तो चलेगा वैसे, ठीक है
0: जी।
1: शरीर साथ नहीं देता तो फिर ने उपवास करने का कोई ये नहीं
0: जी,
1: मैं तो ये मानता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कहते ना भूखा भजन ना होए गोपाला, और पहला सुख निरोगी काया।
1: लेकिन जो ये पड़ी अभी हो गई है ना, कि आज ये है, हम नहीं आज तो सोमवार नहीं है ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन ये पता चल जाता
0: है। वो तो आप भले कितना भी चुगलाने की कोशिश करोगे, ऐसे थोड़ा कोई चुगलता है।
1: नहीं
0: जो करते उनको तो याद ही रहता है ना, सप्ताह गिने।
1: मैं तो नहीं करता बहन जी, मेरे को क्या खेती का काम होता है, और ग्राहक आता है तो 2 बजे भोजन करने के लिए घर पे जाना पड़ता है, कभी कभार नाश्ता भी नहीं करता सुबह में, तो ऐसा हमारा धंधा है, तो हम तो नहीं, मैं तो नहीं करता। मैं तो बोलता हूँ भगवान जैसे ले जाए वैसे हम जाएंगे। बाकी उपवास तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा।
0: जी जी जी। हाँ कोई बात नहीं ना, मन अच्छा होना चाहिए।
1: हाँ मन की बात तो है ना बहन जी, मन जो आपने बोला कि भूखे भजन नहीं गोपाला।
0: जी भूखा भजन न होए गोपाला।
1: हाँ तो ये हमारा मन एक इसमें चला जाए, और फिर पूरे दिन एक खाए, एक फराड़ी लाओ, ये लाओ, ये करो, इसमें क्या कर।
0: जी
1: तो मन साफ होना चाहिए, खाना तो अन्न पानी का रोपा है ऐसा बोलते हैं हमारे गुजरात में। शरीर तो
0: जी
1: इसको देना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है, मन साफ होना चाहिए।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और आज की पहेली का जवाब देंगे?
1: हाँ पहेली मैंने सुनी है थोड़ा, मैं ये करके
0: मैं दोहराती हूँ फिर से। सुबह सुबह सूरज को नमन करता, 12 चरणों में शरीर चलाता, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता, बताओ मैं कौन।
1: इसमें थोड़ा एक करना पड़ेगा।
0: ठीक है चलिए, जवाब मिल जाए तो फिर जरूर जुड़िएगा, ठीक है। बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। हेलो अभिषेक, देखिए आज निर्जला एकादशी है, मंदिरों पर तो बहुत ही भीड़ लग रही है भक्तों की, और वो कहते हैं ना कि भाई हेल्थ के प्रति सभी जागरूक हो रहे हैं अभी तो, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल में कितना लंबे लंबे अपॉइंटमेंट, 2-2, 3-3 दिन पहले फ़ोन करके कहना पड़ता है, तब जा कर के अपॉइंटमेंट मिलती है, और फिर हम डॉक्टर को बताते हैं और देखते हैं कितनी भीड़ है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते दीदी, ओम शांति, मैं सुरेश परिदा मेरा से।
0: नमस्ते भैया, ओम शांति, कैसे हो आप?
2: बस अच्छे हैं दीदी, 4-5 दिनों से अब थोड़ा सा वो पांडे की शादी थी तो बहुत व्यस्त थे, तो
0: अच्छा
2: प्रोग्राम सुनते थे लेकिन जुड़ नहीं पाते थे, तो
0: जी जी
2: चलो जुड़े। और अच्छी बातें हो रही है, विषय पहली भी अच्छी है और आपकी और दोस्तों की मैंने बात सुनी दीदी, तो वैसे तो बिल्कुल सही बात है दीदी कि शरीर जो अगर साथ देता है तो ये उपवास कीजिए। तो पहले मैं क्या करता था दीदी कि उपवास में इतना ध्यान नहीं रखता था और करता भी नहीं था, क्या शरीर को कष्ट पहुंचा के क्या फायदा ये। लेकिन जब पूरी श्रद्धा से मैंने उपवास किया कि चलो खाना तो हम रोज खाते हैं, चलो एक दिन के लिए अपने भगवान माता जी के लिए उपवास करे, तो उसमें क्या है, जो मन तन से सच्चे मन तन से जो उपवास किया तो उनको भूख भी और प्यास भी नहीं लगती। श्रद्धा होनी चाहिए और सभी में श्रद्धा होती है लेकिन अलग अलग नजरिया होता है। हम उपवास तो रख लेते हैं लेकिन एक्टिव खाने की तरफ या पेट की भूख की तरफ जो करते हैं तो भूख भी लगती है और पूरे विश्वास के साथ उपवास नहीं कर पाते हैं। तो ये भी जरूरी है अगर हम श्रद्धा रखते हैं, तो मेरा तो ये मानना है दीदी
0: जी।
2: हाँ
0: बहुत अच्छी बात है
2: जी जी जी दीदी, और मैंने प्रश्न का
0: हाँ जी जवाब मिल गया। वो क्या है परिणाम हम बाद में बताएंगे, ठीक है
2: जी जी जी। नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, तो आपने भी बहुत ही अच्छी बात कही है। कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, करिए आप व्रत उपवास, अगर हेल्दी है आप, कोई बीमारी नहीं है तो आप करिएगा, वो भी किसी का फोर्स नहीं है, आप अपने स्वेच्छा से करना चाहे तो करिएगा। लेकिन बीमारी वालों को बच के रहना है, भले आप फराल खाइए, नाश्ता फराली आइटम भी बहुत सारे बनते हैं, तो उसमें से कोई भी चीज़ आप पसंद करके ले लीजिए, लेकिन बिल्कुल भूखे नहीं रहना है, डॉक्टर के कहे अनुसार चलना है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि दवा लेकर के कुछ खा करके दवा लेनी है तो आपको कुछ खा करके ही दवा लेनी है। मैंने देखा है एक माता जी जो उम्र वाले हैं लेकिन न तो एकादशी छोड़ते न पूर्णिमा छोड़ते, आप घर वाले परेशान हो गए कि भाई आप छोड़ो ये व्रत उपवास, कुछ खा लो पी लो। बोले नहीं भाई, आज तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, निर्जला एकादशी है, भला मैं कैसे खाऊंगी। तो कोई कोई क्या ऐसे जिद पकड़ के, जबकि डायबिटीज़ है, लेकिन कोई कोई ऐसे होते जो बस जिद पकड़ के बैठ जाते कि नहीं इसका मतलब नहीं। तो बीमारियाँ होने के बावजूद, एक उम्र होने के बावजूद भी अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो सोचिए, कहते पुण्य तो मिलना होगा तब मिलेगा, लेकिन शरीर को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। हो सकता है चक्कर आ जाए, हो सकता है डायबिटीज़ लो हो जाए, बीपी लो हो जाए, तो डॉक्टर के कहे अनुसार चलिए। बाकी आप करिए, हेल्दी है तो करिए, और बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए 15 दिन में एक उपवास बहुत ही ज़रूरी है। तो एकादशी चूज़ कर लीजिए कि चलो एकादशी को कर लेते, दोनों ही काम हो जाएगा। तो वो क्या है कि फिर भूखे ऐसे नहीं कि अगर शरीर के लिए कर रहे हैं तो फिर आप या तो लिक्विड पर रहिए या फ्रूट पर रहिए। तो पहले तो आप वो कहते हैं ना कि हेल्दी है तो ऐसे करिए, है ना, कि भले पूरे दिन आप फ्रूट ही लीजिए, भले फ्रूट और लिक्विड लीजिए, पर कोई फराल एक गर्म चीज़ बना करके नहीं खाना है, तो हेल्थ का और भी ज़्यादा इस पर बेनिफिट रहेगा, असर करेगा हेल्थ पर ये उपवास, क्योंकि टॉक्सिन सारे निकलेंगे और थोड़े पेट की गंदगी साफ होगी। बाकी तो हाँ, हम उपवास कर रहे हैं भाई निर्जला एकादशी या कोई सी भी एकादशी पूर्णिमा जो भी है, तो फिर आप फराल लीजिएगा। अगर तकलीफ है फिर भी आप उपवास करना चाहते हैं तो फराल लेते रहिए। वो मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ, भूखा भजन ना होए गोपाला। तो भूखे पेट तो हम भगवान को भी याद करते हैं तो हो, हमारा मन किधर जाता है खाने में, है ना, तो याद अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। बाकी अपने सामर्थ्य अनुसार करिए, अपने हेल्थ को देखते हुए करिए व्रत उपवास। डॉक्टर की सलाह लेकर के, अगर बीमारियां है तो डॉक्टर की सलाह लेकर के आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, हर एक के लिए। बाकी कितने जनों को देखते हैं कि व्रत उपवास करके बच्चों को पिटाई करते हैं, बच्चों को डांटते हैं, झगड़ते हैं, अपशब्दों की बौछार करते, वो अच्छी बात नहीं है। इससे तो अच्छा है कि उपवास ना करो। और बाकी थोड़ा सा और भी बताना चाहूँगी कि आज निर्जला एकादशी है, मंदिर में माताएं बहनें एकदम नए कलश लेके आते हैं, वो मिट्टी के कलश, उसमें पानी भर के ऊपर कपड़ा बांध करके फिर ऊपर कटोरे में या तो शक्कर या आम कुछ भी ऐसे रख करके फिर मंदिर में चढ़ाते हैं। आज मंदिर में कलशों की भीड़ लग जाती है और सभी मतलब कहते ना कि भक्ति तो करो उतनी कम है, तो इस तरह कोई चलो रोज जाते हो नहीं जाते हो लेकिन आज के दिन मंदिर जरूर जाएगी हमारी माताएं बहनें भाई लोग भी जाते हैं और भजन कीर्तन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। एकादशी और पूर्णिमा को तो घर घर में सत्संग भी होता है। अच्छी बात है, सत्संग करने से भी मन हमारा स्वच्छ रहता है, साफ रहता है और रहना भी चाहिए। इसलिए जो भी करें आप खुशी खुशी करिए, दिल से करिए और साफ दिल से करिए, बीमारियां है तो डॉक्टर की राय से करिए, ठीक है। और आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली है, सुबह सुबह सूरज को नमन करता, बारह चरणों में शरीर चलाता, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता, बताओ मैं कौन। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आप सोच रहे होंगे कि अरे आज तो निर्जला एकादशी है और उषा दीदी कुछ तो व्यंजन सिखा रही है, क्या करें। देखिए मैं कहना चाहूँगी, मुंह में पानी बिल्कुल मत लाना। अगर आप निर्जला एकादशी कर रहे हैं तो मन को मक्कम रखिए, ठीक है, आप मत बना करके खाइएगा। लेकिन जिनको डॉक्टर ने कहा है कि बीमारी है और आपको कुछ खाना है तो वो तो बना करके खाएंगे ना, आप दूसरे दिन खाइएगा उसी चीज़ को बना करके। तो राजगीरे का हलवा आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, जो फराल लेते हैं उनके लिए। जो नहीं लेते हैं तो आप दूसरे उपवास में ले लीजिएगा। तो चलिए, सामग्री इसमें बहुत कम है। राजगीरे का आटा लेना है आपको, घी लेना है, फिर तो देखिए ड्राई फ्रूट्स आप चाहे तो ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले लीजिए, काजू ले लीजिए, इलायची लेनी है और शक्कर तो लेनी ही है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा सामग्री नहीं है, घी, राजगीरे का आटा, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर। चलिए बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा देती हूँ। कढ़ाई रखिए गैस पर, घी डालिए, घी गर्म हो जाए तो राजगीरे के आटे को छान करके डाल दीजिए, ठीक है। मध्यम आँच पर और स्लो आँच पर आप सेकिएगा। एक तरफ थोड़ा सा पानी गर्म करके रख दीजिए और अब इस आटे को अच्छी तरह सेक दीजिए। जैसे जैसे हलवे का आटा सेकेगा, कढ़ाई घी छोड़ने लगेगी और सोनी सोनी खुशबू आने लगेगी। खुशबू से, कलर चेंज होने से पता चल जाएगा कि हमारा ये आटा सिक गया है। फिर इसमें वो जो आपने पानी गर्म किया वो डालिएगा, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार पानी डालिएगा कि वो आटा उसको जज्ब कर ले, सोख ले। तो और ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल वो कन्नी कन्नी छुट्टी पड़ जाए, ऐसे भी नहीं, ठीक है। तो इस अंदाज से पानी डालना है, जब पानी झल जाए तो शक्कर डालिएगा। शक्कर जब एक घट हो जाए अच्छी तरह ही, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा और ड्राई फ्रूट्स किशमिश भी डाल सकते हैं। किशमिश को थोड़ी देर आप गर्म पानी में भी डाल सकते हो, फिर आप हलवे में डाल दीजिएगा। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद गैस बंद करके ऊपर से इलायची पाउडर बुरका दीजिए। तो ये बन गया राजगीरे का हलवा, राजगीरे के आटे का बहुत ही स्वादिष्ट हलवा। बहुत सारे क्या करते, देखिए एकादशी करते हैं अलग अलग नियमों से। कोई तो निर्जला एकादशी करते पानी भी नहीं पीते, ठीक है। कोई करते हैं संध्या के समय थोड़ा सा आम का जूस पीते हैं। कोई करते हैं तो भाई रहा नहीं जाता है तो नमक मिर्च नहीं खाते फराल में, इस तरह मीठा खाते हैं। और कोई करते हैं तो भोजन की जगह वो फराल बना करके खाते हैं, उसमें व्यवस्थित फराल बनाएंगे, फिर हलवा भी बनाएंगे, पूरी सब्जी भी बनाएंगे, जैसे राजगीरे की पूरी भी बन गई, आलू टमाटर की सब्जी बन गई या साबुदाने की खिचड़ी बन गई, व्यवस्थित बना करके खाएंगे। तो इसमें ही मैंने आपको हलवा सिखाया है। तो आप जैसे भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं उपवास, तो हलवा बना करके खा सकते हैं। और इस तरह ये गर्मा गर्म हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अपने इष्ट देव को भोग लगाने के बाद ही जो भी सात्विक भोजन है, जो भी हम बनाते हैं रेसिपी, वो स्वीकार करिएगा, ठीक है। और आइए आज की पहेली की तरफ। आज की पहेली है, सुबह सुबह सूरज को नमन करता, 12 चरणों में शरीर चलाता, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता, बताओ मैं कौन। अब जवाब तो आपको देना है। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। आइए यहाँ पर फिर से एक गीत सुनकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे बहुत ही अच्छे दिए हैं। तो गला दर्द है तो आप क्या करेंगे, वो आपने जाना है, तो ज़रूर आप आजमा सकते हैं। इन नुस्खों में से एक को फॉलो करना है, ठीक है, जो अच्छा लगे आपको। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई भाई। आप एकादशी करिएगा, आपको कोई मना नहीं करता है, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बीमारी सीमारी हो तो आप डॉक्टर की राय से काम करिएगा। और राजगिरे के आटे का हलवा बनाना सिखाया है, आप चिंता मत करिए, बनाइएगा, बच जाए तो फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है। और आज की पहली बड़ी सुंदर थी जिसको मैं दोहरा रही हूँ। सुबह सुबह सूरज को नमन करता, 12 चरणों में शरीर चलाता, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता, बताओ मैं कौन। तो हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है, सूर्य नमस्कार। तो आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। नाम बताना चाहूंगी, सुरेश भाई जोटाना से जुड़े हैं, अलका जी काबरा कपासन से, दीपा जी सोमानी कपासन से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने जवाब नहीं दिया है, सगुणा बहन का सही जवाब है, और फिर है भारती जी जुड़े हैं गांधीनगर आबू रोड से, सही जवाब है, कंचन भाई मंडाली से आपने विषय को स्पष्ट किया, जवाब नहीं दिया है, सुरेश भाई धानेराव से आपका जवाब सही है, कमलेश जी जुड़े अभी लास्ट में, आपका भी जवाब सही है। तो आप सभी का सही जवाब है, हमने तालियां बजा दी है। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, सगुणा बहन जोटाना से और सुरेश भाई धानेराव से। तो आप सभी के लिए पुनः ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, किसी से सम्मान मांगना छोड़, आप स्वयं का सम्मान करना प्रारंभ करिए तो सभी आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे। और एकादशी के लिए यही कहना चाहूंगी, एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है, संयम से जीवन को सुंदर बनाना है, तन हो पावन मन में हो उजियारा, प्रभु नाम से मैके जीवन सारा। तो जाते जाते पुनः आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आज का भजन सुनाएंगे कमलेश बहन, जिनको आप सुबह सुनते हैं नई किरण में। तो कमलेश जी, स्वागत आपका आशियाना कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया उषा बहन, और सुनने वालों को बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि निर्जला एकादशी की आप बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं, तो प्रभु शंकर और लक्ष्मी जी के पूजन का ये दिन है। निर्जला एकादशी हम लोग करते हैं, उसमें पानी की बचत होती है, खाने की बचत होती है, अगर हम बचत करेंगे तो किसी और को खाने का मौका मिलता है ना, जो ये चीजें हम सीखते हैं व्रत से। और भजन सुनाओ मैं।
0: हाँ जी, तो कमलेश बहन से सुनेंगे, आप भजन का आनंद पूरा लीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जागृति में हम महिलाओं के कानून की जानकारियां लगातार ले रहे हैं और आज हम जिस विषय पे जानकारियां लेने वाले हैं वो विषय है गार्डियनशिप, यानी कि जब माँ बाप अपनी मैरिज को तोड़ देते हैं या फिर शादी विच्छेद कर देते हैं या डाइवोर्स देते हैं या तलाक देते हैं, उसके बाद उनके जो बच्चे हैं उसका क्या होगा, एक बड़ा सवाल रहता है। कई बार माँ चाहती है कि बच्चे उनके पास रहें, कई बार पिता सोचते हैं कि बच्चे मेरे पास रहें, ये एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है। लेकिन कानून किस तरीके से उनको न्याय दिलाती है और बच्चों की क्या डिमांड रहती है, या बच्चों का भी अपना एक चॉइस रहता है कि वो किसके पास रहना चाहते हैं, वो चूज कर सकते हैं, या डाइवोर्स होने के बावजूद बच्चों की जो देखभाल है या फिर बच्चे अपनी माँ या पिता दोनों में से किसी एक के साथ रह सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। इन सवालों को जवाब देने के लिए और हमें कानून की बेहतर जानकारी देने के लिए गार्डियनशिप के ऊपर आज हमारे साथ हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो में शोएब जी। आप पेशे से एक वकील हैं आब रोड से। शोएब जी, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: शोएब जी, आपने हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट और इंटर रिलीजियस या स्पेशल मैरिज एक्ट और डाइवर्स, ये सभी चीज़ों के बारे में तो स्पष्ट रीति से हमें जानकारियाँ दी हैं, लेकिन इन सभी के बीच में एक और विषय जो हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि जो बच्चे हैं, जब माँ बाप डाइवर्स ले लेते हैं तो उसके बाद जो बच्चों की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, इन द सेंस बच्चे क्या अपने माँ बाप में से किसी एक के साथ रहना चूज कर सकते हैं, या फिर बच्चे बीच में आकर के उस डाइवोर्स को रोकने में भी सक्षम हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जैसे कि पिता चाहते हैं कि सिर्फ लड़की को साथ में रखें, या फिर माँ चाहती है कि नहीं लड़का लड़की दोनों मेरे साथ रहें, तो ऐसी जो वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को लेकर के या फिर बच्चों को माँ बाप को लेकर के, तो कानून में क्या ऐसा प्रावधान बनाया हुआ है कि कौन किसके साथ रहेगा और वो कैसे लीगली क्लेम कर सकते हैं?
2: देखिए, गार्जियनशिप एक्ट जो है वो क्लियरली मेंशन करता है कि 6 साल तक की उम्र तक का जो बच्चा होता है उसको अपनी माँ की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, हद से ज्यादा होती है। तो इसीलिए उस जो दौर होता है, वो 5 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उस दौर में उस बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी माँ है। तो इस दौर के अंदर तो माँ ही गार्जियन रहेगी। अगर पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं तो जो बच्चा है वो केवल और केवल माँ के पास ही रहेगा, ये चीज गार्जियनशिप एक्ट ने क्लियर कर रखी है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कोई महिला उसको अगर वो जेल में है, जेल में होने के पर उसको डेथ रो भी मिला हुआ है, यानी कि उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, और अगर पता पड़ता है वो पेट से है या फिर उसके पास एक बच्चा है, तो उसकी फांसी की सजा भी टाल दी जाती है अगले 5 वर्ष तक। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि माँ का रिक्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, ये इस चीज को दर्शाता है। तो जो शुरुआती दौर है उसमें तो हमारे जो लिसनर्स है उसमें बहनें इस चीज से खुश हो सकती है कि उनका बच्चा कोई उनसे छीन नहीं सकता कानूनी रूप से, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि 6 वर्ष से ऊपर का आयु का बच्चा हो गया है तो अब उसमें क्या होगा। तो उसमें कोर्ट आकलन करता है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कौन ज्यादा सक्षम है। इसका आधार क्या होगा कि मान लीजिए अगर पति कोर्ट में आया है और पति ने इस तरह के एलिगेशन अपनी पत्नी पे लगाए हैं कि मेरी पत्नी मानसिक रूप से विकृत है, या फिर वो क्रुएल्टी करती है मेरे ऊपर, वो तोड़फोड़ करती है, यू नो, ऐसा एलिगेशन लगा के वो कोर्ट में आया है, तो कोर्ट ये देखेगी कि वास्तविकता में पत्नी का जो रूप है वो इस तरीके का है, तो क्या बच्चे पत्नी के साथ रखने, अपनी माँ के साथ रखने के लिए सही फैसला होगा। अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि वास्तविकता में महिला जो थी, जो माँ थी, वो क्रूरता ज्यादा करती है या फिर क्रूर स्वभाव की है, तो ऐसे में जो महिला है उसको अपने बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी। अगर इसी के परे पत्नी ये साबित कर देती है कि पति बड़े ही क्रूर स्वभाव का है और जिस तरीके का उसका व्यवहार है वो बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में कस्टडी जो है वो माँ को मिल जाएगी। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। इन दोनों कंडीशन के आकलन के बाद ही बच्चे की कस्टडी 6 वर्ष की आयु के बाद या तो माँ को दी जाती है या बाप को दी जाती है। अभी मैं अपना एक रिसेंट केस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक महिला है आबू रोड की, उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था। तो उनके जो बच्चे है वो पति के साथ रह रहे, पति उदयपुर का है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में डिस्प्यूट हो गया है और बच्चे पति के पास ही रह रहे हैं। उनमें जो लड़का था वो 16 वर्ष का था और लड़की 19 वर्ष की थी। तो उन्होंने उनका मेरे से सवाल ये था कि मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी चाहिए, जिसमें से खासकर अगर बेटी मेरे पास आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उनको जो उनके लिए जो मेरा जवाब था वो यही था कि बेटी की उम्र पहले से ही 19 वर्ष है, यानी कि 18 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति ऊपर हो जाता है तो उसको गार्जियनशिप की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में मेजर कहलाता है, यानी कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है, खुद अपने स्तर पर जीवन जी सकता है। पर हाँ, क्योंकि माँ बाप के नज़रों में बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, चाहे वो 50 वर्ष के हो या 5 वर्ष के, तो उनकी नज़र में उनकी बच्ची बच्ची ही थी, पर कानून की नज़र में वह बच्ची 19 वर्ष की अब बच्ची नहीं रही। तो मैंने उनको यही सलाह दी कि आप अपनी बच्ची से डायरेक्ट बात करें और अगर आपकी बेटी सहमत है तो आप वो डायरेक्टली आपके पास आ सकती है। उस बेटी को अपने पास रखने के लिए आपको किसी भी तरीके के कानूनी दावपेच में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी अपने आप में व्यस्क है। रही बात बेटे की, तो बेटे के लिए आपको जरूर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी भी कानून की नज़रों में छोटा है, माइनर है, 16 वर्ष का है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है गार्जियनशिप के अंदर।
1: शोएब जी, एक और सवाल है, क्या जेंडर के आधार से भी डिमांड कर सकते हैं?
2: नहीं, जेंडर ऐसे पर्टिकुलरली नहीं, पर हाँ, अगर किसी का एक लड़का और एक लड़की है उनमें से कोई एक का डिमांड आप कर सकते हैं, बट ऐसा जेंडर का इसमें इम्पोर्टेंट रोल नहीं है।
1: मतलब अगर लड़की है तो फिर माँ के साथ ही रहना है?
2: नहीं, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, हम देखते हैं माँ हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्जा है, मतलब माँ से ऊपर हम किसी को नहीं मानते, पर आजकल कुछ ऐसी वीडियोस आ रही है सामने जिसमें माएँ भी क्रूर हो सकती है, और इस चीज़ को देखा है। मैं अभी पिछले हफ्ते ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बिल्कुल ही छोटा बच्चा, मतलब मुश्किल से 8-9 महीने का वो होगा, और उसकी माँ उसे पीट रही थी। तो सोचिए, उतने बच्चे को तो कितनी कोमलता से रखा जाता है और वो औरत उसको पीट रही थी। तो इससे साफ जाहिर होता है उस वीडियो से कि माँ भी अपने आप में, अपने मानसिक रूप में
1: फिट नहीं है।
2: ऐसी माओं से भी बच्चा छीना

0: देना ही नहीं चाहते या उनका लालन पालन नहीं करना चाहते, तो देखिए इस तरह का प्रावधान तो कहीं पे भी कानून में नहीं है। अगर आप माँ बाप है तो आपका कर्तव्य है अपने बच्चों का लालन पालन करना। अगर वो नहीं करते और कोई थर्ड पर्सन लालन पालन करता है उन बच्चों का, तो वो जो थर्ड पर्सन होता है वो उस बच्चों के माँ बाप से बच्चों के हिस्से का भरण पोषण मांग सकता है कोर्ट के माध्यम से, और माँ बाप को वो देना जरूरी है। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, क्या बच्चे फैसला कर सकते हैं कि मुझे अपने माँ बाप के पास नहीं रहना, तो इसका जवाब है नहीं। बच्चे ऐसा फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बच्चे 18 से नीचे के हैं, वो अवयस्क है, उनमें इतनी समझ नहीं होती कानून की नजरों में, तो वो किसी भी रूप का फैसला उनसे नहीं ले सकते। तो बच्चे ऐसे फैसले नहीं ले सकते, इसीलिए उनका अगर कोई मत भी है किसी के अंदर के, नहीं मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहता, तो उनका वो जो मत अधिकार है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही उनके मत का कोई वैल्यू रहेगा।
1: तो शोएब जी, जैसे आपने कहा कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि वो किसके पास रहना है चूज करने का, कोर्ट जो फैसला करती है उन्हीं के पास उनको रहना है। लेकिन जैसे कई स्पेशल केसेस में आपने ये कहा कि विधि मित्र को लेके जाकर के वो अपना बयान रख सकती है कोर्ट के सामने, तो क्या यहाँ पर भी एक अपनी पसंद की गार्डियन को चूज करने में बच्चे जाकर के कोई विधि मित्र को ले सकते हैं या और उनको कोर्ट के सामने मत रख सकते हैं कि नहीं मैं ये दोनों के साथ रहना नहीं चाहता हूँ?
0: डिपेंड करता है कि वो विधि मित्र कौन है और वो विधि मित्र का और बच्चों का जो तर्क है वो कितना स्ट्रांग है। जैसे कि अगर हम बात करें कि माँ बाप है, जो अभी आप इससे पहले का जो सवाल था कि माँ बाप ने अपने बच्चों को डिसओन कर दिया, यानी कि बच्चों का लालन पालन वो नहीं कर रहे, और ऐसे में किसी थर्ड पर्सन ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है और अब माँ बाप आए हैं और अपने बच्चे की कस्टडी वापस मांग रहे हैं, ऐसे केस में विधि मित्र के माध्यम से एक वैलिड पॉइंट अगर रखा जाए तो कोर्ट इस पर कंसिडर करता है। बट ये डिपेंड करता है फैक्ट ऑफ द केस, क्योंकि इसके लिए एज सच डायरेक्ट लॉ नहीं है, तो ये फैक्ट पे ज्यादा ऐसे केसेस रिवॉल्व करते हैं रेदर देन लॉ पे।
1: तो जब गार्डियन की बात आती है, किसको गार्डियन माना जाता है? माँ बाप की फैमिली में से किसी एक को वो गार्डियन मान सकते हैं या फिर कानून की रीति से कोई ऑर्फनेज या फिर कोई भी ऐसे गार्डियन बन सकते हैं? सी, गार्डियन की डेफिनेशन क्या है कानून में?
0: देखिए, गार्जियन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल गार्जियन, एक होते हैं टेस्टामेंटरी गार्जियन, और एक होते हैं कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन। जो नेचुरल गार्जियन है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर। शुरुआत करना चाहूंगा मैं हिंदू से कि हिंदू में नेचुरल गार्जियन किसे कहा जाता है। तो हिंदूज के अंदर नेचुरल गार्जियन होते हैं किसी भी बच्चे के माँ बाप, और अगर लड़की है तो माँ बाप और पति, ये तीन व्यक्ति जो है ये नेचुरल गार्जियन कहलाते हैं हिंदू विधि के अनुसार। मुस्लिम्स के अनुसार नेचुरल गार्जियन कौन कहलाता है? तो केवल और केवल पिता, पिता ही नेचुरल गार्जियन कहलाता है। मुस्लिम्स के अंदर बात थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम्स के अंदर दो बड़े सेक्ट है, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर पिता की मौत हो जाती है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश पिता की मौत हो गई, क्योंकि एकमात्र ही गार्जियन है पिता, और उनकी भी मौत हो जाती है, तो उनके बाद कौन गार्जियन कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एक एग्जीक्यूटर, यानी कि पिता ने अपनी संपत्ति और इस सब के लिए जिसको भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट करा हुआ है वही उन बच्चों का गार्जियन कहलाएगा, नेचुरल गार्जियन। और शिया के अंदर अगर फादर की डेथ हो गई है तो जो ग्रैंड फादर होता है यानी दादा होता है वो नेचुरल गार्जियन कहलाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है हिंदूज के अंदर और मुस्लिम्स के अंदर कि नेचुरल गार्जियन कौन हो सकता है। हिंदूज के अंदर माँ बाप और पति, और मुस्लिम्स के अंदर केवल मात्र पिता। तो ये नेचुरल गार्जियंस होते हैं। अब इसके बाद जो नेचुरल गार्जियंस के बाद जो टेस्टामेंट्री गार्जियंस है वो कौन होते हैं? यानी माँ बाप की सहमति से, यानी जो नेचुरल गार्जियन है उनकी सहमति से अगर वो किसी और को गार्जियन अपॉइंट करते हैं, उन गार्जियंस को टेस्टामेंट्री गार्जियन कहा जाता है। आम बोली चाली में आपने सुना होगा कि इन्होंने अपना बच्चा उसको गोद दे दिया है, उन्होंने फला को गोद दे दिया है। तो वो गोद में जो गार्जियन बनते हैं वो कैसे गार्जियन बनते हैं? वो यही इसी प्रकार के टेस्टामेंट्री गार्जियन कहलाते हैं। और लास्ट में आता है कोर्ट के मार्फत से, जैसे अभी हमने बात करी कि अगर महिला

0: गार्जियनशिप लेना चाहती है या फिर पिता गार्जियनशिप लेना चाहते हैं या किसी अन्य थर्ड व्यक्ति को गार्जियनशिप दी जाए, तो इस टाइप की गार्जियनशिप जो कोर्ट के मार्फत दी जा रही है उसको कोर्ट के द्वारा दी गई गार्जियनशिप कहा जाता है। इसके बाद जो पारसीज और क्रिश्चियंस है उनके लिए, केवल पारसीज और क्रिश्चियन ही नहीं, इवन हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए भी एक सेक्युलर एक्ट भी बना हुआ है जो सभी धर्मों के लिए लागू होता है गार्जियनशिप के मामले में। उसका नाम है गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 का ये कानून है जो सभी धर्मों के लिए लागू होता है। उसमें मोटा मोटी धारा 16-17 जो है ये गार्जियनशिप से रिलेटेड है और इसमें ज्यादातर कोर्ट के पास एम्फेसिस ज्यादा दिया गया है। इस कानून के अंदर कोर्ट फैसला करे कि अगर कभी गार्जियनशिप से रिलेटेड विवाद उत्पन्न होता है तो गार्जियनशिप किसको दी जाए ये कोर्ट तय करेगा।
1: जी, सो ये तीन प्रकार की गार्डियनशिप है जो, तो ये तीन प्रकार की गार्डियनशिप है। अगर किसी को गार्डियनशिप के रूप में खुद को डिक्लेयर करना है या क्लेम करना है तो फिर ये तीनों क्लॉज के अंदर उनको फिलफिल करना पड़ेगा कि वो प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ही और शी इज एलिजिबल टू बी ए गार्डियन ऑफ सो एंड सो चिल्ड्रन। सो अब बात आती है इनकी भरण पोषण की। जैसे आपने कहा कि माँ या बाप जो भी सक्षम होते हैं इनके भरण पोषण करेंगे, और अगर कोई गार्डियन भी अगर पालना करने की कोशिश करता है या इच्छा रखता है लेकिन उनकी जो मॉनिटरी बेनिफिट्स जो होते हैं वो माँ बाप में से किसी एक को उसको देना पड़ता है।
0: सिर्फ माँ बाप को ही नहीं देना पड़ता, मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप दोनों ही स्वर्गवास हो चुका है और माँ बाप की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा थी, तो अब उस बच्चे का लालन पालन कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो जो भी लालन पालन का खर्चा हुआ है जो भी एक समय में, वो उस प्रॉपर्टी में से भी अपना पैसा वसूल सकता है, यानी कि उसका लालन पालन का पैसा जो है वो वसूला जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू भी।
1: मतलब ये गार्डियन जो है वो वसूलेगा
0: जी
1: कि वो इतने समय उनको लालन पालन करने में जो भी खर्चा हुआ है उस बच्चे के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो उसमें से एक हिस्सा ले सकता है। क्या इसमें भी एक लिमिट होता है?
0: जी, इसमें अब देखिए मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी करोड़ों की संपत्ति है, अब लालच के माध्यम से बच्चा कह रहा है कि मुझे PS5 चाहिए, मुझे गोवा ट्रिप चाहिए, और जो गार्जियन है वो लगातार हर डिमांड्स पूरी करे जा रहा है इस लालच से कि मुझे बाद में वो पैसा सारा मिलेगा, तो वो चीज वैलिड नहीं रहेगी क्योंकि कोर्ट कहता है कि जो फेयर एंड जस्ट हो, यानी कि जो कोर्ट की नजरों में, कोर्ट में जब आप केस लेने जाएंगे तब कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो इसके लालन पालन में जो खर्चा किया गया है वो फेयर एंड जस्ट है। उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहूँ तो आबू रोड में कोई व्यक्ति है और वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है, कोई गार्जियन है एक ऐसे बच्चे को जिसके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो उसको स्कूल भेजना चाह रहा है। अब आप जानते हैं आसपास जितनी भी स्कूल है सभी स्कूलों में बस सर्विसेज प्रोवाइडेड है, पर अब क्योंकि उसके मन में लालच है वो कहता है कि मेरे को 2025 में या 26 में जब ये बच्चा व्यस्क हो जाएगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, तो एक काम करता हूँ मैं मर्सिडीज ला के रखता हूँ ताकि ये बच्चा डेली मर्सिडीज से स्कूल जाए और मर्सिडीज से स्कूल आए, और जब ये बड़ा होगा तो मैं मर्सिडीज का पैसा वसूल लूंगा। तो देखिए हमको ये सुनने में ही अटपटा लग रहा है, तो इसलिए कोर्ट भी इस चीज को देखती है क्या जो आपका एक्ट है उसको लालन पालन करने के लिए गार्जियन का वो फेयर एंड जस्ट है या फिर अत्यधिक है, केवल मात्र पैसे ऐंठने का तरीका है, तो इस चीज को कोर्ट कंसीडर करती है।
1: मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्चा करें, आप लालच में जाकर के खर्चा करेंगे तो उसके लिए कोर्ट जिम्मेवार नहीं रही। तो दोस्तों हम यहीं पर विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले कड़ी में। आज की जानकारी भी आप सभी को बहुत ही यूजफुल रहा होगा हम ऐसा समझते हैं, और आपके मन में कोई भी सवाल है या आपके कोई ऐसा स्पेशल केस है जिसके लिए आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर, यानी 9414151415 इस नंबर पर। फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
2: आप रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: John.
1: ओए रुक, ओए रुक रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। ओए स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
2: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
1: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
3: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मन की आंखों से प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूं। आमतौर पर मुझे आप हमराही में सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे खास लोग मिल जाते हैं जो वाकई में जिनके लिए हम कह सकते हैं कि मन की आंखों से उन्होंने कुछ किया है। आज ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी कहानी अपने आप में बहुत अलग है। और आप सब जानते ही हैं, हम इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए समाज में एक अलग अपना एक मुकाम हासिल किया है और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। न सिर्फ मेहनत के बल पर ये सब किया है, बल्कि उनका जीवन कई लोगों को प्रेरित भी कर सकता है, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए मन की आंखों से के इस विशेष कार्यक्रम में हम ऐसे ही लोगों को लेकर के आते हैं। आज मेरे साथ रीना भाटिया जी जुड़ी हैं। रीना भाटिया जी ब्लाइंड हैं और बहुत देर बाद इनकी आंखों की रोशनी गई, कई सारे हादसे हुए इनके साथ, बावजूद इसके इन्होंने दोबारा से खड़े होने का, उठने का, अपना एक अलग स्थान बनाने का निर्णय लिया और आज ये सफलतापूर्वक वो सब कर रही हैं जो ये करना चाहती थी। ये सीए हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। चलिए अब रीना जी से ही समझेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा। रीना भाटिया जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: तो संदीप जी,
0: जी सोचता हूँ आपने रीना जी की आवाज सुनी। आप रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जी रीना जी, तो हमारे सुनने वालों को बताइए जरा आपके बारे में कि आपको आंखों की तकलीफ कैसे हुई और जब इतने दिनों बाद, यानी इतनी लगभग 15-16 साल की एज के बाद ब्लाइंड हो, तो फिर कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं? आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया जरा बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जैसे संदीप जी, मैं सेकेंड ईयर बीकॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज से कर रही थी जब ऑयल मिक्सिंग ऑयल ड्रॉप्सी का एपिडेमिक चला था, जिसमें ऑयल में कुछ लेड कंटेंट्स मिक्सिंग थी। मैं उसका विक्टिम थी, जिसकी वजह से मेरी सिर्फ विजन के अलावा पूरा बॉडी मोमेंट पैम्पर हुआ था, आवाज़ चलना Sort of
0: रीना जी जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए, शायद बहुत लोगों को समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि अचानक से सेकेंड ईयर बीकॉम में जब आप थे हिंदू कॉलेज में, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया?
1: बेसिकली 1999 में कुछ ऑयल में मिक्सिंग चली थी, धारा और मस्टर्ड ऑयल में, जिसका अच्छा, पूरे इंडिया में इफेक्ट हुआ था। मैं उसमें से एक विक्टिम थी, जिसकी वजह से
0: मिलावटी ऑयल, मतलब बहुत ज्यादा लोग खाने लग गए थे ऐसा?
1: हाँ जी, कुछ ज़ारा ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में कुछ लेड कंटेंट्स की मिक्सिंग हुई थी। लेड कंटेंट्स बेसिकली पेस्टिसाइड्स में पाए जाते हैं, वो मिक्स हुआ था, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोगों को सफर हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान तक गई थी। और उसी का एक विक्टिम मैं थी, जिसकी वजह से जो जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया, डॉक्टर को पता नहीं था कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, और जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो पूरा रिएक्ट कर गया बॉडी में, जिसकी वजह से मैं कोमा में चली गई थी। 2.5 महीने तक कोमा में रहने के बाद जब मेरे को वापस होश आया, तब तक सिर्फ ना मेरी विजन, उसके अलावा मेरी आवाज, बॉडी मूवमेंट पूरा इम्पैक्ट हो चुका था। बेसिकली ब्रेन का एक हिस्सा डेड हो चुका था जो बॉडी कोऑर्डिनेशन को इम्पैक्ट कर, कोमा के बाद एक डेढ़ साल टोटल सब सीखा, बोलना चलना जैसे बच्चा सीखता है, घुटनों के बल चल के, फिर आगे उंगली पकड़ के चलना, मैं अपने सहारे से बैठ नहीं पाती थी। खाना या सब कुछ पूरा डिपेंडेंट था, कुछ से कुछ भी नहीं कर पाना। विजन एक पार्ट था उसका, उसके ये मैं 6 साल घर में रही, फैमिली का बहुत सपोर्ट था, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, मेडिकेशन होता रहा, पर डॉक्टर्स ने कहा ज़्यादा सिर्फ इसका प्रॉपर कोई मेडिकेशन नहीं है, न्यूरो सिस्टम में सिर्फ इसका एक्सरसाइज फिजियो वगैरह से इम्पैक्ट होगा। उस ट्रीटमेंट से 6 साल घर में रहने के बाद जब मैंने थोड़ा सा रिज्यूमिनेट किया तो उसके बाद सोचना स्टार्ट किया कि आगे क्या, क्योंकि एकदम से फ्रॉम कॉलेज लाइफ से जहाँ पढ़ रही हूँ चल रही हूँ अच्छे से, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो उससे बिल्कुल टोटल डिफरेंट लाइफ, जहाँ पे आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हो, टोटल घर पे हो, तो समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आ रहा था। पर फैमिली का बहुत सपोर्ट था तो उन लोगों ने सोचना शुरू किया साथ में क्या हो सकता है। उसी दौरान मुझे दूरदर्शन पे एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ब्लाइंड लड़की अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी, अपनी ट्रेनिंग्स की, ब्लाइंड लोगों के लिए भी ट्रेनिंग्स और एजुकेशन फैसिलिटीज होती है जिससे वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। वो पता चला कि 2006 में मुझे हॉस्कास नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड स्टडीज एंड डिसेबिलिटी स्टडीज का पता चला और मैं वहाँ पे आई जहाँ पे मेरे को बेसिक ट्रेनिंग्स, करियर काउंसलिंग्स और हायर एजुकेशन की गाइडेंस दी गई कि आगे क्या कर सकते हैं, और मेरे को वापस से कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्रेल मोबिलिटी, कुकिंग की सब ट्रेनिंग्स में डाला गया। इसके साथ में क्योंकि मेरे को पढ़ाई का शौक था, वापस मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की ओपन लर्निंग से, जिसके साथ में मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे भी कॉमर्स करना था, कार की कॉलेज में सिटिंग क्लासेस लेनी स्टार्ट की, वहाँ पे मैं जाती थी क्लास लेती थी एंड उसके बाद वापस अपने सेंटर आके अपनी रूटीन ट्रेनिंग्स को पूरा करती थी जिससे मोबिलिटी में भी हेल्प हो। ग्रेजुअली सेकेंड ईयर में जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे लगा कि ये एनफ नहीं है, मुझे सीए करना है वापस से, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम हुआ था ड्यूरिंग माई इंडो कॉलेज, मैं अपने सीए का एंट्रेंस क्लियर किया था, तो मुझे इच्छा थी कि मैं वापस सीए परस्यू करूं, तो मैंने अपनी सीए की स्टडी साथ में शुरू की। एनजीओ की वजह से वॉलेंटियर सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, कॉलेज के बच्चे आके पढ़ाते थे और मैं रिकॉर्डिंग सुन के अपने वॉलेंटियर्स के सपोर्ट से और अपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग की हेल्प से मैं अपना बीकॉम और सीए इंटर पास कर पाई। तो कॉलेज के टाइम में प्रॉब्लम्स आई, जैसे मैं सिटिंग क्लासेस लेती थी, हमारी एक टीचर उतनी सेंसिटाइज नहीं थी, उन्होंने कहा क्या ही फ़र्क पड़ता है, ब्लाइंड हो रिकॉर्डिंग हम अलाउ नहीं करते, क्लास में लेक्चर्स रिकॉर्ड करना हम अलाउ नहीं कर सकते। दो काफ़ी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, पर ये एक टीचर थी, उन्होंने कहा नहीं आप एग्ज़ाम भी हम ऐसे नहीं राइटर नहीं दे पाएंगे, और वैसे आपका मेन ओपन से तो आपको कॉलेज के एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम मैटर नहीं करते। थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता था, सबसे ज़्यादा इशू आता था क्योंकि मेरे को थोड़ी सी मोबिलिटी का इशू भी था, बिकॉज ऑफ वो जो मेरी मोबिलाइजेशन चली गई थी, पैरालिटिक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, तो जब मैं रोड पे चलती थी तो काफी लोगों को लगता था कुछ ड्रग्स ले रखे हैं। तो दीर्घ काम पूछने कि आपने कुछ नशा वशा कर रखा है क्या, तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन
0: की बात बता रहे हैं। कहाँ पे ऐसा लगता था?
1: जैसे मैं सड़क पे चलती थी क्योंकि वो
0: अच्छा
1: नॉर्मल नहीं थी, तो कई लोग
0: अच्छा।
1: आके रोक के पूछते थे मैडम आपने ड्रग्स ले रखे हैं, और इसी चक्कर में कई लोग को लगता था हाँ यंग लड़की है नशे में है, तो सॉर्ट ऑफ इट यूज़ को नेगेटिव। पर कभी कभी तो लगता था कुछ नहीं करना, पर मेरी पेरेंट्स और शालिनी का नाम मैम जो डायरेक्टर थी वो हमेशा कहती थी लोगों से कब तक डरोगे, बाहर तो निकलना है जिंदगी तो जीनी है। उसके बाद उन्होंने मेरा पहला प्लेसमेंट नैप सेंटर के थ्रू हुआ एक लॉ फर्म में रियल जॉब, कि कब तक सेंटर में रहोगे बाहर निकलो लोगों के बीच निकलोगे तो समझ आएगा जिंदगी कैसी जीनी है, आगे सेल्फ भी तो एम्प्लॉयमेंट होना है। वहाँ पे मैंने लॉ फर्म में एज ए लीगल रिसर्चर की जॉब पार्ट टाइम ज्वाइन की। अब पहले अपनी सीए की पढ़ाई करती थी। सीए एंट्रेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें सीए के साथ ट्रेनिंग करनी होती है, फिजिकल ट्रेनिंग किसी सीए के अंडर आर्टिकल शिप। मोस्ट ऑफ दी सीएस ने मना कर दिया कि एक ब्लाइंड पर्सन आर्टिकल शिप कैसे करेगा, हम नहीं दे सकते। समझा के बहुत चैलेंजेस आए इसमें, बट फाइनली एक सीए फॉर्म में मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन की आर्टिकल शिप। बाकी सारे आर्टिकल्स की तरह ट्रेवल करती थी और कोशिश करती थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें नंबर्स हार्ड कॉपी में होते हैं, फिगर्स को वैलिडेट करना होता है। तो मैं किसी वॉलंटियर के सपोर्ट से या अपने कोलीग के सपोर्ट से उसको करती थी वो काम। पर एक दिन एक पार्टनर को पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो उन्होंने कहा आर्टिकल शिफ्ट नहीं कर सकते आप, ऐसे हम क्लाइंट पे तो नहीं भेजेंगे आपको। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा रहते, पर ठीक है। इसी तरह जैसे कुछ लोग मिलते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, वैसे मल्टीपल लोग मिलते हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरह मुझे बहुत सारे लोग मिले जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, इनकरेज किया कि नहीं आपको करना है आगे तो खुद ही पढ़ना है। मेरी सीए इंटर्नशिप में हमारे एक सर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, रीना आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है, लोगों को मेंटल डिसेबिलिटी होती है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि किसी में कोई कमी हो के भी कोई कुछ कर पा रहा है, आपकी जगह खुद ही बनानी है। बस वो चीज़ पकड़ के आगे बढ़ना शुरू किया। फिर ग्रेजुअली सीए की फॉर्म्स में इंटर्नशिप के बाद मेरे को जॉब का सोचना स्टार्ट किया। इन बिटवीन बहुत सारे मैथ के प्रोजेक्ट्स में मैं जुड़ी रही, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैम के साथ हमारे एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें ऑल ओवर इंडिया में 100 आईटी लैब सेट करनी थी। उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ट्रेवल किया बहुत सारे स्कूलों में अक्रॉस इंडिया, सब में ट्रेनर्स जो लोग ट्रेनिंग देनी थी बच्चों को उनको ट्रेन किया हमने, उनको अवेयरनेस सेशन लिया। इस तरह की एक्टिविटीज में मैं जुड़ी रही, और ग्रेजुअली मैंने अप्लाई किया अर्नेस्ट यंग एक सीए फर्म में, मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में मानी जाती कंसल्टेंसी के लिए टास्क के लिए। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया 2012 में टैक्स की सबसे बड़ी कंपनी MNC जहाँ पे मैं आज भी जॉब करती हूँ। मैंने को अपॉर्चुनिटी मिली टू ज्वाइन एज अ ट्रेनी 2012 दिसंबर में, क्योंकि वो भी शोर नहीं थे कि मैं काम कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, और स्क्रीन रीडर्स का अवेयरनेस नहीं था। मैं फर्स्ट ब्लाइंड लड़की थी EY में जॉब के लिए, जिन्होंने फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन जो हायर किया गया था। तो 9 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद काम देखते हुए उन्होंने मुझे परमानेंट रोल पे ले लिया, पर इशू था क्योंकि उनको एक्सेसिबिलिटी का अवेयरनेस कम था, तो इनिशियली स्क्रीन रीडर्स को इंस्टॉल करना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर के सॉफ्टवेयर्स अलाउड नहीं होते बड़ी बड़ी कंपनीज में। ग्रेजुअली अंडरस्टैंड किया, मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी कोलीग्स ने, सीनियर्स ने, उस सपोर्ट से उन्होंने एक जॉब्स का लाइसेंस लिया और आज की डेट में हमारी इंडिया कंपनी में, ईवा इंडिया में, ऑलमोस्ट 5 to 6 प्लांट पीपल काम कर रहे हैं एंड हायरिंग मोर।
0: अच्छा, तो कुछ चीजें हैं रीना जी जो छूट रही हैं, जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को पता चले। एक तो मुझे बताइए कि बेसिकली आप दिल्ली में ही रहते थे शुरू से ही, बाय बर्थ?
1: मैं शुरू से दिल्ली में नहीं रहती थी बाय बर्थ, मेरा होम टाउन हिमाचल है। मेरे फादर एक प्राइवेट होटल इंडस्ट्री में जॉब करते थे, उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ शिमला से, तो मैं दिल्ली आई जब मैं 10th क्लास में थी। तो पर जब मुझे प्रॉब्लम हो उस टाइम में दिल्ली में ही थी। हाँ जी पापा की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई, ओबेरॉय क्लार्क करके एक होटल होता है सिविल लाइंस के पास, उसमें वो मैनेजर प्रोफाइल पे थे, तो हम लोग भी दिल्ली रिलोकेट हो गए थे शिमला से।
0: अच्छा, तो पापा वगैरह सब दिल्ली में रहते थे, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली में मुझसे बड़ी सिस्टर है, एक ब्रदर है, मेरे पेरेंट्स हैं।
0: अच्छा, और फैमिली में किसी और को प्रॉब्लम इस तरह की रही?
1: नहीं नहीं।
0: अच्छा, नहीं। कि जो दूरदर्शन पे जो आप वीडियो देख रहे थे वो किस लड़की का था?
1: कोई अर्चना नाम सुना था मैंने उस टाइम, दो मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता, क्योंकि वो भी शायद मैं बार के पुरम के बाय बर्थ प्लान बच्चा था कोई, जिसने अपने एजुकेशन नए पार्कीपुरम से की थी, तो उसने अपनी वीडियो में बताया कि किस तरह से ट्रेनिंग्स और एजुकेशन के साथ आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, कैसे जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल लाइवलीहुड जी सकते हैं।
0: तो सीए का जो आपने एग्जाम दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था आपका?
1: नहीं, एंट्रेंस भी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, उसके बाद सी इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं हमारे, तो मेरा पहला ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, सेकेंड ग्रुप इंटर का सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, फिर सी फाइनल के दो ग्रुप्स होते हैं अगेन, जिसमें एक ग्रुप तो मेरा निकल गया था सेकेंड अटेम्प्ट में, पर उसके बाद जॉब लग गई ईवाई में, तो काफ़ी सालों तक मैं दे नहीं पाई थी। एक दो अटेम्प्ट बीच में ट्राई किया, फिर क्योंकि जॉब के साथ वॉलंटियर सपोर्ट कम था, टाइम कम था, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगा।
0: ये सारे एग्जाम आपने सीए एंट्रेंस से लेकर के बाद में तक जितने भी थे, वो सब स्क्राइब के थ्रू दिए या आपने इंडिपेंडेंटली दिए?
1: नहीं नहीं, स्क्राइब के थ्रू। रादर सीए एग्जाम देते हुए भी इतना इजी नहीं था, जब मैं इंटर का एग्जाम दे रही थी, बल्कि हमारे साथ मेरे नोन में एक और लड़का था मिलिंद करके, जो वो भी सीए एग्जाम दे रहा था, और उस टाइम सीए के लोग भी इतने सेंसिटाइज नहीं है मुझे लगता है, आज की डेट में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उस लड़के को उन्होंने ये बोल दिया था, उसके स्काइप के घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो उसको स्काइप चेंज करना था, उन्होंने कहा आप स्काइप चेंज करोगे आप अलाउड नहीं एग्जाम देना, आपका स्काइप इज एज गुड कि आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप रेटर चेंज नहीं कर सकते। एंड उस पर्सन ने सीए ड्रॉप करके लॉक किया है, और सेम इशू मेरे साथ आया था कि मेरे को कैब उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया था, रादर मैंने जब सीए अथॉरिटी से मिली कि ऐसा ऐसा स्कूल में ये इशू हुआ, उन्होंने कहा आप लोग तो राइटर के थ्रू पास होने के तरीके होते हैं, तो मेरी एक वॉलेंटियर ने केस किया था ये इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, जिस केस को मैं जीती थी, और उसके अकॉर्डिंग रूल बने थे कि स्काइप को आप सीए इंस्टीट्यूट राइटर फंड भी देगा और एक डिपॉजिटरी बनाएगा, जिसमें जो बच्चा है स्टूडेंट है सीए का, ब्लाइंड बच्चे को चॉइस मिलेगी, वो के थ्रू भी स्काइप अरेंज कर सकता है, पर्सनल कर सकता है, और स्काइप चेंज भी कर सकते हैं इसको गाइडलाइंस।
0: ओके, तो रीना जी, जब आपके साथ 1999 में जो हादसा हुआ, उससे पहले भी आपने सीए बनने का ही सोचा था या तब तक कुछ सोचा ही नहीं था?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तब मैंने सीए स्टार्ट करने की सोची थी, एक बार एंट्रेंस दिया था।
0: जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, तभी आप सीए ही बनना चाहते थे?
1: हाँ जी, हाँ जी, तभी मैं सीए एस्पिरेंट कर रहे थे।
0: ओके, तो सीए की जो स्टडीज हैं, उसमें मतलब आपको उनको पढ़ने में, उसकी तैयारी करने में, मतलब ब्लाइंड पर्सन होते हुए आपको क्या क्या चैलेंजेस रहे उसमें?
1: बेसिकली क्या होता है, स्टडीज में चैलेंज तो आता है बिकॉज हम नंबर्स में डील करते हैं। संदीप जी, बेसिकली हम सीए में बहुत सारे सब्जेक्ट में नंबर्स हैं, अकाउंट्स या मैथमेटिक्स रिलेटेड, तो उसको ईटेक से पढ़ना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है अपने आप में। क्योंकि जब हम ईटेक से पढ़ते हैं उसको जॉब्स के साथ, तो वो पहले ही पूरे कॉलम को पढ़ेगा बजाय हॉरिजॉन्टल पढ़ने के रोज वाइज, और हमारी रिक्वायरमेंट होती है रोज वाइज पढ़ने की, तो ये चैलेंज आता है। और वॉलेंटियर्स के लिए भी नंबर वाइज समझाना, क्योंकि कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग है क्या कैसे जाना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। पर आपकी को ये चैलेंज से एक्सेप्ट करते हुए उसको लेके चलना होता है। कुछ वॉलेंटियर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे को हाथ पे एज अ ड्राइंग बना के अपनी उंगली से किस तरह से यही चल रहा है, ऐसे प्रेजेंटेशन होनी है आपके, आपको अपने राइटर को इस तरह समझाना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में बनाएं, वो मेरे लिए थोड़ा इजी हुआ।
0: अच्छा, तो रीना जी बताइए, ये सीए में मतलब जो लोग सीए का एग्जाम देना चाहते हैं या जो सीए बनना चाहते हैं, तो कौन कौन से पेपर्स इसमें होते हैं, कौन कौन से बुक्स इसको इनमें पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए।
1: जरूर, बेसिकली सीए में आपकी अगर एंट्रेंस लेवल पे बात करते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और स्टैट्स होता है, बेसिक लॉ होता है, बेसिक बहुत बेसिक, और अब करंटली उन्होंने फिर से सिलेबस चेंज किया है, जिसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बेसिक लेवल पे क्या लिया है। जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो ये दो एग्ज़ाम मेंटेड होते, और सबसे बड़ी बात 50% स्कोर करना मस्ट होता है। वैसे उसके बाद आपको इंटर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें मेरे टाइम में 8 पेपर्स थे, जिसमें अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, बिजनेस स्टडीज, ये सब एग्ज़ाम होते थे। एंट्रेंस में एक इकोनॉमिक्स का भी एग्ज़ाम होता है इसमें एंट्रेंस लेवल पे, और ये सब एग्ज़ाम के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट रहता है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, ये आपको एंट्रेंस लेवल पे होता है। इसमें भी आपको पर पेपर आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ता है, पर ओवरऑल आपको 50% स्कोर करना पड़ता है। अगर आपकी किसी पेपर में 40 से कम आ गए और या एग्रीगेट में 50 से कम आ गए, तो आपको पूरा ग्रुप वापस रिपीट करना पड़ता है, सारे के सारे चारों एग्जाम एक्सेप्ट। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 60 से ऊपर आए, वो वाला एग्जाम आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ता। इसी तरह फिर इसी तरह फाइनल में फिर दो ग्रुप्स होते हैं। अब जो नए सिलेबस आए उसमें इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स कम कर दिए हैं, जैसे आप एक ओपन बुक एग्ज़ाम हो गया, जिसमें एक सब्जेक्ट रादर दो सब्जेक्ट्स हटा दिए इन्होंने, और उसकी जगह एक ओपन बुक एग्ज़ाम कर दिया। और अदरवाइज उसमें भी आपका कंप्यूटर टेस्टिंग के एग्ज़ाम होता है, अकाउंट्स है, ये ऑडिट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मस्ट एग्ज़ाम है।
0: रीना जी बताइए कि ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स आप बता रहे हैं, लगभग ऐसा लग रहा है सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, है ना? तो आपने प्रीलिम्स में कौन सा स्क्राइब लिया था?
1: हमारी कंडीशन जो प्रिस्क्राइब है, आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट ले सकते हो। अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो इंटर लेवल हो चाहे फाइनल लेवल हो। सी ए, सी एस, सी डब्ल्यू, इनमें से किसी में एनरोल नहीं होना चाहिए।
0: तो ऐसे में है ना, ऐसे में ये पेपर सॉल्व करवाते समय आपको मुश्किल नहीं आई? मतलब उसको तो कुछ भी समझ नहीं थी सीए की, या इन जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में भी जरा भी अंदाजा नहीं था, तो पूरा पेपर आप ही को, खैर वैसे भी सॉल्व करवाना होता है, ये भी आप ही को सॉल्व करवाना था। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्क्राइब के साथ बैलेंस बनाने में कैसे मतलब आप तो सफल हुए?
1: बेसिकली वही, इस चीज के लिए मैं क्रेडिट देती हूँ अपने वॉलेंटियर्स को, जिन्होंने, जैसे मैं बता रही थी कि मेरे हाथ पकड़ के समझाते थे कि आपको अपने राइटर को ये बताना है कि इस फॉर्मेट में टेबल बनेगा, इतने कॉलम्स, इस तरह से लिखना है उसको, कौन सी चीज कौन सी साइड में आएगी, लेफ्ट में, राइट में, इस तरह से बताए। वो आपको अपने माइंड में पिक्चर, इमेजेस बनानी पड़ेगी, जैसा आपकी वॉलेंटियर्स बताती जाए, ताकि आप वही चीज रिट्रेट कर सको अपने स्काइप को।
0: आपको सीए बनाने में मतलब आपके वॉलेंटियर्स का भी बहुत बड़ा रोल है।
1: यस, उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने कोई टेक्निकल कोचिंग्स नहीं ली, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं की, क्योंकि सीए की कोचिंग्स दो, एक तो दूर दूर होती है, ट्रेवल करना मुश्किल होता है, और ग्रुप में, एक ग्रुप में क्लासरूम में कम से कम 80 to 100 स्टूडेंट्स होते हैं, और आपका टीचर आपको ये व्हाइट बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे बता रहा होता है, और एक बच्चे को बताने के लिए वो स्पेसिफिकली सब कुछ वर्बल नहीं बोलेगा, तो इसलिए मेरे को, मैंने पूरी स्टडीज अपने वॉलेंटियर्स के थ्रू ही की है।
0: आपके वॉलेंटियर्स कौन रहे हैं?
1: मेरे वॉलेंटियर्स कॉलेज स्टूडेंट्स से, आईआईटी के स्टूडेंट्स भी रहे हैं, और मेरे एग्जाम इंटर लेवल पे तो सारे एग्जाम 12th के बच्चों ने दिया।
0: अच्छा, अब ये तो रही प्रीलिम्स की बात, फिर मेंस में कौन था आपका स्क्राइब या किस लेवल का
1: सेम
0: था?
1: सेम
0: सेम।
1: बीकॉम ऑनर्स अंडर ग्रेजुएट
0: ओके
1: रिक्वायरमेंट ही है, अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए।
0: ओके, ये रिक्वायरमेंट है तो ये अच्छा। तब तक खैर आपने जब दिए तब तो वो तो 2013 वाली गाइडलाइंस भी नहीं आई थी।
1: नहीं, जब अभी के ये सीए का अपना पी, क्योंकि सीए के अपनी गाइडलाइंस पे ही चलता है, सीए के ऐसी कोई डिफरेंट गाइडलाइंस कोई और फॉलो नहीं करती, सीए के अपने नॉर्म से। मेरे केस के बाद सिर्फ ये चेंज हुआ था कि हाँ, राइटर को राइटर फंड मिलेगा, और राइटर आप चेंज कर सकते हो। आज अगर मैं एक राइटर ले जा रही हूँ, नेक्स्ट पेपर में मैं कोई और को ले जा सकती हूँ। पहले जब मैंने अपने इंटर लेवल के एग्जाम दिए थे तो ये अलाउड नहीं था।
0: और मेंस में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन से सब्जेक्ट में आई आपको? क्यों?
1: अकाउंट्स बेसिकली, एक्चुअली एक तो पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, नंबर आपको, एडिशंस बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लगता है बहुत शॉर्ट हो गया है, दो हमें 1.5 आवर एक्स्ट्रा मिलता है, और उसके अलावा भी लगता है टाइम बहुत शॉर्ट है, और उसमें राइटर की स्पीड, राइटर की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप बता रही हो पर राइटर क्या समझ पा रहे हैं आपको नहीं मालूम। थ्योरेटिकल एग्जाम में तो जो आपने बोल दिया वो उसने लिख दिया एज इट इज, पर यहाँ पे फॉर्मेट्स का है, आपके पर्टिकुलर फॉर्मेट्स फॉलो होने चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, अगर आपने वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं दिया जो प्रिस्क्राइब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
0: अच्छा, तो अकाउंट्स के लिए स्पेशल आपने क्या किया उसकी प्रिपरेशन करने के लिए?
1: बस वही अंडरस्टैंडिंग इमेजेस का, मेंटल माइंड में इमेजेस बना बना के, ओके इस कॉन्सेप्ट का ये प्रेजेंटेशन है, इसमें इस तरह का लेआउट बनेगा, वही चीजें जो वॉलेंटियर्स से पूछती थी मैं कि इसमें कितने कॉलम्स है, क्या हेडिंग्स है, किस तरह से लिखा गया है, कौन सा आउटर कॉलम है, कौन सा इनर कॉलम है, वो वैसे ही आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको वॉलेंटियर्स उतने एड्रेस कर पाएगा, तो उस तरह से समझ के हो गया।
0: कुल मिलाकर के बहुत मेहनत तब तो खैर करनी थी, अभी भी मेहनत कोई कम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है।
1: जरूरत, ये तो हर फील्ड के लिए मुझे लगता है सबके लिए जरूरी
0: बीकॉम
1: है।
0: बैकग्राउंड होना कितना जरूरी है सीए के लिए, कॉमर्स बैकग्राउंड होना कितना जरूरी
1: नहीं,
0: है?
1: ऐसा कुछ बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओ तो आप कैच कर लोगे। जिसको कॉमर्स बैकग्राउंड होगा उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जब 11th 12th में पढ़ते हैं या बीकॉम में पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट हेल्प करते हैं आपको। पर ऐसा नहीं है कि अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
0: तो भाई रीना जी सीए बन गए और सारे एग्जाम क्लियर भी हो गए और ईवाई में जॉब भी मिल गई। जॉब
1: हाँ जी,
0: मिलने के बाद क्या क्या मुश्किलें रही आपको?
1: देखो जॉब मिलने के बाद शुरू में तो ऑफिस में ये एक्सेप्टेंस कराना कि हाँ ठीक है, आपको विजन प्रॉब्लम है तो आप भी और लोगों की तरह कर सकते हैं, वो एक चैलेंज रहता है। उसके बाद आज के डेट में जो चैलेंज आते हैं कि काफ़ी सारी बड़ी एमएनसी है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको विजन प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आती है चीज़ें आपको वो उस हिसाब से नहीं आती जो एक्सेसिबल हो। चीज़ें नॉन एक्सेसिबल होती है वो आपकी टीम पे डिपेंड करता है। मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कोलीग्स वगैरह बहुत सपोर्ट करते हैं, तो जहाँ पे उनको लगता है मेरा जॉब सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो मेरे को समझाते हैं कि ऐसा है। दो आज की डेट में 12 साल हो गए मुझे ईवाई के साथ काम करते हुए, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब पे काम कर रही हूँ, तो वो फर्क पड़ता है। आपको हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है विजावीज अपने अदर कोलिग्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रो करना है, अपने को प्रूव करना है, आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा।
0: अच्छा रेना जी, अभी आपका काम क्या रहता है ईवाई में?
1: मेरा काम है बेसिकली टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंसी में मैं काम करती हूँ, जिसमें हमारा है पीपल एडवाइजरी। इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज इंडिया आते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, उनकी पूरी टैक्स का कंप्लाइंसेस इंडिया लॉस के अकॉर्डिंग देखना, स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं, उनको इंडिया टैक्स के ओरिएंटेशन देना कॉल होती है, इंडिया टैक्स ब्रीफिंग कॉल। उसके अलावा क्या टैक्स, कितना टैक्स डिडक्ट होना है, प्रोविडेंट फंड कंप्लायंसेस क्या है, और उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में सपोर्ट करना, ये सारा मेरा काम का पार्ट है। फिर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस इशू किया आसानी को, तो उसके लिए उस रिस्पॉन्स बनाना और उसको फाइल करना इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, वो पार्ट ऑफ माय वर्क।
0: ओके तो रीना जी, चूंकि बात अब आईटी की चल रही है यानी इनकम टैक्स की चल रही है और आप सीए हैं और इतनी अच्छी जॉब पर हैं, इतनी अच्छी कंपनी में, तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे श्रोताओं को मिल जाए। ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ये आसान भाषा में समझाइए जरा।
1: बेसिकली अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, दो पहले ओल्ड टैक्स रेजीम में जैसे हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि हम LIC में कंट्रीब्यूट कर दिया, हम प्रोविडेंट फंड में हमारी कंपनी हमारे कंट्रीब्यूशन लेती है, उस सब का हमें बेनिफिट मिलता है टैक्स के अगेंस्ट। या आपने आज कोई घर खरीदा उस पर इंटरेस्ट पे करें, हाउसिंग लोन पे करें, तो उस सब का बेनिफिट मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सब बेनिफिट्स घटा के जो आपकी इनकम आती है उस पे आपका टैक्स लगता था, गवर्नमेंट ने कहा उसके अब उस सबको ऑथेंटिकेट करना टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल एक चैलेंज बन गया, क्योंकि कुछ लोग फेक क्लेम भी ले लेते हैं। तो टैक्स अथॉरिटीज ने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, आप पुराने रिजीम को फॉलो करो जिसमें ATU मिलता है, जैसे हमें डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है 1,25,000 या 75,000 का, हमें LIC प्रोविडेंट फंड वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल फंड में, 1,50,000 का कॉमन कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम से कम होता है, उसके बाद हमें टैक्स लगता है। हमें एचआरए कंपनी हमें एचआरए अलाउंस देती है, अगर हम रेंट पे करें तो हम एचआरए एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेते हैं। हाउसिंग लोन पे हमें बेनिफिट मिलता है ओल्ड रिजीम में। अब न्यू रिजीम में उन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया कि जितने आपको इनकम मिल रही है बिना किसी बेनिफिट लिए आप पूरे का पूरे टैक्स को ऑफ कर दो, पर आपके टैक्स रेट हो जाएंगे कम। जैसे ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख की इनकम तक आपका 10% है, 10 लाख 5 से 10 लाख की इनकम तक 20% है, 10 लाख के 30% का टैक्स लगता है। अब न्यू रिजीम में उन्होंने क्या किया कि अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसमें भी अगर सारी इनकम मिला के आपकी 12 लाख से कम बैठ रही है तो जो आपका टैक्स बन रहा है 12 लाख तक वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको 0 टैक्स देना है। तो ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं
0: न्यू टैक्स रिजीम में। ये तो ठीक है, लगभग सबको मालूम है 12 लाख तक है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, इस तरह के स्लैब है। लेकिन इसमें भी हम क्या क्या डिडक्शन करवा सकते हैं, ये बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है।
1: बेसिकली इसमें ना बहुत लिमिटेड बेनिफिट्स अवेलेबल है। अगर आपको लिव इन कैशमेंट मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है, जो आपके बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, या आप जॉब छोड़ते हैं, वो सिर्फ आपको डिडक्शन वन टाइम वो मिलता है, अदरवाइज आपको एचआरए का नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिकल प्रीमियम दे रहे हैं, ये सब कुछ भी आपको अलाउड नहीं है। ईटीओ का डिसेबिलिटी बेनिफिट भी नहीं अलाउड है, तो सिर्फ वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट की सैलरी में से कम होता है। और इसमें ये बेनिफिट है कि आपको एक सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो सबको मिलता है, वो न्यू रिजीम में 75,000 भाई, ओल्ड रिजीम में 50,000 का, तो 25,000 का वहाँ बेनिफिट आ जाता है।
0: और इंश्योरेंस में,
1: इंश्योरेंस वगैरह को कोई डिडक्शन नहीं मिलता न्यू रिजीम।
0: ओके, ठीक है। तो रीना जी, कभी ईवाई को छोड़ के कहीं और स्विच करने का नहीं सोचा आपने?
1: अभी तो नहीं, क्योंकि मेरे को सोशल वर्क का बहुत शौक है। सबसे अच्छी बात कि हमारी कंपनी एक एनजीओ एक्टिविटीज रन करती है जिसमें एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी चॉइस से पार्टिसिपेट कर सके, तो मैं उसका भी पार्ट इन्वॉल्व हूँ। उसमें रिपल्स इंडिया और रिपल इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम वीकेंड्स पे अपना टाइम निकाल के स्कूल जाते हैं, बच्चों को गाइड करने, अंडर प्रिविलेज को करियर काउंसलिंग देने, या प्लांटेशन ड्राइव, तो मैं इस तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हूँ। प्लस मुझे लगता है एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है, और जो मेरी नीड्स है

0: ना बहुत आसान नहीं होता। आजकल इतनी सी ए फॉर्म्स खुली है, कंपटीशन बहुत हाई है। खास तौर से जब आपको विजन प्रॉब्लम होता है तो लोग फाइनेंशियल नंबर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते आप पे कि आप कर पाओगे ठीक से उनका काम। तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना बहुत टाइम लेता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको कंटिन्यूटी नहीं रहती कि आपके पास फाइनेंशियल फ्लो बना रहे। और मुझे लगता है फाइनेंशियल फ्लो की डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आपको थोड़ी सी लिमिटेशन हो।
1: आज आपकी ग्रोथ को देख के फैमिली खुश है?
0: बहुत ज़्यादा उन्हीं के सपोर्ट और उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। मेरे पेरेंट्स शायद मैं कभी ये करेज नहीं कर पाती घर से निकलने का, अगर मेरे पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते।
1: तो रिया जी, जो आपको प्रॉब्लम हुई थी उस समय 1999 में, अभी आईज इफेक्टेड हैं आपकी, और अभी और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं
0: हाँ
1: आपको, या
0: जी,
1: बाकी सब ठीक है?
0: देखिए मेरे स्पीच में फिर भी थोड़ा सा इशू है नॉर्मल स्पीच से विज़विज़, और थोड़ा सा मुझे मोमेंट का इशू है। नॉर्मल थोड़ा सा मोमेंट वॉक में चला रहे है, जैसे स्मूथ नॉर्मल इंसान चलता है, चाहे विजन इम्पेयरमेंट हो तभी मुझे थोड़ा सा वॉक का इशू रहता है, बैलेंस का इशू।
1: यानी कुल मिला के पूरी तरह से मतलब वो ठीक नहीं हुए आप उसमें?
0: ये कह सकते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट 80% बेटर हूँ, क्योंकि उस लेवल पे मैं जहाँ बिल्कुल खुद के सहारे से बैठ नहीं सकती थी, आज की
1: चलिए,
0: डेट में मैं खुद के सहारे से ऑफिस आती हूँ जाती हूँ, अपने आप अपना काम कर रही हूँ, इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ, अपनी कुकिंग वगैरह सब खुद करती हूँ। तो उस लेवल से आई फील काफ़ी बेटर हूँ।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुल मिला के अब आप इन फ्यूचर मतलब टोटली सोशल वर्क ही करना चाह रहे हैं?
0: ये हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिला है सोसाइटी से, मेरे वॉलेंटियर से, तो मेरा इंक्लिनेशन है शुरू से कि मैं वापस कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और सोसाइटी को वापस कुछ दे पाऊँ।
1: बहुत अच्छी बात। अच्छा, लोग आपसे गाइडेंस लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं?
0: बिल्कुल,
1: कैसे?
0: मेरे को वैसे भी काफ़ी लोग कॉल करते हैं, तो आप मैं अपना नंबर बता सकती हूँ, वरना मेरी ईमेल आईडी reenabhatia2@gmail.com, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं।
1: जिसमें आप कंफर्टेबल हैं तो आपकी ईमेल आईडी हम बता देते हैं, reenabhatia28। हाँ,
0: reenabhatia2@gmail.com।
1: अच्छा, reenabhatia2। ओके,
0: हाँ जी
1: REENABHATIA है ना?
0: हाँ जी
1: ओके, REENABHATIA2@gmail.com।
0: आगे आप मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं,
1: बताइए,
0: 9971931354 31354।
1: डबल 9 7 1 9 3 1 3 5 4। तो श्रोताओं, अगर आप रीना जी से CA के बारे में या इनकम टैक्स के बारे में कोई भी आप अगर गाइडेंस लेना चाहें तो कॉल करने का कोई समय?
0: ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कभी ये होता है कि मैं ऑफिस में हूँ तो मैं कॉल उठा के बोल देती हूँ कि इस समय बात नहीं हो पाएगी, मैं अब वापस उनको कांटेक्ट कर लेती हूँ।
1: ओके, तो श्रोताओं, आप ईमेल पे भी बने जा तक तो आप ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए रीना जी को, reenabhatia2@gmail.com। और अगर आप कॉल भी करेंगे तो अगर रीना जी फ्री हुई तो आपको जवाब देंगी, अदरवाइज नहीं देंगी। नंबर एक बार रिपीट कर देते हैं रीना जी, 9971931354।
0: हाँ
1: ओके, तो अब रीना जी, जॉब के अलावा अभी इन दिनों में क्या क्या करती हैं आप? क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? क्या क्या पसंद है आपको? कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हैं आप?
0: मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं बीच में ट्रैवल करती हूँ लोकल नियर बाय प्लेसेस में फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा मैं एक हमारे क्रिकेट फॉर ब्लाइंड वीमेन द मर्तनम ट्रस्ट के साथ मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, ब्लाइंड गर्ल्स को क्रिकेट

0: ऑन द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, मोटिवेशन सपोर्ट खुद खेलती नहीं हूँ पर उनके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ। इसके अलावा नैप की कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे अभी भुवनेश्वर में उड़ीसा में फेब्रवरी में गवर्नमेंट का एक जॉब फेयर आया था, उसके लिए मैं डिस्कशन के लिए गई थी। तो इस तरह के कुछ कुछ सोशल वर्क में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। पर्सनल में मुझे ट्रैवल और कुकिंग का शौक है।
1: सब जगह ट्रैवलिंग अकेले करते हैं रीना जी?
0: मोस्टली बाकी कुछ जगह फ्रेंड्स के साथ, जैसे मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह का शौक है तो फ्रेंड्स के साथ जाके रिवर राफ्टिंग, उसमें दो वो लोग अलाउ नहीं करते पर ठीक है फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उनके साथ पैराग्लाइडिंग वगैरह इन सब एक्टिविटीज़ में मुझे शौक है, तो इसमें इन्वॉल्व रहती हूँ।
1: रीना जी, आपकी तरह जो लोग किसी परेशानी में हैं, जिनको लगता है कि बस अब लाइफ खत्म हो गई है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगी आप?
0: मैं कहूंगी लाइफ कभी खत्म नहीं होती, हर अंधेरी के बाद एक रोशनी चलती है, हमें सिर्फ हिम्मत हौसला दे के आगे बढ़ना और अपनी हिम्मत बना के उन चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और कारवां अपने आप बन जाएगा।
1: क्या बात है, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, कारवा अपने आप बन जाएगा। तो रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, और आपके लाइफ एक्सपीरियंस से इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स को बताने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, आप जो भी करना चाहती हैं वो सब कर पाएं, सक्सेस मिले और ज़्यादा आपको लाइफ में, हम यही आपके लिए विशेष देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब श्रोताओं।
1: श्रोताओं, ये सुना आपने प्रोग्राम मन की आंखों से रेडियो मधुबन पर। आप सब रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही हम नई नई शख्सियतों से आप सबको रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि अगर आप कहीं हिम्मत हार रहे हैं, आप कहीं डगमगा रहे हैं, आप अगर कहीं चलना शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी रास्ता मिल जाए।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत
1: ओम
0: बहुत स्वागत है
1: शांति, ओम शांति। आप सब
0: बातें
1: नमस्ते।
0: मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष सपना सुवर्णा है, और आप सोशल वर्कर हैं, महाराष्ट्र में काफी समय से अपनी सेवाएं लोगों के लिए दे रहे हैं। तो आज वैसे सेवा का जो कार्य कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे आपसे। तो सपना सुवर्णा जी का आज के इस प्रोग्राम में बातें मुलाकातें कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है इन जानकारियों के साथ। और इसके साथ में हमारे पीयूष जी भी उपस्थित हैं, और आप शिक्षाविद हैं, काफी
2: नमस्कार।
0: समय से एजुकेशन में अपनी सेवा देते हैं, और साथ ही साथ संगीत में भी आप काफी रुचि रखते हैं, तो संगीत प्रेमी भी आप हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अध्यात्म और दुनिया के सभी गीत गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और काफी समय से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। तो पीयूष जी, सपना जी के लिए उनके स्वागत में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप जरूर सुनाइए। स्वागत
2: जी रमेश भाई
0: जी,
2: जो
0: नमस्कार।

0: मिलन।
1: थैंक यू, ओम शांति। थैंक
0: वाह, बहुत बढ़िया पीयूष जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने
1: यू
0: सुनाया,
1: सो मच।
0: धन्यवाद।
1: थैंक
0: नीता जी ने याद भेजा है आपको, और वेरी नाइस सॉन्ग पीयूष जी करके
1: यू,
0: लिखे
1: थैंक यू
0: भेजा
1: सो
0: है,
1: मच।
0: और लता बहन ने भी याद भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद लता बहन, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सपना जी को जोड़ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सपना सुवर्णा जी हमारे साथ हैं और उनसे बातें होगी। तो सपना जी कैसे हैं आप, और मैं चाहूंगा कि वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए।
2: ओम शांति भाई, और
0: ओम
2: सर्वप्रथम
0: शांति।
2: लता दीदी को भी ओम शांति। लता दीदी, लता दीदी से जुड़े हुए काफी साल हो गए मुझे, 27 साल तो लगभग।

0: होता इससे भी ज्यादा हो गए। माउंट आबू भी मेरा बहुत बार आना होता है, अभी भी आने का प्लान है। तो इस माध्यम से समाज की सेवा करना पहले प्रथम मेरा, मुझे लगता है कि जन्म ही उसी लिए हुआ है। और मैं जहाँ जहाँ सेवा करने का मौका मिलता है, हॉस्पिटल है, बड़े बड़े सर्जरी है, लोगों तक पहुँच के उनके प्रॉब्लम सुन के उनकी गरीबी का ध्यान रखते हुए उनको अच्छे हॉस्पिटल में, बाईपास जैसी सर्जरी हो, बड़ी बड़ी सर्जरी हो, वहाँ वो सुविधा उनके तक कैसे देना, क्योंकि आजकल सब सुविधा मिलती है पर लोगों तक, समाज तक पहुंचती नहीं है
1: बिल्कुल
0: या
1: बिल्कुल
0: इजी मिलती नहीं है। सुविधा होके भी इजी मिलती नहीं है, तो वहां तक पहुंच के सेवा देना ये पहले मेरा सर्वप्रथम काम है। और अनाथ बच्चों की स्कूल एक चला रहे हैं हम लोग, चार पांच लोगों को मिलके हमने ट्रस्टी बनाया और हम एक स्कूल चला रहे हैं। तो आपने पूना में देखा होगा कि जो नींबू मिर्ची बेचते हैं रास्ते पे, आपने काफी लोग देखे होंगे, उनको पढ़ाई का
1: बिल्कुल
0: कोई भी महत्व नहीं था, वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। तो उनको काफी हमने 4-6 महीने समझा के काफी सर्च किया उस पे कि इनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं अपने। तो उनके तक पहुंच के हमने एक-एक करके, बहुत कठिनाई आई पर एक-एक बच्चे ला ला के हमने गवर्नमेंट से एक जगह ली और वहां पर हमने वो स्कूल चालू किया। आज 65 बच्चे हैं हमारे पास, उनको हम
1: अरे वाह
0: पढ़ा
1: क्या
0: रहे
1: बात। जी
0: हैं।
1: जी
0: हाँ, और जैसे,
1: तो ये संस्था आपका एनजीओ है या कैसे आप इसको रन करते हैं?
0: हाँ, हम लोग 5 लोग मिलके घरटा प्रकल्प, जो गवर्नमेंट का ही है घरटा प्रकल्प, उस प्रकल्प
1: हाँ
0: को हम लोग संभाल रहे हैं
1: अच्छा अच्छा
0: जो कॉरपोरेशन के अंडर आ रहा है हमारे।
1: ओके ओके बहुत बढ़िया जी।
0: हाँ, और मैं ये बोल रही थी कि अभी मैंने देखा कि जितना हमें समय मिला काम करने के लिए, बहुत सारा समय था, 2 साल इतनी शांति थी, कुछ काम नहीं था। मैं खुद रियल एस्टेट का काम करती हूँ,
1: हाँ
0: तो उस समय हमने देखा कि आजकल छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक डिप्रेशन, डिप्रेशन ये नाम सुनते ही, मतलब देखा मैंने समाज में कि उनके साथ बातें करना, उनके साथ समय देना, उनको टाइम देना, ये मेरा बड़ा सोशल काम है कि उनके साथ मैंने बहुत टाइम बिताया। मेरा कोविड का समय, मतलब मैं, मेरी फैमिली जब कोविड में थी, हॉस्पिटल में थे, तो हम लोग बाकी लोगों से बात करते थे, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे कि भाई आजकल डिप्रेशन में बहुत होते हैं। और इस पे आपके थ्रू हमें बहुत सारा काम करना है, आने वाले जीवन में जितना समय है मुझे उसके लिए काम करना है।
1: बिल्कुल। तो सपना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप फील्ड में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, काफी डिप्रेशन के पेशेंट्स या लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे में हम सभी को मिलकर काम करना होगा कि कैसे लोगों का डिप्रेशन कम हो और वो अपना लाइवलीहुड यानी अपना जो जीवन है यापन अच्छी तरह से कर सके। पीयूष जी मैं चाहूंगा कि लोगों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, तब तो उनका डिप्रेशन खत्म होगा। तो डिप्रेशन के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षाविद हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो जहां पर एनजीओ मिलके काम करते हैं, सरकार भी चाहती है कि जो गरीबी रेखा में आते हैं या थोड़ा मिडिल क्लास से भी नीचे हो जाते हैं, उनके लिए लाइवलीहुड के साथ साथ उनका मनोबल बहुत कमजोर हो जाता है, उनको लगता है कि हम लोग इतने गरीब पैदा ही क्यों हुए, है ना, तो इस वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। ज्यादा से लोगों को देखा गया कि उसके वजह से भी वो लोग दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं और मेहनत भी करते हैं तो खा पी के फिर बोलते हैं कि बस जिंदगी थोड़ी देर के लिए है तो मौज करें, है ना। तो ऐसे लोग थोड़ा जल्दी भी इंस्टेंट पैसा कमाने के लिए नेगेटिव चीजें भी करना शुरू कर देते हैं या थोड़ा मेहनत करके उसमें खा पी ले ऐसा सोचते हैं, तो उनका लाइफ टाइम जो है ना वो कहीं ना कहीं और भी नीचे आता है पैसे आने के बावजूद भी, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर जो है वो शायद उतना काम नहीं करता। तो आपका क्या कहना है पीयूष जी, बताइए।
2: सर, ये बहुत ही बड़ा इश्यू है जो आपने बताया, और इसके
1: जी
2: लिए
1: जी
2: हमारे एनजीओस को मतलब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लेना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और हमारे जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, चाहे हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके अंदर भी सर, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो पहले एक अध्यापक की जो वैल्यू सिस्टम रहता था टुवर्ड्स स्टूडेंट्स कह लीजिए, या वो सेवा भाव जो रहता था, वो थोड़ा सा मिसिंग लगता है आज की डेट में, क्योंकि उसी में इतना उलझे रहते हैं अपनी जॉब में कि वो कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए उनके पास या तो टाइम नहीं होता या वो करना नहीं चाहते हैं, जो सच्चाई है।
1: बिल्कुल
2: वरना ये हमारे अध्यापक लोग जो सुबह से दोपहर तक अगर स्कूल में रहते हैं, तो दोपहर के बाद अगर शाम तक 2 घंटा भी अगर दे दें अपने आसपास के गांव में जाकर के, अपने क्षेत्र में जाकर के एक एक गांव को अगर पकड़ लें वो, और 2 घंटा रोज अगर वो देना शुरू करें, चाहे 1 घंटा भी देना शुरू करें, वहां के बच्चों के साथ बैठ करके उनको गाइड करना शुरू करें, उन्हें समझाएं कि हाँ पढ़ाई की क्या वैल्यू है, पढ़ लिख करके आप क्या बन सकते हो, तो ये सारे चेंजेस आ सकते हैं, वैल्यू सिस्टम बन सकता है, फिर वो बच्चे भी पढ़ाई की तरफ आएंगे। क्योंकि सरकार तो बहुत कुछ कर रही है सर, लेकिन जब तक उनके माँ बाप को एजुकेट नहीं किया जाएगा, उनको नहीं समझाया जाएगा या उन्हें अवेयर नहीं किया जाएगा कि ये सब चीजें क्या होती है, पढ़ाई के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो तब तक उनको समझ में नहीं आएगा और वो अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाएंगे। तो वो तो एक रीत रिवाज एक चला आ रहा है, एक प्लम्बर है तो वो प्लम्बर ही रहता है जिंदगी भर, और उसके बच्चे भी प्लम्बर वाला काम शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो है इलेक्ट्रीशियन का काम सीख करके इलेक्ट्रीशियन ही रहता है जिंदगी भर, तो कई पीढ़ियां उनकी बीत जाती है। तो उसके लिए हम लोग पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई भी सोशल सर्विस करनी है तो वो एक छोटे बच्चे से ही शुरुआत होती है। अगर उसका माइंडसेट हम चेंज कर देंगे, उसकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा हम पॉजिटिव कर देंगे, तो हमारे यूथ जो बन के निकलेगा उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी मेरे हिसाब से।
1: बिल्कुल पीयूष जी, काफी अच्छा आपने जो है मंथन करके बात बताया। और जहां तक जो बच्चे हैं और बच्चे को अगर हम लोग ट्रेन कर लेते हैं, बच्चों की मानसिकता अच्छा कर देते हैं, उसकी बौद्धिक स्तर को हम लोग अगर थोड़ा सा एनहांस करते हैं, थोड़ा सा उसको अच्छा ज्ञान मिल जाता है या उसको प्यार से उस ज्ञान की तरफ आकर्षित करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और इसमें माता पिता को भी थोड़ा सा बच्चों के लिए परिवर्तन लाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनका सपोर्ट भी मिल जाए, तो फिर चीजें आसानी से एक सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं।
2: एक चीज और ऐड करना चाहूंगा।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: अभी रिसेंटली मैंने एक अपना ब्रह्मा कुमारीज का कोर्स कर रहा हूँ मैं, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो उसमें मेरे को नॉलेज मिली कि हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज का एक पूरा वेबसाइट है जिसका नाम है spiritualseva.com। उस पे इतने काउंसलर्स जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर काउंसलर्स तक जुड़े हुए हैं, और वो फ्री सर्विस है हमारे यहाँ। इस आपके माध्यम से मैं इसको पहुंचाना चाहता हूँ लोगों तक, कि वो लोग अगर इस वेबसाइट पे चले जाएं, और अगर कोई भी बच्चा डिप्रेशन में है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है उसको, वो वहां पे खाली फॉर्म भर दे, उसके एरिया में उसके लोकेशन पे वहां के काउंसलर उसके घर जाकर के उसको काउंसलिंग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी एट ऑल। तो ये हमारा बाबा की ऐसा यज्ञ चल रहा है कि उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं जिसकी अवेयरनेस अभी नहीं है, तो मेरे को लगा कि इस चैनल के थ्रू, आपके थ्रू मैं ये चीज लोगों तक।
1: वेबसाइट का नाम फिर से बता दीजिए ताकि लोगों को।
2: spiritualseva.co.in।
1: अच्छा,
2: spiritualseva.co.in। इसमें फ्री काउंसलिंग है, किसी को कोई भी तरीके का डिप्रेशन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड, वो वहां पे अपना संपर्क कर सकते हैं। उनको एरिया के हिसाब से, अपनी सिटी के हिसाब से काउंसलर मिलेंगे, उसमें इतने सारे काउंसलर्स जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कार्य हो रहा है, बाबा का कार्य तो सब हर तरह से सब अच्छा हो रहा है, लेकिन और भी एनजीओज अगर हेल्प करेंगे हम लोग के साथ, अगर जुड़ करके इन काम को करेंगे, तो हम हिंदुस्तान को बहुत जल्दी स्वर्ग बना देंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और ये spiritualseva.co.in वेबसाइट भी बता दिया, जहाँ पर बहुत सारे काउंसलर हैं, तो अलग अलग विषय को लेकर वो बात कर सकते हैं, उनसे सेवा ले सकते हैं। तो सपना जी, मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे में डिप्रेशन काफी है, तो आप पब्लिक फेस हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर, अभी आपने कहा कि आपके यहाँ 65 बच्चे हैं जो शायद अनाथ बच्चे ही हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं, पढ़ाई सिखा रहे हैं उनको, उनका लाइवलीहुड अच्छा बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से और भी बच्चे होंगे जो इस तरह से, और मेंटली या डिप्रेस बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए पोर्टल भी अच्छा काम करेगा। तो मैं चाहूंगा कि आपने जो अनाथ विद्यालय खोला है, तो वो विद्यालय में क्या क्या फैसिलिटीज है अभी, और क्या वो चीजें थोड़ा सा बताएं, तो हम लोग शायद पीयूष जी और हम लोग आपको हेल्प भी कर सकते हैं बच्चों का कुछ बातचीत करके। जी,
0: अभी कॉर्पोरेशन के थ्रू जगह, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब मिल रहा है हमें। बस बच्चों को जाके उनको पढ़ाई पे ध्यान कैसे रखना है, क्लीनिंग खुद का कैसे करना है, हम जाके हर वीक में नाखून का अपना, बाल काटने, क्लीनिंग कैसे खुद की खुद करना है, रहना है, ये हाइजेनिक बातें उनको जाके सिखाते हैं। पढ़ाई के लिए हमने 4 टीचर रखे हैं, जो उनके अंदर ही आता है, कॉर्पोरेशन के अंदर ही आता है ये सब, पर हमें जाके वापस सेवा करनी पड़ती है, सेवा देते हैं हम लोग, मतलब हमारे माध्यम से भले ही चलता है पर हमें खर्चा कॉर्पोरेशन देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: और वही मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे आजकल हमारे पास 8, 9, 10 साल के भी बच्चे हैं, तो उनके किसी के माँ बाप नहीं होते हैं, किसी के माँ बाप होते हैं, पर आजकल बच्चे इतने ओपन और खुल के, अभी काफी साल से मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि बच्चे जो पहले मैं देखती थी और आजकल के बच्चों में देखती हूँ, वो मालूम नहीं अंदर के अंदर हर बात क्यों रखते हैं, उनको कैसे खोलना है बच्चों को, मैं मुझे समझ में नहीं आता है कि उनके साथ हम लोग इतने फ्री होते हैं, मस्ती करते, बातें करते, पर अंदर की बात बताने में अभी भी वो पीछे हटते हैं, छोटे छोटे बच्चे मुझे मालूम नहीं कि क्या अंदर लेके जी रहे, ये परिवर्तन 2-3 साल में देखने आ रहा है, उसमें हम लोग, रमेश भाई आप बताइए कि हम कैसे चेंज करें उनको, इसलिए मैं बहुत अंदर के अंदर परेशानी होती हूँ, जब भी मैं मिलने जाती हूँ हर बच्चे के चेहरे पे मुझे लगता है एक अच्छी मुस्कान होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे
1: बिल्कुल
0: आजकल जैसे अभी उनको मुझे पता है कि माँ बाप नहीं है, उनके साथ क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ से हुआ है सब है, पर उनको बाहर निकालने का काम
1: बिल्कुल
0: कैसे करना
1: बिल्कुल
0: है, आपसे मुझे प्रेरणा चाहिए आज।
1: आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक्चुअली में जो बच्चे हैं ना वो एक तो कंफ्यूजन माइंड रहता है उनका अभी, क्योंकि माता पिता नहीं है तो नए लोगों के साथ उनको जुड़ रहे हैं, और वैसे कुछ लोग भी जुड़े होंगे उनके साथ में जो गलत किया होगा, तो इसलिए उन्हें एक डर बैठ गया है। भले हम लोग खाना पीना उनको एक अच्छा शेल्टर होम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डर निकलने में टाइम लगता है। तो बच्चों से
0: टाइम
1: धीरे
0: लगता
1: धीरे
0: है।
1: वन टू वन काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। पहली बात तो वन टू वन काउंसलिंग में क्या होगा, वो बच्चा का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे वो खुलेगा। जब खुलेगा तो वो फिर अपने जीवन को जीना शुरू करेगा, और फिर जो कुछ हम लोग बताएंगे या काम करेंगे उनके साथ में वो ग्रैपिंग पाउडर वो समझ जाएगा और उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करेगा और फिर उसके चेहरे पे मुस्कान भी आएगा। तो यहाँ वन टू वन काउंसिलिंग की जरूरत है। जैसे आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति जाता है तो उनको 1-to-1 7 days का कोर्स कराते, तो इससे क्या हो जाता है व्यक्ति पूरी तरह से समझ लेता है, और उसको बोलते भी हैं कि भाई आपके कुछ सवाल हो तो आप थोड़ा थोड़ा सुन के मंथन करिए, फिर एक बार पूरा हो जाता है तो बाद में उनको सवाल भी हो तो वो भी पूछते हैं लास्ट। तो पहले बच्चों के साथ हमें जो है 1-to-1 कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुल के उनके साथ जो है दोस्ती बना के उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा, उनसे बात करना, एक्चुअली में कुछ सुनाने उनसे बात करना शुरू करना पड़ेगा। जब वो बच्चा बात करेगा आपसे या कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा तो फिर चीजें बनना शुरू हो जाएगा। पहले तो उसको बोलना सीखना पड़ेगा, यानी उनके साथ हम बोले वो मेरे साथ बात करे, ये एक ट्यूनिंग जो है कनेक्टिविटी होना जरूरी। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। पीयूष जी काफी टाइम से कर रहे हैं काम, तो मुझे लगता है पीयूष जी और इसमें एडिशनल कर सकते हैं। थोड़ा सा बताइए पीयूष जी, कैसे हम उन बच्चों को जो जिनके माँ बाप नहीं है और वो स्ट्रीट पे रहते थे, उन बच्चों को हमने शेल्टर दिया, गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उनको पढ़ाई दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लेकिन बच्चे खुल नहीं रहे, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक डर सा है, मुस्कान नहीं है, तो वो कैसे ला सकते हैं?
2: जी, जैसा आपने रमेश भाई कहा कि हमको बच्चे को क्या चाहिए आज की डेट में, चाहे वो गरीब तबके का है, इवन अमीर तबके के बच्चे को भी समय चाहिए, उसको
1: बिल्कुल
2: लोगों का समय चाहिए। जैसे आपके यहाँ काउंसलर्स अगर हैं या कुछ ऐसे हैं जो लोग काउंसिल करना जानते हैं या समय दे सकते हैं, तो इंडिविजुअली बच्चों के साथ बैठ करके उनसे बात करें। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि उनको ये फीलिंग आनी चाहिए बच्चे को आपके साथ, उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो आपसे अगर कुछ शेयर करेगा तो वो आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलोगे। तो उसके लिए एक रैपर्ट बिल्डिंग होती है, पहले आप रैपर्ट बनाएंगे उस बच्चे के साथ, उसके साथ खेलिए कूदिए, खाली पढ़ाई और हाइजीन नहीं, उसके साथ खेलने कूदने का, जो चीजें ऐसी होती हैं जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, आप उसके साथ लूडो खेलिए, उसके साथ कैरम बोर्ड खेलिए, उसके साथ क्रिकेट खेलिए, उसके साथ इस तरह से समय बिताइए, तब वो आपका दोस्त बनेगा। और जब किसी बच्चे को आप अपना दोस्त बनाएंगे तभी वो आपके सामने खुलेगा, क्योंकि हर इंसान जितना अपने दोस्त के क्लोज होता है उतना किसी के क्लोज नहीं होता, अपने दोस्त से वो हर बातें शेयर करता है और दूसरे किसी से नहीं शेयर करता है। तो बच्चों के साथ दोस्ती बनाना बहुत जरूरी है, उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि हम उसके दोस्त हैं, तभी वो आपको हर बात शेयर करेगा, और हर बात जब आप सुनेंगे उसकी तभी आप उसका रिजल्ट निकाल पाएंगे, उसका एनालिसिस कर पाएंगे और उसको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे कि बेटा अब आप इसको इस तरीके से इस डायरेक्शन में आप अपना कदम बढ़ाइए तो आपको ये अच्छा हो। तो पहले तो रैपर्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है, समय बिताना जरूरी है और उस बच्चे के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है। तो ये रिलेशनशिप जो है दोस्त का बहुत
0: हाँ,
2: इम्पोर्टेंट।
0: सही बताया, मैं ये कोशिश करूंगी भाई, बराबर इनके साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है, राइट।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आपके पास अगर वहां पर मोबाइल है, मोबाइल अगर है आपके पास तो उससे हमें भी जोड़ सकते हैं कभी जो है ना, एक दिन सुबह सुबह जो है एक 10 से 11 के बीच में मंडे टू फ्राइडे में एक घंटा हम बच्चों को दे देंगे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों से। एक थर्ड पर्सन जब बात करता है वो कुछ बताता है तो बच्चों का अट्रैक्शन भी जाता है, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन स्टोरीज वगैरह उनको सुनाएंगे, मोटिवेशन होगा, तो धीरे धीरे वो बच्चों को जो है पॉजिटिव असर, कभी पीयूष जी को जोड़िए, कभी मुझे जोड़िए, और कभी कोशिश करेंगे कि वो काउंसिलर्स भी हमारे साथ जुड़े, पीयूष जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक एक जन को उनको भी बोल देंगे। तो जूम के जरिए या मोबाइल वीडियो कॉल से भी आप जोड़ सकते हैं, तो आसान है आजकल तो जुड़ना कहीं से भी, तो बच्चों से थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी और थोड़ा उनको स्टोरीज वगैरह सुना के धीरे धीरे चीजें बनेगी तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि असंभव है, संभव सब कुछ है, बस टाइम टेकिंग चीजें होती है, क्योंकि ये जो है इसमें टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एक पौधा है और पौधे को बड़ा होने में, पौधा निकल के बाहर आ जाए फिर अपना पानी अपना खाना बना ले, इतना तक हम उनको जो है केयर रखना पड़ता है, जब तक पेड़ खुद अपना खाना पानी ढूंढ नहीं पाता। जब एक बार वो बड़ा हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है तो फिर हमको कुछ उसको केयर नहीं करना पड़ता है। तो वैसे ही बच्चे भी जब छोटे हैं और थोड़ा सा इस टाइप में मुश्किल में है, तो ऐसे में उनको थोड़ा सा ज्यादा वक्त दे देंगे, तो नेचुरली वो जब समझ जाएगा कि जीवन ऐसा जिया जाता है, जीवन ऐसा है, तो वो सब कुछ सीख जाएगा। और आखिर वो भी तो भगवान की रचना है, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर भी सब कुछ, वो सारी शक्तियां हैं, बस उसे जगाने की देरी है। अच्छा सपना जी, मैं चाहूंगा कि आप सोशल वर्क में कैसे जुड़े, आपको कोई किसी ने बताया या क्या भाव से आप जुड़े, वो थोड़ा सा बताइए।
0: सोशल वर्क में जुड़ने का कारण, मुझे पहले से ही फ्रेंड बहुत है, मतलब फ्रेंड सर्कल में रहने की बहुत आदत है। मैं एक इवेंट चलाती थी सरकार के माध्यम से, लेडीज का व्यासपीठ जिसको मधुरांगन बोलते थे पुणे में, अभी फिलहाल बंद है, पर मैंने वो 6-7 साल वो व्यासपीठ चल रहे हैं। तो जैसे हम लेडीज के साथ जुड़े हुए थे बहुत सारे, तो उनके एक एक के साथ बात करते करते कितने प्रॉब्लम्स होते हैं उनके छोटे मोटे, और घर में कितनी समस्या होती है, तो उसमें बात करके फ्रेंडशिप करके उनको उस बात से बाहर निकालना, उनके घर में सास ससुर से बात करना,
1: जी जी जी
0: हाँ, जैसे उनके हस्बैंड के साथ जरूरत पड़ी तो जाके बात करना कि ये क्या चाहती है और आप कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, या सास को भी बताना जरूरी कि सास एकदम राइट है पर आप कैसे करते हैं। ऐसे हर घर में हर लेडीज के प्रॉब्लम सुन के बहुत सारे मेरे हाथ से काम हुए, मतलब मैं खुद को बोलती हूँ कि बाबा ने मेरे से बहुत काम करवाए और बहुत अच्छे काम करवाए। बहुत सारे घर जुड़े, टूटते हुए घर जो वो लोग डाइवर्स के लिए फाइल डालते थे और मैं वो लेके आके दोनों को एक करके, मतलब दक्षता कमिटी पे मैंने पुलिस चौकी में काम किया और वहां पर यही काम करती थी कि टूटे हुए घर को जोड़ना है। हाँ, तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे घर, जैसे मैं अभी अमिनोरा सिटी में भी रहती हूँ, तो यहाँ पर भी देखती हूँ आसपास कहाँ पर कुछ फ्रेंड्स के समस्या रहती है, उनको जाके समय देना, टाइम देना, ये मेरा एक हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना, तो मैं उस माध्यम से जोड़ने का काम करती हूँ समाज को, एक दूसरे के फैमिली में एक दूसरे को जोड़ना, ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं करती हूँ।
1: बिल्कुल, चलिए सपना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी का कुछ ना कुछ भला हो, किसी ना किसी को हेल्प हो, ये हमारा अपना दायित्व बनता है, तो अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पीयूष जी मैं चाहूंगा एक और गीत आप जरूर सुनाइए, तो उसके बाद फिर सपना जी से बातें करेंगे, इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं वो, और भारत में कौन कौन सी जगह पे आपने भ्रमण किया है, यात्राएं की हैं, उसके बारे में उनसे बातें करेंगे। जी
2: जी रमेश भाई, गीत तो बाबा के ऐसे लप पे आते हैं कि और कोई समझ में नहीं आता। एक छोटा सा गीत जा

0: थैंक यू अमचंद।
1: थैंक यू पीयूष जी, बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया, बहुत शुक्रिया आप। आइए आगे बढ़ते हैं और सपना जी से मैं जुड़ना चाहूंगा। सपना स्वर्णा जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने भविष्य में और क्या क्या प्लान से सोशल वर्किंग के, वो थोड़ा सा बताइए।
2: वही मैं चाहती हूँ कि बाबा के प्रेरणा से, लता दीदी के प्रेरणा से, रमेश भाई आपके प्रेरणा से, जुड़े हुए भाई आपके प्रेरणा से, मुझे वही
1: जी
2: करना है कि समाज में, मैंने कहा है कि मुझे बहुत सारा काम डिप्रेशन पे करना है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, उनको वापस उनके जिंदगी में लाना है,
1: बिल्कुल
2: जो जो
1: बिल्कुल
2: समस्या है उनकी वो सुन के उनको मार्गदर्शन करना है। ये मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे जहां भी जाने की जरूरत हो, जहां भी मेरी मैं सेवा दे सकती हूँ, वहां जाके मुझे सेवा देनी है। क्योंकि अभी मेरा पूरा जीवन सेट हुआ है, घर में फाइनेंशियली सेट है, बच्चे सेट है, मेरे सब कुछ, मेरा पूरा घर सेट है, और मुझे अभी ये करना है कि बची हुई जिंदगी में ये सेवाएं करनी है। क्योंकि मैं
1: बिल्कुल
2: जितनी भी
1: बिल्कुल
2: घूमती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ, मैं बस लोगों को मुस्कान लाना चाहती हूँ वापस उनकी। बहुत समस्या है ये भाई, बहुत समस्या है ये समाज में, मैंने देखा है 2 साल में कोविड में,
1: बिल्कुल
2: मैं हर
1: बिल्कुल
2: किसी को बात करती हूँ ना, तो उनकी बात वही रहती थी, अरे सपना मैं टेंशन में हूँ, टेंशन नाम की चीज मुझे मिटानी है समाज से, और अपने
1: बिल्कुल
2: परिवार में
1: बिल्कुल
2: उनको जोड़ना है, और आपकी बहुत हेल्प चाहिए मुझे, बस मुझे ये करना है अभी। और
1: बिल्कुल
2: दूसरी एक
1: बिल्कुल
2: भाई मैं
1: जरूर
2: बात बताती हूँ कि मैं
1: जी
2: एमिनोरा हड़पसर, एमिनोरा सिटी में रहती हूँ, तो अभी मेरे थ्रू ओम शांति का एक अच्छा बड़ा होम हुआ है, घर हुआ है अपना, एक सेंटर बना है,
1: बहुत
2: मतलब
1: बढ़िया
2: सेंटर वालों ने, हम सब ने मिलके वो खरीद लिया है, मेरी थोड़ी बहुत सेवा कि उनको दिलाने की सेवा मैंने सिर्फ की है, घर
1: क्या बात है,
2: मतलब जहाँ
1: बहुत
2: भी
1: बढ़िया
2: अभी सेंटर चालू है, 6-7 साल से चालू था, वो अपना हो गया।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। तो आइए, जैसे कि आपने कहा, हम लोग सभी के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें जो है हम लोगों को साक्षी होके देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग जो है बदलना ही नहीं चाहते, उन्हें जीवन में कुछ करना ही नहीं है और डिप्रेशन में ही रहना चाहते हैं, ऐसे भी कुछ लोग। तो ऐसे लोगों को भी हमें जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके पास टाइम देख के हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों को भी नोटिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि सभी जो है ना परिवर्तन के लिए रेडी नहीं होते हैं, और कोशिश करना है उन लोगों की, और वो खुल के बात नहीं करते एक्चुअली में फर्स्ट टाइम तो, और दूसरा उनको दूसरा अच्छा सुना रहा है तो वो सुन नहीं पाते उस चीज, वो अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए थोड़ा टाइम अलग सा देना पड़ता है, या उनको बहुत ज्यादा मुश्किल में, उनको परिस्थिति के दायरे में डाल के फिर उनको ठीक करना पड़ता है। तो वो चीजें हम लोग जो है ऐसे लोगों के लिए भी टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो कैटेगरी अपने आप ही, 2 बार आप मिलेंगे तो तीसरी बार आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति समझ जाएगा या नहीं, वो उनके परिवर्तन से, उनके हाव भाव से, उनके बातों से पता चल जाता। तो कोशिश करना है, बाबा भी कहते हैं ना कि भाई आप नब्ज देख के चीजों को लिया करो, एक डॉक्टर है तो नब्ज देख के बीमारी का पता लगाता है। तो वैसे ही समय को भी जो है इम्पोर्टेंस देना है, और जहां तक हो सके हमें सेवा में रहना है, पर चीजों को शॉर्ट आउट करके भी कर लेना है, नहीं तो वेस्ट टाइम हो जाता है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय को सफल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप काफी समय से जो है अलग अलग यात्राओं को, आपने पूरे भारत में अलग अलग जगह पर यात्राएं की हैं, तो मैं चाहूंगा कुछ यात्राओं के बारे में जरूर हमें बताइए, कौन कौन सी चीजें आपने देखी हैं और जहां आपको बड़ा अच्छा लगा हो उसका भी वर्णन कीजिए। जी
2: हाँ, मैंने मतलब महाराष्ट्र में बाली बाली गई थी मैं, मुझे मैं बहुत घूमी हूँ, मतलब सिंगापुर है, दुबई काफी मेरा हुआ है, यहाँ महाराष्ट्र में भी मैं बहुत घूमी हूँ, पर बाली का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा,
1: जी।
2: मतलब बाली जो मैंने देखा कि निसर्ग, मुझे निसर्ग बहुत अच्छा लगता है, नेचर बहुत अच्छा लगता है, तो वहां का मैंने देखा है, अब तक जहाँ घूमी हूँ वहां से सबसे ज्यादा मुझे बाली बहुत अच्छी लगी है। तो बाली में पेड़ पौधे, पानी एकदम प्योर, वाइट ब्लू सब देखने मिला, वहां के लोग, वहां का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, खाना पीना नहीं, खाना पीना तो हम खुद बनाते थे, खुद खाते थे, पर बाकी एवरीथिंग बहुत अच्छा लगा बाली का। मैं जा जा घूम के आई, जैसे मैंने दुबई देखा, सिंगापुर देखा, तो ये सबका काम, पर ये यहाँ का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: ये कहाँ पर है बाली?
2: बाली तो मैं सिंगापुर से होके बाली गई थी, बाली तो आउट ऑफ कंट्री में आता है, इंडिया में नहीं, पर वहाँ

0: मैंने देखा जो वहां का नेचर, वो बहुत अच्छा लगा और वो मैंने मेरे मेमोरी में स्टोर किया कि कैसे बाली, और आज तक मैं उसको याद करती हूँ, बहुत खूबसूरत।
1: जी,
0: तो नेचर बहुत अच्छा लगता है मुझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जहां पर आप रहते हो अभी पूना के पास में हड़पसर में, वहां का
0: हाँ
1: कल्चर क्या है, वहां का ट्रेडिशन क्या है, वहां का खेती करते हैं तो वहां कौन सी फसल लेते हैं, थोड़ा सा वहां के बारे में बताइए।
0: यहाँ हम लोग जिस सिटी में रहते हैं वो जैसे मगरपट्टा, एमिनोरा सिटी, यहाँ पर मेरे यहाँ पर रहते हैं, वहां पर आईटी वाले ज्यादा लोग रहते हैं, बाहर के बहुत लोग ज्यादा आए हुए हैं जॉब के लिए, आए हुए हैं जॉब वाले ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, प्रॉपर लोग बहुत कम है यहाँ पर। सभी सभी कास्ट के सभी लोग मिलजुल के हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है। तो जब मिक्स होते हैं तो कभी पता नहीं चलता कि कौन से कास्ट का है, कौन से गाँव का है, कौन से शहर का है। इतने अच्छे से हम लोग यहाँ रहते हैं, मतलब मेरी दृष्टि तो देखने की बहुत अच्छी है, तो मुझे पॉजिटिव थिंकिंग से ही मैं देखती हूँ, तो ताकि मुझे निगेटिव कभी कुछ दिखा नहीं, पॉजिटिव दिखता है, तो बहुत एवरीथिंग अच्छा है यहाँ पर सब।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, आईटी सेक्टर है तो निश्चित तौर पे सुविधाएं तो उसी तरह से आपको मिलेगा ही, लेकिन साथ में माइग्रेट होके बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं अपने नौकरी के लिए, ये आपने बताया, तो साथ ही साथ लोगों का आजीवन का एक साधन है आपका शहर, तो निश्चित तौर पे लोग आ रहे हैं वहां पर, और अच्छी सुविधाओं के कारण भी लोग जो है काफी लंबा समय तक वहां पर अपनी सेवा देते हैं। हाँ जी
0: एक
1: बोल।
0: भाई एक सलाह था मेरा कि मैं यहाँ पर मैं खुद रियल इस्टेट का काफी साल से मैं खुद काम कर रही हूँ, लोगों के सपने घर लेना, कमर्शियल खरीदना, तो अच्छे मतलब उनके दाम अच्छे दाम में मिलके उनको अच्छा क्या बोलते हैं फैसिलिटी के साथ काम करना है, उनको अच्छे क्लियर क्लियर व्यवहार जिनको बोलते हैं कि जिसमें
1: बिल्कुल
0: एकदम साफ सुथरा क्लियर व्यवहार होता है, 1% मैं क्लियर डीलिंग करके 1% मैं उससे मेरा जो भी है काम का मना वो क्लियर लेती हूँ। और बहुत मतलब बहुत मैंने मेरे रियल एस्टेट में मेरे यहाँ पर पूना में मैंने नाम कमाया है, और टचूर की
1: बहुत
0: बाबा का, लता दीदी का, आपका सबका आशीर्वाद मेरे साथ बनाया है, बनाए रहे, और इसके साथ मैं रियल एस्टेट का बहुत सारा काम अच्छा किया है। और अपने इसमें मैंने भी घर दिया, तो मुझे पिछले महीने में घर दिया, तो वो भी बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने सेंटर के लिए घर सेल किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताया, और रियल स्टेट में मिलकर आप काम भी कर रहे हैं, लोगों को जो है एक रोटी कपड़ा और मकान तो मकान जो है एक सुविधाजनक देने का, लोगों को सुख देने का काम कर रहे हैं और करते रहे हैं। सुभाष जी सोनाव ने जलगांव से आपके लिए याद भेजा है, ओम शांति लिख के भेजा है, नीता जी ने भी याद भेजा है, लता भेजा है। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा संदेश, सारी दुनिया आपको सुन रही है, तो उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सपना जी?
0: मैं ये कहूंगा जो भी हमें पूरे दिन में जो भी मिलते हैं उनको एक ही बात बतानी है कि जीवन में पॉजिटिव कैसे रहना, और अपने स्माइल के साथ, मीठे स्माइल के साथ कैसे जीना है। हर टाइम हर वक्त आपके चेहरे पे एक मीठी स्माइल होनी चाहिए, और वो कैसे लाना है, वो जाते आते काम करते आसपास लोग पूरे दिन में जितने भी मिलते हैं उनको समझाना बताना है, और पॉजिटिव थिंकिंग पे काम करना है, उनको समझाना है कि अरे स्माइल क्या हुआ, आपका चेहरा ऐसे क्यों लग रहा है, थोड़ी स्माइल, बस ये स्माइल लानी
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका संदेश सभी लोगों तक पहुंच गया है, और मैं चाहूंगा कि आप बिना कारण भी मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराने से आपके चेहरे की रौनक बढ़ती है, आपका सेहत अच्छा हो जाता है। कारण से ही मुस्कुराएं तो फिर कारण ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए बिना कारण भी आप मुस्कुराएं, इससे आपका सेहत अच्छा हो जाता है, और आपके देख कर दूसरों को भी खुशी मिलेगा। तो चलिए पीयूष जी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक और गीत सपना जी को डेडिकेट करें आप, छोटा सा मुखरांतरा, तो हम लोग पूरा करेंगे।
2: जी। एक बड़ा सुंदर सा गीत है, मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना।
1: जी जी जी

0: आया।
1: थैंक यू, थैंक
2: थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने दे दिया, प्यार
0: यू, थैंक
2: सा।
0: यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
2: जी
1: सपना
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने सपना जी के सोशल वर्किंग के बारे में बातें की और जिस तरह से उनकी एक मनसा है कि भाई जो भी व्यक्ति हो वो डिप्रेशन से मुक्त हो जाए, उसके चेहरे पे मुस्कान रहे, इसके लिए वो हमेशा लोगों से बात करती हैं, बच्चों से बात करती हैं और उनको प्रयास करती हैं कि उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, और बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम उन्होंने किया है। और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे काम करते हुए भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर भी वो अपनी सेवा दे रहे हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि व्यक्ति जब तक अध्यात्मक जीवन नहीं जीता तब तक दूसरों को सच्ची खुशी भी नहीं दे पा। तो निश्चित तौर पे हमें अगर खुशी बांटना है तो हमें अध्यात्म होना बहुत जरूरी है। और जाते जाते आपने एक बहुत ही प्यारा सा जो संदेश के साथ में एक गाना सुना, आईना साफ किया तो साफ नजर आया मैं, और मैं अपने आप को साफ करता हूँ, स्वच्छ करता हूँ तो ईश्वर नजर आता है, और जब ईश्वर नजर आता है तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी और सौभाग्यशाली महसूस कर। तो निश्चित तौर पे सिंपल टेक्निक है कि आप अपने आप को देखिए और अपने अंदर के मन को अगर सुंदर बना सके, स्वच्छ बना सके, अपने विचारों को चेंज करते जाएं, जहां पर नेगेटिव आ रहे हैं वहां पॉजिटिव करते जाएं, तो एक दिन आपको जो है उस परम शक्ति का भी दर्शन हो जाएगा और आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। डॉक्टर संजय देशमुख हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका संजय जी, कैसे हैं आप? और बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: मम्मी 15 साल से इसमें है।
0: अच्छा,
1: तो मैं 15 साल से भी इसी में आया। तो सभी कहते थे कि यहाँ जो शांति और समाधान जो यहाँ मिलता है, जो मन में जो शांति है,
0: जी जी,
1: तो जो विचार है जो चले जाते हैं,
0: वही
1: शांत होता है। तो मैं सोच रहा था कि ये कैसा होगा, क्योंकि मेडिकल के हिसाब से जब माइंड में सेरोटोनिन जब आ जाएगा, सेरोटोनिन और डोपामाइन जब आएगा तो खुशी मिलती,
0: खुशी मिलती है।
1: तो फिर यह कैसा होगा? तो मैं पहले में आठ दिन यहाँ रुका था, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो पूरे विचार सब चले गए और जो शांति,
0: जी जी,
1: जो मन की शांति है और जो समाधान है वो, मैं दुनिया में मैं बहुत घुमा, विदेशों में घुमा, बाहर पूरे इंडिया में घुमा, लेकिन यहाँ जो शांति और समाधान वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ जब आया मैं, तो मैंने सोचा कि भाई जो मन इतना पूरे कोई विचार नहीं है, मन शांत है एकदम, जो शांति और समाधान यहाँ जो मिल रहा है वो बहुत ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे सेरोटोनिन कैसे आ गया माइंड में, तो ये तो सब बाबा की कृपा है। अच्छा ठीक है, मीठा खाने से सेरोटोनिन बढ़ता है, लेकिन मैंने तो उतना कुछ मीठा भी नहीं खाया, जैसे कि गुजराती लोग जैसे खाने के बाद मीठा
0: खाते हैं,
1: सेरोटोनिन आता है,
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मीठे बोलते हैं, लेकिन ये तो सब बाबा की शक्ति है।
0: यहाँ ज्ञान रूपी मिठास योग रूपी शक्ति
1: ये तो है, लेकिन फिर भी सब विचार चले गए और जो मन शांति और जो समाधान है ये कैसे आया, ये तो कुछ पता नहीं, ये तो सब बाबा की कृपा है। अभी मैं पिछले साल में ऐजवाल गया था,
0: जी जी जी,
1: इंडिया में। तो ऐजवाल में क्या हुआ कि मैं रात में 11 बजे मैं पहुंचा ऐजवाल, तो मेरे पास टिफिन वगैरह था, मैंने होटल में हमने टिफिन वगैरह खाया, दोस्त ने समझा, दो तीन दोस्त थे हम। तो सुबह में हम जब 10 और 11

0: हम के 12 बजे हम खाना खाने के लिए घूम रहे, तो सभी होटल में वहाँ माछ और मछली थी,
1: ओहो
0: सभी होटल में। अब क्या करें, तो
1: हो
0: हम करीबन 1-2 बजे तक हम भूखे थे। फिर एक जन ने हमें बताया कि भाई आपको एक मॉल है, वो मॉल के ऊपर एक होटल है, वहाँ शायद आपको विजिटर मिल जाएगा, वहाँ देखिए। तो हम वहाँ गए तो वहाँ भी सब माछ मछली थी। तो अब फिर मॉल में हम घूमने लगे, तो मैंने कहा कि बाबा आप कुछ तो
1: कुछ
0: भी करो, नहीं तो अभी बिस्किट खाना और सेब खाना है, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। अभी क्या
1: कर
0: करें, तो आप तकरीबन आधा घंटा वही सोचे, बाबा कुछ तो भी करो, अब खाएंगे क्या। तो उतने में मैंने देखा कि बस वहाँ एक भाई जी और एक बहन जी आए। तो
1: हाँ
0: फिर मैंने उनको ओम शांति हमारा हो गया। उन्हें कहाँ से आए, मैंने महाराष्ट्र आए। तो मैंने उनको बताया कि भाई हमारा खाने का बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो बोले क्यों, नहीं बोले यहाँ सब होटल में माछ मछली है, खाना कब खाएगा, हम भूखे ही है। फिर अच्छा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बोले आप हमारे साथ चलो, हमारे यही लॉज में से आपका होटल में से आपका सामान ले लो, वहीं पे आप 2 दिन रुकना है आपको, तो वहीं पे 2 दिन रुको, वहाँ सब खाना वहीं पे खा लो,
1: अरे
0: वहीं पे दो
1: वाह
0: दिन रुक लो। उन्होंने ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनको बहन जी से कहा कि आपका आपको क्या लेना है मॉल में, तो वो ली नहीं, बोले हमें कुछ लेना नहीं है। लेकिन जाते जाते एक ख्याल मन
1: देख
0: में आया कि मॉल में जाके घूम के बैंक में जाएंगे, क्योंकि मेरा काम बैंक में है। तो फिर अच्छा मैंने बोला, तो फिर चलो मैंने बोला। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको
1: बैंक
0: सेंटर
1: में
0: पे छोड़ देंगे और फिर हम बैंक में जाएंगे।
1: जी
0: तो उन्होंने वहाँ हमारे को सेंटर पे छोड़ा, फिर हम 2 दिन वहाँ रहे, खाना पीने का इंतजाम किया।
1: क्या
0: तो
1: बात
0: बाबा ने उनको भेजा
1: भेजा
0: वहाँ कि भाई बच्चे भूखे हैं, आप जाइए। तो इतने तो महान बाबा का ही अनुभव
1: जी
0: है।
1: जी चलिए डॉक्टर संजय जी, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया और बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरह से सेरोटोनिन से जो है हमारी खुशी बढ़ती है ये आपको पता था, लेकिन नेचुरल सेरोटोनिन जो है यहाँ आकर आपको प्राप्त हो गया जिससे आपकी खुशी बढ़ी है, तो ये बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, ओम
0: ठीक
1: शांति।
0: ठीक ओम
1: थैंक
0: शांति।
1: यू।
0: ये मोबाइल

0: नमस्ते दोस्तों, आपको पता है ना 5 सितंबर को क्या होता है? क्या कहा? जरा जोर से कहो। हाँ बिल्कुल सही कहा, 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस। अपनी मीना और उसके दोस्त भी इस बार शिक्षक दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो हम भी फटाफट चलते हैं मीना की क्लास में।
1: मीना, पिछले 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पे तो हम सब ने बहन जी को रंग बिरंगे फूल दिए थे, इस बार हम उन्हें क्या दे?
2: रानो ठीक कह रही है मीना, कल शिक्षक दिवस है और अभी तक हमने कुछ भी नहीं सोचा।
3: दीपू, रानो, मैंने सोच लिया है, कल हम बहन जी को देंगे आराम करने का मौका।
2: आराम करने का मौका?
3: देखो, कल हम सब बारी बारी शिक्षक बनेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है।
5: बहन जी नमस्ते।
4: नमस्ते बच्चों। मीना, मैंने तुम्हारा सुझाव सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब कल के दिन तुम सब बनना शिक्षक। मैं भी तो देखूं कि मेरे नन्हे मुन्ने शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं।
6: कैसा पढ़ाते हैं? क्या सिखाते हैं?
7: लेकिन बहन जी, हमें पढ़ाना तो आता ही नहीं।
4: तुम चिंता मत करो कृष्णा, जैसे मैं पढ़ाती हूँ बस तुम भी वैसे ही पढ़ाना, खेल खेल में।
0: और अगले दिन क्लास में सबसे पहले टीचर बनी अपनी मीना।
5: नमस्ते मीना बहन जी।
3: नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित। सबसे पहले हाँ तुम बताओ दीपू, अगर एक डिब्बे में 4 पेन हैं, तो ऐसे 7 डिब्बों में कितने पेन होंगे?
2: मीना बहन जी, वो 7 का पहाड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है।
6: याद नहीं आ रहा है? दीपू बहाना बना रहा है।
3: कोई बात नहीं दीपू, तुम इस प्रश्न का जवाब 4 के पहाड़े से भी हल कर सकते हो।
2: ओ हाँ, 4 × 7 = 28, यानी 4 डिब्बों में होंगे 28 पेन।
3: शाबाश दीपू, बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल, अगर एक बाल्टी में 50 अंडे हैं, तो ऐसी 4 बाल्टियों में कितने अंडे होंगे?
4: मीना बहन जी, मैं बताऊं? 50 और 50 हुए 100, और 100 में 100 जोड़े तो हुए 200। 200 अंडे होंगे।
3: बिल्कुल सही जवाब।
4: मीना, तुमने बहुत अच्छे तरीके से क्लास को गणित पढ़ाया, अब शिक्षक बनने की बारी है कृष्णा की। आओ कृष्णा।
7: जी बहन जी।
4: कृष्णा सर, आज आप क्या पढ़ाएंगे?
7: आज हम सीखेंगे आज हम सीखेंगे कविता लिखना। तुम सब बारी बारी शिक्षक दिवस पे 2-2 पंक्तियों की एक कविता सुनाना, ठीक है बच्चों?
5: जी सर।
2: कृष्णा सर, पहले उदाहरण दे के समझाइए।
7: ठीक है दीपू, सुनो मेरी कविता। आज है शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर, झूम उठी ये धरती खुशी से, झूम उठा ये अंबर, हम तो अपनी बहन जी का करते हैं सम्मान, धन्य है बहन जी हमारी, सच तुने प्रणाम। अब तुम एक कविता बनाओ दीपू।
2: शिक्षक दिवस पे बहुत मजे हैं आते, शिक्षक दिवस पे बहुत मजे हैं आते, कैसे बनाए पूरी कविता हम तो भूल ही जाते।
7: दीपू देखो, तुम अपनी कविता ऐसे बना सकते थे, शिक्षक दिवस पे हम सबको तो बहुत मजे हैं आते, हम सब शिक्षक बन के देखो बहन जी को पढ़ाते। अब कविता सुनाने का नंबर है सुमी का।
8: बहन जी अपनी सबसे अच्छी, करती सबसे प्यार, बहन जी सबसे अच्छी, करती सबसे प्यार। अगली पंक्ति नहीं आ रही है कृष्णा सर।
9: मैं तुम्हारी मदद करती हूँ सुमी, देखो, बहन जी अपनी सबसे अच्छी, करती सबसे प्यार, हाथ जोड़ के प्रकट है करते हम अपना आभार।
7: बहुत अच्छे मिली। मीना, अब तुम बनाओ कोई कविता।
3: जी कृष्णा सर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, ये दिन है बहुत ही खास, पांच सितंबर शिक्षक दिवस, ये दिन है बहुत ही खास।
6: हमें खुशी है बहन जी जैसी टीचर अपने पास।
4: कृष्णा सर, आपने पढ़ाने के तरीके में एक खास बात देखी।
7: खास बात क्या बहन जी? समझ गया, मुझे दो दो बच्चों का जोड़ा बनाकर उन्हें कविता बनाने के लिए कहना चाहिए था, है ना?
4: बिल्कुल ठीक। बच्चों, कुछ पाठ एक दूसरे के साथ अभ्यास करने से, एक दूसरे की मदद करने से ही समझ आते हैं।
2: बहन जी, लेकिन मीना ने तो एक एक बच्चे से ही सवाल पूछे थे।
4: दीपू, पढ़ाई दोनों तरीके से की जा सकती है, अकेले भी और दोस्तों के साथ मिलके भी।
2: मैं समझा नहीं बहन जी।
4: देखो, पहाड़े तुम सबको आते हैं, इसीलिए गणित के सवाल अकेले हल करना तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं था, लेकिन कविता बनाना तुम सबके लिए एक नया काम था। और नए काम में मेरा मतलब नया पाठ सीखने में हमें एक दूसरे की मदद चाहिए होती है, है ना?
2: जी बहन जी।
4: चलो सब बताओ, ऐसा कौन सा काम होता है जो हम क्लास में अकेले कर सकते हैं?
9: पाठ पढ़ के सुनाना।
4: शाबाश मोनू। और कोई काम?
3: ब्लैक बोर्ड पे लिखना।
4: बिल्कुल ठीक मीना। और कोई काम?
7: प्रश्न का उत्तर देना।
4: बिल्कुल ठीक कहा कृष्णा। अब ऐसे काम बताओ बच्चों जो हम सबके साथ मिल के सीखते हैं।
3: बहन जी, जब आप हमें कोई नया प्रयोग सिखाती हैं, तो आप दो दो बच्चों को साथ बैठ के उसका अभ्यास करने के लिए कहती हैं।
4: अब समझे दीपू, कभी कभी पढ़ाई अकेले की जाती है और कभी दोस्तों के साथ।
2: जी बहन जी, समझ गया।
4: कृष्णा सर, एक बार फिर से सिखाओ सबको कविता बनाना, लेकिन इस बार
7: दो दो के जोड़े बना के।
4: हाँ
7: बच्चों, मैं पहली पंक्ति बोलता हूँ और फिर हम सब मिलके कविता पूरी करेंगे, ठीक है?
5: जी कृष्णा सर।
7: तो सुनो पहली पंक्ति। बहन जी अपनी सबसे अच्छी, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी,
3: रोज नया कुछ सीखे उनसे, देखो पूरी क्लास हमारी, सबसे हंस के बात वो करती, बोलती मीठे बोल,
2: नहीं मोल है कोई उनका, वो तो है अनमोल।
7: बहुत अच्छे दीपू।
3: खेल खेल में हमें सिखाती नए नए वो पाठ, हमको सबसे अच्छा लगता बहन जी का ही साथ,
7: बात बात में हमें सिखाती नई अनोखी बात, शिक्षक दिवस पे नमन करे हम जोड़ के अपने हाथ।
4: प्यारे बच्चों, तुम्हारी इतनी प्यारी कविता सुन के तो खुशी से मेरी आंखें भर आईं। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से ये शिक्षक दिवस और भी खास हो गया।
6: खास हो गया, कविता बनाने में हर बच्चा पास हो गया।
0: भाई वाह, मजा आ गया मीना की क्लास में। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता।
3: नया सीखने को है मिलता, पता चले नई बात,
6: जब हम अपनी क्लास में पढ़ते अपने दोस्त के साथ।
0: भाई वाह, क्या कविता सुनाई है अपनी मीना और मिट्ठू ने। चलो अब एक गाना भी हो जाए।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ
2: शब्द बनाओ।
1: हाँ, मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है?
2: मुहावरा।
1: हाँ, तो आज का शब्द है रुमाल। चलो अब रुमाल के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
3: बहन जी, रुमाल का पहला अक्षर है र और र से होती है रेत।
1: शाबाश सुमी। और रेत से जुड़ा मुहावरा?
4: रेत के महल बनाना।
1: हाँ कृष्णा, और इस मुहावरे का मतलब होता है
4: किसी असंभव काम को करने के सपने देखना।
1: बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों अगला शब्द बनाओ।
5: र के बाद रुमाल में आता है म और म से होती है मिट्टी।
1: बिल्कुल ठीक रानो। और मुहावरा?
5: मिट्टी के भाव बेचना, मतलब किसी वस्तु को बहुत सस्ते में दे देना।
1: हाँ
6: बहन जी, र और म के बाद रुमाल में आता है ल और ल से होता है लोहा।
1: शाबाश मीना। और लोहे से जुड़ा मुहावरा?
6: लोहे के चने चबाना, मतलब कोई बहुत मुश्किल काम करना।
1: शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप त्रिवेदी, योर इंग्लिश टीचर। एंड एज यू ऑल नो, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वी लर्न इट समथिंग अबाउट दिस टॉपिक टुडे, वी रीड इट कम्प्लीटली। तो स्टूडेंट्स, आजकल हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं और बुक का नाम है गोल्डन रेस। लेसन अभी जो चल रहा है वो है लेसन 6। टेक्स्ट हम सबका पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं, ग्रामर पोर्शन में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में है होते हैं, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं आज। तो फर्स्ट है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो कहने वाले के वास्तविक जो शब्द हैं वो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए होते हैं। सेकेंड, इन द इनडायरेक्ट स्पीच द इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है एंड रिप्लेस्ड बाय द वर्ड दैट, और उनके बीच में क्या लगा देते हैं, एक वर्ड होता है दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और खासकर किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। द कॉमा आफ्टर द मेन वर्ब्स डिसअपीयर्स, और मेन वर्ब के बाहर जो कॉमा होता है वो भी चला जाता है। नंबर 4, द टेंसेस एंड द प्रोनाउंस आर ऑल्सो चेंज्ड। टेंस और जो प्रोनाउन होते हैं, काल और सर्वनाम, वो भी बदल दिए जाते हैं। 5th है, वर्ड्स दैट इंडिकेट्स नियरनेस, जो पास के शब्द होते हैं, आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स दैट सिग्निफाई डिस्टेंस, दूर के शब्दों में वो बदल दिए जाते हैं। ओके, लेट्स गेट फेमिलियर विद सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट विल बी ऑफ अवर इमेंस यूज वाइल लर्निंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीता सेड टू गीता, माई मदर सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। इन दिस डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पहला वाला भाग कॉमा के साथ लिखा हुआ है, सीता सेड टू गीता कॉमा, फिर दूसरा वाला भाग इन्वर्टेड कॉमा में है, माई मदर सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, मेरी माता जी मधुर गीत गाती हैं। सेड टू इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पहला वाला भाग है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सीता वाज, सीता इज द सब्जेक्ट, सीता सब्जेक्ट है ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड गीता इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। माई मदर सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, और माई मदर सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स आर द एक्चुअल वर्ड्स सेड बाय सीता टू गीता, और ये वो शब्द है जो सीता ने गीता से कहे विद इन इन्वर्टेड कॉमास, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो दूसरा वाला भाग जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, और यही सब हमें पढ़ना है कि हम कैसे इनको पढ़ेंगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। भाई डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इंपॉर्टेंट रूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, एडेड, ऑब्जर्व्ड, रिमार्क्ड, प्रॉमिस्ड एक्सेट्रा। तो जो सेड टू होता है वो टोल्ड में, एडेड, ऑब्जर्व्ड, रिमार्क्ड, प्रॉमिस्ड, इन सब में बदल दिया जाता है। सेड इज changed into told, और केवल said जो है वो told में बदल सकते हैं, only when it is followed by an object, और वो भी तब जब object हो बाद में, नहीं तो नहीं. If there is no object, object नहीं है तो said will not change, तो said को change नहीं करते. The other verbs may be used in reported speech depending upon the manner and the purpose of the direct speech. और जो दूसरी वर्ब्स होती हैं खासकर रिपोर्टेड स्पीच में, वो वाक्य के अनुसार बदलती हैं या उद्देश्य के अनुसार बदलती है. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू श्याम, जैसे कि उदाहरण के लिए उसने श्याम से कहा आई एम गोइंग टू अजमेर, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. तो अब ही टोल्ड श्याम दैट ही वॉज गोइंग टू अजमेर, उसने श्याम को बताया कि वो अजमेर जा रहा था. रमेश सेड राहुल इज वेरी क्लेवर, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. रमेश रिमार्क्ड दैट राहुल वाज वेरी क्लेवर, इस तरीके से बदलते हैं. सेकंड पॉइंट है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो चेंज्ड, उसमें फिर जो टेंस है वो भी बदल दिया जाएगा इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. ही सेड, देखिए ये पास्ट टेंस हो गया, ही सेड पास्ट सिंपल, आई एम वेटिंग, ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग, ये चेंज हो गया ना. नंबर तीन, वी कैन लर्न इट इन अ बेटर वे थ्रू दिस टेबल, अब एक नीचे टेबल दी हुई उससे हम समझ सकते हैं इसको. एक तरफ है लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट और राइट की तरफ है इनडायरेक्ट. देखिए प्रेजेंट इनडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल पास्ट इनडेफिनिट या पास्ट सिंपल में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इनडेफिनिट या सिंपल बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बदलते हैं, अब इसमें वो भी देख लीजिए, टेबल में सब कुछ दिया हुआ है. ऑक्सिलरी वर्ब विल, हम ये मॉडल्स में भी पढ़ चुके हैं, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू, इज आई एम आर वाज वर, हैज हैव हैड, वाज वर had been, okay. Fourth rule है, if the reporting verb is in present, if the reporting verb is in present tense or future tense, the tense of the verb in the reported speech will not change. अगर reporting verb present or future में है, यानी पहला वाला भाग, तो जो second भाग है हमारा reported speech का, वो नहीं बदलता. जैसे देखिए madam says, अब ये madam says क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल, से के साथ एस लगा है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मैडम सेज दैट शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, टेंस भी चेंज नहीं हुआ. मीना विल से ही वॉज रॉन्ग, मीना विल से दैट ही वॉज रॉन्ग, यह भी चेंज नहीं हुआ. एक्सेप्शन इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज सम यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य, जैसे हमेशा जो चीज होने वाली है, जैसे सूरज पूरब से उदय होता है, द टेंस ऑफ द वर्ब विल नॉट बी चेंज्ड, तो वो नहीं चेंज होगा. द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, he told me that he goes for a walk daily in the morning. Next, fifth rules jo hai wo, rules for changing pronouns. Ab pronoun ke liye bhi ek table di hui hai, let us first have the table of pronouns, type of persons and therefore, pronouns, persons, subjective, objective, I, me, first person, okay. तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, ओके, शी का हर, इट का इट रहेगा, दे का देम हो जाएगा. कुछ कुछ पैसिव वॉइस जैसा है, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, मे माइन माई सेल्फ, अवर अवर्स अवर सेल्व्स, योर योर योर सेल्व्स, योर सेल्फ योर सेल्व्स, हिज का हिमसेल्फ, हर हर्स हर सेल्फ, इट्स इट्स सेल्फ, दियर दियर्स दियर सेल्व्स. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी दूसरे वाले भाग के रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं. ही सेड, जैसे यहां पे ही सब्जेक्ट है, आई विल डू इट माई सेल्फ. ठीक है, तो अब इसमें आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको कैसे चेंज करेंगे. ही सेड दैट ही वुड डू इट हिमसेल्फ इन डायरेक्ट स्पीच. सेकेंड, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. शी सेड टू मी यू आर रॉन्ग, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग. अब मी था तो मी का आई हो जाएगा. थर्ड पर्सन प्रोनाउंस रिमेन अनचेंज, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं. आई सेड टू हर शी हेल्प्ड हर मदर इन कुकिंग, आई टोल्ड हर दैट शी हैड हेल्प्ड हर मदर इन कुकिंग. तो नेक्स्ट रूल जो है, रूल नंबर फिफ्थ, द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. ठीक है, वे हमने शुरू में पढ़ा था आज ही, तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, नियरनेस डिस्टेंस में, पास के शब्द दूर के शब्दों में, जैसे नाउ, एन ओ डब्ल्यू, नाउ का हो जाएगा देन, टी एच ई एन, हियर का देयर, एच ई आर ई का टी एच ई आर ई, टुडे का दैट डे. ठीक है, टुडे का यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, टुमोरो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, दिस का दैट, दीज का दोज, अगो का बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट, दस सो, नेक्स्ट डे वीक, द फॉलोइंग डे वीक, मंथ. ठीक है, द फॉलोइंग मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर एक्सेट्रा का द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर, ईटीसी ईटीसी, जस्ट का देन, जस्ट यानी जे यू एस टी का टी एच ई एन, जस्ट का भी देन. सिक्स्थ रूल्स है, रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोगेटिव को भी हमें चेंज करना आना चाहिए. सेड एज ए रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू asked or inquired of, asked या inquired of में हो जाता है said, interrogative में. inverted commas and question marks are removed, ये तो पता ही है आपको, inverted commas question marks को हटा दिया जाता है. questions by the finite verb or its auxiliaries in which the answer is in yes or no, we introduced if, whether, as connector of both the clauses. यहां पर yes या no वाले question है तो वहां पर that की जगह if या whether लगा दिया जाता है. होता है in WH type questions, WH words are used at the beginning of the reported speech. The word order is changed from that of a question to that of an ordinary statement. और interrogative को affirmative बना दिया जाता है. अब यहाँ पे कुछ examples दिए हुए हैं, तो उन examples को हम पढ़ेंगे और उन examples के अनुसार फिर हमें थोड़ा सा picture और clear हो जाएगी. तो ठीक है, examples पढ़ते हैं अब हम. The judge asked, देखिए the judge asked, ये reporting verb है. How old are you? Sohan जो जज ने सोहन से पूछा कि आपकी उम्र क्या है, द जज आस्क्ड सोहन हाउ ओल्ड ही वाज, द जज आस्क्ड सोहन, अब सोहन जो है ऑब्जेक्ट बन गया है। सेवेंथ, रूल्स फॉर द चेंजिंग ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आज्ञार्थक वाक्यों को कैसे बदलना है, द एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड रिक्वेस्ट ऑर्डर और एडवाइस इज यूज इन द रिपोर्टेड स्पीच। टू, इन्फिनिटिव इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इज यूज। एग्जाम्पल देखिए इम्पेरेटिव का, ही सेड टू मी प्लीज कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड, ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप माई मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। देखिए वर्ब से पहले टू लगा दिया हमने, है ना, और प्लीज हट जाएगा। ओके दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, नेगेटिव सेंटेंस है, द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक अ नॉइज। और द टीचर दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज। आठवां, इन रिपोर्टिंग exclamations and wishes the reported speech is introduced by some verbs expressing exclamation or wish, such verbs are, देखिए इसको समझिए, reporting verb में अगर exclamation wishes जैसे कुछ शब्द हैं तो उसमें इसी तरह के words जोड़ दिए जाते हैं, जैसे exclaim चिल्लाना, विश किसी के लिए दुआ करना, कॉन्ग्रेचुलेट अभिवादन मतलब बधाई देना, अप्लॉड भी एक तरह से प्रशंसा करना एक्सेट्रा। अब एग्जांपल देखिए, ही सेड अलास इट इज अ ग्रेट लॉस, यानी ये दुख का वाक्य हो गया ना, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट इट वाज अ ग्रेट लॉस, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, He wished me that I should live long. Change the following sentences into indirect speech. अब ये यहां से एक्सरसाइज शुरू हो गई है, तो आई थिंक कि हम एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर मंडे से हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सेड, देखिए जॉन सेड इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल जॉन सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा में आई वर्क एवरी डे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। जॉन सेड दैट ही, आई का क्या हो जाएगा ही, क्योंकि जॉन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है, इसलिए फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं तो वो है थर्ड पर्सन, तो ये ही आई भी थर्ड पर्सन में हो जाएगा, यानी ही वर्कड, प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल हो जाएगा, ही वर्कड एवरी डे, जॉन सेड दैट ही वर्कड एवरी डे, मोहन सेड, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, आई एम प्लेइंग द गिटार नाउ, तो मोहन सेड दैट ही वॉज प्लेइंग द गिटार देन, नाउ का देन हो जाएगा, ही सेड He has bought a new car recently. He said that he had, present perfect है, past perfect में बदल जाएगा, He had bought a new car recently. Shalini said, I will go to cinema tomorrow. Shalini said that she would go to cinema tomorrow. Will का would हो जाएगा. Sita said to me, Sita told me that शी, आई का शी हो जाएगा क्योंकि सीता क्या है, सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का और वो रिमाइन है, तो शी कैन का कुड हो जाएगा, शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मदर सेट, सिक्स्थ है, मदर सेट टू द सन, माँ ने बच्चे से कहा आई हैव कुक्ड पास्ता फॉर यू, मदर टोल्ड द सन दैट शी हैड कुक्ड पास्ता फॉर हिम, अब यहां पे यू का हिम हो जाएगा क्योंकि सन भी थर्ड पर्सन है। शी सेड टू मी यस्टरडे आई सॉ द मूवी पिंक, शी टोल्ड मी दैट शी हैड सीन द मूवी पिंक द प्रीवियस डे। तो कुछ एग्जाम्पल्स यानी इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, सिस्टर सेड डोंट पुट दिस टी शर्ट

0: में 20 क्वेश्चंस हैं, अभी हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ आगे चल के हम एक आध क्वेश्चन और। सरला सेड, फिर आई हैव फॉरगॉटन माई ईमेल पासवर्ड। सरला सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन हर ईमेल पासवर्ड। इसमें प्रोनाउन चेंज करना था। ओके, तो ये हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम सेवेंथ लेसन जो है वो उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आप सब इस टॉपिक को पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत यूजफुल है। हमेशा की तरह कुछ ये ग्रामर के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मॉडल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये टॉपिक्स तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, टेंसेस, इसलिए आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड गुड
1: कनाडा
0: बाय।
1: देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अच्छा भूना, मैं जा रहा हूँ, बाय।
1: कहाँ जा रहे हो भैया?
0: मैं स्कूल जा रहा हूँ।
1: स्कूल की तो छुट्टियाँ हो गए, अब फिर भी स्कूल जा रहे?
0: क्या बात कर रही हो, छुट्टियाँ हैं?
1: हाँ।
0: अरे मैं तो भूल ही गया, हमारे स्कूल की तो छुट्टियाँ पड़ गई।
2: लगता है पंकज अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहा है, क्यों पंकज?
0: हाँ दीदी, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ।
2: और स्कूल की जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम सभी बच्चे स्कूल को बहुत मिस करते हैं ना?
1: हाँ दीदी।
2: तो सबसे ज्यादा स्कूल को कौन मिस कर रहा है?
3: मैं।
0: मुझे लगता है मैं मिस कर रहा हूँ।
3: नहीं मैं।
2: मुझे लगता है तुम सबके सब स्कूल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो।
3: हाँ दीदी।
2: तो भुवना, मिस कर रही हो तुम स्कूल को?
1: क्योंकि हम बहुत मजे करती थी स्कूल पे, अब तो बहुत छुट्टियां, हम घर पे रहे, रोज स्कूल जाके फ्रेंड से बात करना, एंजॉय करना, पर घर पे कुछ भी नहीं दीदी, नो मस्ती।
2: नो मस्ती, नो फ्रेंड्स है
1: ना?
2: और सैंडी तुम?
4: हाँ मुझे भी स्कूल की बहुत याद आ रही है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलना कूदना मस्ती करना दोस्तों से बातें करना सबकी याद आ रही है बहुत।
2: खेलना कूदना घर में नहीं हो पाता ना जैसे स्कूल में होता है,
4: टीवी देखो फिर घर पे बोर पूरे दिन।
2: और पंकज तुम स्कूल को क्यों मिस कर रहे हो?
0: मैं स्कूल को मिस कर रहा हूँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ। मुझे अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ हमेशा मस्ती किया करता था, लेकिन घर पे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल अकेला फील कर रहा हूँ।
2: हाँ जब सुबह से शाम तक हम स्कूल में होते हैं तो इतने ढेर सारे फ्रेंड्स हमारे साथ में होते हैं, छुट्टियों में वो सब बहुत याद आते हैं ना?
0: हाँ दीदी।
2: किसी को पढ़ाई की याद आती है क्या?
1: मुझे
3: नहीं।
1: मुझे आती है। हम ना क्लास में पढ़ाई के साथ मस्ती, टीचर्स के साथ इतना एंजॉयमेंट, हम जब पढ़ रहे हैं ना वो एक नया सा हम कुछ सीख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है।
2: अच्छा तो मुझे एक बात बताओ भुवना, तुम्हारे स्कूल की सबसे अच्छी चीज क्या है?
1: अच्छी चीज मतलब हमारी क्लास।
2: तुम्हारी क्लास?
1: हाँ।
2: अच्छा मतलब और क्लास के टीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे फिर तो?
1: हाँ।
2: तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है?
1: मेरी साइंस टीचर।
2: और वो तुम्हारी फेवरेट क्यों है?
1: क्योंकि वो इतनी अच्छे से समझाती है और हमारे साथ जोक्स बोलती है, एंजॉय करती है, सब कुछ करती है, जैसे हमारी बेस्ट फ्रेंड हो।
2: अरे वाह, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करती है और एंजॉय हाँ। भी करती है, इसीलिए बच्चों की वो फेवरेट टीचर है।
1: हाँ।
2: अरे वाह, और सैंडी तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है अब तक?
4: अब तक तो फिफ्थ तक एक मैम थी, मंजू मैम, जो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी।
2: और वो तुम्हारी फेवरेट क्यों थी?
4: क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी और मस्ती मजाक स्टोरी सुनाती थी हमें।
2: स्टोरीज भी सुनाती थी?
4: हाँ।
2: और बच्चों को तो स्टोरी सुनना बहुत
4: हाँ,
2: अच्छा
4: बहुत।
2: लगता है ना? तो क्या कभी उनसे डांट पड़ी है?
4: मार भी खाई है मैंने तो।
2: मार भी खाई है?
4: हाँ।
2: क्यों?
4: क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है ना।
2: अच्छा मंजू मैम इंग्लिश पढ़ाती थी?
4: हाँ।
2: क्यों, आप इंग्लिश का होमवर्क नहीं करते थे क्या?
4: करता था पर उतना नहीं जितना करना चाहिए,
0: हमेशा गलतियाँ।
2: हमेशा गलतियाँ?
4: हाँ।
2: और पंकज की फेवरेट टीचर कौन है?
0: एक्चुअली मेरी फेवरेट टीचर कोई नहीं है।
2: फेवरेट टीचर कोई नहीं है? इतने साल स्कूल गए और एक भी फेवरेट टीचर नहीं है?
0: सब फेवरेट है,
2: मतलब सारे टीचर्स अच्छे होते हैं।
0: हाँ।
2: क्योंकि हमें हर टीचर से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है।
4: हाँ दीदी।
2: कम ज्यादा या सब्जेक्ट की नॉलेज तो हमें वही दे पाते हैं, है कि नहीं?
0: हाँ दीदी।
2: ठीक है, ये तो हुई टीचर्स की बात, अब मुझे बताओ तुम लोग के फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं स्कूल में?
4: मेरे अकाउंट।
2: अच्छा सैंडी को तो अकाउंट्स पसंद है।
0: और मुझे बायो पसंद है।
2: बायो पसंद है। और भुवना को?
1: सोशल।
2: सोशल साइंस। अच्छा सैंडी तुम्हें अकाउंट्स क्यों पसंद है?
4: इजी लगता मुझे अकाउंट ऐसे,
2: मतलब तुम्हें कैलकुलेशंस अच्छे लगते
4: हैं।
2: और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है?
4: बीएसटी।
2: बीएसटी?
4: हाँ, बिजनेस स्टडी।
2: बिजनेस स्टडीज, क्यों? उसमें बहुत थ्योरी होती है।
4: हाँ सारे टॉपिक जैसे, तो बोरिंग बोरिंग लगता है।
2: पर सबसे मजा आता है कैलकुलेशंस करने में सैंडी में।
4: हाँ।
2: तो ठीक है चलो, अब कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी किसी को तो हम किसकी हेल्प लेंगे? सैंडी
0: की। मेरी।
2: ठीक है, और पंकज तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
0: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बायो।
2: बायो? बायो में क्या अच्छा लगता है?
0: बायो में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है।
2: सब कुछ?
0: मुझे बायो पढ़ना बहुत पसंद है।
2: क्या उसमें डायग्राम्स होते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में या फिर और क्या ऐसी चीज़ें जो तुम्हें अच्छी लगती है बायो में?
0: बायो में तो सब कुछ होता है, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो सारी चीज़ें ही पसंद है मुझे।
2: मतलब तुम्हें उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना अच्छा लगता है?
0: मुझे जीवों के बारे में जानना बहुत पसंद है। किसी
2: जीवों के बारे में? अच्छा मतलब उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सब तुम्हें जानना बहुत अच्छा लगता है।
0: जी दीदी।
2: और भुवना तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
1: सोशल साइंस।
2: वो सब्जेक्ट तुम्हें क्यों अच्छा लगता है?
1: क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
2: बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है हमें भी तो बताओ।
1: वो हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री में जाते हैं हम कहीं खो जाते हैं।
2: अच्छा, हिस्ट्री पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है?
1: और सिविक्स भी।
2: और सिविक्स भी, मतलब जानकारियाँ मिलती हैं कि हमारे देश में और दुनिया में पहले क्या क्या हुआ है, तो वो सब जानकारियाँ इकट्ठा करना आपको बहुत अच्छा लगता है?
1: हाँ
2: हाँ,
1: हमारा प्रेजेंट स्टेट कैसा है, हमारा पास्ट स्टेट कैसा है, और ये मुझे मेरी एम के लिए भी बहुत सहायता करेगी कि मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है।
2: जब हम छोटे से ही हमारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा तैयार करें।
0: क्या बात है, भुवना को हिस्ट्री इतनी पसंद है कि वो उसमें खो जाती है, और हम जब पढ़ते थे तो सो जाते थे।
2: हिस्ट्री पढ़ते हुए सो जाते थे?
4: पंकज ने मार भी खाई है इसके लिए।
2: अच्छा, क्यों, क्या हुआ था संडे?
4: क्योंकि हम क्लास में बैठे थे, मैं पंकज पास में, सर हमें पढ़ा रहे थे, सोशल साइंस में हिस्ट्री था, पंकज सो गया बुक्स रख के, मुंडी नीचे करके सो गया, और सर पढ़ा रहे हैं। सर ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा मुझसे पूछा, तो मैं खड़ा के आंसर दे रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं तेरे पास वाले को खड़ा कर, तो पंकज तो सो रहा है, फिर सर ने आके एक थप्पड़ मारा पंकज को।
2: तो मतलब पंकज को हिस्ट्री इतनी बोरिंग लगती थी कि उसको नींद आ जाती थी?
4: हाँ दीदी, मुझे ही बोरिंग।
2: आपको भी बोरिंग लगती थी?
4: पर मुझे जगना पड़ता था इसके लिए।
2: अच्छा, अरे वाह, मतलब दोस्ती के लिए पढ़ाई।
1: मुझे तो ज्योग्राफी में सोना चाहता था।
2: क्यों, ज्योग्राफी में नींद क्यों आती?
1: ना बोरिंग दीदी की, ये नेचर वो सब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, और मेरी सोशल टीचर इतनी स्लो समझाती है ना, किसी को भी ऐसा लगता है रात हो गई चलो सोते हैं, दादी माँ की कहानियाँ सॉन्ग्स ऐसी सुनाती है क्लास।
2: हाँ, क्योंकि हम लोग का एक एक इंटरेस्ट होता है, और जो टॉपिक हमें अच्छा लगता है वो पढ़ने में तो मजा आता है, पर स्कूल में तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है।
4: हाँ दीदी,
2: है ना। हाँ। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो सब में जगाना चाहिए।
1: हाँ दीदी,
2: ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास हो जाएं, और बाद में जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है उसे परस्यू करें।
0: हाँ दीदी,
2: है ना।
1: हाँ।
2: अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है या और कुछ भी होता है?
1: स्पोर्ट्स
2: और
0: मस्तियाँ
2: और कल्चरल एक्टिविटीज।
1: हाँ, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे,
2: स्पोर्ट्स डे, इतनी सारी चीजें होती है ना स्कूल में।
0: पिकनिक भी होती है दीदी।
2: पिकनिक और मस्ती तो सबको याद आती है, पहले मुझे ये बताओ स्पोर्ट्स कौन कौन खेलता है यहाँ पे?
1: मैं
0: भी।
2: सब लोग खेलते हैं। भुवना, तुम कौन सा गेम खेलती हो?
1: मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ।
2: बास्केटबॉल, अच्छा आपको बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है?
1: हाँ।
2: अरे वाह। और सैंडी?
4: क्रिकेट।
2: क्रिकेट, तो मतलब तुम स्कूल की क्रिकेट टीम में हो क्या?
4: ऐसे गए नहीं कभी, पर खेले हुए।
2: खेले हो? अरे वाह,
4: हमसे अच्छे से खिलाड़ी है स्कूल में।
2: अच्छे अच्छे खिलाड़ी तो होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अपने में एक अच्छी एक्सरसाइज भी है, और उसमें मजा भी तो आता है।
4: हाँ।
2: और पंकज?
0: मुझे भी क्रिकेट पसंद है।
2: और भुवना को कोई और गेम भी अच्छा लगता है क्या?
1: मैं खो खो खेलती हूँ, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला।
2: गोल्ड मेडल, आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन हुआ था यानी?
1: हाँ।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब भुवना बहुत तेज भागती है।
0: तेज तो मैं भी भागता हूँ, मुझे रिले रेस में सेकंड प्राइज मिला।
2: अरे वाह। और सैंडी?
4: मुझे कुछ नहीं मिला। मैं जिमनास्टिक में खेला हुआ।
2: अच्छा। हाँ। उसमें क्या करते हो?
4: उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है,
0: योगास।
4: योगास, हैंड स्टैंड, हाथ पे खड़े होना, फिर
0: गार्ड व्हील,
4: फिर उल्टी डाई, बिग बोर्ड।
2: और ये सब आपको कौन सिखाता है?
4: ये टीचर,
0: पीटीआई टीचर।
2: पीटीआई टीचर, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। भुवना, आपने भी ये सब सीखा है क्या?
1: मैंने तो हुला हुप सीखी, जो रिंग है, रिंग
0: अपने वेस्ट के ऊपर घुमाना।
1: मैंने रिंग सीखी है, वो मैं घुमाती हूँ एटलीस्ट 2 मिनट्स तक।
2: 2 मिनट्स तक आप उस रिंग को घुमाते हो?
1: हाँ, ये तो मिनिमम है।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है।
1: हाँ।
2: इसको तो आपको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। बच्चों, स्पोर्ट्स के और सारे फायदे भी होते हैं, अगर आप आगे खेलते हैं स्पोर्ट्स में तो फिर उसके थ्रू आपके एडमिशन्स में भी आपको मदद मिलती है, और वो सर्टिफिकेट्स आगे भी काम में आते हैं, इसलिए हमें स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहिए।
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा ये बताओ मुझे, आप लोगों के क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताओ।
4: मेरी क्लास में एक फ्रेंड है नितेश मेरा, जो मेरे साथ बैठता है, अच्छा फ्रेंड है, जो हमेशा मेरे साथ देता, हमेशा मेरे साथ रहता है। क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, साथ में मस्ती करते हैं
2: क्लास में। अच्छा एक बात, कभी कुछ ऐसा हुआ जब आपकी पूरी क्लास ने इकट्ठा होकर साथ में मस्ती की हो?
4: हाँ, हमने होली खेली थी।
2: होली?
4: हाँ, हमारे स्कूल में से होली अलाउ नहीं है खेलने का, पर हमारी क्लास, कॉमर्स क्लास ने शुरुआत तो मैंने करी थी, एंड पूरी पूरी क्लास ने करी। उसके लिए मुझे पनिश भी किया गया था मैम ने।
2: पनिशमेंट मिला था? क्या पनिशमेंट मिला था सैंडी को?
4: जो हम लोगों ने कचरा करा था उससे मुझे झाड़ू निकालना पड़ा था।
2: मतलब झाड़ू से पूरी सफाई की?
4: हाँ, सफाई करनी पड़ी मुझे।
2: बात तो सही है, जब गंदा किया है तो साफ तो करना पड़ेगा।
4: पर मैंने ज्यादा नहीं खेला था, थोड़ा सही बस एक को लगाया था।
0: शुरुआत तो तुमने की,
4: शुरुआत तो मैंने कर दी थी।
2: और पंकज तुम्हें ऐसा कुछ याद है?
0: हाँ।
2: क्या?
0: एक बार हमारे क्लास में टीचर्स नहीं थे तो मैं और मेरे सारे क्लासमेट्स क्लास में मस्तियाँ कर रहे थे, और हमारे स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं था लेकिन हम फ़ोन लेके जाते थे और क्लास में गाने सुनते थे। तो गाने सुन रहे थे और प्लास्टिक की बॉल से कैच कैच खेल रहे थे। इतने में हमारे एक टीचर हैं, बायो के टीचर, वो क्लास में एंटर कर गए और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सब अपनी जगह पर बैठ के भाग के और बॉल क्लास में ही छोड़ गए। मैंने देखा कि बॉल अभी बाहर पड़ी है और सर अभी एंटर ही करने वाले थे, जैसे ही मैंने बॉल उठा के अपने पास रख लिया। लेकिन मैं जब बैठने गया अपनी प्लेस पे तो सर ने मुझे देख लिया जाते हुए, तो उन्हें लगा कि मैं क्लास में मस्तियाँ कर रहा था और उन्होंने बॉल की आवाज़ सुन ली थी बाहर से। तो वो मेरे पास आए और कहा कि तुम बॉल से खेल रहे थे? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो सब चेकिंग करवाओ अपनी बैग। तो इतने में मैंने कह दिया हाँ मैं ही खेल रहा था बॉल से। तो मेरे सारे दूसरे फ्रेंड्स तो बच गए लेकिन मैं फंस गया, और एक लड़का और था जो फ़ोन में गाने चला रहा था, उसने गाना बंद नहीं किया था तो उसका फोन पकड़ लिया था सर ने।
2: क्योंकि कभी कभी जब टीचर्स अचानक से आते हैं तो हम डर जाते हैं।
4: हाँ।
1: होली से याद आया दीदी कि जब मैं होली होती है ना, जब मैं बस में चुपचाप बैठ जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, एक लड़का ने स्टार्ट किया दीदी इस होली पे, फुल बॉटल टू बॉटल पानी मेरे मुंह पर फेंक दिया। इतना बुरा लगा, मैं उनको जाकर क्या करूँ दीदी, और सारे शुरू हो गए, यहाँ पानी वहाँ पानी, फिर सीट पे भी पानी, और मेरे साइड जो बैठ रहा था ना वो भी पानी। इतना पानी ना देकर मुझे ना इरिटेशन आ गया, तो मैं नेक्स्ट डे स्कूल भी नहीं गई, इतना बुरा लगा मुझे। तो छोड़ दो ये तो एक, और सारे जगह पानी पानी इतना दीदी, मैं गीला गीला कर गई। मेरी मम्मी पूछ रही थी तू क्या नहा के आई, ऐसी पूछ रही, मैं क्या बोलूं दीदी, फुल टोटल बस बस ऐसा हो रहा था लाइक समुद्र जैसा बन गया। और वो ना कल वो बच्चा बोल रहा होली तो है एंजॉय करो, बस भी कोई एंजॉय करता है दीदी, क्या इतना पानी।
2: एक्चुअली स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं ना।
4: हाँ दीदी।
2: तो किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को नहीं आता।
1: दीदी आपने कभी खेला आपके बचपन में?
2: मैंने तो बहुत होली खेली है।
4: आपको होली पसंद है दीदी?
2: हाँ मुझे होली बहुत पसंद है।
4: मुझे भी।
2: स्कूल में तो हमें परमिशन नहीं थी होली खेलने की उस
4: टाइम।
1: दीदी आप सोच रहे थे हमारे स्कूल में परमिशन थी क्या? किसी भी स्कूल में परमिशन नहीं होती दीदी, ऐसे ही खेलते स्टूडेंट्स तो।
2: हाँ मुझे भी याद है, एक बार हमारा 10th का बोर्ड का एग्जाम था और हम लोग दूर थोड़ा सा जाते थे, बस को थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो वहाँ से लौटते समय हमारी बस में होली शुरू हुई थी, और फिर एक गर्ल्स की बस थी एक बॉयज की बस थी, दोनों बसेस में जो होली शुरू हुई थी कि 15 किलोमीटर तक वो होली चलती रही थी।
4: मजा आ गया होगा फिर तो।
2: फेस्टिवल्स में भी स्कूल में मजा आता है ना?
1: हाँ,
2: और कोई ना कोई प्रोग्राम भी तुम लोग के स्कूल्स में जरूर होते होंगे।
1: हमारे में आर्ट के प्रोग्राम, साइंस फेयर होते हैं। मैंने एक बार साइंस फेयर में पार्ट ली तो मैं सिलेक्ट हो गई। मैंने एक सर्क्यूट बनाई जिसमें एक हट होती है, और मैंने एक सर्क्यूट बनाई उसमें एक बच्चा रहता है लेकिन उसको लाइट नहीं है। मैंने एक फॉर्मूला यूज करके सर्क्यूट बनाई ताकि उसको लाइट आए अंदर।
2: अच्छा आपने बनाया?
1: हाँ।
2: अरे वाह, तो इसके लिए तो आपके टीचर्स ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया होगा।
1: हाँ, जो भी वहाँ आता है हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमारे चीफ गेस्ट थे, एक आर्ट एंड कल्चरल प्रोग्राम के कुछ हेड थे, तो वो आए तो मेरे मुझको बोला वेरी गुड, मुझे बहुत वो कॉम्प्लीमेंट बहुत खुश लगी।
4: साइंस फेयर
2: ये तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको अगर साइंस पसंद है, कोई भी सब्जेक्ट पसंद है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो कुछ नया नया निकल के आता है।
4: हाँ दीदी। हाँ।
2: है ना? और यहाँ पे डांस किसको पसंद है, डांस या सिंगिंग?
1: मुझे
0: मुझे
4: मुझे।
2: अरे वाह, सबको
4: आता
2: पसंद
4: है डांस?
2: कोई नहीं, पसंद तो है ना।
4: हाँ, बहुत।
2: और डांस एंजॉय करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। भूवना ने डांस सीखा है क्या?
1: मैं डांस नहीं सीखती हूँ, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम की शिव तांडव की मैंने।
2: अच्छा आपने शिव तांडव किया?
1: हाँ।
2: कब?
1: हमारे स्कूल पे अम्मा आई थी जो स्कूल का हेड है, तो उन्होंने ये स्कूल बिल्ड किया, और उन्होंने जब आते वो उनको हगिंग सेंट बुलाते हैं, तो सारे लोग हग करते हैं और चलते, ऐसा बोलते हैं कि जब उनको हग करते हैं ना कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में, ऐसा बिलीफ है। तो वहाँ जो लोग बैठते हैं ना उनको एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो हम सब लोग अमृता स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते, स्किट, ऐसे मैंने स्किट भी पार्ट

0: इटली स्किट में और मैंने डांस की शिव तांडव।
1: शिव तांडव किया आपने, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ। और लोगों ने भी पसंद किया होगा। हाँ। क्योंकि शिव तांडव करना तो बहुत डिफिकल्ट है।
0: हाँ, है ना? मैंने ना एक वीक टू वीक प्रैक्टिस की बैठ के।
1: उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं भुवना?
0: लाइक तब ना शिव की थर्ड आई ओपन होता है, तो बहुत एंगर ऐसा होना चाहिए
1: आपके डांस में, वो दिखना चाहिए और एक्सप्रेशन। हाँ। में भी है ना। अरे वाह। और सैंडी आपने कुछ किया है या कभी स्कूल में ऐसा परफॉर्मेंस?
2: नहीं, मैंने कभी नहीं किया।
1: सिंगिंग, डांसिंग, स्किट?
2: मुझे इंटरेस्ट नहीं।
1: इंटरेस्ट नहीं है। हीरो किसको बनना है यहाँ पे?
2: बनना तो मुझे भी है।
1: फिर डांसिंग और स्किट?
3: हीरो तो सिर्फ पंकज ही बनेगा।
2: नहीं, मैं बनूंगा।
1: अच्छा, पंकज ने तो जरूर पार्टिसिपेट किया होगा। अभी हीरो बनना है पंकज को, तो कुछ तो किया होगा। पंकज बताओ।
3: हाँ, मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था।
1: अच्छा, कब?
3: शांति उनमें ही किया था।
0: ग्रुप डांस था भैया?
3: ग्रुप डांस भी था और सिंग सोलो भी था।
0: ओ, आपने सोलो भी की?
1: कौन से सॉन्ग पे किया था?
3: ग्रुप डांस किया था, बम बम बोले, जो तारे जमीन पे का सॉन्ग है उस पे किया था।
1: ठीक है, कोई नहीं। और बताओ, तुम लोग के स्कूल में और किस किस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जिनको तुम सबसे ज्यादा इंजॉय करते हो?
2: रिपब्लिक डे। और
0: मैं स्पोर्ट्स डे को इंजॉय करती हूँ दीदी, क्योंकि सर मुझे हर बार कराटे को सेलेक्ट करते हैं और मैं ब्रिक्स को ब्रेक करती हूँ।
1: अच्छा, आप कराटे में ब्रिक्स को ब्रेक करते हो? कितने ब्रिक्स को ब्रेक करते हो आप?
0: एक साथ दो ब्रिक्स को ब्रेक कर सकती हूँ।
1: अरे वाह,
2: तेरी?
0: क्योंकि ग्रीन बेल्ट है ना।
1: ग्रीन बेल्ट कराटे?
2: अच्छा,
1: में
2: तुम जूडो खेली हुई हो?
1: कराटे?
2: कराटे, हाँ, सॉरी, कराटे।
1: वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। कराटे, जूडो, ऐसा कुछ तो हम सबको।
0: और पिरामिड्स भी बनाते हैं हम।
1: पिरामिड बनाते हो?
2: तो भुवना से डर के रहना पड़ेगा।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपके स्कूल में ये सिखाया जाता है?
0: हाँ।
1: कराटे की क्लास होती है डेली?
0: हाँ, होती है, एवरी फ्राइडे होती
1: है। एवरी फ्राइडे? अरे वाह। और पंकज और सैंडी?
2: हाँ दीदी।
1: आप लोगों को क्या अच्छा लगता है इन प्रोग्राम्स में?
2: मुझे, हमें तो क्रिकेट ही बहुत पसंद है।
1: जैसे रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे पे प्रोग्राम होता है, तो उसमें सबसे अच्छा क्या लगता
3: sports
1: है?
3: स्पोर्ट्स डे।
1: स्पोर्ट्स डे अच्छा लगता है?
3: हाँ दीदी,
1: क्योंकि स्पोर्ट्स में हम लोग खेलते हैं गेम्स।
3: हाँ, स्पोर्ट्स में सब कुछ आता, मस्तियाँ करते।
1: अच्छा, लेकिन मैंने सुना सिंगिंग तो यहाँ पे सबको पसंद है।
3: सिंगिंग?
1: तो फिर कभी स्कूल में गाना नहीं गाया?
0: दीदी, मैं स्कूल में क्वायर ग्रुप में हूँ, तो मैं रोज गाना, प्रेयर्स, वो सब में ही गाती हूँ।
1: अच्छा, आप रोज गाना गाते हो?
0: नहीं, प्रेयर्स होते हैं ना रोज स्कूल को स्टार्ट करने से, नेशनल एंथम में, और मेरी फ्रेंड रोज क्वायर ग्रुप में गाते हैं।
1: अरे वाह। और आप लोग की मॉर्निंग प्रेयर्स में आप लोग कुछ नहीं करते?
3: मैंने,
2: हम पीछे खड़े रहते हैं।
3: मैंने अपनी 4th to 6th क्लास में मैंने प्रेयर्स की है।
1: प्रेयर्स की है? क्योंकि वो प्रेयर्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं स्टेज पे आके?
3: हां, मैंने एक बार रिपब्लिक डे पे सिंगिंग भी की थी।
1: अच्छा, उसके बाद बंद क्यों कर दिया तुम लोगों ने?
2: था नहीं, मुझे तो
1: कोई तो रीजन होगा, सोच के बताओ।
2: अब अच्छा नहीं लगता, पहले थोड़ा
1: अच्छा नहीं लगता या कोई और वजह है?
0: स्टेज फियर
1: कि दोस्त क्या कहेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, है ना?
3: हाँ, लेकिन जब छोटे थे तब तो ये सब समझ में नहीं आता था।
1: और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये फियर्स हमारे अंदर आ जाते हैं।
3: हाँ दीदी,
1: लेकिन फियर्स को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताओ?
2: नहीं पता, आप बताओ दीदी।
1: भुवना, आप बताओगे?
0: मुझे लगता है एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
1: फियर्स को फेस करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है जब आप फियर को फेस करने की बस हिम्मत दिखाते हो। ट्राई तो करो, एक बार आप फेस करोगे फिर कॉन्फिडेंस आता जाएगा।
0: Never lose hope.
1: हाँ, और स्कूल तो बच्चों ऐसा टाइम होता है जब आपको ये सब मौके मिलते हैं।
3: हाँ दीदी,
2: हाँ दीदी।
1: और बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सब मौके हमें उतना नहीं मिल पाते, है ना? तो हाँ, इसीलिए अगर आपके अंदर कोई फियर हो, दोस्त क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, गलती हो गई तो ये सब भूल के हमें ट्राई करना चाहिए, ताकि अपनी गलतियों से हम सीखें और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए।
2: ओके दीदी।
1: ओके
0: ओके।
1: और
0: दीदी, आपको पता है मैं स्कूल में टॉप भगवत गीता सिंगर हूँ।
1: अच्छा, आप भगवत गीता गाते हो?
0: हाँ।
1: पूरी?
0: पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी चैप्टर्स पता है मुझे।
1: तो आप हमें कुछ गा के सुनाओगे?
0: मैं एक श्लोका सुनाऊंगी 12th चैप्टर की। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाम्।
1: अरे वाह बोना, बहुत ही अच्छा था। इसके जो जोरदार ताली हो जानी चाहिए, है ना?
0: धन्यवाद।
1: तो मतलब स्कूल्स में हमारे ये सब टैलेंट भी बहुत विकसित होते हैं, है कि नहीं?
2: हाँ दीदी।
1: अच्छा मुझे ये बताओ कि स्कूल में क्या कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है?
2: हमारे हेडमास्टर।
1: सैंडी को हेडमास्टर से डर लगता है, और भुवना को?
0: मुझे तो मेरी इंग्लिश टीचर से।
1: इंग्लिश टीचर से डर लगता है?
0: हाँ।
1: क्यों?
0: डांटती रहती, इतनी बुरी मूढ़े में होती है दीदी। जब हमको रॉन्ग काउंटिंग की टेस्ट कॉपी में हम जाते, वो अच्छी मूड में है तो ठीक है मार्क्स डालती है, नहीं तो नहीं डालती है। और वो इतनी डांटती दीदी, ऐसी डांटती है, आर यू अ बालू, आर यू अ चिंपैंजी, ऐसा डांटती है। मुझे डर लगता है उनसे, उनको देख कर ही। क्लास में एंटर होते ही इतना बैड मूड देख के सबको ऐसा लगता है कि आज का दिन गया यार। जब भी ना हमको मैम एब्सेंट होती है ना, इतनी खुशी होती है जी, हम बर्थडे भी मस्ती इतना नहीं कर सकते।
2: आर यू बालू?
1: एक्चुअली टीचर्स के पास, टीचर्स तो बड़े होते हैं तो उनके पास बहुत सारे अपने भी टेंशन्स होते हैं।
0: हाँ,
1: है
0: ये
1: ना?
0: तो
1: और जब हम बच्चे होते हैं तो हम उन टेंशन से बहुत दूर होते हैं। तो इसलिए कभी कभी टीचर अगर बैड मूड में हो या थोड़ा स्ट्रिक्ट हो तो हमको क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए, है ना? क्योंकि टीचर है ना।
0: हाँ दीदी।
1: तो बस इसीलिए जैसे हमारे फ्रेंड्स अपने होते हैं वैसे हमारे टीचर्स भी अपने होते हैं, है ना? तो उनका रिस्पेक्ट और रिगार्ड हमेशा बनाए रखना चाहिए।
0: हाँ।
1: अच्छा ये बताओ, स्कूल में तुम लोग को सबसे ज्यादा, क्योंकि स्कूल लाइफ जीवन की सबसे अच्छी लाइफ होती है, तो स्कूल में तुम्हें सबसे ज्यादा याद क्या आता है? कोई ऐसी मेमोरीज या कोई ऐसी बातें हैं जो तुम बहुत मिस करते हो?
2: हमारे क्लासरूम।
1: क्लासरूम। और पंकज?
3: अपने फ्रेंड्स को।
1: फ्रेंड्स को बहुत मिस करते हो?
3: हाँ दीदी।
1: क्योंकि जब स्कूल खत्म हो जाता है तो याद तो आते
2: हैं दीदी,
1: है ना? उसमें सबसे ज्यादा याद क्या आता है? कोई ऐसा दिन हो या कोई ऐसी बात जो आपको मेमोरीज के रूप में अब याद आती हो?
0: मुझे सबसे अच्छा मेमोरी तो चिल्ड्रंस डे, जब हम स्कूल में इतने अच्छे से मनाते हैं। क्या कि ना हमने इस बार 3 डेज चिल्ड्रंस डे बनाई, मेरी प्रिंसिपल ने ऐसा बनाया कि हम 3 डेज एंजॉय स्कूल पे। तो हमने इतना खेला दीदी, मॉर्निंग टू इवनिंग इतना खेलते थे, और कलर ड्रेस पहन के आ सकते थे, और बहुत सारे गेस्ट होते थे वो आते थे, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, इतना मज़ा आता था।
1: 3 दिन चिल्ड्रंस डे मनाया? अरे वाह, मतलब फुल मस्ती।
0: हाँ दीदी।
1: और सैंडी आपको कुछ याद है ऐसा?
2: हाँ, मुझे भी चिल्ड्रंस डे अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे आता है, और उस दिन
1: चिल्ड्रंस डे के दिन आपका बर्थडे होता है।
2: हाँ।
1: अच्छा, अरे वाह, मतलब डबल मस्ती,
3: डबल मजा,
2: डबल मजा।
1: और उस दिन कलर ड्रेस भी अलाउड होती है?
2: अलाउ होती है, पर मैं पहन के नहीं जाता, स्कूल में रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं ना।
1: नहीं बिल्कुल, रूल्स तो फॉलो करने भी चाहिए। और पंकज, आपकी कोई ऐसी मेमोरी है, खास मेमोरी जो आपको अब स्कूल के बाद याद आती हो?
3: हमारे क्लासरूम में तो हर दिन मस्ती होती थी, इसलिए हर दिन मुझे याद है। सारे दिन ऐसे हैं जो यादगार है।
1: एग्जाम टाइम किसको याद आता है?
0: मुझे एग्जाम से,
3: अभी एग्जाम खत्म हो गया और रिजल्ट नहीं आया, इसलिए अभी तो हर दिन एग्जाम टाइम याद आता है।
0: मुझे एग्जाम्स बहुत पसंद है दीदी।
2: अरे
0: सबसे फेवरेट तो मेरी एग्जाम्स ही है, क्योंकि इतने अच्छे से लिख सकते हैं।
2: भुवना तुम इसी दुनिया के हो ना?
0: हाँ।
1: एग्जाम्स क्यों अच्छे लगते हैं भुवना तुम्हें?
0: क्योंकि सारे फ्रेंड्स, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो हम ज्ञान वो पेपर में लगाते हैं, और इतना लिख सकते हैं, और बहुत कुछ सीखते हैं दीदी एग्जाम पे हम, और इतना मजा आता है। मुझे एग्जाम तो फेवरेट है सच में बोलूं तो।
3: आसपास से पूछ के लिखता हूं मैं।
0: नहीं सच में मैं कॉपी करना इतना पसंद नहीं,
1: बिल्कुल नहीं ना?
0: बिल्कुल नहीं।
3: थोड़ा बहुत तो होगा।
0: नहीं मैं कभी कॉपी नहीं करती हूँ।
2: अच्छा, मैं तो पूरी कॉपी,
3: हमारी तो स्टार्टिंग ही कॉपी करने से होती है।
1: अच्छा एग्जाम टाइम में डर लगता है क्या?
2: डर तो लगता बहुत,
0: मुझे एक्साइटमेंट होती है।
3: मुझे भी।
1: अच्छा मतलब पढ़ाई लास्ट मोमेंट शुरू होती है लग रहा है।
2: हाँ, हम लोगों की लास्ट मोमेंट होती है।
1: अच्छा एग्जाम टाइम में 3 घंटे तो मिलते हैं सबको, तो एग्जाम पूरा हो जाता है ना?
2: हाँ, पेपर
3: पूरा हो जाता है।
1: तो फिर क्यों डर लगता है?
2: कंफ्यूजन रहता, क्वेश्चन गलत है कि सही है,
1: क्वेश्चन गलत है कि सही है?
0: पेपर,
2: सॉरी आंसर गलत है कि सही है?
0: पेपर मिलने से पहले थोड़ा दर्द दीदी, पेपर मिलेगा तो ना हाँ किया, इतना इजी पेपर ऐसा लगता है।
3: और जब हार्ड पेपर आ जाए तब?
0: तब तो क्या, हमको अंडरस्टैंड करना है, थोड़ी देर उस पे टाइम लगाना है ताकि हम समझ सके, और फिर पेपर लिखना इजी।
3: अच्छा तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा एग्जाम था जो तुम्हें टफ लगा?
0: लास्ट ईयर की मैथ्स एग्जाम।
3: तब कैसा फील हुआ था?
0: थोड़ा लाइक आई, मुझे सब कुछ नहीं आया, थोड़ी मैं छोड़ दी, फिर भी अच्छा लगा।
1: अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग को अगर अपना स्कूल अपने हिसाब से चलाने के लिए बोला जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो जिनका फ्यूचर भी तुम लोग को देखना हो, तुम लोगों पर डिपेंड करता हो, तो वो स्कूल कैसा होगा?
3: अच्छा, संडे टू मंडे स्कूल, बाकी छुट्टी,
2: बाकी दिन छुट्टी।
1: बाकी दिन छुट्टी मतलब सिर्फ दो दिन स्कूल और बाकी दिन छुट्टी? और उसमें पढ़ाई क्या क्या करवाओगे? उनका फ्यूचर भी आप लोगों पे ही डिपेंड करता है, ये भी याद रखना साथ में।
3: ओके, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा।
1: क्या करोगे बताओ, क्या कोई नया तरीका है तुम लोगों के पास स्कूल में पढ़ाई करवाने का, या फिर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है इससे और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं?
0: हाँ दीदी।
1: क्या?
0: जब हम स्पोर्ट्स करते हैं ना, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, तभी हम और पढ़ाई करेंगे ना, वो अच्छे से हम समझ जाएंगे। ऐसे तरीका, हाफ मस्ती हाफ पढ़ाई, ऐसा कुछ।
1: मतलब अगर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलें और फिर पढ़ाई करें तो और अच्छी होगी पढ़ाई, ये भुवना कहना चाहती है। और पंकज,
3: हमें हर क्लास के बाद एक एंटरटेनिंग पीरियड रखना चाहिए, जिसमें बच्चे वापस एंटरटेन हुए और वापस उनका माइंड फ्रेश हो जाए और वो वापस अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दे सके।
0: ऐसा हुआ तो 3:30 तक हम टाइमिंग्स भी बढ़ाना चाहिए ये सब का।
1: फिर तो हमारा स्कूल बहुत लंबा हो जाएगा अगर हर क्लास के बाद एक एंटरटेनमेंट होगा।
0: तो 24 आवर स्कूल पे ही रहेंगे हम।
3: 20 मिनट्स के लिए तो होने चाहिए।
2: टीचर्स ऐसे होने जो फ्रेंडली, जो मिलजुल के रहे, जो कोई कोई टीचर इतने स्ट्रिक होते हैं कि उनका ऑफिस अटेंड करना डर लगता है, ऐसे टीचर होने चाहिए जो हमेशा हमारी बात को समझे, मिलजुल के रहे।
1: तो आज हमें स्कूल के बारे में बातें करके बहुत सारा मजा आया है ना बच्चों?
2: हाँ दीदी।
1: तो अगली बार मिलेंगे और फिर खूब सारी बातें करेंगे नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।
4: बाय बाय। स्कूल है, पढ़ाई है, फिर भी इतनी मस्ती, एग्जाम्स है, उसका फियर है, फिर भी इतनी मस्ती,
0: इसलिए तो हम स्कूल जाते हैं
3: मस्ती करने,
2: एंजॉय करने
0: और बहुत कुछ सीखने के लिए। तो चलो दोस्तों, छुट्टियों के बाद

0: आरव, आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम, युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद विभिन्न देशों में विभिन्न अवसरों पर श्रोताओं के सम्मुख अपना वक्तव्य रखते थे। उनके अनुयायियों ने उन भाषणों को लिख लिया था जो बाद में प्रकाशित हुए। हमारे कर्तव्यों के बारे में स्वामी जी ने जो भी कहा था उसमें से कुछ अंशों की जानकारी आज हम देंगे। एक भाषण में उन्होंने कहा,
1: सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, ना कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या ये तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता। 99% लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल होता है दुख। ये सब कार्य स्वार्थ पर होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं। यदि तुम भी गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों से बांधकर उससे अपने लिए कार्य कराओ, तो वो कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं तो इसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसलिए वो सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, यहां तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है।
2: स्वामी जी ने समझाया कि कर्म कर्म में भेद होता है, हमें सप्रेम कर्म करना चाहिए।
1: स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है, और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान यह है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फल स्वरूप शांति और आनंद ना आए। प्रकृत सत्ता, प्रकृत ज्ञान तथा प्रकृत प्रेम, ये तीनों चिरकाल के लिए परस्पर संबद्ध हैं। असल में ये एक में ही तीन हैं। जहां एक रहता है वहां शेष दो भी अवश्य रहते हैं।
0: प्रेम मनुष्य को दास नहीं बनाता, मुक्त रहने में ही सच्चा प्रेम है।
1: उदाहरणार्थ मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है। वो चाहता है कि स्त्री केवल उसी के पास रहे। अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है। वो चाहता है कि वो स्त्री उसी के पास बैठे, उसी के पास खड़ी रहे और उसी की इच्छानुसार खाए पिए और चले फिरे। वो स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि स्त्री भी उसकी गुलाम रहे। ये तो प्रेम नहीं है, ये तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है। ये प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लेशदायक है। यदि वो उस मनुष्य की इच्छानुसार ना चले तो उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं, उससे तो केवल आनंद ही होता है। और यदि उससे ऐसा ना होता हो तो समझ लेना चाहिए कि वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो और ही कोई चीज है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहां तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी भी प्रकार दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे।
2: वे श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण देकर कहते हैं,
1: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाए। मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं। मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूं, फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है।
0: दान करते समय प्रतिदान की चिंता नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी कहते हैं।
1: जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज देते हो तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हो? ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो, और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी

0: अगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो। उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा न रखो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं।
1: भाषण देते समय स्वामी जी अक्सर सटीक उदाहरण देने के लिए कहानी सुनाया करते थे। ऐसी ही एक कहानी कहते हुए उन्होंने महाभारत की कथा सुनाई।
0: कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया गया। सभी लोगों ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया। नेवले का शरीर आधा सुनहरा था और शेष आधा भूरा। वो नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा, तुम सब झूठे हो, ये कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा, क्या तुम कहते क्या हो, ये कोई यज्ञ ही नहीं है। तुम जानते हो इस यज्ञ में कितना खर्च हुआ है, गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए जिससे वे सब के सब धनी एवं खुशहाल हो गए हैं। यह तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन द्विज रहता था, साथ ही उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। 6ठे दिन वो द्विज भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के 4 भाग किए गए। उन्होंने उसकी रोटी बनाई और जो ही वे उसे खाने बैठे कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है। वो तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तद्रूप व्यवहार भी किया जाता है। अतएव उस गरीब ने कहा, महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि उसे जल्द खा गया और बोला, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन का भूखा हूं और भोजन के इस छोटे से टुकड़े ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भी भाग दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, वो बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहां आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। ये देखकर कि आप उसे अधिक भोजन नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भी भाग दे दूं। ऐसा कह उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो भी खा लिया और कहा, मैं तो अभी भी भूख से जल रहा हूं। तब लड़के ने कहा, आप मेरा भी भाग लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उन्हें सहायता दे। अतिथि ने वो भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू ने भी उसे अपना भाग दे दिया। अब वो पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दे विदा ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए। उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया, जैसा कि तुम अभी देख ही रहे हो। उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूं और चाहता हूं कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले, परंतु वैसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मेरा आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहरा ना हो सका, इसलिए तो कहता हूं कि ये कोई यज्ञ ही नहीं है।
1: दान की महिमा सुनाते हुए उन्होंने कहा,
0: त्याग का ये भाव भारत वर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानुभाव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया था, उस समय मैंने अंग्रेजी की एक पुस्तक पढ़ी जिसमें एक ऐसे कर्तव्य परायण बालक का वर्णन था जिसने काम करके जो कुछ उपार्जन किया था उसका कुछ अपनी वृद्ध माता को दे दिया था। उस बालक के इस कृत्य की प्रशंसा पुस्तक के 3-4 पृष्ठों में गाई गई थी, परंतु इसमें कौन सा असाधारण तत्व है? कोई भी हिंदू बालक उस कहानी की नीति शिक्षा को नहीं समझ सकता, और मुझे भी उसका महत्व आज ही समझ में आ रहा है। जब मैं इस पश्चिमी रिवाज को सुनता तथा देखता हूं कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए ही जीता है, इस देश में ऐसे भी लोग अनेक हैं जो सब कुछ अपने लिए ही रख लेते हैं, उनके पिता माता स्त्री और बच्चों की फिर चाहे जैसी दशा क्यों ना हो, एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि ना होना चाहिए।
2: स्वामी जी ने कर्मयोग को समझाया और कर्तव्य शब्द को परिभाषित किया।
0: कर्मयोग का तत्व समझने के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि कोई मुझे काम करना है तो पहले मुझे ये जान लेना चाहिए कि वो मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूं। विभिन्न जातियों में विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। एक व्यक्ति कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक अन्य कहता है कि जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें स्पष्ट दिख पड़ता है कि जीवन में अवस्था काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविध होती हैं। अन्यान्य सार्वभौमिक भाव सूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द की भी ठीक ठीक व्याख्या करना दुरूह है। व्यवहारिक जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वारा ही हमें उसके संबंध में कुछ धारणा हो सकती है।
1: प्रतीकों का बहुत महत्व है। साधारण लोग प्रतीकों को ही ईश्वर ज्ञान से पूजते हैं।
0: अत्यंत प्राचीन समय से ही प्रतीकों का प्रयोग प्रत्येक धर्म में होता रहा है। एक दृष्टि से यदि कहा जाए कि हम प्रतीक के बिना किसी बात को सोच ही नहीं सकते तो ठीक ही है, शब्द भी तो हमारे विचार के प्रतीक ही हैं। दूसरी दृष्टि से कहा जा सकता है कि संसार की प्रत्येक चीज प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। सारा संसार ही प्रतीक है और उसके पीछे मूल तत्व रूप में ईश्वर विराजमान है। इस प्रकार का प्रतीक केवल मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया हुआ ही नहीं है, और ना ऐसी ही बात है कि एक धर्म के कुछ अनुयायी एक साथ बैठ गए और बस उन्होंने कुछ प्रतीकों की कल्पना कर डाली। धर्म के प्रतीक की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि प्रायः सभी मनुष्यों के मन में कुछ प्रतीक तो सभी जगह पाए जाते हैं। तुम में से अनेकों की यह धारणा है कि क्रॉस का चिन्ह सर्वप्रथम ईसाई धर्म के साथ प्रचलित हुआ, परंतु वास्तव में तो वो ईसाई धर्म के बहुत पहले से, मूसा के भी जन्म के पहले से, वेदों के आविर्भाव के भी पहले, यहां तक कि मानवीय कार्यकलापों का किसी प्रकार का इतिहास लिपिबद्ध होने के पहले से विद्यमान है।
2: प्रतीक ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, कई लोगों के शताब्दियों पर्यंत प्रयास के कारण वे स्थापित होते हैं।
0: एजटिक्स तथा फिनिशियंस जातियों में भी इसकी मौजूदगी का प्रमाण मिलता है। प्रायः प्रत्येक जाति में इसका अस्तित्व था। इतना नहीं बल्कि ऐसा भी होता है कि क्रॉस पर लटके हुए महापुरुष का प्रतीक लगभग प्रत्येक जाति में प्रचलित था। इसी प्रकार सारे संसार में व्रत भी एक उत्कृष्ट प्रतीक माना गया है। फिर इसके अतिरिक्त सारे संसार में सबसे अधिक प्रचलित स्वास्तिक भी एक प्रतीक रहा है। एक समय ऐसी धारणा थी कि बौद्ध इसे अपने साथ साथ सारे संसार भर में ले गए, परंतु पता चलता है कि बौद्ध धर्म के सदियों पहले कई जातियों में इसका प्रचार था। प्राचीन बेबीलोन तथा मिश्र देश में भी ये पाया जाता था। इस सब से क्या प्रकट होता है? यही कि ये सब प्रतीक केवल काल्पनिक या स्वेच्छाकृत ही नहीं थे, इनका कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। उनमें तथा मानवीय मन में कोई स्वाभाविक संबंध रहा होगा।

0: कि संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें। एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, वो इस प्रकार था। ये सुंदर संसार बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है। ऊपर से तो ये भाव सचमुच सुंदर है, परंतु यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या घोर ईश्वर निंदा नहीं है? संसार ना तो अच्छा है ना बुरा, बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचने लगे तो वो उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा, अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुख की समष्टि मात्र हैं। ये हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी। तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है, परंतु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया। कितनी ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती हैं, जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं। परंतु हैं दोनों ही मूर्ख। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें ये संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। स्वयं ये ना तो भला है न बुरा। अग्नि स्वयं ना अच्छी है न बुरी। जब ये हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं ये कितनी सुंदर है, परंतु जब इससे हमारी उंगली जल जाती है तो इसे हम दोष देते हैं। परंतु फिर भी स्वयं न तो ये अच्छी है न बुरी, जैसा हम इसका उपयोग करते हैं तदनुरूप ये अच्छी या बुरी बन जाती है। यही हाल इस संसार का भी है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ ये है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है। हमें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जाएगा। हमें उसकी सहायता करने के लिए माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं।
1: स्वामी जी ने फिर एक लंबी कहानी सुनाई।
0: एक गरीब आदमी को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी। उसे कहीं से ये मालूम हो गया कि यदि वो किसी भूत को अपने वश में कर ले तो वो उससे जो चाहे मंगवा सकता है। निदान उसे एक भूत ढूंढने की सूझी। वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जिससे उसे एक भूत मिल जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु मिले। इन साधु के पास बड़ी शक्तियां थीं और उसने उनसे सहायता की याचना की। साधु ने उससे पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, महाराज मैं भूत इसलिए चाहता हूं कि वो मेरा काम कर दे। कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए, मुझे उसकी बड़ी जरूरत है। साधु बोले, देखो तुम इस झमेले में मत पड़ो, अपने घर लौट जाओ। दूसरे दिन वो आदमी साधु के पास फिर गया और बहुत रोने गाने लगा। उसने कहा, महाराज मुझे एक भूत दे ही दीजिए ना, मुझे बड़ी आवश्यकता है। अंत में साधु कुछ चिढ़ से गए और उन्होंने कहा, अच्छा लो ये मंत्र लो, इसका जप करने से एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे जो काम कहोगे वही करेगा। परंतु देखो होशियार रहना, ये बड़े भयंकर प्राणी होते हैं, उसे निरंतर काम में लगाए रखना। यदि कभी वो खाली रहा तो तुम्हारी जान ही ले लेगा। तब उस मनुष्य ने कहा, ये कौन कठिन बात है, मैं तो उसे इतना काम दे दूं कि उसके जीवन भर खत्म ना हो। उसके बाद वो आदमी एक वन में चला गया और मंत्र का जप करने लगा। कुछ देर तक जप करने के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक बड़ा भयंकर भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, देखो मैं भूत हूं, तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है, परंतु देखो तुम्हें मुझको निरंतर काम में लगाए रखना होगा, क्योंकि जो ही मुझे थोड़ा सा भी अवकाश मिला कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आदमी बोला, ठीक है, जाओ मेरे लिए एक महल तैयार करो। भूत ने जवाब दिया, लो हो गया, महल तैयार है। आदमी ने कहा, जाओ मेरे लिए धन ले आओ। भूत बोला, लो धन भी तैयार है। फिर आदमी ने कहा, ये जंगल काट डालो और यहां एक शहर बसा दो। भूत बोला, लो ये भी हो गया, अब और क्या करूं बतलाओ। अब तो ये आदमी बड़ा घबराने लगा। उसने मन में सोचा, अब तो मेरे पास कोई काम नहीं जो मैं इसे करने को कहूं।

0: ये तो प्रत्येक काम क्षण भर में ही कर डालता है। भूत इधर गरज कर बोला, देखो मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारा आदमी अब कोई काम सोच ही ना सका और मारे भय के थर थर कांपने लगा। अब तो वो बेतहाशा भागा और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए। साधु ने पूछा, कहो क्या हुआ? मनुष्य ने उत्तर दिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई भी काम शेष नहीं है। मैं उससे जो कुछ भी करने को कहता हूं वो क्षण भर में कर डालता है और अब उसके पास कोई काम ही नहीं रह जाता, तो मुझे खा डालने की धमकी देता है। इतने में ही वो भूत वहां पहुंचा और कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और सचमुच वो उसे खा जाता। आदमी डर के मारे कांपने लगा और उसने साधु से अपने प्राणों की रक्षा की भिक्षा मांगी। साधु ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। देखो उस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, अपनी तलवार निकालो और ये पूंछ काटकर इस भूत को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधी कर दे। आदमी ने झट से कुत्ते की पूंछ काट दी और उसे भूत को देकर कहा, लो इसे सीधी करके मुझे दो। भूत ने पूंछ ले ली और उसे बड़ी सावधानी से सीधी की, पर जो ही उसने उसको सीधी करके छोड़ दिया त्यों ही वो फिर से टेढ़ी हो गई। भूत ने दोबारा कोशिश की, परंतु जो ही उसने छोड़ दी त्यों ही वो फिर टेढ़ी हो गई। उसने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया, परंतु वो फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। इस प्रकार वो कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा, यहां तक कि वो थक गया और बोला, मुझे ऐसा कष्ट तो अपने जीवन भर में कभी नहीं हुआ। मैं एक बड़ा पुराना भूत हूं, ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा। अब तो वो भूत उस आदमी से कहने लगा, आओ भाई हम तुम समझौता कर ले, तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया है वो सब अपने ही पास रखे रहो। मैं वादा करता हूं कि अब आगे तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न दूंगा। यह सुनकर वो आदमी बड़ा खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। हमारा संसार भी बस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के ही समान है। सैकड़ों वर्ष से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जो ही वे इसे छोड़ देते हैं त्यों ही ये फिर से टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है।
1: कैसी लगी कहानी? अंत में स्वामी जी कहते हैं,
0: आज के व्याख्यान का सारांश ये है कि सर्वप्रथम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं। यही तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं का ही कल्याण करते हैं।
2: कर्मयोग और परोपकार के बारे में समझाकर स्वामी जी ने कहा है कि हमें निरासक्त होकर कर्म करते जाना चाहिए, अच्छे कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाता है। स्वामी जी इन शब्दों के साथ भाषण समाप्त करते हैं।
0: तुमने देखा कर्म योग का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ पर मुंह से एक बात ना निकालो, और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की ही आशा रखो, बल्कि उल्टे तुम ही उसके कृतज्ञ हो ये सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। अतएव स्पष्ट है कि एक आदर्श सन्यासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ होना अधिक

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: जुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और बातें करते हैं 25 जून की। जी हाँ, चंद्रशेखर पांडे, सुचेता कृपलानी, उदय चंद्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मदन मोहन, मनोज कुमार पांडे, सतीश शाह, सुदास सिंह, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही स्वामी सहजानंद सरस्वती, मोहन रानाडे, शिवचरण माथुर, इन सभी का पुण्य दिवस है। आइए आज के इस एपिसोड में विशेष बातें करते हैं 25 जून की। कुछ खास लोगों से आपकी रूबरू कराते हैं, बातचीत करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, सफर कार्यक्रम हम 4 से 5 के बीच में सुनते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं करते हुए आप सभी से मिलने जुलने और बातचीत करने का मौका मिल जाता है और आपके मैसेजेस पढ़ने का, और आप सभी याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सुरेश जी जुटाना से, सुरेश जी पिंडवाड़ा से, और हमारे दयाराम जी विशेष लाखनी से, और साथ ही साथ मदन जी भी याद करते हैं, कुपराम जी भी कोटरा से याद करते हैं, और उसके साथ में जैनाब जी, हर्षिता जी, सुगना जी, सभी हमारे बहनें भी याद करते हैं, अंजिता जी वगैरह याद करते रहते हैं, और विभा जी कभी कभी याद करती हैं, विदेश से भी आपको मैसेज करते हैं। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। भूपेश सिंह जी जो हमारे रेगुलर लिसनर है, लेकिन बहुत दिन हो गए फ़ोन नहीं किया उन्होंने, पता नहीं बिजी होंगे। सिद्धपुर वाले भूपेश सिंह जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आइए बात करते हैं आज का एक सुंदर विचार आपके लिए। किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो अक्सर इंसान देते रहते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आइए बात करते हैं आज चंद्रशेखर पांडे के बारे में, जिनका जन्मदिन है और बहुत ही पॉपुलर साहित्यकार में से एक कहीं महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने की, जिनमें आधुनिक हिंदी कविता और रसखान तथा उनका काव्य आदि उल्लेख है। बनारस के बड़ी प्यारी नामक स्थान पर चंद्रशेखर पांडे का जन्म हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की थी और सन 1929 में चंद्रशेखर पांडे कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में सांस्कृतिक विभाग अध्यक्ष रहे। चंद्रशेखर पांडे ने सांस्कृतिक साहित्य के इतिहास की रूपरेखा नाम ग्रंथ की रचना की और इनका आधुनिक हिंदी कविता तथा रसखान और उनका काव्य उल्लेखनीय है। कानपुर नवजीवन पुस्तकालय और श्री हिंदी साहित्य मंडल से चंद्रशेखर पांडे जी का घनिष्ठ संबंध रहा और वर्ष 1949 में इनका निधन हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें चंद्रशेखर पांडे साहित्यकार के बारे में आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और शाम का ये सुंदर वक्त है जहाँ पर आप खूबसूरत गानों के साथ साथ कुछ बातें सुनते हैं और जो भी हम लोग आज के दिन जन्मे उन खास लोगों के बातें करते हैं, जैसे कि साहित्यकार है, क्रांतिकारी है या एक सिंगर है या फिर बॉलीवुड के एक्टर है, उनके जीवन कहानी को हम लोग आप तक पहुँचाते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा इतिहास हो, कोई ऐसी कहानी हो आपके गाँव की या किसी व्यक्ति की, तो ज़रूर हमें मैसेज करके बताइएगा, तो हमें अच्छा लगेगा यहाँ से उनके बारे में पढ़ के सुनाने में, क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है या आपका अपना रेडियो स्टेशन है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराओ।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सुचेता कृपलानी के बारे में बात करते हैं अब, और ये एक भारत की आज़ादी की दीवानी और राजनीतिक रहे, उत्तर प्रदेश की चौथी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। इन्होंने संविधान के साथ साथ भारत समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुचेता कृपलानी इन्हीं में से एक थी। सुचेता कृपलानी का जन्म आज के दिन 1908 को भारत के हरियाणा राज्य के अम्बाला शहर में हुआ। उनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई और 1963 में से लेकर 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वे बंटवारे की त्रासदी में महात्मा गांधी के बेहद करीबी रही। सुचेता कृपलानी उन चंद महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने बापू के करीब रहकर देश की आज़ादी की नींव रखी। वो नोवाखाली यात्रा में बापू के साथ थी और 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने से पहले वो लगातार 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो इस तरह से राजनीति का सफ़र इनका बड़ा अच्छा रहा। और पति आचार्य कृपलानी खुद समाजवादी थे इनका, तो इनको काफ़ी सहयोग मिला और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल की सजा भी हुई थी और 1946 में वो संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। और इस तरह से 1948 से 60 तक वो भारत का महासचिव पद को मजबूत किया। मजबूत इच्छा शक्ति और जुझारूपन की मिसाल भारत छोड़ो आंदोलन में सुचेता कृपलानी ने लड़कियों को ड्रिल और लाठी चलाना सिखाते हुए दिखाया था। तो ये अपने आप में एक मजबूत इच्छा शक्ति और जुझारूपन की मिसाल आंदोलन में इनका देखने को मिला। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM होबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात करते हैं एक और व्यक्ति के बारे में और विशेष उदय चंद के बारे में। उदय चंद जो है सेवानिवृत्त भारतीय पहलवान और कुश्ती कोच है और स्वतंत्रता भारत के पहले व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता रहे हैं। 1961 में भारत सरकार द्वारा कुश्ती में प्रथम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिसार के आज़ाद नगर निवासी पहलवान उदय चंद देश के पहले अर्जुन अवार्डी है। 1970 में वो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रहे। इस दौरान 1958 से लेकर 1970 तक 12 वर्ष तक नेशनल चैंपियन रहे और साल 1970 से 1995 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में बतौर ट्रेनिंग उन्होंने कई पहलवान तैयार किए। 3 बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया। जापान के योकोहामा में 1961 में हुई वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में लाइट वेट वर्ग में कंस पदक जीता। पहलवान उदय चंद आज़ाद भारत के पहले व्यक्तिगत वर्ल्ड रेलिंग चैंपियनशिप के पदक विजेता है। वो अपने भाई हरिराम के साथ विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गए थे और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार था कि एक माँ के दो बेटे विश्व चैंपियनशिप में खेले थे। तो ये थी कुछ खास बातें उदय चंद के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो आइए कुछ और बातें भी आपसे शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में उदय चंद के बारे में और इनका जीवन परिचय की बात करें तो 25 जून 1935 को हिसार के जंडली गांव में जन्मे उदय चंद को विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत में पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है। कुश्ती खिलाड़ी और कोच बने, देश के प्रतिनिधित्व किया उन्होंने और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कुश्ती कोच खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बने उदय चंद जी। और तंबाकू उत्पादों के घोर विरोधी रहे क्योंकि ये इसके लिए हमेशा विरोध करते रहे। उनका मानना है कि तंबाकू की लत के कारण ही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए थे, इसलिए वो इसके लिए काम करते रहे। और मैं चाहूँगा कि आप उदय चंद की बात को दिल से ज़रूर ले क्योंकि तंबाकू या किसी भी नशे का, कोई भी नशीली पदार्थ अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपके जीवन को नुकसान ही हो जाता है। एक तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हो, इसलिए हमेशा नशे से दूर रहें और स्वास्थ्य और सुंदर समृद्ध जीवन को अपनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए एक और गीत आपके लिए सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण बने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया था। सिंह बेहद महत्वाकांक्षी होने के अतिरिक्त विशेष राजनीतिक में कुटिल राजनीतिक भी कहे जाते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ। वो राजा राय बहादुर गोपाल सिंह के पुत्र थे और इनकी विवाह 25 जून 1955 को अपने जन्मदिन पर ही सीता कुमारी के साथ संपन्न हुआ था। दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई।

बाद में और सिंह ने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में गोपाल इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद और पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और 1947 से 1948 में उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद विद्यालय की स्टूडेंट यूनियन में अध्यक्ष भी रहे। 1997 में उन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सिंह ने अपनी जमीनें दान दी थी, इसके लिए पारिवारिक विवाद हुआ जो कि न्यायालय भी जा सकता था। वो इलाहाबाद की अखिल भारतीय समिति के आदिवासी प्रकोष्ठ के सदस्य भी बने। राजनीति में कविता और पेंटिंग का भी शौक था। राजनीति के साथ इनके कविताएं संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, पेंटिंग्स की प्रदर्शनियां भी लगी थी। राजनीतिक सफर इनका बड़ा लंबा चला और प्रधानमंत्री पद तक का इन्होंने सफर तय किया। कश्मीर में आतंकवाद की बातें पर इन्होंने काम की, मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी इन्होंने बनाई थी और इस दौरान वीपी सिंह की एक बीमारी जकड़ी। किसान और विपत्तियों की समस्याओं को आधार बनाकर अपना राजनीतिक कदम पुनः बनाने का प्रयास इन्होंने किया, लेकिन इनका शरीर साथ नहीं दे रहा था और 27 नवंबर 2008 को 77 वर्ष की अवस्था में वीपी सिंह का निधन दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हो गया। इन्हें 17 वर्षों से ब्लड कैंसर था। इनके लीवर ने भी कार्य करना बंद कर दिया था। इन्हें मृत्यु से 6 महीना पूर्व अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वो अपने पीछे पत्नी सुनीता कुमारी तथा 2 पुत्र अभय सिंह और अजय सिंह को छोड़ गए। तो ये थी कुछ खास बातें विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में और उनकी कविताओं को अगर देखें तो उनकी 4 लाइनें लिखा हुआ मैं सुनाऊँगा आपको जाते जाते। मेरा एक तरफ चमकदार आईना है, उसमें चेहरों की चहल पहल है, उसे दुनिया देखती है, दूसरी और कोई नहीं, उसमें मैं अकेले ही देखता हूँ। ये था उनका लिखी हुई 4 लाइनें कविता की आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुक रुक। भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे फिर भी गाड़ी पे कहे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारी बातें हमने की और ढेर सारी खुशियां आपको गीतों के माध्यम से मिल रही होंगी। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और फिर से जाते जाते एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। जिंदगी एक रास्ता है, उस पर चलना तो हमको ही है, चाहे फिर गलत रास्ते पर चलो या फिर सही रास्ते पर, चॉइस इज यूवर्स। तो हमेशा आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते को चुनते हो। जीवन एक चुनौतीपूर्ण जीवन है, किस रास्ते को आप चुनते हो उसी रास्ते पर आप चलते हो। तो मैं चाहूँगा कि सही रास्ता ही चुन लीजिए, जिससे जीवन भी सही होगा और आपका नाम भी होगा। गलत सुनेंगे तो उसका परिणाम भी वैसे ही होगा, है ना। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूँ सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक आकम खान

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, आप समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है युवा मंच और दोस्तों नशा मुक्त सप्ताह मना रहे हैं और नशा मुक्ति पे ही कुछ बातचीत आपको सुना भी रहे हैं आजकल, क्योंकि इस वीक में जब भी नशा मुक्ति की बात होती है दोस्तों तो वो सिर्फ बातचीत नहीं है. वैसे तो हम सभी जानते हैं इसका प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि इस तरीके से इस वीक को मनाएं कि एक स्टेप आगे लेने के लिए हेल्प मिल पाए किसी को जो नशा छोड़ना चाहते हैं, और जो नशा नहीं छोड़ना चाहते हैं वो नशा छोड़ने के संकल्प तक पहुंच ही जाएं. तो आइए आपको सुनाते हैं, बात हुई नशा मुक्ति पे, एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ थे और क्या, आइए सुनते हैं. रेडियो मधुबन ने किया है आज तक का सबसे लंबा प्रोजेक्ट मैं कहूंगी, उससे आप जुड़े रहे हैं, उसको आपने कोऑर्डिनेट किया है, साथ साथ पर्यावरण की बात हो या फिर रेडियो को अन्य प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना हो, चाहे वो दिल्ली में हो या इंटरनेशनली हो, आप कई जगह आप वहाँ पे जाते रहते हैं, कई सेशंस भी आप कंडक्ट कराते रहते हैं. कृष्णा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम. और हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र जी, जो अपनी आवाज़ से आज हमारे साथ रहेंगे और वो अपनी कहानी भी, अपना अनुभव हमारे साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे. तो हम जानेंगे उनसे फर्स्ट हैंड अनुभव, मतलब वो अपना अनुभव शेयर करेंगे दोस्तों, जो कि करने में बहुत हिम्मत लगती है, बड़ी बात है. तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.
1: जी धन्यवाद
0: जी. तो सबसे पहले, क्योंकि हम डी एडिक्शन पे बात कर रहे हैं और डॉक्टर सचिन आपने डी एडिक्शन पे बहुत सालों तक काम किया है, डेकेड्स काम किया है, तो मैं आपसे ये प्रश्न से शुरुआत करना चाहूँगी कि जो अवेयरनेस कैंपेन आप पहले करते थे या अब करते हैं, क्या उसमें कुछ चेंज आया है, क्या कुछ अवेयरनेस क्रिएट हो गई है या तरीका बदल गया है, स्थिति बदल गई है, या आपको लगता है कि अभी भी कई चीज़ें सेम हैं?
2: बहुत सारे प्रश्न आपने एक साथ पूछ लिए हैं, तो मैं शॉर्ट में यही कहूंगा कि 30 साल में मैंने ये सीखा है कि पूरा वर्ल्ड इस समय नशे की गिरफ्त में है, और नशा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का तनाव भी बढ़ रहा है. अभी कुछ तो करेंगे वो तनाव से दूर होने के लिए है. सभी तो स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते, सभी मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो वो अपना तनाव दूर करने की कोशिश करते हैं. तो उसमें से एक तरीका है, नशे को यूज करते हैं, क्योंकि नशा कोई भी हो आपको थोड़े समय के लिए वो भूलने के लिए मदद करता है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य उसमें बनते जाता है. बहुत लोगों को लगता है नशा माना केवल बीड़ी सिगरेट तंबाकू या ड्रग्स है, पर अभी हमारे मेडिकल टेक्स्ट बुक में अभी बिहेवियरल एडिक्शन ये भी एक सब्जेक्ट आ गया है. बिहेवियरल माना बर्ताव का नशा, जिसमें खाने पीने की चीजों का नशा होता है ना, जिसमें खास करके मीठी चीजों का एडिक्शन होता है, फूड एडिक्शन है. फिर दूसरा है जो सबसे बड़ी बीमारी मुझे इस समय लग रही है और जिसको लोग अभी समझ रहे हैं, हम तो 20 साल से बोल रहे हैं, वो है डिजिटल एडिक्शन, है ना, डिजिटल डिवाइसेस का एडिक्शन. और बड़े मेट्रो सिटीज में काम विकार का एडिक्शन भी बढ़ते जा रहा है. तो एडिक्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और कल जो दिन है, आने वाला है 2 दिन में, वो केवल अल्कोहल और ड्रग्स के बारे में है. अगर सब्सटेंस अब्यूज आप कहो तो सब्सटेंस में पदार्थ आते हैं, तो नशा जब आप कहते हैं पदार्थों का नशा, तो उसमें तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थ आ गए, जिसमें निकोटीन एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, फिर अल्कोहल एडिक्टिव सब्सटेंस है, और फिर हार्ड ड्रग्स जो कि प्लांट बेस्ड थे पहले, माना गांजा, चरस, अफीम, ये सब, या कोकेन, ये प्लांट बेस्ड थे. लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है कि प्लांट की जरूरत नहीं है, एक छोटे से कमरे में कुछ केमिकल्स को लेकर नशा बनाया जा सकता है, जो बहुत खतरनाक है. तो ये सिंथेटिक ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी हमारे सामने आ रहा है. तो मेरा 30 साल में अनुभव है कि ना केवल विश्व में पर भारत में भी नशा बढ़ते जा रहा है, इसका इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। हालांकि भारत की मशीनरी इसमें बहुत काम कर रही है, गवर्नमेंट है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था है, लेकिन इसके बावजूद सत्य बात यह है कि नशा बढ़ते जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल में रखने के। लेकिन अभी तक अगर आप मुझे पूछो दोनों में कौन जीत रहा है तो वो नशा जीत रहा है, हम अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, ये हार्ड फैक्ट है। हालांकि सिल्वर लाइनिंग हम कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द है सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग ये है कि बहुत अच्छी अच्छी दवाई आए हैं, काउंसलिंग सेंटर्स है और मेडिटेशन है जिससे कि नशा छूट सकता है, कायदे भी कड़े कड़े हैं। लेकिन लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा, जब तक हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति इसको युद्ध के स्तर पर नहीं समझेगा, युद्ध नहीं समझेगा, तब तक नशा पूरी तरह से जा नहीं सकता है।
0: तो ये युद्ध है बहुत बड़ा जैसा आपने कहा, और हार्ड रियलिटी भी आपने बताई एकदम कार्यक्रम के शुरुआत में ही। हार्ड रियलिटी की बात होती है तो मैं यहाँ कृष्णा जी से भी सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत लंबे अंतराल से काम कर रहे हैं, एक ही विषय पर काम कर रहे हैं, गांव गांव जाके देख रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं जो जिनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो आप क्या पाते हैं, आप क्या देखते हैं कि इस प्रकार से नशा इफेक्ट कर रहा है महिलाओं को खास तौर से, या घरों को, परिवारों को, जो आज भी हम कहें 10 साल पहले भी हम इस विषय पे बात कर रहे थे, आज भी हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको बिगड़ गई है स्थितियां या क्या है ग्राउंड रियलिटी?
1: नमस्कार सभी को। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नशा जीत रहा है, तो ये बात सत्य है, क्योंकि हमने भी जब रेडियो मधुबन शुरू हुआ, जब गांव में सर्वे किया, और अभी हम जब देखते हैं तो नशा का जो उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है। पहले हम सोचते थे कि कॉलेज में आकर के स्टूडेंट्स नशा करते हैं या उस उम्र के बच्चे करते हैं नशा, लेकिन अभी हम जब फील्ड में जाते हैं हम देखते हैं कि जो नशा है वो क्लास फोर्थ या फिर क्लास सेकंड, इस एज के बच्चों से ही वो शुरू हो रहा है। छोटी छोटी चीजें होती है, बीड़ी है या फिर तंबाकू है, ऐसी चीजें घर में पिताजी बोलते हैं कि आप जाओ लेके आओ, पैसे देते हैं तो फिर वो लेके आने की क्यूरियासिटी, या आसपास लोग जो देखते हैं, लगभग हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी न किसी तरीके की नशे से वो ग्रसित है। और इस कारण से घरेलू हिंसा भी बढ़ती जा रही है, और वो नशे होने के कारण पावर्टी भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि कल ही हम एक युवा से बातचीत कर रहे थे जो घरेलू हिंसा से जुड़े हुए महिलाओं के साथ वो काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए की दारू का बॉटल वो चंद क्षणों में वो खत्म कर देते हैं, लेकिन वही 1,000 रुपए अगर गैस सिलेंडर घर पे लेके आते हैं 2 महीना घर वालों के लिए खाना बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो लोग भूल जाते हैं या समझते नहीं है। या डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि वो कौन सी साइकोलॉजी है, वो हमारे सामने लोगों की या जिम्मेवारियां हैं, वो सब चीजें भूल जाते हैं और वो नशे के आदि हो जाते हैं, घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। महिलाओं की मानसिक स्तर पे उसका प्रभाव बहुत रहता है, एक डर में और एक निसहायता है, ऐसी मानसिक स्थिति में महिलाएं जी रहे होते हैं, और उनके पास कोई भी विकल्प नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ससुराल छोड़ के जाएंगे तो मायके में लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और ससुराल में रहना है तो मारपीट को सहन करना है। तो ये एक विषम परिस्थिति है जो हम लगातार देखते रहते हैं।
0: सोशल प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली बहुत काइंड ऑफ प्रेशर्स हैं जो डील करते हैं। मैं यहाँ पे, हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र जी, जो वैसे तो हम उनकी स्टोरी सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, वो शेयर करने के लिए आगे भी आए हैं, हम उनका चेहरा जरूर नहीं देख पाएंगे लेकिन उनकी आवाज़ सुनेंगे। और जितेंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप बताएं कि किस प्रकार से नशे ने आपके जीवन पर क्या असर डाला, अगर आप शेयर करें।
3: मैं अगर फाइनली रिजल्ट की बात करूं कि नशे ने जीवन में क्या असर डाला, तो मैंने बचपन से नशे की शुरुआत की थी, बचपन तक।
0: अच्छा
3: तो
0: जी
3: उसका असर या परिणाम की बात करो तो परिणाम ये रहा कि मैंने अपनी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वहन नशे नशा करने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाया। ना मैं अपने माँ बाप के प्रति, ना पत्नी के प्रति, ना बच्चों के प्रति, ना समाज के प्रति। जो मुझे करना चाहिए था या अपने लिए, मैं वो मतलब जो है सेटिस्फाइड नहीं रहा, संतुष्ट नहीं हूं कि वहां पर मैंने जो संतोषजनक, जो जिनके प्रति जो मेरे कर्तव्य होने चाहिए वो कर्तव्य पूरे नहीं कर पाया। क्योंकि नशे ने मतलब मैं ये सीधा से आंसर, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका बता रहा हूँ कि नशे ने जो है मुझे इतना गिरफ्त में ले लिया था कि मैं कई बार छोड़ना भी चाहता था। क्योंकि मेरे नशे की शुरुआत जो है बचपन में शुरू हुई थी, जब मैं 5वीं क्लास पढ़ता था, तब मैंने पहली बार बीड़ी पी थी मेरे बुआ के एक लड़के के साथ में,
0: अच्छा
3: और पिताजी उसको लेके आए थे साथ में। वो जो अभी दीदी कह रही थी कि गांव गांव में सब जगह जो है बहुत फैल गया है नशा ही, और वो संगत की वजह से धीरे धीरे स्टार्ट होता है। क्योंकि वो बुआ का लड़का वहां गांजा पीने लगा था, नशा करने लगा था दूसरे, तो मेरे पिताजी जो है उसको ले आए थे सुधरवाने के लिए। और मगर वो ये नहीं जान रहे थे कि उनका लड़का यानी मैं जो है उसके संगत में आके बिगड़ सकता हूँ, ये उनको शायद नहीं मालूम था। मगर उसके साथ जो है धीरे धीरे मेरी आदत पड़ने लगी, मैं धीरे धीरे बीड़ी पीने लगा, बीड़ी से सिगरेट पे आया, सिगरेट से फिर मैं उसी के साथ मैंने गांजा पीना सीखा। फिर कॉलेज पहुंचते पहुंचते मैं कॉलेज के फ्रेंड के साथ में बियर के साथ में स्टार्ट किया, तो वाइन धीरे धीरे आ गई। फिर उसी समय फिर मैं माताजी के नाम पे सरपंच बना, तो गांव में पीने लगा। घर में जबकि मेरे पिताजी शराब का इतना विरोध करते थे कि मैं मतलब जो है उस वक्त पिताजी हमारे किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक में नहीं जाते थे जो व्यक्ति शराब पीता था। तो मेरे को उनसे बहुत डर लगता था, तो मैं छुप के पीता था, मतलब घर नहीं जाता था। जिस दिन मैं शराब पी लेता था उस दिन मैं घर नहीं जाता था, और जिस दिन पीता था उस दिन मेरे को मौका मिल जाता था कि आज मुझे नहीं जाना, तो मैं अच्छे से पी लेता था पेट भर के। और ऐसे कभी कभी चलता था। मैं जो ये शेयर कर रहा हूँ इसके लिए मुझे टाइम है ना बोलने का?
0: जी जी बताएं आप जी
3: मैं कंटिन्यू करूँ ना?
0: जी
3: तो
0: जी
3: मैं जो है उस समय पंचायत के समय यंग एज थी, 24-25 साल की उम्र थी, धीरे धीरे पीते पीते जो है, और मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई शराबी बन जाऊंगा ऐसे सोच के नहीं पीता था। मैं हमेशा जो है संगत की वजह से कभी कभार, क्योंकि हम क्यों पी रहे हैं मुझे ये नहीं पता रहता था, हमको पीने का कारण नहीं मालूम था कि किस वजह से पी रहे हैं, मगर हम पी लेते थे बिना वजह के। धीरे
0: बस
3: धीरे
0: पीते थे।
3: फिर

0: मैंने एक माइंस ली, माइंस में काम चालू किया तो वहां भी जो है मुझे शराब पीने के बाद जब हम लेबर ढूंढने जाते थे या हमें किसी अधिकारी से मिलना रहता था तो मेरे को वो पावर देती थी, निडरता प्रदान करती थी। और वो कभी कभी जो है मैं उसको माइंस में अपने बिजनेस में यूज करने लगा, और उसी समय मेरी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। तो घर में चूंकि जो है उस समय टेलीफोनिक जमाना था नहीं, कोई मोबाइल वोबाइल और लैंडलाइन भी नहीं हुआ करता था वहां पे अवेलेबल, तो मैं वैसे भी 15 15 दिन में, महीने महीने भर में घर आता था। तो उतना रेगुलर नहीं था, कभी कभार 2 3 दिन में पी लेना, या जिस दिन लेबर की छुट्टी हो उस दिन लेबर लोगों के साथ में पीना, इस तरीके से चलता था। बट मेरी प्रेमिका की आत्महत्या के बाद जो है मैं डेली पीने लगा वहां माइंस में, सुबह से पीना, दोपहर में भी पीना, रात में भी पीना, 24 घंटे नशे में रहने लगा। अच्छी खासी चलती हुई माइंस को मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे माइनस में कर लिया। फॉरेस्ट के अधिकारी आए तो उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगा, और फॉरेस्ट वालों से भी एक केस लग गए, पुलिस के केस लग गए, और धीरे धीरे माइंस भी माइनस में आ गए। कई महीनों तक नशा करता था तो नहाता नहाया भी नहीं। एक बार आया घर पे तो 1.5 2 महीने हो गए थे, मैं मतलब मेरी गाल से नहाया नहीं था उस वक्त। फिर वो मदर ने मेरे गाल में जुए चलते हुए देखे 3 4, उन्होंने सिर में देखा तो सैकड़ों की संख्या में सिर में जुए चल रहे थे। फिर उन्होंने पूरे शरीर में देखा तो पूरे रोम रोम में मेरे जुए चल रहे थे। फिर उन्होंने डॉक्टर वगैरह बुलाया, पूरा बाल बाल साफ कराए, ट्रीटमेंट कराया। पिताजी ने बोला माइंस बंद कर दो, वैसे भी माइंस माइनस में आ गई थी। किसी ने कहा कि झाड़ फूक के लिए ले गए, बोले भूत लग गए, प्रेत लग गए, क्या क्या बुला बुला। फिर पिताजी ने बोला पढ़ाई तो थोड़ी सी कर ली है, नौकरी कर लो। तो मेरे पता नहीं कहाँ से ईश्वर की कृपा हुई कि फिर मैं वहां से माइंस बंद करके फिर नौकरी करने के लिए चला गया नोएडा। वहां से रायपुर पोस्टिंग मिली मुझे। फिर उधर पे भी जो है धीरे धीरे मैं सेल्स की जॉब में था, तो वहां पे भी फिर मैं कुछ दिन तक तो छोड़ा रहा, और मुझे फिर संगत मिली। और संगत मिली तो मैं कभी कभी, क्योंकि पैसे उतने पास मेरे पास रहते नहीं थे, तो कभी कभी मैं फिर पीने लगा, और कभी कभी से फिर मैं डेली पे आ गया। धीरे धीरे मैं डेली पीने लगा। अब मैं क्यों पी रहा हूँ ये मुझे पता नहीं चलता था, ये धीरे धीरे जो है मेरी आदत पड़ने लगी,
1: आदत पड़ गई।
0: आदत पड़ गई। और इसके बाद फिर आदत ऐसी स्थिति में वो हुई, कन्वर्ट हुई, कि मैं इंदौर से, जब रायपुर से इंदौर ट्रांसफर होके आया, तो उस वक्त जो है मुझे एक बार हार्ट में प्रॉब्लम हुई, और गैस की वजह से थी, क्या थी कि बहुत तेज पेन हुआ तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जब जांच हुई तो डॉक्टर ने पूछा मेरे से कि आप क्या क्या नशा करते हो, तो मैंने बताया कि मैं सब कुछ करता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, तंबाकू भी खाता हूँ, गुटखा भी खाता हूँ, शराब भी पीता हूँ, बला बला सब बता दिया। उसने जब जांच करी तो लीवर में इंफेक्शन और लीवर में प्रॉब्लम बताया, बोले लीवर में आपकी खराबी आ गई है, और अब आप पियोगे तो मर जाओगे। तो मुझे मरने का डर लगा कि मैं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। और उसी समय मदर फादर जो है शादी के लिए विचार कर रहे थे, और उन्होंने जो है मेरी शादी का बातचीत चली कहीं, और शादी तय हो गई, और मैं उस समय डर के कारण कुछ दिन तक शराब छोड़ दिया। अब कुछ दिन तक तो शराब छूटी रही, फिर इसके बाद जो है मेरा काम धाम थोड़ा सा, फिर मैंने कुल मिला के ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं करते हुए, कई बार मैंने शराब छोड़ी और कई बार पकड़ी, कई बार छोड़ देता था, कई बार पकड़ लेता।
1: पकड़ लेते थे
0: मुझे ये
1: वापस।
0: पता, हाँ पता नहीं चलता था कि मैं इसको क्यों पी रहा हूँ। अच्छा, उसके पीने के बाद के दुष्परिणाम ऐसे होते थे कि मैंने अपने घर को नरक बना लिया था। घर में ये स्थिति होता था कि जब मैं नशा करके आता था तो वाइफ अगर कुछ भी थोड़ी सी बात बोल देती थी कि आलू लाना भूल गए, आलू कहा था लाने के लिए, तो मैं उसको गाली गलौज करने लगता था, खाना फेंक देता था, बर्तन फेंक देता था, बहुत सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया। मैं क्या करता था मुझे कुछ याद नहीं रहता था। सुबह होने के बाद मुझे प्रायश्चित होता था कि मैंने ये ऐसा सब क्यों कहा। अब वो तो मैं उससे, वाइफ से भी सुबह सॉरी बोलता था, भगवान के सामने भी सॉरी बोलता था कि अब नहीं पीऊंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा वापस से, मगर शाम होती थी, शाम को फिर मुझे वही चीज याद आती थी। और अगर मैं बात करूं तो 2013 में मुझे जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय मिला, एक एक्सीडेंटली जो है नशा मुक्ति तनाव शिविर लगा था, तनाव मुक्ति शिविर एक लगा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे इंदौर से एक दीदी आई हैं और उनका शिविर है, अटेंड कर लो। मेरे अंदर ईगो बहुत था, मैंने कहा यार पहले से बुलाया होता तो आता मैं, मगर जब अंदर गया उस समय सिचुएशन थोड़ा सा नेगेटिव थी मेरी, उस समय फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब चल रही थी, तो मैं अंदर गया, वहां पे गीत चल रहा था, ये मत कहो खुदा से तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों को कह दे तेरा खुदा बड़ा। वो गीत मुझे इतना प्रभावित किया कि मुझे लगा कि यार कोई ना कोई सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है जीवन में बदलने का। और उन्होंने कुछ वो 6-7 दिन का अभ्यास करा के, वो कोर्स जो होता है वो कोर्स करा के, और फिर वो दीदी चली गई। एक्सीडेंटली आई एम कम बैक टू अपने नेटिव प्लेस से, मुझे फिर वापस इंदौर आना पड़ा। और इंदौर में ही मुझे नौकरी करना पड़ गई, इंदौर ही में वापस रुक गया। कुछ दिन तक तो मैं नशे से बचा रहा और मेरा काम काज जैसे ही ठीक हुआ कि फिर मैं 2017 में फिर पीने लगा,
1: फिर से पीने
0: और धीरे धीरे धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि मैं कभी कभार से डेली पे आ गया। और कई बार तो ऐसे होते था कि मैं सुबह भी पीने लगा, दोपहर में भी, रात में भी पीने लगा। एक और ब्रह्म कुमारी संस्था से ही जुड़े हुए एक मेंबर है, मतलब एक भाई है, जो एक अल्कोहलिक एनोनिमस करके एक संस्था है, वो संस्था में जुड़ के वो उन्होंने अपनी शराब छोड़ने में उनकी मदद हुई थी। तो वो मुझे 2021 से पर्चे बता रहे थे, मगर मेरा ईगो इतना बड़ा था, और दूसरा एक चीज था कि मैं किसी आध्यात्मिक संस्था से भी जुड़ा हूँ, इसके बाद भी शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, माता पिता पत्नी और अपने द्वारा मैंने कई प्रयास कर लिए शराब छोड़ने के, और इसके बाद भी मैं शराब नहीं छोड़ पाता, तो मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता था। तो मैं ब्रह्मा कुमारी में तो जाता था, मगर मैं इसके बाद भी शराब नहीं छोड़ पाता था। मैं मुरली सुनने भी जाता था, मेडिटेशन भी करता था, बाबा से प्रार्थना भी करता था, और कई बार तो यहाँ तक हुआ है कि मैं ऐसे नशा नहीं करूंगा कसम खाता था, और इसके बाद उसी टाइम पे मैं शराब पीने के लिए चला जाता था, छोड़ नहीं पाता था। मगर धीरे धीरे धीरे मेरी मन स्थिति इतनी नेगेटिव हो गई कि मैं हर अब धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ी, उम्र बढ़ने के साथ में हर जीत का दोष जो है अपनी पत्नी के ऊपर, पिता के ऊपर, भाइयों के ऊपर, और इवन भगवान को देने लगा
1: जी।
0: कि मैं सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया जीवन में, बाकी हर चीज के लिए जिम्मेदार जो मैं दूसरों को ठहराने लगा, और मेरी सोच इतनी नेगेटिव और नकारात्मक हो गई धीरे धीरे कि मैं जो है धीरे धीरे मेरा जो मस्तिष्क मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि मैं सुसाइडियल थॉट मेरे दिमाग में आने लगे, मुझे लगा कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए।
1: मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लंबी जर्नी आपकी रही है और नशे के साथ आपने बहुत जद्दोजहद की है, फाइट आपकी चलती रही है यहाँ पे, और यहाँ तक बात आ गई कि आत्महत्या का आपने सोच लिया, तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी हमारे एक्सपर्ट से भी कि ये जो चीज़ होती है कि व्यक्ति प्रॉमिस भी करता है, छोड़ने की कोशिश भी करता है, छोड़ नहीं पाता है, बार बार उसके साथ यही होता रहता है और परिस्थिति और बढ़ती जा रही है या बुरी होती जा रही है, डॉक्टर सचिन आप इसे कैसे देखते हैं, या ये क्या होता है, ऐसा दिमाग में काम क्या होता है, मतलब मेंटली क्या होता है या फिजिकली क्या होता है जो इतनी बुरी परिस्थिति के बाद भी व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है।
2: मुझे अच्छा लगा इनका अनुभव, वो समझदार है काफी, उन्होंने पहले ही कहा कि उनके पास स्टोरी बहुत है कि वो शॉर्ट में सुनाए कि नहीं, अभी उन्होंने देखा मैं सुन रहा हूँ 20 मिनट उन्होंने अपना अनुभव सुना है, वो जानते हैं अगर वो चालू हो जाए तो लंबे समय तक सुना सकते हैं, हमारा प्रोग्राम केवल 1 घंटे का है, तो उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया। और यही कहानी सभी एडिक्ट्स की होती है, मोर और लेस सभी एडिक्ट्स इसी स्टेज में से जाते हैं, है ना, ये उनका दोष नहीं है, मॉडर्न साइंस के अनुसार ये ब्रेन की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है। कई लोग कहते, इवन पढ़े लोग भी कहते कि विल पावर की कमी है, लेकिन अभी मॉडर्न साइंस कहता है इट इज नॉट विल पावर, इट इज ब्रेन डिसीज। क्यों मैं कह रहा हूँ ये, जब बात हम कहते हैं तो कई पढ़े लिखे लोगों को शॉक लगता है
1: जी
2: वो बहुत लेक्चर में कहते हैं कि विल पावर अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने विल पावर के ऊपर बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए, बिजनेस खड़े किए,

0: छोड़ना कठिन नहीं होता है। भावना में आके, जैसे रक्षाबंधन के वक्त हमारी बहुत बहनें उनसे मांगती है कि रक्षाबंधन के लिए मेरे लिए छोड़ दो, बच्चों के लिए छोड़ दो, जैसे इन्होंने भी कहा, छोड़ देते हैं ये लोग भावना में आके, लेकिन वो ब्रेन चेंज तो नहीं हुआ है ना, वो ब्रेन फोर्स करेगा इनको। इसमें यहाँ पे दो बातें हैं, एक है माइंड पावर और एक है ब्रेन पावर। तो समहाउ हमने देखा है कि एडिक्ट्स में ये जो ब्रेन है उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको खींच लेता है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया कि इनको ही नहीं पता था कि ये क्यों पी रहा है। जैसे कॉमन अजम्पशन ये होता है कि हमको टेंशन आ गया है, किसी की जैसे इनकी प्रेमिका की मौत हो गई है ना, सुसाइड कर लिया, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया। इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, मुझे लगता है ये अल्कोहल एनोनिमस में जब जाते हैं ना, ये सब बातें सुनते हैं, सबकी स्टोरी सुनते हैं, सेम स्टोरी होती है। और इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ईगो होता है अंदर, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनके अंदर ईगो है। लेकिन ये जितेंद्र भाई बहुत अच्छी तरह से सुना रहे हैं अपना अनुभव। तो ये तभी होता है जब ब्रेन होश में वो आने लगते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इट इज टफ, अनलेस आपका ब्रेन चेंज हो तब तक ये नहीं हो सकता। और हमारा डेटा ये कहता है, ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा ये कहता है कि 100 में से केवल 20% लोग नशा छोड़ पाते हैं, 80% नहीं छोड़ पाते हैं पूरी तरह से। लेकिन मैंने एक देखा है सिल्वर लाइनिंग, जो मैंने कही कि जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं है ना, उनके ब्रेन के अंदर चेंजेस होना चालू हो जाते हैं, और वो चेंजेस फिर परमानेंट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे एडिक्ट्स के अनुभव है जो गटर में पड़े रहते थे जो गटर में पड़े रहते थे और जो सुबह पानी की बजाय शराब से शुरुआत करते थे, और जैसे इन्होंने भी कहा सुबह दोपहर शाम को लेते थे, लेकिन जब इनके ब्रेन में, हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, केमिकल शिफ्ट हो जाता है, केमिकल शिफ्ट, तब अभी उनकी ऐसी हालत है कि उनको सिगरेट का स्मेल भी सहन नहीं होता है, शराब का स्मेल भी सहन नहीं होता है, और नशा तो छोड़, ये लोग खुद नशा तो छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास ऐसे एडिक्ट है जिन्होंने 70 से 100 लोगों का नशा छुड़ाया है, दे बिकम रोल मॉडल्स। तो इतना परिवर्तन हमने देखा है। लेकिन ये कब होता है, जब हमारा ब्रेन रिकवर होने लगता है। ब्रेन को रिकवर होने में टाइम देना है। अभी हम सबको एक ही नियम लागू नहीं कर सकते। कुछ लोग इमीडिएटली छोड़ देते हैं, माना 7 दिन के अंदर, कुछ लोग 1 महीने में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 6 महीने में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 1 साल में छोड़ देते हैं। ये हर एक का टाइम अलग अलग है, क्योंकि उसका ब्रेन रिकवर होना और मल्टीपल फैक्टर्स है, उसकी कंपनी क्या है, उसको जॉब है या नहीं है, उसको पालना मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सब बातें, उसका वो कौन से एरिया में रहता है और वो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करता है, ऐसे मल्टीफैक्टोरियल थिंग्स को अगर हमने ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन मैंने देखा है कि जो लोग सेंटर पे आते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, उनको एक अच्छा संग मिलता है, उनको सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता है, और वो मेडिटेशन करते हैं, वो ज्ञान सुनते हैं, और उनके अंदर नई एनर्जी आ जाती है, तब वो छोड़ देते हैं। पर एक ड्रग एडिक्ट को, जिनको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती है, उसके लिए कठिन है। इसलिए मेजॉरिटी लोग, मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, परिवार वाले इनको एडिक्शन सेंटर में डाल देते हैं, वहां 3 महीने तक वो ठीक रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से बंद रहता है, कहीं जा नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, फिर वही दोस्त है, वही एरिया है, वही जॉब नहीं है, वही प्रॉब्लम है। अगर रूट कॉज एड्रेस नहीं किया तो ये व्यक्ति फिर से फॉल बैक करता है एडिक्शन की तरफ। इसलिए सक्सेस रेट बहुत कम है। इसलिए हम आजकल कहते हैं कि दवा और दुआ, माना मेडिसिन के साथ मेडिटेशन को अगर कंबाइन करे और ये व्यक्ति अपना कंपनी अच्छा मेंटेन करता है, तो इसका नशा पूरी तरह से छूटने के संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर सचिन, यहाँ पे एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अंतिम जब वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे तो लास्ट में उन्होंने ये भी बताया कि सुसाइडल टेंडेंसी भी आ गई थी, आत्महत्या करने तक भी दिमाग में बात आ गई थी। तो ये कितना आप देखते हैं कि नशे में ग्रस्त व्यक्ति इस स्टेज पर कैसे पहुंच जाते हैं?
0: इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि एडिक्शन के

0: साथ बहुत सारी मानसिक बीमारियां भी चलती है। मानसिक बीमारी होती है, उनको पता नहीं होता है, इसीलिए एडिक्शन का इलाज साइकियाट्रिस्ट से करवाना चाहिए, क्योंकि जब वो हिस्ट्री लेते हैं तो हमको उनका पैटर्न समझ में आता है। कई लोगों में चिंता की बीमारी होती है, कई लोगों में डिप्रेशन की बीमारी होती है, कई लोगों में स्किजोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब मानसिक बीमारियां हैं। तो यूजुअली जैसे शराब पीने वाले लोग होते हैं, उनके ब्रेन में वो कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से, जिसके वजह से जैसे इन्होंने कहा ना, गिल्ट फीलिंग में जाते हैं ये लोग। गिल्ट माना उनको आत्मग्लानि की भावना आती है, और ये डिप्रेशन का क्लासिकल लक्षण है। और लंबे समय तक अगर उस व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसके वजह से उसकी पत्नी दुखी है, उसके बच्चे दुखी है, उसके परिवार वाले दुखी है, और जैसे इन्होंने शुरुआत में कहा कि वो अपना कोई कर्तव्य नहीं निभा पा रहे घर के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति, तो वो व्यक्ति अपने नजरों में गिर जाता है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा व्यक्ति अगर डिप्रेशन में जाता है तो डिप्रेशन के साथ उसको सुसाइडल थॉट आते हैं, और कई केसेस में सुसाइड कर भी लेते हैं। सो इट इज क्वाइट कॉमन, इसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। इसलिए हर एडिक्ट को साइकियाट्रिक इवेल्युएशन करना जरूरी है, और बहुत एडिक्ट है उनको एडिक्शन के इलाज के साथ में साइकियाट्रिक बीमारी माना मानसिक बीमारियों का इलाज भी साथ साथ चलता है, तभी वो इसमें से बच सकता है।
1: ओके, तो मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की भी बात है, दोनों पे
0: यस
1: असर पड़ रहा है, तो दोनों ट्रीटमेंट चाहिए जी। जितेंद्र जी, आप इस चीज़ से, जब आपने बताया आत्महत्या तक ये बात आपके दिमाग में आ गई थी, तो किस चीज़ ने आपकी मदद की, अगर आप वो थोड़ा सा स्पष्ट करें?
2: जिस दिन मैं उन आत्महत्या के लिए जब मेरे थॉट आना शुरू हो गए, और कई बार जो है मैं चूंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाता था मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करता था, तो मैं अब उस चीज को जो है मैं अपनी मृत्यु को विजुलाइज करने लगा कि मैं कैसे मेरी मृत्यु हो गई, कैसे मेरा अंतिम संस्कार हो रहा है, और अंतिम संस्कार के बाद जो है मैं वो मेडिटेशन, उस मेडिटेशन के लेवल पे जाने लगा। और साथ में ये जो अभी डॉक्टर साहब ने जैसे मुझे बताया कि जिन जिम्मेदारियों को मुझे पूरा करना था वो नहीं कर पा रहा था, तो घर के अंदर भी मैंने अपने अपने आप को तो मानसिक रूप से बीमार कर ही लिया था, साथ में मेरे घर के लोग भी, अन्य लोग भी बीमार हो गए थे, मेरी पत्नी बच्चे भी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। और अब इसको ओवरकम करने के लिए ईश्वर ने उस दिन, जिस दिन मैं आत्महत्या करने के लिए, उस दिन के एक मेंबर जो व्यावसायिक संबंध थे जिनके यहाँ घर आना जाना था मेरा, मैं उनके फोन पे उनके घर चला गया। घर गया तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने हमसे मेरे से पूछा कि आप बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, तनाव में लग रहे हो। तो
1: अच्छा जी।
2: मैंने थोड़ा सा कुछ झूठ बोला, और मैंने ऐसा ही कुछ इशू है, बोला नहीं कुछ तो बात है, आपको इतना टेंशन में हमने पहले कभी नहीं देखा। तो मैं और
1: जी, मुझे लगता है शायद उनकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जितना मैं समझ पाई उनकी कहानी से कि वो हेल्प कोई मिल गई उस दिन, नहीं तो शायद वो कर बैठते, इस तरह का कोई स्टेप ले बैठते। परिवार को भी उन्होंने बोला कि ग्रस्त कर दिया था, बीमार कर दिया था। कृष्णा जी, आप क्या देखते हैं, एक व्यक्ति बीमार होता है या परिवार कितने हद तक उससे इफेक्ट होता है, बच्चे या महिलाएं?
3: ये बात तो है, जैसे उन्होंने अपनी जीवन के अनुभव में भी कहा कि जैसे वो नशा करना शुरू करता है तो वो छोटी सी बात जो घर पे आलू क्यों नहीं रखे है, इस बात पे भी बहुत बड़ी झगड़ा और लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो फिर घर में बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनको भी ये पता नहीं चलता है कि छोटी सी बात पे इतनी बात बड़ा करने की क्या जरूरत है। और जब वो अपना ओवर पावर इम्पोज करते हैं तो फिर ऑब्वियसली महिलाएं भी डर जाती है और बच्चे भी डर जाते हैं, हाथ भी उठता है, और जब हाथ उठता है तो फिर महिलाओं को किस हद तक चोट लग रही है और वो क्या हो रहा है उनके साथ, उनको भी पता नहीं चलता। तो ये पूरा परिवार बच्चे, महिलाएं और उनकी पेरेंट्स, दोनों साइड, इनकी परिवार वाले, उनके परिवार वाले, और आसपास पड़ोस में, समाज में भी उस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगी। जब मैं बचपन में, हम जहाँ पे रहते थे, हमारी नेबरहुड में एक फैमिली रहती थी, तीन लड़कियां थी और उनकी वाइफ और वो हस्बैंड रहते थे। तो वो सुबह जो अंकल है वो बच्चों के साथ बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार से, लाड़ प्यार से बच्चियों को खिलाना पिलाना, वो सभी चीजें। और रात को दारू पी के आते हैं और बहुत बुरी तरीके से, फिर वो तीनों लड़कियां और उनकी वाइफ। तो कभी कभी वो इतना ओवर हो जाता था कि वो लोग घर के दरवाजे खोलते भी नहीं थे, और वो बाहर गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए चिल्लाते थे। तो कई बार ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी मानसिक स्तर पे भी उसको काम करना बहुत जरूरी है। हमने जब ये डोमेस्टिक वायलेंस का ये प्रोग्राम किया है, तो महिलाओं को जागरूक तो हम कर ही रहे हैं कि मजबूत बने, ये सभी चीजें, लेकिन पीड़ित वर्ग तो पुरुष है जो नशा कर रहा है, उनकी काउंसलिंग होना और उनको एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी
3: कानून
1: है।
3: से हम एजुकेट करते हैं, लेकिन कानून से नशा छूटता नहीं है, कानून से महिला को भी मदद नहीं मिलती, क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है। तो समाज में हमें साइकोलॉजी पे या उनके मानसिक स्तर पे काम करना बहुत जरूरी है, कानून के साथ साथ।
1: डॉक्टर सचिन, यहाँ मैं आपसे ये बात दोबारा पूछना चाहूंगी, क्योंकि 30 वर्षों से आप कैंपेन कर रहे हैं महिलाओं से, या अलग अलग वर्गों के साथ आप जुड़ते हैं, तो क्या अप्रोच डिफरेंट होती है यूथ के लिए, या फिर जो एजेड होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके साथ या बच्चों के साथ नशा मुक्ति की जो अप्रोच होती है कितनी अलग होती है?
0: देखो कुछ बातें आ रही है बहुत लोगों को, क्योंकि अपना टाइम लिमिटेड है, अपने पास 20 मिनट है, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। जो भी कृष्णा बहन ने बताया और जो जितेंद्र भाई ने बताया, कि पहली बात मैं पब्लिक को कहना चाहूंगा कि ये एडिक्ट व्यक्ति होता है, ये बीमार व्यक्ति होता है ना, तो वो उसके साथ एम्पथी होना बहुत जरूरी है। अभी गलती क्या होती है, घर वालों के, समाज वालों से भी यही गलती होती है कि हम समझते हैं कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति बिहेव करे वैसे उसको समझ में क्यों नहीं आता है। तो अननोइंगली, माना अनजानेपन में, अच्छे लोग भी एक काउंसलिंग का टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मोरालिस्टिक काउंसलिंग। अभी ये मोरालिस्टिक काउंसलिंग क्या होता है कि उसको कहा गया, अरे तुमको इतना भी समझ में नहीं आता है, तुम्हारी बीवी दुखी है, तुम्हारे बच्चे दुखी है, उनका क्या होगा। अभी वो व्यक्ति पहले से ही गिल्ट में है, आप ये सुना के उसको और गिल्ट में ढकल रहे हैं, माना आप उसकी बीमारी को बढ़ा रहे हो। अभी ये कहाँ पे आपको कैसे काउंसलिंग करना, ये कला है। अनजानेपन में कई लोग पेशेंट को गिल्ट में डाल देते हैं और फिर वो गिल्ट और गहरी होने लगती है। तो जैसे अभी कृष्णा बेन ने कहा कि हमको काउंसलिंग भी बहुत यथार्थ तरीके से करनी चाहिए, और मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि जैसे वन वन टेक्निक डजन फिट्स ऑल, हर एक पेशेंट अलग होता है, हर एक पेशेंट अलग होता है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे मैं देख रहा हूं भारत में अज्ञानता इतनी है कि डायबिटीज का मरीज, अभी उसको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की कोई गोली चालू है और उसको आराम मिला, तो वो दूसरे को भी कहते हैं तुम भी ये गोली ले लो और तुम्हारा डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। ऐसा यहाँ नहीं चलता है। हर एक पेशेंट अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी पढ़ाई अलग है, उसकी फैमिली सिचुएशन अलग है, आपको वो समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एम्पैथी की बात कर रहा हूँ कि ये एडिक्ट्स बीमार होते हैं, इनका दोष नहीं है, इनको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अगर हमने इनको रिजेक्ट कर लिया तो फिर ये रिकवर नहीं होते हैं, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। इनको पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए। मेजॉरिटी लोग इनको एनर्जी जो देते हैं वो नेगेटिव एनर्जी देते हैं, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि इसको ये माना, कई सारी कहावतें हैं वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ऐसे ऐसे टेक्निक यूज करते हैं। मैंने तो ऐसे डी एडिक्शन सेंटर देखे हैं जो कि इलीगल है, जहां पे दवाई और काउंसलिंग के इलाज करने के बजाय मारते हैं,
1: मारते हैं,
0: मारते हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है, पर अभी भारत में ये सब होता है। तो पेशेंट को समझना जरूरी है, उसको सुनना जरूरी है ना। वो पेशेंट है, वो बीमार है, इसलिए वो वैसा कर रहा है। आपको अपनी सुरक्षा डेफिनेटली करनी है। जैसे इन्होंने बताया ना कि घर में अंदर से कड़ी लगा लेते हैं, तो ये बहुत केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि वो नशे में हालत में कुछ भी कर सकता है। तो उसको उस समय अपने आप को संभालना चाहिए, लेकिन जब वो होश में आता है वो फिर से गिल्ट में जाता है। तो आप एक टेक्निक सबको यूज नहीं कर सकते। डेफिनेटली बच्चों का तरीका अलग होता है, एडल्ट का तरीका अलग होता है ना। तो बच्चों के साथ काउंसलर्स होते हैं, वो स्पेशलिस्ट काउंसलर होते हैं, उनको पीडियाट्रिक काउंसलर कहते हैं, वो एक सुपर स्पेशलिटी है। एडल्ट काउंसलिंग अलग प्रकार की काउंसलिंग है। मैंने तो सब्जेक्ट को टच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरा घड़ी की तरफ ध्यान है। हमारे महाराष्ट्र में, अभी मैं मुंबई से हूँ, तो यहाँ पर हमारी बहनें भी नशा करती है, सभी मेट्रो सिटीज पे बहुत बुरा हाल है हमारे इधर तो। क्योंकि मैंने
4: अभी बजे हैं शाम के 6, शाम

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना, और आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ खूबसूरत शाम गुनगुनाते हुए आई हूँ। कहानी, कविता और प्यारी बातों को साथ में जरूर रखने वाली हूँ। पूछूंगी आपसे सवाल जिसका जवाब आप देंगे 9414151415 पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

श्री राम जय राम, इस खूबसूरत जो राम स्तुति को आप तक पहुंचाने के बाद मैं मोना वापस आ गई हूं और एक छोटी सी कहानी आप तक पहुंचाने वाली हूं। ये कहानी है न घर का न घाट का। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता। किसान बूढ़ा था और उसकी पत्नी सुंदर और जवान भी थी। किसान को पत्नी की हमेशा ये लगती थी कि कहीं उसकी शादी बूढ़े आदमी से की गई है। ये सोच कर वो हमेशा दुखी रहती। एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आया। उसने किसान की पत्नी को देखा, समझ गया ये स्त्री अपनी पत्नी से, जो पति है उससे प्रसन्न नहीं है। ठग ने किसान की पत्नी के पास बोला, आप तो बड़ी सुंदर हो, बहुत खूबसूरत भी हो, मुझे आपसे मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ घर चलोगी? किसान की पत्नी ठग की बातों में आ गई और अपने पति को छोड़कर उनके साथ चली गई। दोनों ने भागने का समय भी तय किया। ठग ने कहा, आपके पति बूढ़े हो गए ना, धन बहुत है उनके पास, क्या करेंगे? तो एक काम करो, अब ये सारे धन और जेवर रख लो, भविष्य में ये हम सब के काम आएंगे। स्त्री ने उस ठग की बातों में पहले तो आ ही चुकी, उसके कहे अनुसार घर से सारा धन लिया, जेवर भी ले लिए। रात्रि के समय पूरा गांव जब सो रहा था, वो ठग के साथ चल दी। सुबह होते जब गांव से वो बहुत दूर निकल गए तो रास्ते में एक नदी मिली। ठग ने सोचा, मैं इसका किसी तरीके से धन लेकर यहीं इसे छोड़ देता हूँ। वो वैसे भी अधेड़ उम्र की तो हो चुकी थी, उसके पास धन रहेगा तो कहीं और कुछ कर पाएगा। नदी को देखकर ठग ने कहा, अरे इतना सारा धन लेकर इस नदी को हम पार नहीं कर सकते, पहले मैं इस धन को नदी के पार लेकर जाता हूँ, किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ और फिर मैं आकर तुमको नदी पार करा दूंगा। किसान की पत्नी पहले से ठग की बातों में क्योंकि आ ही चुकी थी तो उसकी इस पूरी बात को वो समझ ना सकी और धन की गठरी उसे दे दी। बैठकर वो इंतजार किनारे पर करने लगी। बहुत समय बीतने पर ठग न लौटा। अब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आया। अपना सब कुछ लुट जाने की दुख में वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। एक गीदड़ भी वहाँ से गुजरा और यही कहा कि अरे तुम मूर्ख हो और किसी और की बात में आकर तुमने अपनी जो जिंदगी है उसे खो डाली, इसीलिए मूर्खों से पाला ना पड़े, साथ ही साथ मूर्खतापूर्ण कोई भी कार्य बिल्कुल ना करे। दोस्तों सवाल आपके लिए, 4 दर्जन यदि कहें उसमें कुल कितने आम होंगे? 4 दर्जन में कुल कितने आम होंगे? सही जवाब झटपट दीजिए 9414151415 पर दीजिए। भाई ऑप्शन है 24, बी 36, सी 48। झटपट जवाब देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, हमारे बीच श्रोतागण भी है, बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार,
1: कैसे हो बहन जी? कैसे?
0: बहुत बहुत अच्छे।
1: हाँ, क्या बोला आपने? क्या कितना आम बोला?
0: चार दर्जन में कुल कितने आम होंगे? 24,
1: 40, 40,
0: 40 या 24, 36 या 48?
1: 48।
0: चलिए, जो आपके जवाब को लॉक करते हैं और ये गान आप तक खास पहुंचाते हैं।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी
0: जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए
1: दीदी, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। इसके पहले भी आरोग्य जी का नशे के ऊपर का प्रोग्राम
0: जी, जी।
1: बहुत दिनों से चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा। लेकिन एक मैं कहता हूँ, बीच बीच में लाइव कट जाता है। अभी
0: अच्छा।
1: आपका भी 2 मिनट कट हो गया था।
0: ओके,
1: ऐसा बीच बीच में कट हो रहे,
0: कट हो रहे हैं। जी जी जी, ओके।
1: इंटरनेट होते हुए भी हमारा क्लियर है, लेकिन आपके यहाँ से ही 1-2 मिनट बीच बीच में कट होता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो माँ, तो आप देखो, तो भाई जी ने जो जवाब दिया अभी
0: जी,
1: पहले
0: जी,
1: वो जवाब सही है। 8-40 आम आएंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है।
0: थैंक यू।
1: सभी को नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार।

0: बहु क्या होता है?
1: अरे टिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। एक मुट्ठी में कुछ सपने लेकर हम जरूर आते हैं, इस कविता को थोड़ी देर में आप तक पहुंचाते हैं। पर पुनः एक बार आज का सवाल आपके लिए, 4 दर्जन में कुल कितने आम होंगे? भाई आम का सीजन चल रहा है और सवाल भी कुछ ऐसा ही जुड़ा हुआ है। यदि आपके पास आम है और कहने को है 4 दर्जन, तो कितने टोटल आम होंगे? 24, 36 या 48? सही जवाब झटपट देना 9414151515 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और गीत है आपके लिए

मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।

इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब

0: झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?
1: हार के बाद ही जीत है। थोड़ी
2: बेवपुर गांव में तीन भाई रहते थे। पिता के निधन के बाद तीनों भाइयों ने संपत्ति बांटने का फैसला किया।
3: भाइयों, पिताजी अब नहीं रहे, अब हमें जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। मेरा कहना है कि संपत्ति का बंटवारा कर लिया जाए।
4: हाँ भैया, बिल्कुल सही। अलग अलग रहेंगे तो झगड़ा भी नहीं होगा।
5: भैया, पिताजी हमेशा कहते थे कि भाई साथ रहे तो ताकत बनी रहती है।
3: मोहन, ये दुनिया किताबों की बातों से नहीं चलती, हिसाब जरूरी है।
4: तू अभी बच्चा है मोहन।
5: मैं बच्चा नहीं हूँ भैया, बस घर टूटे ये नहीं चाहता।
2: मोहन की बात में सच्चाई थी, मगर जगत और रतन के मन में पहले ही योजना बन चुकी थी।
3: हमारे पास 3 अच्छे खेत, 2 मजबूत बैल, 1 बड़ा पक्का घर, अनाज से भरा कोठार, कुछ नकद रुपए और 1 बूढ़ी गाय।
5: जो न्याय हो वही कीजिए।
2: मोहन को क्या पता था, न्याय शब्द अब इस आंगन से जा चुका था।
3: 3 खेत हैं। पहला बड़ा उपजाऊ खेत मेरा होगा, दूसरा कुएं के पास वाला खेत रतन का होगा, तीसरा जो पथरीला है जिसमें पानी नहीं रुकता वो मोहन का होगा।
5: भैया, वो खेत तो बंजर है, उसमें कुछ उगता ही नहीं।
4: तो मेहनत करके उगा लेना।
6: जमीन तो जमीन होती है, तुझे हिस्सा मिल रहा है एहसान समझ।
5: मैंने ऐसा कब कहा कि हिस्सा नहीं चाहिए?
2: मोहन की आवाज में शिकायत कम और टूटे हुए भरोसे की कसक ज्यादा थी, जैसे वो अपने ही घर में पराया हो गया हो। बातों का दौर खत्म होते ही वे तीनों खेतों से निकलकर बैलों के बारे की ओर बढ़ गए, जहां अब एक और बंटवारा उनका इंतजार कर रहा था।
3: अब बैलों की बात। 2 बैल हैं, शीरा और मोती। शीरा मेरा, मोती रतन का, और मोहन को बूढ़ी गाय।
5: गौरी, वो तो खड़ी भी मुश्किल से होती है भैया।
4: तो बैठकर दूध दुह लेना।
3: हाँ, और क्या।
2: जगत और रतन हंस रहे थे, मगर मोहन की आंखें भर आई थीं।
3: अब घर, सामने के 2 कमरे मेरे होंगे, पीछे के 2 कमरे रतन के, और जो पीछे टूटी झोपड़ी है जहां पुराना सामान रखा है वो मोहन का।
5: भैया, वहां तो छत भी टूटी है।
4: तो नहीं डाल लेना।
3: हाँ, तुझे काम तो आता है।
2: गीता खड़ी सब सुन रही थी, उसकी मुट्ठियां भीट चुकी थीं। जगत अंदर गया और लोहे की पेटी लाया।
3: इसमें कुल 100 चांदी के सिक्के हैं, 50 मेरे, 40 रतन के और 10 मोहन के।
5: भैया, बराबर क्यों नहीं?
3: क्योंकि मैंने पिताजी का इलाज कराया था,

0: और मैं खेत संभालता था।
1: मैं भी तो खेत में काम करता था।
2: बहुत जुबान चलने लगी है तेरी।
3: मोहन तुरंत चुप हो गया। वो बड़े भाई का सम्मान करता था मगर भीतर से टूट चुका था। तभी गीता आगे आई।
4: ये बंटवारा नहीं, अन्याय है।
3: आंगन में सन्नाटा छा गया। बहू होकर मर्दों के बीच बोलती है,
4: तुझे शर्म नहीं आती? शर्म मुझे नहीं, उन्हें आनी चाहिए जो छोटे भाई का हक मार रहे हैं।
2: बहुत हो गया, मोहन अपनी औरत को समझा ले।
5: गीता चुप हो जाओ।
4: क्यों चुप हो जाऊं, कब तक चुप रहूं?
5: हम गरीब हैं, झगड़ा नहीं कर सकते।
3: गीता ने पति की ओर देखा। उसे अपने पति की भल मनसाहत पर प्यार भी आया और दुख भी। बंटवारा पूरा हुआ। मोहन अपना सामान लेने अंदर जाने लगा।
2: कहाँ जा रहा है?
1: अपने हिस्से में।
2: तेरा हिस्सा पीछे झोपड़ी है, इस घर में मत घुसना अब।
0: हाँ, यहाँ तेरी जगह खत्म।
1: भैया शाम हो रही है, एक रात रहने दो।
2: नहीं।
3: इतना कहकर रतन ने मोहन का बिस्तर, बर्तन और कपड़े बाहर फेंक दिए।
4: इतनी बेरहमी।
6: जितना मिला है उतने में रहो,
4: और ज्यादा चाहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
1: भैया मैं जा रहा हूँ, मगर इतना याद रखना, गरीब का दिल मत दुखाना।
2: जा जहाँ जाना है।
3: मोहन और गीता घर के पीछे पहुंचे। वहां मिट्टी की पुरानी झोपड़ी थी, छत तपकी हुई, दीवारों में दरारें और चारों तरफ कूड़ा।
4: यही हमारा घर है
1: शायद। हाँ।
4: तुमने सब सह लिया।
1: वे मेरे भाई हैं।
4: और तुम उनके लिए सिर्फ नौकर थे।
3: मोहन चुप हो गया, वो जवाब नहीं दे सका। उसी समय बूढ़ी गाय गौरी झोपड़ी के पास आई।
1: आजा गौरी, अब तू ही हमारी साथी है।
7: कम से कम ये बेजुबान तो हमारे साथ है।
3: रात हो चुकी थी, झोपड़ी में हवा आ रही थी, खाना कुछ नहीं था।
4: आज पहली बार भूखे सोना पड़ेगा।
1: कल कुछ काम ढूंढूंगा।
4: और अगर ना मिला तो?
1: भगवान पर भरोसा रखो।
4: भगवान ने आज हमारा साथ कहाँ दिया?
3: मोहन के पास जवाब नहीं था। मोहन बाहर निकला, आसमान की ओर देखा और पिता को याद करने लगा।
1: बाबा आपने सिखाया था कि भाई साथ रहते हैं। मैंने आपकी सीख नहीं छोड़ी, मगर भाइयों ने मुझे छोड़ दिया।
3: उधर जगत और रतन अच्छे खाने के साथ बैठे थे।
2: देखा, बिना झगड़े सब निपट गया।
0: हाँ भैया, मोहन तो सीधा है, कुछ बोल ही नहीं पाया।
6: आप चैन से रहेंगे
4: और खेत की कमाई भी बांटनी नहीं पड़ेगी।
3: चारों हंस रहे थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि लालच की हंसी ज्यादा दिन नहीं टिकती। सुबह सूरज निकला, मोहन बाहर निकला तो देखा बूढ़ी गाय गौरी के नीचे थोड़ा सा ताजा दूध गिरा हुआ था।
4: अरे इसने दूध दिया,
1: इतने दिनों बाद।
3: मोहन और गीता ने एक दूसरे को देखा। कल तक सब छिन गया था, लेकिन आज जैसे किस्मत ने छोटा सा दरवाजा खोला था। जिस गाय को सब बेकार समझ रहे थे, शायद वही उनके जीवन की पहली उम्मीद बनने वाली थी।
4: शायद भगवान ने हमें पूरी तरह छोड़ा नहीं है।
1: बाबा ये आपकी मदद है ना?
3: गीता ने जल्दी से बर्तन से दूध निकाला। दूध ज्यादा नहीं था, मगर दो लोगों के लिए काफी था। मोहन ने दूध को घर के अंदर रखा और वापस बाहर आया। तभी उसने देखा गौरी धीरे धीरे झोपड़ी से दूर जाने लगी।
1: अरे ये कहाँ जा रही है?
4: शायद घास ढूंढने जा रही होगी।
3: लेकिन मोहन को कुछ अजीब लगा। गौरी बहुत बूढ़ी थी, इतना चलना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी आज वो बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थी। मोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गौरी सीधे उसी बंजर खेत की ओर जा रही थी जो मोहन को मिला था, पत्थरों से भरा, सूखा, बेकार समझा जाने वाला खेत। हवा चल रही थी और उस सूनी जमीन पर कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी।
1: यहाँ क्या है?
3: गौरी खेत के बीच जाकर रुक गई। उसने जमीन को सूंघा और फिर अपने पैर से मिट्टी कुरेदने लगी।
1: गीता ये क्या कर रही है?
3: दोनों ने देखा गौरी बार बार उसी जगह मिट्टी खुरच रही थी, जैसे वहाँ कुछ छुपा हो।
7: क्या तुम्हें लगता है यहाँ कुछ हो सकता है?
1: पता नहीं, पर कोशिश करने में क्या जाता है।
3: मोहन ने पास पड़ी एक पुरानी लकड़ी उठाई और मिट्टी खोदना शुरू किया और थोड़ी ही देर में एक पुरानी लोहे की पेटी दिखाई दी।
7: ये खजाना हो सकता है।
1: पता नहीं, लेकिन ये यहाँ कैसे?
7: खोलो इसे।
1: अगर इसमें कुछ खतरनाक हुआ तो?
7: हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है।
3: मोहन ने हिम्मत जुटाई और ढक्कन खोला। ढक्कन खुलते ही उनकी आंखें फैल गईं। अंदर सोने के गहने नहीं थे, बल्कि पुराने कागज, कुछ सिक्के और एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी थी।
1: ये तो कागज है।
7: शायद ये ही असली चीज है।
3: मोहन ने डायरी उठाई, उस पर धूल जमी हुई थी। धीरे से उसने उसे साफ किया और जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसका दिल जोर से धड़कने लगा।
1: ये बाबा की लिखावट है।
7: क्या?
3: डायरी में लिखा था, अगर मेरे बच्चों को ये डायरी मिले तो समझ लेना कि मैंने सच्चाई को छुपा कर रखा था। जगत और रतन लालची होते जा रहे हैं। मुझे डर है कि वे मोहन के साथ अन्याय करेंगे, इसलिए मैंने असली जमीन के कागज और कुछ धन इस बंजर खेत में छुपा दिए हैं।
7: तो इसका मतलब?
1: ये खेत असली में सबसे कीमती है।
3: मोहन ने आगे पढ़ा, ये जमीन बंजर नहीं है, इसके नीचे पानी का बड़ा स्रोत है। जो भी मेहनत करेगा वो इस जमीन को सोना बना सकता है। मोहन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, उम्मीद से।
1: गीता, बाबा ने हमें छोड़ा नहीं,
7: उन्होंने हमें सबसे बड़ा खजाना दिया है।
3: उसी समय गौरी ने आवाज की, जैसे वो भी इस राज की गवाह हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था, दूर खड़ा कोई उन्हें देख रहा था, रतन। वो चुपचाप पेड़ के पीछे खड़ा था, उसकी नजर पेटी पर थी।
0: तो ये है असली खेल।
3: मोहन और गीता खुश थे, उन्हें लगा किस्मत बदलने वाली है। लेकिन किस्मत के इस खेल में अब लालच भी शामिल हो चुका था, और जहां लालच होता है वहां तूफान आने में देर नहीं लगती। रतन भागता हुआ सीधे घर पहुंचा।
2: क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहा है?
0: भैया, मोहन के खेत में खजाना मिला है।
2: क्या?
0: पुरानी पेटी, कागज और कुछ बड़ा राज।
3: जगत की आंखों में लालच चमक उठा।
2: तो इसका मतलब बाप ने हमें धोखा दिया।
0: हमें ये बात गांव में उठानी होगी।
3: अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई, मोहन को बंजर खेत में खजाना मिला है। बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी।
8: किस बात का झगड़ा है?
2: मोहन ने हमसे सच्चाई छुपाई है, जो भी मिला है उसमें हमारा भी हक है।
0: हाँ, वो जमीन भले उसके नाम हो, लेकिन खजाना पूरे परिवार का है।
8: मोहन, क्या सच है?
1: हाँ, मुझे एक पेटी मिली है, लेकिन उसमें सोना नहीं, सच्चाई है।
2: झूठ! सबके सामने खोलो उसे।
3: मोहन ने पेटी खोली और डायरी निकालकर सरपंच को दे दी।
1: इसमें बाबा की आखिरी बात लिखी है, आप खुद पढ़ लीजिए।
3: सरपंच ने डायरी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते गए, माहौल बदलता गया, गांव में सन्नाटा छा गया।
8: इसमें साफ लिखा है कि जगत और रतन लालच में अंधे हो गए थे और मोहन के साथ अन्याय कर सकते थे।
3: जगत और रतन के चेहरे उतर गए।
7: आज सच सबके सामने है, हमें घर से निकाला गया, हमारा हक छीना गया।
2: ये सब झूठ है, ये डायरी कोई भी लिख सकता है।
9: ये लिखावट में पहचानता हूँ, ये तुम्हारे पिता की ही है।
3: अब सरपंच खड़ा हुआ।
8: फैसला साफ है, मोहन के साथ अन्याय हुआ है, उसे पूरा हक मिलेगा, जमीन, घर और धन बराबर बांटा जाएगा, और जगत रतन को अपनी गलती माननी होगी।
3: सच छुप सकता है, लेकिन हारता नहीं।
10: लालच बिल्कुल, तभी तो कहते हैं सच की नैया हिलती डुलती है, डूबती नहीं। चलिए दोस्तों, अगले गीत से पहले एक बार पुनः सवाल दोहराते। सवाल है, 4 दर्जन में कुल कितने आम होंगे? 24, 36 या 48? सही जवाब देना 9414151415 पर कॉल करके देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हार के बाद ही जीत है।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 10

वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज के लिए इतना ही कहते हुए सवाल का जवाब देते हैं। चार दर्जन में कुल कितने आम होंगे? जी हाँ, आम का मौसम है और टेस्टी आम में आपको सिर्फ चार दर्जन में 24 मिलेंगे? नहीं, 36, ये भी नहीं, 48 अर्थात 48 आम मिलेंगे। तो सही जवाब 48 है। चलिए दोस्तों, आज था गुरुवार, कल मिलने का वादा करते हैं। शुक्रवार को जरूर हम शाम को 6 बजे आपके बीच होंगे। तब तक के लिए उड़ान से कहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम म्हारो गांव म्हारो अंचल, यानी मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं और बस्ती में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत खुशी लगता है, क्योंकि अपनापन लगता है। उनका भी बात को कोई सुनने के लिए आता है। आज रेडियो मधुबन पहुँचा है, वो धामसरा का एक फली है जहाँ की गोलिया फली में पहुँचे। धामसरा का ग्राम पंचायत का अंडर में आता है, भूमरिया फली से थोड़ा आगे है, अक्का टेकरी है, और जहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है भैरवनाथ जी का। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें खुशी लगा, इतना आकर्षण और सुंदर परिवेश में। तो यहाँ का एक निवासी जो हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, तो ग्रामवासियों की तरफ से और हमारा सभी जो हम जिंस हमारा जाति भाई लोग से उनको स्वागत करते हैं, राम राम करते हैं, राम राम राम राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, तो हमें खुशी है इस तरह गांव के लोग, हमारे भाई बहन आई लोग हो चाहे बाप लोग, हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अपनापन लगता है, कोई अनजान नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि जब जाते हैं एक परोपकार का भावना को लेकर, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक में जो गतिविधि हो रही, चाहे आस्था, विश्वास, भक्ति, पूजा, खेती, पशुपालन, ये हमारे जीवन में आवश्यकता में, रोजमर्रा के जीवन में हम किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। चाहे हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम के लिए भगवान को याद करते हैं, अपने ठाकुर को याद करते, अपने कुलदेव को भी याद करते। तो इस कार्यक्रम को लेकर जब हम पहुँचे इस फली में, इसका जो भौगोलिक परिवेश बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर जगह और प्रकृति का गोद में बसा हुआ एक गांव, छोटा सा बस्ती, चार पांच छह मकान दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी अच्छा इंसान सभी है, क्योंकि जो धर्म परायण हो भक्ति भावना रहता है, जिस फली में मंदिर रहता है, तो आस्था विश्वास को लेकर एक जीवन आध्यात्मिकता की ओर जाता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ जो महान अनुभवी है उनको स्वागत करते हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए, आपका बचपन, पढ़ाई और क्या करते हैं, थोड़ा आपका बचपन को याद कराते हैं और इस एरिया को आप देखें, इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपका स्वागत है।
1: तो सब पढ़ाई तो पहले कोई करवाते नहीं थे, दूसरी तक पढ़ा था।
0: अच्छा।
1: फिर कोई ऐसे धंधा पकड़ा तो मार्बल का काम कर रहा हूँ फैक्ट्री में।
0: कहाँ पर मार्बल फैक्ट्री?
1: अपने रिक्कू में।
0: रिक्कू में। और आपका शुभ नाम बताइए।
1: प्रभु राम जी।
0: प्रभु राम जी। तो प्रभु नाम ही कितना सुंदर, देखिए प्रभु प्रभु का कृपा जब होता है तो आपका नाम इतना सुंदर रखा है। देखो कोई प्रभु राम मतलब ये कम बात नहीं है, तो राम तो जुड़ा हुआ है और प्रभु है ही है
1: जी।
0: सबका आगे राम तो है ही है, बाधा राम, थवरा राम, तो आपका प्रभु राम। तो प्रभु जी, आपका घर में इस तरह नामकरण कैसे हुआ, कौन दिया आपको प्रभु नाम, कौन रखा है? मम्मी पापा?
1: आई मम्मी पापा ने
0: नहीं रखा। अच्छा। नहीं, पढ़ाई बहुत कम किए, कारण क्या था? मैंने आर्थिक
1: वो सब उस टाइम में कोई नहीं थे, तकलीफ आई थी तो स्कूल में कोई कोई सोपरा लेना है, वो लेना है, तो पैसे नहीं होगा, तो उसलिए मना कर दिया आपने, नहीं पढ़ाई करनी है, कोई बात नहीं, दूसरी तक कर ली।
0: तो आपका परिवार में और कौन कौन है?
1: परिवार में सब पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, बाकी भाई हैं, तीन भाई
0: सब यहीं पर रहते हैं, इस फली में।
1: नहीं, सियावा में भी रहते हैं।
0: ओ, अब रोड का पास,
1: पास अंबाजी रोड,
0: अंबाजी रोड में। हीरापुरा पार करके जाना?
1: हाँ हाँ, हीरापुरा से आगे
0: आगे, वहाँ एक भाई रहते हैं। आप यहाँ रहते हैं? और एक भाई,
1: वो तीनों भाई वहाँ रहते थे, दो भाई हम इधर रह रहे हैं।
0: अच्छा, यहाँ पर क्यों आए वहाँ छोड़कर? वहाँ तो सियावा तो बहुत अच्छा जगह है।
1: वो सब है पर हमारे बापी की यहीं थी,
0: जमीन यहीं पर है।
2: बापी की
1: वो मामा के उधर रहते थे, वहाँ से हमारे पापा चलने के बाद हमारी माँ ने दूसरा घर कर लिया।
0: जी जी जी।
1: उसके कोई आगे पीछे कोई नहीं थे
0: जी जी,
1: तो वो जमीन थोड़ी बहुत हमारे पास है।
0: ओके।
1: वहाँ भी अपना मकान है,
0: वहाँ पे यहाँ पर
1: पूरा भी कर लिया है,
0: राज्य में रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आपका बचपन और अभी तक इतना जो परिवार को देखेंगे, उतार चढ़ाव तो जीवन में आता है हर एक जीवन में, फिर भी आपका ऐसे जीवन में एक उतार चढ़ाव जो बहुत मुश्किल परिस्थिति आई, लेकिन आप उसको दृढ़ता से प्रभु को याद में काम किए, ऐसे कोई पल आपको याद है जो वो संघर्ष करके एक सक्सेस तक पहुँचे, चाहे आपका खेत में हो, चाहे अपना बिजनेस में हो, चाहे अपना जो जहाँ पर काम करते हैं, उतार चढ़ाव तो होता है जीवन में,
1: होता है होता है, तकलीफ सुख
0: समय में, क्योंकि आपका कहानी से जो भी हमारा श्रोता सुन रहे आपको सुन, तो उनको एक प्रेरणा मिले, अरे वो भाई प्रभुराम जी का भी संकट में आया था इस तरह, और उसको डट के दृढ़ता से आत्मबल से बुद्धि बल से वो काम को निपटाया। तो ऐसे आपका जीवन में कोई इतना कठिन परिस्थिति तो आना नहीं चाहिए, मान के आया तो उसको भी हमको कुछ सीख देकर गया, शिक्षा देकर, कोई समस्या आता तो हमको शिक्षा दे मिलता है कि आगे इस तरह आएगा तो हम सतर्क होंगे और हमारा सब बच्चों को सुनेंगे। ऐसे कोई परिस्थिति है तो बताइए।
1: बस अभी तो पहले बहुत तकलीफ थी, अभी तो बहुत खुश हैं।
0: जैसे कोरोना काल में कोई परिस्थिति आया इस
1: नहीं, नहीं आया
0: नहीं आया
1: नहीं आया,
0: मैंने सब दाल रोटी मिलता रहा
1: और कंट्रोल के गेहूँ मिल रहे हैं।
0: ओह,
1: और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आई है।
0: अच्छा, आपका समय में आपका मम्मी पापा इतना पढ़ाया लिखाया नहीं और आप इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन आपका बच्चों को अभी उस समय का तो अलग, अभी का समय में आपका बच्चों को छोकरा छोकरी को पढ़ाते हैं आप?
1: हाँ, पढ़ाते हैं।
0: अच्छा, कितना छोकरा छोकरी है?
1: एक दसवीं तक पढ़ाया, वो अब उसने औरत ला दी और दो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं।
0: अरे वाह, पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं बच्चों को? आप भले कम पढ़े लेकिन बच्चों को
1: पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सियावा में पढ़ रहे हैं वहाँ।
0: ओ, सियावे तो बहुत हॉस्टल भी है।
1: हाँ, हॉस्टल भी है ना,
0: जाति स्कूल में जो है वहाँ पे हॉस्टल में उसको दाखिल करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों का हॉस्टल सरकार ने दिया, जनजातवासी स्कूल, उसमें डालेंगे ना तो देखिए आपको थोड़ा निश्चिंत होंगे और वहाँ पढ़ाई अच्छा होगा। ठीक है, सियावा स्कूल में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, और आप कम पढ़े, लेकिन खेती के ऊपर में क्या क्या खेती करते हैं?
1: खेती ये कर रहे हैं, कोई रंडा है, वरियाली है, और बारिश में कोई मक्का है,
0: उसमें हो जाता है परिवार के लिए
1: ना, होता है
0: खाने के लिए ना, बेचते हैं?
1: हाँ, नहीं बेचते नहीं खाने के लिए, और वरियाली होती है बेचते हैं, रंडा वरियाली बेचते हैं,
0: वो तो खा नहीं सकते, गेहूं
1: गेहूं खाने के लिए,
0: बाजरा और गेहूं।
1: हाँ,
0: अच्छा, और ऐसे कुछ बिक्री, मैंने अपना पैसा कुछ आवश्यकता घर में हो चाहे बच्चों को पढ़ाने लिखाई जरूरत होगा तो आप बिजनेस हिसाब से आप बरियाली डालते, बहुत अच्छा। तो इस तरह आपका जो समाज में गरेसे समाज है ना, गरेसे समाज में जैसे त्यौहार मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, तो आपका जो बहुत बहुत धूमधाम से मनाते हैं इस भैरवनाथ मंदिर में, तो कौन सा मेला लगता है यहाँ पर?
1: मेला हमारा ये सातम, सियाली सातम का लगाते हैं,
0: उसके बारे में जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ और एक हमारा जो पुजारी है, लेकिन लेंगे बाद में,
1: ये पूनम के साल में तीन बार मेला करते हैं भैरू जी का।
0: वो चीज़ हम रखेंगे पिता जी से, तो बाबू जी से अभी आप जैसे खेत का समय में जो जाते तो पानी का व्यवस्था

0: कहाँ से होता है पानी?
1: ये बोरिंग से।
0: बोरिंग से,
1: बोरिंग से
0: होता है। गर्मी का टाइम है, इस बारिश आने का पहले आप जमीन को किस तरह शुद्धिकरण करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं? जैसे अभी दिखाई दे रहा है
1: सफाई नहीं हुआ, कचरा साफ करेंगे,
0: कचरा सफाई करने का मैंने बारिश आने का पहले खेत को आप कैसे बनाते हैं वो चीज बताइए।
1: जैसे बस ये बारिश आने से पहले ही इनको साफ कर लेंगे।
0: इसका बारिश ये क्या चीज का है?
1: ये बरियाली,
0: बरियाली का,
1: बरियाली
0: का डंडा वगैरह निकालना पड़ेगा।
1: हाँ, ये निकाल के फिर जला देंगे इनको,
0: वो खेत के लिए काम आएगा। अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद
1: इसका रोप डालेंगे।
0: अच्छा,
1: अभी 4-5 दिन में डाल देंगे।
0: हाँ,
1: फिर बारिश आते फिर ये
0: इसको खराई तो करना पड़ेगा ना,
1: खराई करना पड़ेगा,
0: खराई करना पड़ेगा
1: साफ करके फिर बारिश से पहले
0: खड़ाई करना। फिर जमीन को शुद्धिकरण करने के लिए जैसे आपने बताया जो घास फूस है, जो सूखा लकड़ी है, इसको जला देंगे,
1: ये जला देंगे,
0: जला देंगे। इसके बाद फिर
1: खड़ाई कर देंगे,
0: पानी डाल के, पानी
1: नहीं ऐसे ही सूखा कर देंगे,
0: सूखी में हो जाएगा, सूखी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा धूप दे देंगे क्योंकि धरती माता है, क्योंकि वो अन्न देता है, तो हम अन्नदाता बन जाते हैं। तो उसको जितना हम प्यार से वो खेत को, जैसे खेत है तो यहाँ पर बैठकर उस खेत को आप थोड़ा, जैसे यहाँ पर बैठकर भगवान को याद करते हैं, तो इस तरह खेत हमारा भगवान जैसे, वो हमको अन्न देता है,
1: अन्न देता
0: है ना, जैसे हम सोचेंगे ना उस तरह फल देगा। लेकिन हमारा भावना उनका प्रति, खेत का प्रति
1: एक मिलना चाहिए,
0: मिलना चाहिए। जैसे बच्चों को हम अच्छा भावना देते, शुभ भावना देते, अच्छा बने ऐसे हम भाव सोचते हैं, तो जमीन को भी हमारा बेटा सोचते हैं, उसको पूरा ध्यान दो तो वो 1000 गुना देगा,
1: देगा, देगा।
0: ये आप अनुभव करते हैं, लेकिन अभी इस बार करो, यहीं पर बैठ, आपको खेत में जितना बड़ा जगह है ना, उस जगह को इसमें देखो, बुद्धि से देखो। जैसे आपका सियाबा का भाई को देख रहे हैं ना, चाहेंगे तो बुद्धि से देख सकते हैं,
1: देख सकते हैं,
0: बुद्धि से देख सकते हैं ना, यहीं पर बैठ कर आपका भाई का चेहरा को देख सकते हैं, देख सकते हैं बुद्धि से। हाँ, मंदिर को भी देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपका खेत को भी देखिए, देख सकते हैं,
1: देख सकते हैं।
0: खेत का चार तरफ आपका मन को, बुद्धि को दौड़ाइए और वो खेत को, खेत को बोलिए, हे धरती माता, इस बार हम आपका साथ इतना प्यार से फसल उत्पादन करेंगे, आप हमें सहयोग दें, क्योंकि आपका भरोसा में हमारा पूरा परिवार गुजरेगा, क्योंकि आपका ऊपर हम डिपेंड है, इसलिए आपके ऊपर हम निर्भर है। ऐसे सोचेंगे तो जमीन भी सुन रहा है,
1: सुन रहा है,
0: वो भी आपको फसल बहुत अच्छा देगा। उसके लिए हमको शुद्धता रहना पड़ेगा और उनको प्यार से बात करना, मन में इसे बोलना नहीं, मन में बात करेंगे तो वो खेत भी बोलेगा ये हमारा मालिक, हमारा प्रति इतना प्यार है,
2: हाँ प्यार है,
0: तो वो प्यार से आपको अनाव जितना देगा, जितना उससे ज्यादा देगा, देगा कि नहीं
1: देगा।
0: तो जैसे हम पूजा पाठ करते हैं खेत को, फसल को भी पूजा पाठ करते हैं,
1: करते हैं,
0: तो जमीन को भी, और उसका अंदर में जो कीड़ा मकोड़ा वगैरह है, जो जानवर है कि छोटा छोटा जीव जंतु है, तो उसको भी बोल दीजिए भाई हम कल खेड़ाई करेंगे, आप अपना अपना जगह में चला जाओ, हम आपको नष्ट मारेंगे
1: नहीं।
0: तो एक दिन पहले बोल देंगे तो अपना अपना जगह में जाएंगे, तो आपको उनका दुआएं मिलेगा और वो नष्ट आपका फसल करेगा
1: नहीं।
0: आप मान लीजिए खेत कर देंगे, ट्रैक्टर चला देंगे, तो उनका वंश मर जाएगा, मर जाएगा कि नहीं,
1: मर जाएगा।
0: तो मरेगा तो आप उसका जो अभिशाप श्राप कास्कर ऊपर पड़ता है, इसलिए कास्कर उधर का दे। तो भगवान कहते हैं खुद को विचार शक्ति से वो पौधा को, जमीन को और जीव जंतु को आराम दो, तो आपको आराम
1: मिलेगा।
0: ये हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तपोवन में, अपना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तपोवन एक फार्म हाउस है, जिसमें हम पूरा योग का माध्यम से बात करते हैं जमीन का साथ, मतलब जमीन को शुद्धिकरण, बीज जो रोपते हैं ना, रोप डालते हैं, तो बीज को भी शुद्धिकरण, सबको शुद्धता करते हैं मन से,
1: मन से।
0: जैसे आगे मंत्र था ना, मंत्र, मंत्र होता था ना, ये भी मंत्र, मनसा सेवा करेंगे तो अच्छा बन पाए। ये कर देखो, और कभी देखना होगा तो तपोवन में आकर देखो, बहुत अच्छा खेत होता है। ऐसे बोलते बोलते मैंने फसल होता है, सत्य युग में होता था स्वर्ग में, लेकिन आज का समय में जब हम शुद्धता रहेंगे तो हमारा फसल भी शुद्धता देगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु राम जी। और क्या कहना चाहेंगे, आपका बच्चों को पढ़ाई लिखाई में होशियार कराइए, और आप भी जितना हो सके प्रभु को याद करिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक अब पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन। हम पर अच्छा, धन्यवाद, राम राम,
1: राम राम, राम।